0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहां से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

हो राधे श्याम की जय हो सियाराम की और जय हो बंबई धाम की। ई है

आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगी, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चली होंगी। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर आ रहा है एक अनोखा आध्यात्मिक सफर, आंतरिक दिव्यता का आह्वान। जानिए कैसे देवी दुर्गा और लक्ष्मी हमारे भीतर की शक्तियों का प्रतीक है, कैसे जागरण, व्रत और दीपक जलाना हमें आत्मा चेतना की ओर ले जाते हैं, और कैसे रास गरबा हमें सिखाते हैं। जीवन में सामंजस्य और सहयोग। नवरात्रि के नौ दिन रोज सुबह 11 बजे जुड़िए आरजे संजय के साथ सिर्फ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर अंतरिक्ष दिव्यता का हुआ।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सेल्फ मैनेजमेंट की इस पूरी श्रृंखला में खुद को मैनेज करने का जो पूरा प्रोसेस हमने समझा है, उसमें हम बात कर रहे थे रिश्तों की, लोगों के साथ रिश्ता, और फिर अगर पिछली कड़ी को देखें तो अपने साथ रिश्ता हमने कायम किया था। अब इस रिश्ते को कैसे मजबूत करते जाना है, ये हमारे पुरुषार्थ पर, हमारे एफर्ट पर डिपेंड करता है। आज इसी श्रृंखला को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और रिश्तों की इस पूरी सीरीज में बात करते हैं परमात्मा के साथ, गॉड के साथ मेरे रिश्ते की। कैसा होता है वो रिश्ता अगर हम जिंदगी में देखें तो सचमुच हम में से हर कोई भगवान के साथ जुड़ा है किसी न किसी रूप में। कभी ना कहीं कोई मुश्किल आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, हर बार भगवान को याद करते हैं। कुछ काम करवाना है या चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए, याद करते हैं कि प्लीज़ गॉड हेल्प मी। लेकिन सचमुच में ये रिश्ता क्या हो सकता है, क्योंकि हर बार इस पूरी श्रृंखला में जब हमने देखा है, एक नए अंदाज से हम चीज़ों को देख पा रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। जहाँ तक बात लोगों के साथ मेरे रिश्ते की थी, उसको नई नज़र से देखा, खुद के साथ एक रिश्ता, एक पहचान बनी, तो समझ में आया कि ये रिश्ता जो है ये भी बन सकता है। और फिर उसके ऊपर काम करते करते मैनेज करना आया चीज़ों को। परमात्मा के साथ या गॉड के साथ रिश्ते की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग, अगर नास्तिक भी जो सपोजिटली जो नहीं मानते, वो भी कहीं ना कहीं किसी शक्ति को मान रहे होते हैं, कुछ सुप्रीम को मानते हैं। और एक सचमुच में रिश्ता कुछ है लेकिन अनजाना सा, जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं सोच पाते हैं। लेकिन अगर हम आपसे जाने,
1: जैसे आपने कहा रिश्ता तो है लेकिन अनजाना सा, हम उसके बारे में स्ट्रांगली क्यों नहीं सोच पाते? बिकॉज समवेयर हमें ये भी क्लैरिटी नहीं है कि किसके साथ वो रिश्ता है। यू नो, परमात्मा से रिश्ता तो एक सेकंड बात हुई, जैसे कि आपके साथ रिश्ता, रिश्ता तो तब जुड़े जब पहले आपका पहचान तो मिले,
0: कौन है वो, यू नो, सच
1: में। सो फर्स्ट, बिफोर अ रिलेशनशिप गेट्स एस्टैब्लिश्ड बिटवीन एनी टू एंटिटीज, तो सबसे पहले वो एक दूसरे को पहचान तो लें। रिश्ता तो फिर धीरे धीरे एक एस्टैब्लिश होता है और फिर वो ग्रो होता जाता है। लेकिन जब हमें यही नहीं पता कि वो कौन है, उसके बारे में हमारे माइंड में कई प्रकार के कन्फ्यूजन्स हैं, यहाँ तक कि तो डाउट भी आ जाता कि पता नहीं है भी या नहीं है। तो जिसकी एग्जिस्टेंस पर ही फेथ नहीं हो, यू नो, कभी ना कभी डाउट आ जाता है। कई बार काफ़ी हद तक जीवन में हम चल रहे हैं, हम कहते हैं भगवान है, लेकिन सडनली मेरी लाइफ में कुछ, यू नो, सम ट्रेजेडी हिट्स और समथिंग, एंड सडनली ऐसे भगवान कोई है नहीं। आज दिन तक, क्योंकि हम इतने बॉडी कॉन्शियस में हैं, हमें अभी तक तो मैं आत्मा हूँ ये भी नहीं पता था। यू नो, जैसे विस्मृति हो गई थी कि मैं कौन हूँ। सो आई थॉट आई वॉज अ बॉडीली फॉर्म, तो फिर भगवान को भी कहीं ना कहीं एक ह्यूमन फॉर्म में ही ढूंढ रहे थे। कहीं डेटी फॉर्म में ढूंढा, कहीं धर्म पिताओं के फॉर्म में ढूंढा, कहीं वर्तमान समय ही जो महान आत्माएं, संत आत्माएं, उनके फॉर्म में ढूंढा, और फिर कहीं ना कहीं अपने आप को एक, यू नो, सॉर्ट ऑफ इल्यूजन में रखा कि उनके थ्रू हम उनको कनेक्ट कर लेंगे। अगर, क्योंकि जहाँ भी हम जाते महान आत्माओं से ज्ञान की बातें सुनते हैं, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम भगवान हैं, लेकिन हम उनसे जुड़ जाते हैं। और फिर अगर हमें कोई कहे लेकिन परमात्मा से तो भी जुड़ना है, तो कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, इनके थ्रू हम उनसे जुड़ जाएंगे। बट दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इफ आई वॉन्ट टू मीट यू, इट इज़ मीटिंग यू। इफ आई वॉन्ट टू मीट योर पेरेंट, देन इट इज़ मीटिंग योर पेरेंट। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं आपको मिल ली तो आपकी मम्मी को भी मिल ली, एक ही बात है। नो, इट्स नॉट द सेम थिंग। आप हैं, वो हैं। आप एक कंपनी में जाते हैं, आप एक मैनेजर को मिलते हैं या आप एक CMD को मिलते हैं। आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं मैनेजर को मिल ली, एक ही बात है, मैंने CMD से मिल लिया। नॉट एट ऑल। हाँ, आपसे मिलो, आपके साथ रिश्ता एस्टैब्लिश हो, आपसे जो रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करना है आई विल हैव। लेकिन परमात्मा से मिलो, आई कैन नॉट से आपको मिली, उनको मिली, एक ही बात है, नहीं। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हम वो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं एस्टैब्लिश कर पा रहे, तो हम ये समझने लगे कि जिन्होंने कर लिया है
0: वो उनके साथ जो
1: हम उनके साथ कर लेते हैं। हाउ विल दैट वर्क? आपका किसी के साथ एक रिलेशनशिप है, लेट्स से आपका आपकी मम्मी के साथ एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। अगर मेरा आपके साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो गया, डज दैट मीन देयर फोर मेरा आपकी मम्मी के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो गया? नो, नॉट एट ऑल. वी स्टिल मे बी वी स्टिल हैवंट एक्सपीरियंस्ड कि वॉट इज इट टू हैव अ रिलेशनशिप विद गॉड, क्योंकि इट विल हैव टू बी अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. रिलेशनशिप वाया वाया नहीं जा सकता. आपको बिजनेस करना है, आप वाया वाया कर सकते हैं. मैं आपके साथ करूँ, आप किसी और के साथ करें, आपको वो प्रॉफिट हो, मुझे आपसे, दैट इज ऑल ओके. बट वेन वी आर टॉकिंग ऑफ एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, तो मुझे अगर परमात्मा के साथ करना है, आई विल हैव टू डू इट डायरेक्टली. इट कैन नॉट हैपन, आई कैन नॉट. ये बहुत बहुत बड़ा इल्यूजन है जिसमें हम अपने आप को रख रहे हैं. इनके साथ कर लिया तो उनके साथ अपने आप हो जाएगा. हमारा तो बुद्धि योग आज आत्माओं के साथ ही जुड़ गया है ना, एंड दैट्स अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप, दैट्स ओके. लेकिन वो उन आत्माओं के साथ है, चाहे वो धर्म पिताओं के साथ है. अगर मैं जीसस क्राइस्ट को आज याद करूँ, तो पवित्र आत्मा जिन्होंने इतना श्रेष्ठ धर्म एक स्थापन किया, तो आई विल एक्सपीरियंस अ रिलेशनशिप विद दैट सोल. But that does not mean that I will experience a relationship with God. I will experience a relationship जिनको मैं याद करती हूँ उनके साथ ही, वो कहीं ना कहीं जो भी मेरा तरीका हो याद करने का, उस आधार पर मैं उनके साथ वो रिश्ता अनुभव करूंगी. But does that mean therefore I will experience a relationship with the supreme power?
0: So, but then for that I have to be very very clear, who is the supreme power?
1: Absolutely.
0: Who is the God?
1: Yeah. तो जितने भी चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे वर्तमान समय जो भी हमें परमात्मा का संदेश देते, और अब तो जो परमात्मा ने स्वयं आकर ही अपना परिचय दे दिया कि जैसे हम आत्मा हैं तो पिता भी कैसा होगा. यू नो द चाइल्ड इज ऑलवेज लाइक द फादर. द आई एम प्योर बीइंग, कॉन्शियंट एनर्जी, इटर्नल, जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट टू विजुअलाइज. तो मेरा पिता भी कैसा होगा? हम उसको कहते ही हैं परम आत्मा. तो मतलब अगर मैं आत्मा हूँ तो परम आत्मा कैसा होगा? वो भी एक आत्मा ही है. लेकिन हम कई बार सोचते मैं आत्मा, वो परम आत्मा. परम मतलब साइज में बड़ा,
0: बिग
1: नो. सो परम इन पावर्स, परम इन क्वालिटी. परम मींस सुप्रीम. तो इफ आई एम अ प्योर सोल, तो द सुप्रीम सोल विल बी ओशन ऑफ प्योरिटी. वो आत्मा ही है, मैं भी आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है. सिर्फ फर्क क्या है, जैसे डिग्री होती है ना, तो फर्क क्या है कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, लेकिन वो आत्मा पवित्रता का सागर है. एंड परमात्मा और हम आत्मा में जो सबसे फंडामेंटल डिफरेंस वो आता कि हम आत्मा ये सृष्टि रूपे ड्रामा में वी टेक अ बॉडी लीव अनदर बॉडी, टेक अ बॉडी लीव अनदर बॉडी. तो कहीं ना कहीं बॉडी से अटैच होते होते हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते और हमारे ऊपर वाइसेस का इन्फ्लुएंस होता. लेकिन परम आत्मा, ही डजंट कम इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, एंड दैट्स व्हाई ही ऑलवेज रिमेन्स एवर प्योर. वी लूज आर प्योरिटी बिकॉज ऑफ कमिंग इन दिस साइकिल एंड देन गेटिंग अटैच टू द बॉडी. तो वी लूज आर डिग्रीज, लेकिन वो एवर प्योर है. एंड अब जब मैं उसको पहचान लेती हूँ, किसी के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए क्या चाहिए, वो कौन है, उसका नाम क्या है, वो रहता क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, रोल क्या है, और उसकी क्वालिटीज क्या है, ये फंडामेंटल. जस्ट टू स्टार्ट विद, इफ आई मीट यू द फर्स्ट टाइम, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, देन आई स्टार्ट टॉकिंग. धीरे धीरे धीरे
0: आपकी विशेषताएं क्या है पता चलती हैं,
1: धीरे धीरे रिलेशनशिप डेवलप होता. तो परमात्मा जब इस सृष्टि पर आकर हमें अपना परिचय देते, आज दिन तक हम भगवान को ढूंढते आए थे, अब भगवान हमें आकर ढूंढता है, बिकॉज ही ऑल्सो हैज़ अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप विद अस, वी आर हिज चिल्ड्रन. तो परमात्मा हमें आकर बताते फॉर्म कैसा है, लाइक यू आर अ टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम ऑल्सो अ टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट. आपका घर कहाँ है, आत्माओं का घर कहाँ है, इस सृष्टि रूपे रंगमंच से पार, बियॉन्ड स्पेस, व्हाट वी कॉल एज द यूनिवर्स एज वी नो इट, इज द लैंड ऑफ द सोल्स, द सोल वर्ल्ड, जिसको हम शांति धाम, मुक्ति धाम कहते आए, उसी को परम धाम भी कहते हैं. तो परम धाम क्योंकि वो परम आत्मा का रहने का धाम. सो नाउ आई हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर इन माई माइंड. राइट नाउ आई एम हेयर, वेयर इज ही? So I immediately think of him. There he is in that land of golden red light. Wo wahan hai. And how is he? He's the ocean of purity, the ocean of love. Who is he for me? I will establish my relationship.
0: अभी एकदम से ये concept मेरे सामने आना कि परमात्मा वो एनर्जी है और वो परम धाम के निवासी हैं, जहाँ पे इवन मेरा भी निवास वहीं है, वो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में, हर रोज़ की मेरी ज़िंदगी में, जो मेरा एक जीवन चल रहा था, जीवन चक्र था, उसके में कहीं एक डिस्पैरिटी है हल्की,
1: क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम अपने को ह्यूमन फॉर्म में, मैं ह्यूमन ये बॉडी हूँ इसमें देख रहे थे, तो आई फाउंड द नीड के सामने वाला भी कौन होना चाहिए, वो भी एक ह्यूमन फॉर्म होना चाहिए कनेक्ट करने के लिए। और इसीलिए आज आप देखो, हम सबको याद कर सकते हैं, लेकिन जब भगवान को याद करने बैठते हैं, इवन आपके पास जो भी फॉर्म है, आपने कोई भी फॉर्म क्रिएट किया है, फिर भी आज की सबकी कॉमन कंप्लेंट क्या है कि भगवान को याद करने बैठते हैं तो मन
0: भटकता है।
1: क्यों? औरों को, दिस हैज टू बी अ वेरी क्लियर थिंग, ईच वन हैज टू आंसर इट फॉर देमसेल्व्स। सबको याद करते हो आप, सारा दिन याद करते हो, जो लोग पसंद नहीं है उनको भी याद करते हो, फोटो नहीं निकालते, तैयारी नहीं करते, एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालते, एक्स्ट्रा स्थान नहीं बनाते, फिर भी याद नेचुरल आती है। काम करते हुए भी हम औरों को याद करते हैं, तो भगवान को याद करने में इतना मुश्किल क्यों होता है?
0: अच्छा, और एक और बात है, भगवान को जब हम याद करते, कई बार मैं ये सोचती हूँ, किसी भी भगवान की अगर बात करते हैं, श्री राम की बात करें अगर, तो उनकी जो फोटो है, जो एक पर्टिकुलर फोटो जो हमने देखी हुई है, वो फोटोग्राफी याद आती है, यू नो, दैट मीन्स वो तो फोटो है, वो फोटो किसने बनाई, किसी पेंटर ने बनाई होगी। तो
1: इसीलिए इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द फॉर्म, क्योंकि वैसे भी आज भी जो मेरा रिलेशनशिप है, इट्स नॉट विद दिस बॉडी। रिलेशनशिप किसके साथ है?
0: सोल।
1: इट्स दिस रिलेशनशिप ऑफ द सोल विद द सोल, क्योंकि रिलेशनशिप क्या है? थॉट विद थॉट, फिर वो थॉट वर्ड में आएगा, एक्शन में आएगा, लेकिन अभी तक उस अवेयरनेस में नहीं चल रहे थे, इसलिए हमने सोचा रिलेशनशिप जो हम बोले उस पर बेस्ड है, लेकिन अब तो ये फंडामेंटल समझ में आया कि रिलेशनशिप उस पर बेस्ड है जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, वाइब्रेशन का कनेक्शन मेरा किसके साथ जुड़ना होगा, नॉट जस्ट विद द पिक्चर, इट विल हैव टू बी विद दैट एनर्जी, राइट? अगर मैं किसी, ओके लेट्स से आई टेक अ पिक्चर ऑफ अ फैमिली मेंबर, ठीक है, सपोज मैं आपकी बेटी की फोटो ले लेती हूँ,
0: ठीक है,
1: आई डोंट नो हर, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं है, एंड आई टेक हर फोटोग्राफ एंड मैं सोचूं कि मैं इसको याद करती हूँ, विल आई बी एबल टू डू इट? एंड यू, आपको उसकी फोटो की जरूरत नहीं,
0: नहीं, यस, यू नो, बिकॉज आई नो हर,
1: तो रिलेशनशिप फोटो पर बेस्ड नहीं है, रिलेशनशिप उसके ह्यूमन फॉर्म पर बेस्ड नहीं है। टुडे शी कुड बी इन अमेरिका, यू कुड बी हियर, ये हो सकता है आप उसको एक साल से मिले भी नहीं, आपको फोटो निकालने की जरूरत है याद करने के लिए? नहीं, याद कौन कर रहा है, कौन कर रहा है?
0: कॉन्शियसनेस,
1: रिमेम्बरिंग हु, अनदर कॉन्शियसनेस, उनकी क्वालिटीज, वो क्या है, कैसे हैं, क्या करते हैं, वो कॉन्शियसनेस। फोटो की जरूरत नहीं है, लेकिन आज तो फोटो रखने के बाद भी याद नहीं आते हैं, तब भी कहते हैं कि हम भगवान को याद करने बैठे, लेकिन हमारा मन तो ऑफिस के काम में, घरों के, यू नो, परिवार के लोगों में भटक रहा था। क्यों? क्योंकि जिसको याद करने बैठे थे, क्लैरिटी नहीं,
0: एब्स्ट्रैक्ट है ना,
1: एब्स्ट्रैक्ट है ना, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है, श्योर नहीं है कौन है। तो भगवान को जिसके साथ हम आज गायन करते आए कि मेरे सारे रिश्ते तेरे साथ हैं, तो उसको याद करना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? कि कहीं ना कहीं वो गायन में है, यू नो, वो महिमा में है, हमारी वाणी में है वो, कि मेरे सारे संबंध तेरे साथ, लेकिन शायद वो एक्सपीरियंस नहीं किया है। नहीं तो अगर लॉजिकली सोचा जाए, एक तो वो परमात्मा है जो हमें सिर्फ सुख शांति पवित्रता देता, दूसरा वो है जिसके साथ मेरे सारे संबंध हैं, हाँ, तीसरा वो कभी मुझे गुस्सा नहीं करता, कभी मेरे साथ, अब उसको याद करना मुश्किल क्यों होना चाहिए? सबको, या जो हमारे परिवार के, हमारे नज़दीक है, हमें अच्छे लगते हैं, उन्हें याद करना मुश्किल नहीं है, तो उसको याद करना मुश्किल क्यों होना चाहिए? उसकी तो याद सबसे पहले आनी चाहिए।
0: Wonderful. In fact, yes, that's very true.
1: उसकी याद तो सबसे पहले तो जो, क्योंकि कोई अगर बहुत अच्छा है तो उसको याद करना कितना मुश्किल होना चाहिए?
0: नहीं, बिल्कुल। और जिसके साथ, अच्छा और बुरा की बात भी नहीं, जिसके साथ मेरा इतना गहरा संबंध है, जिसके साथ मैं सब कुछ ढूंढ रही हूँ, सब कुछ कह रही हूँ, उसे याद करना कैसे मुश्किल?
1: मुश्किल क्यों होना चाहिए, लेकिन उसको याद करना मुश्किल क्यों हो रहा है? क्योंकि शब्द हैं, बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, रोज बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, क्योंकि एक्सपीरियंस इज नॉट हियर, एक्सपीरियंस इज नॉट इन व्हाट आई एम सेइंग. एंड आज तो ये भी है कि हम जो बोल रहे हैं वो भी किसी और ने लिखा हुआ, सो इट्स समवन एल्सेस फीलिंग, समवन एल्सेस थॉट्स. हम तो उसको रोज के रोज सिर्फ रिपीट कर रहे हैं. इमेजिन अ सीन कि आपकी बेटी रोज आपके साथ सेम बात रिपीट करे, रिलेशनशिप होगा. एंड वो भी वो रिपीट करे
0: जो किसी और ने
1: आप कुछ नहीं, हाँ, और हाँ वो रिपीट करे जो किसी और ने लिखा. एंड ऊपर से आप कुछ कम्युनिकेट नहीं करो, कोई
0: रिलेशनशिप,
1: फिर वो एक्सपीरियंस नहीं आएगा.
0: इट विल बी अ डेड रिलेशनशिप
1: बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम द अदर साइड. रिलेशनशिप इज ऑलवेज एनर्जी एक्सचेंज. तो इसको भले ये भी एक कॉन्सेप्ट है अभी कि गॉड इज ऑल्सो एनर्जी पॉइंट ऑफ लाइट, लेकिन ट्राई करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं. क्यों इस कॉन्सेप्ट को हम ट्राई करके देख सकते हैं? क्योंकि वर्तमान समय परमात्मा खुद आकर अपना परिचय दे रहे हैं. इट्स लाइक समवन एल्स कमिंग एंड टेलिंग मी अबाउट यू, यू नो. एंड कोई आकर कहे कनुप्रिया है, ऐसी है, ऐसी है, अब आप उसको याद करो, तो लिटिल डिफिकल्ट.
0: मैं एक सेकंड, आप अपना इमेजिनेशन में कुछ कुछ करोगे
1: तो फिर भी अच्छा ऐसी है या ऐसी है. और फिर मैं आपको याद करने की कोशिश भी करूंगी तो मेरा मन तुरंत उन लोगों की तरफ भटक जाएगा जिनको मैं अच्छी तरह से जानती हूँ. एंड देन फाइनली वन डे आई गेट टू मीट यू. एंड फिर आपसे मिलना हुआ, परिचय हुआ, फिर आपसे बातचीत शुरू हुई, तो थोड़ा थोड़ा रिश्ता जुड़ा. ऐसे नहीं कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो गया, लेकिन फिर बहुत कुछ शेयरिंग होने लगा, फिर शायद रोज ही बात होने लगी, फिर रिलेशनशिप
0: बहुत स्ट्रॉन्ग. यस,
1: अब हम ये नहीं कहेंगे कि मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ कनुप्रिया को, बट यू नो मेरा मन यहाँ वहाँ भटक रहा है. नो, मैं याद करना नहीं पड़ता मुझे अब आपको. आपकी याद तो चलते फिरते सारा दिन में कई बार आ जाती है. कितनी बातें ऐसे ध्यान में आती है और आपकी याद आ जाती है. कई बार आपकी याद आती है, आप फोन कर देते हो वहां से, तो ये क्या हो गया? समवन आई डिडंट नो एट ऑल, समवन जो किसी ने मुझे बताया कि ऐसा कोई है, लेकिन तब तक भी रिश्ता नहीं जुड़ा. लेकिन जब हम एक्चुअली उनको मिलते हैं, रिलेशनशिप उसके बिना एस्टैब्लिश हो ही नहीं सकता है.
0: वेरी ट्रू. इनफैक्ट यस, इससे ज्यादा क्लियर मुझे लगता है परमात्मा के बारे में हम बात नहीं कर सकते.
1: तो आज दिन तक हमें बहुतों ने परमात्मा का परिचय दिया, which was very nice. They were all giving it उनके एक्सपीरियंस के आधार से. लेकिन हमें क्या करना पड़ रहा था कि उनके इंट्रोडक्शन और उनके एक्सपीरियंस के आधार से हमें एक रिलेशनशिप कंसेप्चुअलाइज करना पड़ रहा था. यू नो इट कुड बी लाइक दिस और इट कुड बी लाइक दिस. बट वॉट वेन ही कम्स हिमसेल्फ डायरेक्टली, देन I don't have to conceptualize it. Then it is a direct relationship. लेकिन उसमें भी अब वो आकर अपना परिचय देता है, हम उसको सुनते हैं. We're not too sure, क्योंकि the only difference in this case is physically दिखाई नहीं देता जैसे बाकी लोग दिखाई देते हैं. तो initially वो experiment करना

0: करने की कोशिश करूं जो एक्चुअली है
1: नहीं
0: या
1: है।
0: नहीं है, आई एम नॉट टू श्योर. तो मैं भले बहुत सारी एनर्जी भेज रही हूँ, बट आई एम नॉट टू श्योर कि रिटर्न में कुछ आने वाला है. तो वो एक्सपीरियंस नहीं होगा एक रिलेशनशिप का. हाँ, मैं एनर्जी एक्सपीरियंस करूँगी वाइल आई एम क्रिएटिंग इट एंड ऑन द वे आउट. आज दिन तक हम अलग अलग फॉर्म में भगवान को बहुत प्यार से याद करते थे. तो इतना प्यार से याद करते थे कि कई लोग रोने लग जाते थे, मतलब इतनी भावना, इतना प्यार, विच इज़ वेरी नाइस. लेकिन वो किसने क्रिएट किया?
1: मैंने
0: मैंने क्रिएट किया. तो हमने पहले ही देखा कि जब हम क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करते हुए वो सबसे पहले
1: मुझसे होकर
0: हमारे थ्रू
1: गुजरता है।
0: गुजरती है. लेकिन नाउ व्हाट अबाउट द एक्सपीरियंस फ्रॉम द अदर साइड?
1: आप कुछ भी कहते जाएं, कुछ भी कहते जाएं, मैं अगर नहीं कुछ बोल रही तो आपको कुछ भी नहीं महसूस हो क्या?
0: फ्रॉम द अदर वे
1: हाँ
0: मुझे आपको ट्रांसमिट करते वक्त महसूस होगा, बट आई विल नॉट गेट एनी थिंग फ्रॉम देयर अगर इफ यू आर नॉट देयर. लेकिन जिस दिन आप एक्चुअली आ गए सामने एंड अब आई स्टार्ट ट्रांसमिटिंग, तो इन रिटर्न
1: I should experience,
0: आई शुड
1: but
0: एक्सपीरियंस.
1: how will I experience? How will I know that I've experienced it?
0: तो हाउ विल वी एक्सपीरियंस गॉड? एनर्जी लेवल पर वर्क करें ना. हियर वी आर नॉट टॉकिंग के हम कुछ बोलेंगे एंड सडनली कोई आवाज
1: आवाज
0: आ
1: आएगी।
0: जाएगी
1: हाँ
0: और कोई आंसर आ जाएगा. वी आर नॉट लुकिंग फॉर मैजिक. हम कुछ ऐसा नहीं देख रहे हैं. हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि आई एम कनेक्टिंग विद द सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर. क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए कि किसके साथ रिश्ता जुड़ रहा है और उसके साथ व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग इन द रिलेशनशिप. हर रिलेशनशिप में एक एक्सपेक्टेशन है, राइट? अब हमने ये देखा कि जितने हमारे आज के रिलेशनशिप्स हैं इनमें एक्सपेक्टेशन करना थोड़ा सा वर्तमान समय इट्स नॉट वेरी इंटेलिजेंट क्योंकि वी नॉट बीइंग एबल टू गेट जो हमें चाहिए. लेकिन परमात्मा के साथ आई थिंक वी कैन हैव एन एक्सपेक्टेशन बिकॉज ही इज़ नॉट इन दैट बॉडी कॉन्शियस फॉर्म. ही इज स्टिल दैट एवर प्योर. तो उससे हम जो भी एक्सपेक्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ वो जो है. अब हम आज परमात्मा से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आज भी हम एक्सपेक्टेशन बहुत रखते हैं. मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा, आप उसको ठीक कर दो
1: मेरी
0: ना.
1: सिचुएशंस
0: मेरी
1: कितनी हैं,
0: सिचुएशंस,
1: नौकरी नहीं मिल रही है,
0: नौकरी
1: नौकरी
0: नहीं
1: अच्छी
0: मिल
1: नहीं चल
0: रही.
1: रही है, मेरे बॉस को हटा दो या बहुत सारी और, मेरे हस्बैंड को ठीक कर दो।
0: यस, मेरी तबीयत ठीक कर दो, या दोस काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस. हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि जिसके साथ हमारा रिश्ता जुड़ा है उसका रोल क्या है. व्हेन आई एम इंटरैक्टिंग विद यू आई नीड टू बी वेरी क्लियर कि आप क्या करते हैं, आप क्या नहीं करते हैं. अगर मैं आपके साथ कुछ और एक्सपेक्टेशंस करने लगूँ और फिर बोलूँ आप तो अपनी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ही नहीं कर रहे हैं, तो हम परमात्मा से मांगते हैं. और हमेशा ज़्यादातर आप देखो तो हम परमात्मा को तभी याद करते हैं जब कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और फिर हम उससे मांगते हैं. और मांगते भी क्या है? प्रॉब्लम को ठीक कर दो. मैं कुछ नहीं तो मैं बोल दूंगी प्लीज कनुप्रिया को ठीक कर दो, मेरी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करे. सो आई एम आस्किंग गॉड टू चेंज द सिचुएशन, टू चेंज द अदर पर्सन. अब हमें बहुत क्लियर हो गया कि ये सारी जो मेरी सिचुएशंस हैं ये मेरे अपने कार्मिक अकाउंट्स हैं. अगर भगवान हर एक के कार्मिक अकाउंट में इंटरफेयर करने लगे देन द होल लॉ ऑफ नेचर विल
1: गोज़
0: गो हे वाया. परमात्मा गॉड इज द सोर्स ऑफ पावर. ही इज द सोर्स ऑफ ट्रूथ, द सोर्स ऑफ प्योरिटी. तो उनसे हमें मांगना है या जो लेना है वो क्या लेना है? वो जो है पावर, पीस, प्योरिटी. हाँ, आई कैन डू दिस कि मैं परमात्मा को याद करके वो शक्ति ले सकती हूँ जिससे मैं वो परिस्थिति को मैं हैंडल कर सकती हूँ. लेकिन परमात्मा को बोलूँ मेरी परिस्थिति चेंज कर दे तो देन दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. तो देयर अगेन आई विल नॉट एक्सपीरियंस एनी थिंग क्योंकि परिस्थिति कई बार चेंज होती, कई बार नहीं चेंज होती. चेंज हो जाती तो हम कहते थैंक यू गॉड, नहीं चेंज होती तो हम कहते आई डोंट लाइक यू, आपने मेरी बात तो
1: आपने
0: ठीक
1: नहीं
0: की नहीं.
1: किया। हाँ
0: यू सी, सो वी डोंट रियलाइज के ईदर वेज ही वॉज नॉट प्लेइंग अ रोल इन दैट. दीज सिचुएशंस आर माई कार्मिक अकाउंट्स. कहीं ठीक होने वाला है, कहीं नहीं ठीक होने वाला है, बट वॉट इज माई रोल? आज हम परमात्मा को जब याद करते तो माइंड स्टेबलाइज हो जाता है, माइंड साइलेंट हो जाता है, आत्मा में ताकत आ जाती है और फिर आत्मा अपनी परिस्थिति हैंडल करती है. परमात्मा परिस्थिति नहीं चेंज करते हैं. सो नाउ व्हेन आई कनेक्ट टू गॉड इट इज़ नॉट विद चेंज द सिचुएशन, इट इज़ विद द इंटेंशन ऑफ एम्पावरिंग माई सेल्फ.
1: गिव मी द पावर।
0: अपने आप को गिव मी भी नहीं बोलना पड़ता. गिव मी भी क्या करना है?

0: आप एक सागर के किनारे जाकर बैठ जाओ, आप गिव मी थोड़ी बोलते हो,
1: वो अपने आप आ जाती है लहर।
0: आप सागर के किनारे जाकर बैठ जाते हो, शीतलता ठंडक अपने आप फ्लो करते हैं,
1: पानी अपने आप आता है, लहर अपने आप
0: आता है। आप अपनी बेटी को अभी याद करो, आप बोलोगे थोड़ी गिव मी लव, आप बोलोगे नहीं ना गिव मी लव, क्योंकि वो रिश्ता ही क्या है कि जैसे ही याद किया आपको अभी प्यार की अनुभूति हो जाएगी। आप अभी कोई ऐसे व्यक्ति को याद करो जिसके साथ आपका रिश्ता थोड़ा ठीक नहीं चल रहा, आप बोलोगे थोड़ी गिव मी हेट्रिड, अपने आप एक्सपीरियंस हो जाता है, क्योंकि दैट इज द एनर्जी एक्सचेंज विद दैट सोल। इसी तरह परमात्मा इज ओशन ऑफ प्योरिटी। अब ओशन ऑफ प्योरिटी को याद करेंगे तो क्या एक्सपीरियंस होगा?
1: प्योरिटी
0: हैज टू बी ऑटोमैटिकली प्रोवाइडेड आई नो एग्जैक्टली हाउ आई हैव टू डू इट, एंड दैट इज विद द पावर ऑफ माइंड। कि जैसे हमने देखा कि आई एम अ प्योर सोल, माई नेक्स्ट थॉट विल बी I am the child of the ocean of purity. मैं उस पवित्रता के सागर का बच्चा हूँ। मैंने याद किया, किसको याद किया? अपने पिता को याद किया। और हम तो यहाँ प्यार से उनको बाबा कहते हैं, because he is my father. अगर हम भगवान ईश्वर कहते हैं तो that also kind of takes me a little away. I'm talking about titles then. But he is my father. तो we call him Baba. लेकिन बाबा जब हम कह रहे हैं, it's not a human form. It's that एनर्जी। तो जैसे ही हम उसको, उसकी क्वालिटीज को याद करेंगे, तो यहाँ बैठे क्या एक्सपीरियंस होगा? ऑटोमेटिकली। एंड फिर वो क्वालिटी, वो पावर मेरे अंदर भरती जाती, क्योंकि जैसा संग हम रखते वैसा रंग अपने आप लगता जाता। तो परमात्मा को याद करेंगे मतलब परमात्मा के संग में रहेंगे तो उसका रंग अपने आप लगता जाएगा। तो सिचुएशन को हैंडल करना
1: की शक्ति आ जाएगी हमारे पास।
0: एंड नॉर्मली क्या होगा कि जो चीज़ें हम औरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लव, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, एंड हमें नहीं कहीं मिल रहे, हम उसके साथ वो रिश्ता जोड़ते हैं। आज हम लव अनकंडीशनली, कैन बी एक्सपेक्ट अनकंडीशनल लव फ्रॉम एनीवन? नो, लेकिन विद गॉड यस। कैन बी ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली एंड से चाहे कुछ भी हो जाए मेरे साथ, इनके साथ गलत नहीं होगा? But with him, yes. जितने हम रिश्ते आज सारा दिन में निभाते हैं, हमें डर लगता है कि कहीं ये मुझसे नाराज ना हो जाए, कहीं ये मेरे से ना खुश ना हो जाए। With him, आपको कोई डर नहीं है। तो जहाँ complete trust है, complete security है, प्यार है, कहीं डर नहीं है, relationship कैसा होगा? और ये relationship फिर हमें इतना शक्तिशाली बनाता है, इतना भर देता है अंदर, कि फिर हमारे जो दूसरे रिलेशनशिप्स होंगे
1: वो अपने आप होने लगते हैं।
2: अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि परमात्मा से हम कौन से संबंध जोड़ सकते हैं और उनसे हमें क्या प्राप्ति होगी।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुनेरी आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुनेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM।
0: आनंदी रहा आणि आनंद घ्या।
2: नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप नहीं कहता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुण्याचा आवाज तुमच्या हृदयाचा साथी, पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशिया बाटो।
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाए, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए, भरना चाहिए। ऑब्वियस है, हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे, चाय गिर गई, चाय पीते पीते अभी कप में चाय है लेकिन तुरंत क्या करेंगे, उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है, कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा, दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया, और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आप सबका स्वागत। लाइफ स्किल्स, कितनी तरह के स्किल्स हम सीख चुके थे, लाइफ को ही नहीं जान पा रहे थे। अब वो स्किल्स भी सीख रहे हैं, ज्ञान के आधार पर देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिन्हें हम सीखते जाएंगे। जिंदगी बहुत सुंदर होती जा रही है और अनुभव से बड़ा जो कहते हैं कि सच कोई और नहीं होता, तो जब हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, अनुभव होता है, तब हमारे लिए वो सच बन जाता है। आज भी बात को कुछ और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं दिन भर में हम ऐसा क्या कर रहे होते हैं कि दिन जो है वो कम पड़ने लगता है। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत है। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, बहुत सी बातें हमने सीखी। आप, ये लगता है कि दिन छोटा है, इतनी सारी चीज़ें हैं, काम है, बहुत कुछ और मैनेज करना है, लाइफ को मैनेज करना है। अब हम स्टूडेंट बनके स्किल्स भी सीख रहे हैं ये इस पूरे श्रृंखला के अंदर अंदर कि कैसे हमने अभी तक गलतियां की थी उन्हें ठीक करें, लेकिन टाइम जो है वो मतलब दौड़ जाता है, भागता है। टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप्स भी की हैं, सेमिनार्स अटेंड किए, नहीं होता। कहाँ गलत हो रहे हैं हम समय को समझने में, उसे मैनेज करने में?
2: सबसे जो फाउंडेशन इनफैक्ट यही है कि भी सवेरे जल्दी उठो तो आपके पास वह 2-3 घंटे और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और तब तो जल्दी उठो सवेरे, और वह जिसको कहते हैं अधिकतर 90% का वही पीक टाइम होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। आपने स्नान आदि किया, तैयार हो गए, उस समय जो सबसे डिफिकल्ट काम है वह करो।
0: लेकिन उस वक्त तो जब हम अपने आप को उठाते हैं हम इतने हैवी हुए हुए होते हैं।
2: विशेष सर्कल आपने खुद क्रिएट किया कि भाई टेंशन में सारा दिन बिताया, लेट सोए, शराब पी के सोए, या तो और रीति से भी और टेंशन में सोए तो सवेरे उठे तब भी फिर ये दिक्कत होती है। अगर फुल साइकिल को आप ठीक करो, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो आपने निश्चित टाइम किया है तब उठ जाओ, और उठते ही फिर ये नहीं कि अभी और 5 मिनट के बाद अभी नींद आ रही है और अभी 10 मिनट के बाद, ऐसे नहीं। आपने टाइम डिसाइड किया तब बस, भल नींद आ रही है तो भी उठ जाओ, एक बार उठ के कुछ पैदल करने लगो, चलने लगो, ब्रश करने लगो। मैं तो सीधा स्नान करता हूँ, चाय भी नहीं पीता, उठे सीधे 1.5-2 ग्लास पानी पिया, बस सीधा ब्रश करने गए, तैयार होने लगे, शेविंग की, और देखो उतनी देर में फिर ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है। उस समय क्यों हमें थकावट रहती है, क्योंकि नींद में ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम होता है, और जब तक वो नॉर्मल ना हो आप में एनर्जी नहीं आती है। परंतु अगर इस प्रिंसिपल को अपनाओ कि तुरंत बस आप तैयार होने लगो।
0: लेकिन सुबह उठते तो अखबार चाहिए ही, मतलब कई बार तो लोग कहते हैं कि वो सोए हुए अखबार आती है, चाय आती है, उससे उठते हैं।
2: पूरी मतलब इट्स अ वर्स्ट थिंग, दोनों नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ बैड टी इज बैड, इसीलिए तो बैड टी कहा ना उसको। तो चाय पीनी भी है तो नाश्ते के बाद पियो, उठते ही चाय नहीं पियो, क्योंकि चाय की जो हार्मफुल इफेक्ट है वही है कि इमीडिएटली वो इरिटेशन क्रिएट करती है, स्टमक में एसिडिटी क्रिएट करती है। तो इसलिए खाने के बाद थोड़ी सी चाय पिएंगे तो नुकसान नहीं होगा। और अखबार के नेगेटिव न्यूज है, बस एक आदत की बात है, 2 दिन आप करिए, बस उठते ही 1.5-2 ग्लास पानी पियो, पॉसिबल तो बस उसमें थोड़ा नींबू भी निचोड़ दो ताकि विटामिन सी आदि हम आपको मिलेंगे, और फिर तैयार होने जाओ। वो 1.5-2 घंटे में ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, स्नान आदि करके आप फ्रेश भी होंगे। फिर चाहिए तो भले आप एक्सरसाइज करो, थोड़ी सी चाय पीनी है तो पी लो, इस प्रकार से वह जो टाइम आपको मिल जाएगा और तब एनर्जी लेवल भी अच्छा होगा।
0: आपने कहा स्नान के बाद एक्सरसाइज करो,
2: नहीं अगर आपको करनी है तो थोड़ी सी सिंपल तो करो, भले अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो भले पहले ही कर लो तब पसीना होगा। अगर नॉर्मल योगा आदि करते हैं कि जिसमें आपको पसीना नहीं होना है तो स्नान के बाद भी करो तो कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। मुख्य बात तो मेरी ये थी कि भी सवेरे थोड़ा जल्दी उठो और वह आपको 1.5-2 घंटे का जो टाइम मिलेगा वह पावरफुल टाइम होगा, तब डिफिकल्ट काम करो, अच्छे से सारे दिन का प्लानिंग करो। तो जो आपका शुरू में प्रॉब्लम था कि भी दिन छोटा पड़ गया, वह दिन छोटा नहीं पड़ेगा आपका, 25-30% काम अर्ली मॉर्निंग में भी हो जाएगा, मेंटली भी आप अच्छे से प्रिपेयर्ड होंगे।
0: लिटरली देखें, ज्यादातर देखें सिस्टर शिवानी, जिंदगी में ऐसा हो रहा है कि सुबह उठे और टाइम हमारे पास कम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ स्केड्यूल हमने रखा हुआ है जो हमें करना है, और उसके बाद ट्रैफिक जैम मिलेगा या कुछ मिलेगा, उसका मार्जिन रख के भी हमें घर से निकलना है, तो टाइम तो प्लानिंग का, हमें जीने का ही टाइम कम मिल रहा है, ये इसको कैसे हैंडल करें?
2: गलती तो वही है ना कि आप ये सोचते हो कि 45 मिनट्स में तैयार हो जाएंगे, आपको 7:30 को घर को निकलना है तो आप 7 बजे उठते हो, फिर तो हड़बड़ी होगी होगी। ये जो ब्रह्मा कुमारी की लाइफस्टाइल है कि आप थोड़ा जल्दी उठ जाओ तो आपके पास बहुत बड़ा टाइम मिलेगा। मेरा अपना अनुभव है कि हम जल्दी उठते हैं, जो मैंने बताया, तुरंत स्नान कर लेते, तैयार होते तो बहुत बड़ा टाइम होता है, 2.5-3 घंटे होते हैं।
0: लेकिन मैंने कहा ना कि वो जो हैवीनेस हो जाती है, क्योंकि एक आदत है कि आप 7 बजे उठते हैं तो तब आप फिर भी, क्योंकि आप रात इतना लेट सोए होते हैं और जो भी है, तो इस कारण वो सुबह उठने के बाद भी काफी हैवीनेस रहती है।
2: तो यहाँ पर बायोलॉजिकल क्लॉक का प्रॉब्लम है।
0: ओके,
2: आपने जो अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को ऐसे सेट किया है कि भी रात को 1:30 बजे सोना, सवेरे 7 बजे उठना, उसको बदलना होगा। वो एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन को भी वह सेटिंग हो गई है। क्या करिए, अगर अभी आप 1:30 बजे सोते हैं तो 5 दिन 1 बजे सोना शुरू करिए, तो नींद आने लगेगी, क्योंकि थोड़ा सा ही फर्क है, ब्रेन उसको एडजस्ट हो जाएगा। और 5 दिन के बाद 12:30 बजे सोइए, और सप्ताह के बाद 12 बजे सोइए। ऐसे करते करते आप 10:30-11 पर भी आ सकते हैं, फिर सवेरे जल्दी उठना मुश्किल नहीं होगा।
0: नहीं तो पहले हम सोना जल्दी करें या उठना करें?
2: सोना जल्दी करो, थोड़ा आधा घंटा ही, 1/2 आवर ही आप जल्दी सो, भले उसी टाइम पर उठो, फिर और कम हुआ तो उठना जल्दी भी हो जाएगा, क्योंकि जो पीरियड है स्लीप का वो तो पूरा हो गया।
0: और हम एक जो मैंने अनुभव किया है, घर पहुंचते 10 बजे हैं, फिर क्या करें?
1: तो भी अपने, अब ये भी सोचना होगा हम 10 बजे क्यों घर पहुंच रहे हैं, हमें हर काम करने में आज ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों पर हम अटेंशन नहीं रख रहे। आई विल हैव टू स्टॉप, रीशेड्यूल एवरीथिंग, स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। हम सब जब मेडिटेशन सीखना शुरू करते हैं, एंड कई बार हमने ये बात की है, राजयोगा मेडिटेशन इज नॉट 10 मिनट्स और 1/2 आवर, राजयोगा मेडिटेशन इज़ अ लाइफ स्टाइल ऑफ 24 आवर्स। तो जो परिवर्तन हमें एक तो अटेंशन रख के लाना है, कुछ धारणाओं को हर रोज़ फॉलो करना है, जैसे ही हर चीज़ पर फॉलो करते हैं, कितने बजे उठना, कितने बजे सोना, क्या भोजन खाना, सारा दिन में कैसे सोचना और मेडिटेशन करना, धीरे धीरे द होल साइकिल विल फॉल इन टू प्लेस। देखो जब डिसहारमोनी होती है तो पूरे एस्पेक्ट पर डिसहारमोनी होती है, जैसे ही आप उसको हार्मोनाइज करना शुरू कर देते हैं पूरा दिन हार्मोनाइज हो जाएगा। एक चीज़ भी अगर हम शुरू करें कि मॉर्निंग उठकर मेडिटेशन करेंगे थोड़ी देर,
0: कभी भी उठो,
1: जल्दी थोड़ा, क्योंकि अगर लेट उठे तो फिर बैठने के लिए टाइम नहीं है। अभी तक हम क्या कहते हैं, टाइम होगा तो मेडिटेशन करेंगे। सी अगेन, हमने मेडिटेशन को अपने प्लानर में कहाँ डाल दिया कि अगर टाइम होगा तो मेडिटेशन करेंगे, तो टाइम तो कभी होता ही नहीं है। हमें अगर उसकी इक्वेशन को चेंज करें, मेडिटेशन करेंगे तो टाइम मैनेज होगा। सी इट्स जस्ट द वे आई ट्यून माई सेल्फ, इट मेक्स ऑल द डिफरेंस। इफ आई से टाइम होगा तो मेडिटेशन करेंगे, तो वो तो हो ही नहीं रहा, तो वो हफ्ते में कभी एक दिन टाइम मिलेगा तो करेंगे, और क्योंकि रोज नहीं करेंगे तो जब वो एक आधा दिन करेंगे, योग लगेगा नहीं, फिर कहेंगे लगता नहीं, क्या आधा घंटा निकाल के बैठे, लगा भी नहीं, सो देन इट गोज आउट ऑफ द प्रायोरिटी लिस्ट। मैं रोज मेडिटेशन करूँगा, इससे मेरा थॉट और टाइम मैनेज होगा। नाउ लेट मी एक्सपेरिमेंट करके कि मुझे रोज सुबह जल्दी उठना है, जो भी टाइम हम उठते हैं, क्योंकि इमिजिएटली शायद नहीं कर पाए, प्रेफरेबली जैसे हमने पहले भी शेयर किया कि 4:30 जो अमृत वेले का समय है, जब माइंड की एक्टिविटी, जब हम वो मेडिटेशन बहुत पावरफुली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, थोड़े दिन उसको अभ्यास करके देखें। जब सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो रात को अपने आप जल्दी नींद आती है, अपने आप आने ही है,
0: ये तो होता है कि जिस दिन आप सुबह होते,
1: तो अगर स्टार्ट करना है, मुश्किल हो रहा है, तो जस्ट स्टार्ट कि कल से मुझे ये स्टार्ट करना है, और वो मेडिटेशन मुझे प्रैक्टिस करना है। नहीं भी हो रहा, अभी हम नए हैं, फिर भी मुझे रोज करना है। कोई भी एक्सरसाइज जब हम शुरू करते हैं तो बहुत दर्द होता है पहली बार, अब जो हमारे अंदर अगर विल पावर नहीं है तो हम कहते हैं छोड़ो, एक्सरसाइज करने से दर्द होता है। एक्सरसाइज करने से तो दर्द नहीं होता ना कभी, लेकिन वो कुछ एक दिन हमें क्रॉस करना पड़ता है। सेम विद मेडिटेशन, थोड़े दिन हम कहेंगे उठते हैं नींद आती है, उठते हैं योग नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, अभी हम स्लीपी हैं, फिर भी हम बैठेंगे, जो सारी तैयारी करके जैसे गिरीश भाई ने बताया, हम बैठेंगे लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि योग करेंगे और थॉट्स बहुत स्लो डाउन हो जाएंगी, सिंप्लीफाई हो जाएंगी, प्योरीफाई हो जाएंगे। मेरे सारा दिन की थॉट्स कैसे चलेंगे? सी वो मेडिटेशन मतलब सिर्फ उतनी देर नहीं ना, आई एम ट्यूनिंग माई सेल्फ टू अनदर फ्रीक्वेंसी। सारा दिन थॉट्स कैसे हो जाएंगे? स्लो डाउन होंगे। रात को घर भी पहुंचेंगे, सोने का टाइम होगा, थॉट्स कैसे होंगे? स्लो होंगे। सोएंगे, अच्छी नींद आएगी, सुबह उठना ईजी हो जाएगा। इट विल हैव टू स्टार्ट विद द मेडिटेटिव थिंग इन द मॉर्निंग, कि मेडिटेशन और ज्ञान, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। हम लोग जब सभी पहली बार आते हैं, हम में से किसी को सुबह पहले 4 बजे उठने की नहीं आदत होती है। इट इज़ एन अनअर्थली टाइम, वी यूज टू थिंक 4 बजे कोई उठता है, ये कोई उठने का टाइम है, अभी तो रात लगती है बाहर। एवरी वन कम्स विद देयर ओल्ड लाइफ स्टाइल, कोई 6 बजे 7 बजे, कोई तो 8-9 बजे उठने वाले लोग थे, लेकिन किया, परिवर्तन हुआ, प्राप्ति हुई। थोड़े दिन मुश्किल लगा, थोड़े दिन के बाद रह नहीं पाए उसके बिना, क्योंकि उसका वो आधा घंटा जो हम निकालते हैं वो आधा घंटा नहीं है। इट इज़ हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन माई एंटायर 24 आवर्स। अगर मैंने एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाला तो पूरे दिन शरीर ठीक रहेगा ना, और पूरा दिन क्या, फिर हर रोज़ शरीर ठीक रहेगा। लेकिन कहें कि वो आधा घंटा नहीं है एक्सरसाइज के लिए, तो भी सारा दिन काम करेंगे लेकिन ड्रैग करते हुए, इस तरह से एनर्जेटिक। सो लेट्स बिगिन विद दैट मेडिटेशन। दिस हैज़ टू बी पुट ऑन टू माई प्रायोरिटी लिस्ट, कि ठीक है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ विद दिस। हम सेंटर पर जाते हैं, मुरली स्टडी करते हैं, हु एवर थॉट दैट वी हैड टाइम फॉर दैट बिफोर। आज ब्रह्मा कुमारीज में जितने भी भाई बहने आते हैं, 9 लाख से ऊपर परिवार है ना, उनका भी शॉप है, बिजनेस है, जॉब है, बच्चे हैं। यू विल बी सरप्राइज, हमारे पास इतने बच्चे हैं। अगर उनका स्कूल जाने का टाइम 8 बजे का है, पहले वो 8 बजे तक तैयार होते थे ना, आज वो 7 बजे तक तैयार होकर सेंटर पर आते हैं मुरली क्लास के लिए। क्या प्राप्ति है उस छोटे से बच्चे को, 1 घंटा एक बच्चे के लिए जल्दी उठना। इट हैज़ टू बी एक्सपेरिमेंटेड, देन यू गेट द रिजल्ट, देन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, फिर वो आपकी हार्मनी में लाइफ स्टाइल चलने शुरू हो जाएगी।
2: उसमें तीन बातें एक्चुअली, एक तो जो कहा कि प्रायोरिटी उसको दीजिए, कि मुझे जल्दी पहुंचने की प्रायोरिटी। अभी घर में आप पहुंचते हैं वो 10:30 बजे, तो मुझे 9 बजे तक घर पहुंचना ही है। उसके लिए दूसरा ये करना पड़ेगा कि किसी व्यक्ति को ना भी कहना पड़ेगा, लर्न टू से नो, कि भी मुझे पहुंचना है 9:30 तक, तब मेरी दिनचर्या ठीक होगी। और तीसरी बात, कहीं छोटा सा सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, बल बिजनेस थोड़ा सा कम चले कोई बात नहीं, और कोई एक आध काम आपका रात्रि का हुआ कोई बात नहीं, थोड़े दिन में ही करूँगा, फिर सवेरे तो और आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, उल्टा और आप एफिशिएंटली करेंगे। जैसे कहते हैं सक्सेस के लिए भी कहा है, डूइंग राइट थिंग एट अ राइट टाइम
1: इन द राइट वे,
2: राइट वे।
1: यू मे बी डूइंग थिंग्स बट नॉट इन द राइट वे एट द राइट टाइम,
0: एंड आई थिंक वी डोंट इवन नो, हमें पता ही नहीं है कि राइट क्या है। राइट और रॉन्ग को भी हमने इतना रिलेटिव कर लिया है,
1: इसीलिए तो मेहनत ज्यादा और रिजल्ट कम, और फिर बाकी जो सारे साइड इफेक्ट साथ में आ रहे, इट्स ओनली बिकॉज ईटिंग नॉट एट द राइट टाइम, स्लीपिंग नॉट एट द राइट टाइम, थिंकिंग नॉट इन द राइट वे। इस पूरी सीरीज में हमने देखा है कितनी सारी हम गलतियां करते आ रहे हैं। छोटी छोटी गलतियों को ठीक कर लें, टाइम वुड नॉट बी एन इश्यू, बिकॉज थॉट्स स्ट्रीमलाइन होते जा रहे हैं। हमारे सेंटर पर हैदराबाद में मिस्टर KVK राजू आते थे, ही इज लेफ्ट द बॉडी, बट ही वॉज चेयरमैन ऑफ नागार्जुना फर्टिलाइजर्स। चेयरमैन है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल सेटअप का। पहले तो कहते थे टाइम ही नहीं होता था, मेरे को तो 1:30-2 बजे तो सोने का टाइम मिलता है, और बहुत कम देर सोते थे। लेकिन जब मेडिटेशन का प्राप्ति समझ में आई तो उन्होंने 3:30-4 बजे उठना शुरू किया। जैसे गिरीश भाई ने कहा, सैक्रिफाइस, उन्होंने पार्टीज बंद कर दी, लेट नाइट सोशलाइजिंग बंद। चेयरमैन है ना, ये थोड़ी सोचा कि मेरी कंपनी में कोई लॉस हो जाएगा, नहीं, समझ में आया व्हाट इज़ गुड फॉर मी। उनके एक प्लांट में बहुत कुछ बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी काफ़ी समय से, बिटवीन द लेबर एंड द टॉप मैनेजमेंट, मीटिंग्स डिस्कशंस, नो सल्यूशन। एक दिन वो मॉर्निंग में उठे 3:30, ही वॉज सिटिंग इन मेडिटेशन, देयर इज द आंसर। वॉट द आइडिया वट ही गॉट इन द अर्ली मॉर्निंग, ही पुट इट फॉरवर्ड टू हिज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस दिन मीटिंग में। एवरी वन वेंट यूनानिमस, यस ये इसी तरह होना चाहिए। जो उन्होंने उस दिन प्लान किया और इम्प्लीमेंट किया, उनको गवर्नमेंट के लेवल से उस चीज़ के लिए अवार्ड मिला था. एंड ही सेड कितने दिन मीटिंग्स डिस्कशंस एंड मॉर्निंग मेडिटेशन एंड मुझे आइडिया आया. तो टाइम वेस्ट हो रहा था ना, लेकिन हमें लग रहा था हम बहुत बिजी हैं, डिस्कशन कर रहे हैं. कोई भी प्रॉब्लम है, डिस्कशन इज समटाइम्स वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी. हम सुपरफिशियल लेवल पर सोच रहे हैं, हम एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में सोच रहे हैं, कभी एक्यूरेट सोल्यूशन नहीं आएगा. लीव इट, इसके बारे में कल सोचेंगे. जब साइलेंस में होते हैं, जब हमारी एकदम ये एंग्जाइटी स्ट्रेस वाली थॉट्स बिल्कुल क्लियर एंड प्योरिटी की स्टेट में है, ऐसे सोल्यूशन आकर सामने खड़ा हो जाएगा. तो कितना टाइम बचा?
0: आपने कहा कि टाइम नहीं है इसलिए मेडिटेशन करते नहीं करते हैं. मेडिटेशन करेंगे तो आपका टाइम जो है आपके पास बहुत ज्यादा हो जाएगा, या टाइम आपका मैनेज हो जाएगा.
1: वी फाइंड दैट के बहुत टाइम है, और बताओ और क्या काम करना है, जबकि वी डूइंग मच मोर देन जो पहले किया करते थे सारा दिन के अंदर. इट्स जस्ट दैट थॉट स्ट्रीमलाइंड होती है ना, हर काम को कम टाइम लग रहा है.
0: हाउ इज दैट पॉसिबल? अगर
1: अगर मैं काम कर रही हूँ प्रोजेक्ट पे और कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई फियर नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं है, ये होगा नहीं होगा, होगा नहीं हुआ, नहीं हुआ तो अगर उसका पहले ऑल दिस इज नॉट देयर, तो आपकी पूरी कॉन्सेंट्रेशन किस पर है? काम पर है. डेफिनेटली वो काम जल्दी होगा और गलतियों के बिना होगा. आपको डिसीशन लेना है, आपके माइंड में डाउट नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं है. डिसीशन लेने में कितना टाइम लगेगा? आप यहाँ वहाँ बैठ कर इधर उधर की इसकी उसकी बातें नहीं कर रहे हैं, अंदर भी नहीं चल रहा, बाहर भी नहीं कर रहे, कितना टाइम बचेगा? यू कुड सेव लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, एंड सारा काम जल्दी जल्दी जल्दी होता जाएगा. यू विल से मोर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिर्फ काम नहीं होगा, इंजॉय करते हुए, हल्के रहते हुए वो काम करेंगे. एंड जब शाम को घर आएंगे, यू विल बी मोर और लेस जैसे आप सुबह गए थे. एटलीस्ट मेंटली, फिजिकली थक सकते हैं, लेकिन मेंटली यू आर स्टिल वेरी चार्ज्ड, क्योंकि माइंड वॉज स्टिल स्लो इवन इफ द बॉडी वॉज फास्ट. मुझे बहुत फास्ट फिजिकली काम करना हो सकता है, बट माई माइंड इफ इट इज स्लो, हम नहीं थकते हैं. आज हम फिजिकली स्टैटिक बैठे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हैं तो बैठ ही गए घंटों घंटों, लेकिन माइंड कितना फास्ट है. तो आई हैव टू आस्क माई सेल्फ, कौन थका एट द एंड ऑफ द डे? थका कौन? शरीर ने तो बहुत ज्यादा कुछ किया ही नहीं, मन बहुत ज्यादा थका. और फिर रात को उसको स्लो डाउन नहीं किया, तो ये थके हुए मन को रात को सोने भी नहीं दिया, ये अभी भी रात को चल रहा था. तब जो आपने कहा कि सुबह उठेंगे तो सर दर्द हो रहा है, थके हुए मन के साथ उठे हैं, इट्स स्टिल लाइक वेरी हैवी ओवर हियर, फिर भी टाइम नहीं है, रेस्ट थोड़ी कर सकते, फिर इस थके हुए मन को लिया, फिर उस जर्नी पर चले. इमेजिन डेज एंड डेज, ईयर्स एंड ईयर्स हैव पास्ड लाइक दिस. What will be the result? That's the only reason why we are suffering so much. जैसे इसको slow down करेंगे, हर चीज streamline हो जाएगी.
2: Morning में बहुत कुछ आपको मेरा अनुभव सुनना था. मुझे कई बार लिखना होता है, books लिख रहे हैं, देखा है कि अगर evening में लिखते हैं तो अगर एक पेज लिखने में आपको आधा घंटा लगा तो morning में वही 10 मिनट में लिख पाते. It means it is almost triple. तो इसलिए भले थोड़ा जो तीनों पॉइंट्स मैंने बताई वो फॉलो करके सवेरे एटलीस्ट 1 घंटे का टाइम आप निकालो कि फ्रेश हो गए, सब कुछ वो अपने लिए है, चाहे उसमें मेडिटेशन भी कर सकते हो और सारे दिन का फॉरवर्ड प्लानिंग करना है वो फॉरवर्ड प्लानिंग करो, तो सारी समस्या समाप्त हो जाएगी.
0: एक मैं बात ये जानना चाहती हूँ, ये आपने कही बात कि फिजिकली, एक्चुअली सडनली आई रियलाइज कि हमने फिजिकली तो कुछ करते ही नहीं है. ज्यादातर लोग जो हैं वो फिजिकल बहुत एक्टिविटी नहीं करते हैं. बाय द एंड ऑफ द डे हमें इतनी ज्यादा थकान है कि हम कुछ भी शाम की वाइंडिंग अप भी नहीं कर पाते हैं. तो ये मेडिटेशन के बाद जो हम दिन की शुरुआत करते हैं उसमें और आज जो मैं जिंदगी जी रही हूँ उसमें क्या फर्क हो जाएगा?
1: क्योंकि थॉट प्रोसेस स्लो डाउन एंड एक्यूरेट होता जाएगा. पूरा हम समझते आ रहे हैं थॉट हर चीज़ कर रही है, थॉट का बॉडी पे इफेक्ट. आपने कहा बॉडी ज़्यादा कुछ नहीं करती, फिर भी हम थका हुआ क्यों महसूस करते हैं? सारा दिन में हमने कितनी टॉक्सिक थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स कितनी क्रिएट की. गिरीश भाई ने बताया हर थॉट का बॉडी के हर सेल पे असर, हर थॉट का ब्रेन के हर केमिकल पर असर. तो इतनी टॉक्सिक नेगेटिव थॉट्स क्रिएट की होंगी तो ब्रेन पर और बॉडी पर कितना असर पड़ा होगा. किया कुछ भी नहीं था, गाड़ी में बैठे थे, गए थे, सारा दिन एसी ऑफिस में बैठे, वापस यहाँ क्या क्रिएट किया। वी एक्सपीरियंस के जब हम माइंड का ध्यान रखते हैं, हम फिजिकल बहुत एक्टिविटी भी अगर कर रहे हो तो भी माइंड लाइट है एंड राइट है तो फिजिकली भी एग्जॉशन है। आप अपने आप को एक हॉलीडे पे देखो, लुक एट योर सेल्फ ऑन अ पिकनिक, ठीक है। आप वॉक करते हैं, स्विम करते हैं, ड्राइव करके 2-3 घंटा दूर जाते हैं, वहाँ पे ट्रैक करते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आप अपने नॉर्मल डे पे कभी नहीं करते, राइट। फिजिकली आप बहुत एक्टिव हैं उस दिन, इनफैक्ट बहुत एग्जॉस्टेड हैं उस दिन, लेकिन आप मेंटली कैसे थे पिकनिक वाले दिन पर?
0: बहुत खुश थे।
1: तो घर आके भी कैसे लगेगा? और कुछ मूवी चलना है रात को, आई स्टिल हैव द एनर्जी। व्हाई? फिजिकली सब चीज़ टूट रही है, दर्द हो रहा है। माइंड, आई डिड नॉट क्रिएट एनी स्ट्रेस टूडे, मैंने आज किसी पर गुस्सा नहीं किया सारा दिन पे, देर वॉज नो फियर। माइंड ओवर मैटर। मन का नहीं ध्यान रखेंगे तो टाइम का भी ध्यान नहीं रख सकते, क्योंकि सब चीज क्रम्पल होने लग जाती है। तो मेडिटेशन हम मॉर्निंग में भी करते, और फिर जैसे हमने कई बार डिस्कस किया, हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए वो ट्रैफिक कंट्रोल, वो चार्जिंग, ताकि अगर कहीं भी गलती से फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी दूसरी तरफ जा रही थी, हमें फिर वो अटेंशन मिल जाता, हम रुक कर फिर राइट थॉट्स क्रिएट करना शुरू करते। हमने कितना डिटेल में डिस्कस किया राइट थिंकिंग, तो वो राइट थिंकिंग कई बार बीच बीच में चेक कर लेते हैं। पूरा दिन अच्छा अगर बीतेगा, बहुत अच्छी नींद रात को आएगी, अगले दिन सुबह अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा, अपने आप आपकी नींद खुल जाएगी।
2: और एक बहुत बड़ी मदद मिलती है, और सब चीज़ों की तुमने चर्चा की है, परंतु सवेरे सवेरे आपने मेडिटेशन कर लिया तो परमात्मा की भी मदद मिलती है, जैसे वो हमें गाइडेंस दे रहे हैं, तो दैट इज अ ग्रेटेस्ट थिंग।
0: लेकिन मतलब अभी भी ज्यादातर लोगों के साथ ये बात है कि मेडिटेशन और मेरी डेली लाइफ में क्या परिवर्तन है, क्या कनेक्शन है? सी, मेरे डेली ऑफिस के जो मीटिंग्स हैं, ऑफिस के जो हैंडलिंग है, ऑफिस के जो डिसीजंस हैं, उसमें और मेडिटेशन, तो मेरा जो हम मेडिटेशन यहाँ कर रहे हैं, एक परमात्मा के साथ कनेक्शन है या अपने साथ कनेक्शन है, उसमें मेरा ये जो ऑफिस के डिसीजंस हैं या लाइफ के डिसीजंस हैं, उसका कनेक्शन क्या है?
2: तो एक बार तो आप बिल्कुल रिलैक्स्ड होंगे तो लोगों से डील करना बहुत ईजी होगा। कई बार हम एंग्जाइटी में लोगों से डील करते हैं तो उल्टा गलतियाँ कर बैठते हैं। रिलैक्स्ड वे में करेंगे तो सही करेंगे। थोड़े डिटैच भी होंगे तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो सही होगा। अब देखिए, डिटैच होके कोई देखता हो तो वह चीज़ को सही दिखेगा। वैसे आप डिटैच होंगे तो आपका पर्सपेक्टिव सही हो जाएगा, अन्यथा आप अटैच होकर के कर रहे हैं तो आपका पर्सपेक्टिव भी गलत हो रहा है। इंट्यूशंस भी आपको मिलेंगे, जो इंट्यूशंस भी मदद करेंगे कार्य को सही करने में।
1: मेडिटेशन में जो सबसे पहली बेसिक जो हम एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं, माई थॉट्स आर इन माई कंट्रोल। जैसे ये फंडामेंटल चीज़ पर मास्टरी आ जाती है, आपके इमोशंस पर मास्टरी आने लगी, आपने सारा दिन किसी पर गुस्सा नहीं किया, चिल्लाया नहीं, आपने लोगों को वो जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना शुरू किया, तो आपने उनको कौन सी एनर्जी भेजी?
0: एक्सेप्टेंस के।
1: जैसे आपने उनको वो वाली एनर्जी भेजी, आपको उनसे कौन सी एनर्जी मिली? सी, एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि हम क्यों भारी हो रहे हैं, हमें अपने आसपास के लोगों से कौन सी एनर्जी मिल रही है। आई मे बी द लीडर ऑफ माय कंपनी, लेकिन अगर मैं स्ट्रेस्ड हूँ और उस वजह से कई लोगों के ऊपर मैं गुस्सा कर रहा हूँ, या गुस्सा नहीं भी कर रहा, बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, बहुत फियर क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे उनसे फियर की एनर्जी मिलेगी, ये एनर्जी मुझे भारी करेगी, उनको तो करेगी करेगी। आई ऑलवेज फील कि एक लीडर के लिए एक जूनियर से ज़्यादा रिस्की है। हमें लगता है कि जो जूनियर्स हैं इनको डांट खानी पड़ती है, तो इनके लिए बहुत टफ है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, चेकअप वर्कर का नहीं होता, एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप होता है। डांट किसको खानी पड़ती है? ज़्यादातर वर्कर को खानी पड़ती है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये एग्जीक्यूटिव को क्यों हो रहा है? क्योंकि एक एग्जीक्यूटिव कम से कम 10, 20, 100, 1000 वर्कर्स के लिए जिम्मेवार है। मैं एक को अगर डांटती हूँ, उसको तो एक ही बार डांट मिलती है, मैं 10 को डांटती हूँ, मुझे कितनी बार नेगेटिव एनर्जी मिलती है? 20 times, 10 times when I gave it and 10 times when they give it back to me. तो मेरी तबीयत पर तो असर पड़ना ही है। अगर मैंने बचा लिया अपने आप को इन चीज़ों से, और उल्टा अगर मैंने 10 times प्यार और एक्सेप्टेंस की एनर्जी भेजी, तो मुझे 20 times कौन सी एनर्जी मिलेगी? हाउ विल आई फील बाय द एंड ऑफ द डे? मेरे को लगेगा जितना पहले था उससे भी ज्यादा लेकर मैं शाम को घर पर।
0: इनफैक्ट इट्स अ बिग टेस्ट। आप जैसा फील कर रहे हैं शाम तक जाते जाते, ये आपको बताएगा कि आपके दिन भर की स्थिति, आपने क्या क्या दिया है।
1: बिल्कुल, इट इज एब्सोल्युटली अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट और कुछ भी नहीं है, इट्स अ रिफ्लेक्शन। मैंने आज सारा दिन कौन सी एनर्जी क्रिएट की, कौन सी एनर्जी गिव की, और फिर औरों से मुझे एनर्जी मिली, शाम को एक्सरे आपको पता चलेगा, यू नो एग्जैक्टली वेयर यू हैव मेड अ मिस्टेक। एटलीस्ट नाउ डोंट वेस्ट टाइम इन ब्लेमिंग अदर पीपल, लेट मी जस्ट चेंज व्हाट आई गिव फ्रॉम टुमारो। हर स्टेप पर चेंज आएगा, बहुत अच्छा सारा दिन बीतेगा, एंड यू विल एंजॉय योर वर्क, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट।
0: यस, वेरी ट्रू। इनफैक्ट आई विल एंजॉय द डे, यू नो, जो पूरा दिन, इतना सुंदर दिन मेरे लिए दिया है, उसको मैं एंजॉय तो कर पाऊंगी। सिस्टर शिवानी, डॉक्टर पटेल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शांति।
2: शांति।
0: सचमुच देखने की बात है, बार बार हम कितनी बार फिल्म में या किसी किताब में, कविता में सुनते थे, पढ़ते थे कि जिंदगी एक बहुत खूबसूरत एहसास है। एहसास क्या हो रहे हैं हमें आज, हम जिंदगी जीना ही नहीं चाहते क्योंकि इतना थका हुआ महसूस करते हैं। आज जो इतना बड़ा टेस्ट हमारे सामने आया है, हम शाम को कैसा महसूस कर रहे हैं, अगर थके हुए हैं, अगर दुखी हैं, अगर परेशान हैं, गुस्से में हैं, इसका मतलब दिन भर में यही चीज़ें ना सिर्फ मैंने दी हैं बल्कि रिसीव की हैं। जब मैंने जितनी बार मैंने दी उससे डबल टाइम मैंने मुझे मिली है, क्योंकि उतनी बार मैंने दी थी और फिर उन्हीं लोगों से मुझे वापस मिली। अब देखना ये ज़रूरी है कि मैं क्या चाहती हूँ, कैसा महसूस करना चाहती हूँ। और मैं हमेशा अपने आप को कहती हूँ कि मैंने तो दिन भर अच्छा रही थी, लेकिन अगर शाम को मैं थकी हुई हूँ, इतनी भारी हूँ, तो इसका मतलब ये मेरे द्वारा क्रिएट की गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, टाइम को मैनेज करने के लिए जो अभी तक हमने इतने तरीके किए थे, एक जो आज मैं सूत्र पकड़ कर जा सकते हैं हम लोग, कि सुबह अपनी अपने हाथ में कर लें, जैसे अभी तक सोच को अपने हाथ में किया था, सुबह उठने को अपने हाथ में कर लें। एक बार मन को ये तैयार कर दें, समझा दें, बाकी सारी चीज़ें उठते ही मेडिटेशन को अपना, अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लें, बाकी सारी चीज़ें विल फॉल इन प्लेस, ये अनुभव बता रहा है। और देखते हैं, हम प्रयास करते हैं, पता चलेगा कि हमारा अनुभव क्या कहता है। आज अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज़ में इतना ही, फिर मिलेंगे।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आपण ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. मी स्मिता जयकर, आनंदी रहा, आनंद वाटा.
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज. अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं. बने रहिए हमारे साथ.
2: मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM. सुनते रहो, गुनगुनाते रहो. जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा.
3: सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा.
4: ओम शांति. नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में, जीवन विकास कार्यक्रम में, जहां पर हम लोग करियर के बारे में बात करते हैं. तो आज हम लोग करियर इन इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे. हमारे साथ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं डॉक्टर शिवा प्रसाद जी हैं. बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शिवा प्रसाद जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल. तो आज हम लोग जो हैं इंजीनियरिंग की कुछ विशेष बातें, आफ्टर इंजीनियरिंग क्या कर सकते हैं, इस विषय को लेकर बातचीत करने वाले हैं. कई बार इंजीनियरिंग के बाद क्या करना है, ये भी थोड़ा सा हमारा प्रिपरेशन पहले से हो तो हम लोग कुछ अपना जो है अच्छा करियर को फ्रेम कर सकते हैं, एक अच्छी पोजिशन पा सकते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है. थोड़ी सी तैयारी जो है आपके जीवन को एक नया आयाम दे सकता है. तो आइए इस विषय को लेकर बात करेंगे. तो शिवा प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है. और मैं चाहूँगा कि इस विषय को लेकर आप बात करना चाहते हैं, तो ये विषय कैसे आपके ध्यान में आया, ये पहले बताइए.
5: मैं ऐसे कॉलेज में हूँ जहाँ मेरे पास 1112 स्टूडेंट इंजीनियरिंग के हैं, सिविल इंजीनियरिंग के हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं, कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं.
4: जी जी जी.
5: और ना तो स्टूडेंट्स ये यूथ है और काफी बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, फोर्थ ईयर में. तो मेरे को देख के उनको लगा कि ये बच्चे कल एंट्रांस के लिए IAS के लिए वो तैयारी करेंगे. कई बच्चे इंडियन नेवी के लिए वो लगेंगे कि नहीं, मुझे तो डिफेंस में जाना है, मेरे को डिफेंस में NDA में रहना है, यानी तो नवल में जाना है, एयरफोर्स में जाना है. उनको रहता है कि नहीं, खुद का बिजनेस शुरू करूंगा, अपने पापा का बिजनेस को आगे लेके जाऊंगा.
4: जी, जी जी.
5: और कईयों को लगता है कि कईयों को लगता है मैं MBA भी करूँ. तो इस तरह से मैं थोड़ा सा ये ना उनकी जो मनोस्थिति और जो मानसिक विकल्पों को मैं थोड़ा सा गहराई से बटोर रहा था. तो मेरे को ध्यान में आया कि चलो आज रमेश भाई जी ये बोलो कि आज हम करें. कई बार तो इंजीनियरिंग तो एक है डिग्री, लेकिन उसके बाद भी इंसान इंजीनियर इंजीनियर बने ऐसा जरूरी नहीं रहेगी आज के जमाने में.
4: बिल्कुल बिल्कुल.
5: तो इंजीनियरिंग के बाद काफी लोग है ना, वो काफी लोग डिजाइनिंग में जाते हैं, फोटोग्राफी में भी जाते हैं. एक मेरे को एक लड़का, वो TIFR नहीं, वो था हमारा टेलीविजन एंड फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपना वो पुणे में है. तो हमारे यज्ञ में वो सेवा दे रहे थे. मैंने बोला आप 2 साल क्या, बोला मैंने साउंड इंजीनियरिंग में किया.
4: अच्छा.
5: साउंड इंजीनियरिंग लाइट, अरे मैंने बोला मैकेनिकल सुना था हमने तो सुना था ऑटोमोबाइल का सुना हमने तो इलेक्ट्रिकल. साउंड इंजीनियरिंग 4 साल का एक कोर्स है और उसमें भी कोई इतना उसमें इसमें बारीकी से वो समझ जाता है. तो फिर वो बॉलीवुड में कहीं प्रोफेशनल स्टूडियोज में वो वगैरह उसके ऊपर में काफी वो सेवा दे रहे. मेरे को बहुत अच्छा वो पूरा साउंड इंजीनियरिंग, लाइट इंजीनियरिंग, एंड समझो ये छोटी छोटी बातों को तो ऑप्शन ऐसा नहीं कि कोई इंजीनियरिंग करे तो आईटी में जाएगा, आईटी इंजीनियर बने, ऐसा कोई जरूरी बना ऐसा कोई मजबूरी।
4: जी जी,
5: ये लोग तो आजकल ये आपने भी सुना होगा कई लोग लौट के खेती भी करते है ना, तो उनको एग्रीकल्चर अभी देखो उनको समझ में आता है कि दूसरे के अंडर में हम नौकरी करें वो करें, उससे अच्छा कि हम थोड़ा सा गांव गाय वगैरह रखे और खेती वगैरह करे, एंड पीपल आर अर्निंग इन लाख्स एंड करोड़ आल्सो। भले वो इंजीनियरिंग छोड़ के अपनी आईटी जॉब यूएस का छोड़ के वो इंडिया आ चुके हैं, लेकिन उसने जैसे ये गाय और ये दूध वगैरह के काम हुआ, गोबर का पर्याप्त मात्रा में मिला तो जमीनों में उसको खेती में लगा दिया। और आजकल आप समझते हो अगर ओरिजिनल ऑर्गेनिक 1 लीटर दूध का आजकल 100 से 120 में भी लोग लेने ना, आजकल जैसे हो गया ना डुप्लीकेट हो दूध वगैरह, डुप्लीकेट तो नहीं बोलेंगे दूध में जैसे आजकल
4: पाश्चराइजेशन
5: करते और डुप्लीकेट तो नहीं बोल सकते, उसका जो प्रोसेस करके फिर जो दूध निकालते तो लोग अगर वो 60-70 रुपया में लीटर मिले तो लोगों को 100 रुपया में अगर ऑर्गेनिक ओरिजिनल और गिर गाय की दूध की तो बात नहीं, 120% बड़े बहुत अमीर लोग आते और वो इंडिया में और एक ऐसी जगह में रहना चाहते जहाँ खेती हो गाय हो दूध की और ये चारों तरफ ग्रीनरी हो, तो अगर आप उसको ठीक से डेवलप कर लो 10-15-20 एकड़ और एग्री टूरिज्म का कॉन्सेप्ट टेंट डाल दो आप और थोड़े एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह लगा दो, लोग उसमें आप अगर गए होंगे रमेश भाई पुणे के ना आस पास कहीं भी जाएंगे ना बहुत एडवेंचरस उसका है वो स्टे का दो वो हमारे सारे गए थे उसमें वो रहता है कि आप हिल ट्रैकिंग कर सकते हो, रोप राइडिंग हो सकता है, टाइंग और वो बना बोटिंग वगैरह, उसमें वो वाटर डांस लगा दिया और उसके अंदर चारों तरफ खेती है, तो कॉन्सेप्ट एक छोटा सा है बट एक नाइट के लिए हम 2-3 हजार दे के फिर आते थे हर बच्चों को, तो हमारे पास 60-70 बच्चे थे, 2 लाख बस उनकी खाना पीना ना, तो बोलने का मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इंजीनियरिंग के बाद कोई इंजीनियरिंग में ही जाके ही पैसे अर्न करे, या नहीं तो थोड़ा क्रिएटिविटी हो थोड़ा सा हटके सोच हो तो आप एग्री इंजीनियरिंग, मेरे एक दोस्त मेरे एक बड़े भाई थे मैंने पूछा तो आपने कौन, मैंने उन्होंने बोला मैंने एग्रीकल्चर के ऊपर, मैंने तो एग्री में फिशरी भी होता है आपका हस्बेंड्री उसका होता है वेटरनरी भी होता है और एग्री में एग्री इंजीनियरिंग का भी होता है, मेरे को इतना आइडिया नहीं था।
4: बिल्कुल बिल्कुल,
5: तो मैंने एग्रीकल्चर जो भी है ना इरिगेशन से उसकी सीडलिंग है उसकी बहुत सारे इक्विपमेंट है, तो स्प्रिंकलिंग आजकल बहुत एडवांस निकला है इरिगेशन के और उसमें फिर मैंने बोला अच्छा, तो पर इंजीनियर बाद एग्री नहीं की के बाद उन्होंने ना एमबीए आपने पॉवर्टी का जो कौन सा साकीना का बॉम्बे में
4: जी जी जी
5: उसके आगे जाएंगे ना तो एक कॉलेज है उसको कहते नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लाइक समथिंग दैट इज ए नीटी बोल के, बहुत अच्छा कॉलेज है, उसमें इंजीनियरिंग के बाद ये मेरे बड़े भाई ने गेट का एग्जाम उन्होंने दिया एमटेक का और उसमें उन्होंने अच्छा स्कोर किया तो उस मैनेजमेंट कॉलेज में वो ज्वाइन किए, इंजीनियरिंग भले एग्री का किए पर इंडियन एक्सप्रेस को प्रोडक्शन मैनेजर बन के अमेजन से तो हम मंगवा लेते सामान पर उसकी जो सप्लाई चेन नेटवर्क है ना लोगों से प्रोडक्ट लाना और लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाना वो भी टाइमली ले आना और उसमें आप देखे होंगे उसमें टाइम और डेट दिया जाता है कि हम आपको 2 दिन में देंगे, हम आपको 4 दिन में देंगे, या हम आपको ये चीज नहीं दे पाएंगे। तो वो चीज उनकी सप्लाई चेन की जो डिटेल, उनकी जो नेटवर्क है, उसकी जो टाइज है, तो उन्होंने उसके ऊपर काफी उसके ऊपर एक स्पेशलाइज, ये एरिया ना आजकल काफी बढ़ रहा है मार्केट,
4: बिल्कुल बिल्कुल,
5: सप्लाई चेन। जैसे अमूल का है, अमूल को क्या है ना, आप अगर 1-2 दिन में अगर डिलीवर नहीं करो तो ये पेरिसेबल आइटम है, ये खराब हो जाता है, और आपको नेटवर्क के हिसाब से प्लांट कहाँ डालना है वो भी सोचना पड़ता है।
4: बिल्कुल।
5: तो ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, फिर सप्लाई चेन ऑपरेशंस मैनेजमेंट की पढ़ाई पढ़ते, उसके बाद वो फिर ये अमूल जैसे पूरी सप्लाई चेन नेटवर्क पूरी इंडिया में, और मैं तो बोलूंगा पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि उसका आप देखो ना चॉकलेट से, आइसक्रीम में, कुछ कुछ चीजें से, और कुछ कुछ ऐसे आइटम है जो कि 2-4 दिन रह सकता है, और दूध का आइटम है तो आज तो कल जाना ही है उसको, फिर दही है, बटर है, तो सारी चीजों को एक सप्लाई चेन ठीक से कंडीशन में, उसकी ठीक से, उसकी जो आइस की कंडीशन होता है प्रोडक्ट उसके, है ना,
4: बिल्कुल,
5: इसको पेरिसेबल आइटम। तो ये जो पढ़ाई है उसको फिर ऑपरेशन में जाते हैं, या नहीं तो आपका जैसे एयरपोर्ट हो गया, आपके एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट को संभालना, उसके पैसेंजर्स आना, उसके चेकिंग चेकआउट करवाना, उनको ठीक टाइम पे प्लेन को छोड़ना और प्लेन की लैंडिंग करना, और प्लेन की लैंडिंग भी हो तो उसमें भी सेफ्टी हो, प्लेन की लैंडिंग में सेफ्टी हो, सिग्नलिंग सिस्टम हो, और इस तरफ हम कस्टमर की सेवा है। जैसे आप जाओगे एयरपोर्ट में पानी भी रहता है, दुकानें भी रहती है, और आपकी सिक्योरिटी चेकिंग भी रहता है, ये सबको भी समझना, ये भी एक इंजीनियरिंग के बाद एमबीए जो करते हैं ऑपरेशंस, इसको कहते हैं हम सर्विसेस ऑपरेशंस, सर्विसेस ऑपरेशन, तो उसके ऊपर वो पढ़ाई पढ़ सकते हैं। और काफी पर आजकल एक नया ट्रेंड निकला है एक रमेश भाई की, हमें आईएएस बनना है आईएएस, और ये मुझे अच्छा लगा कि आजकल जैसे पहले जमाने में बहुत अच्छे स्टूडेंट होते थे, नहीं तो बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के होते थे, आईआईटी के होते थे, वो ज्यादा इसके ऊपर वो उनकी सपना रहता था, तो होते थे, तो पहले जमाने में थोड़ा मेडिकल कॉलेज के भी स्टूडेंट्स होते थे जो जिनको आईएएस बनने का होता था, लेकिन अभी काफी गांव गांव में भी इसके अवेयरनेस बढ़ा है, और मैं देखता हूँ कि लोग बोलते ना हम क्या करोगे, ना मैं गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में जाऊंगा, है ना, नहीं तो क्यों, रेड लाइट रहता है।

0: फाउंडेशन, वो चीज अभी जैसे आपको जिमनास्टिक जो गेम हो ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जिमनास्टिक गेम में आपको गोल्ड मेडल लेना है, और रमेश भाई आप और मैं अगर इस उम्र में गोल्ड मेडल लेने के लिए अगर हम जिमनास्टिक करें तो क्या हो जाता है, हड्डी और जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना वो बचपन में होता है।
1: बिल्कुल
0: तो वो जो 2-3 साल के बच्चों को जिमनास्टिक में आप डाल दो तो डर जाता है, तो गिरना, उसके लचीले जो बदन बॉडी वगैरह होते हैं तो उसे वो जंप मार सकता है, डांस कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। इस तरह से आईएएस की तैयारी करने में पूरी इंजीनियर बन जाओ, फिर मैं शुरू करूँ तैयारी तो मैं बन नहीं पाऊंगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बहुत रेयर केस है इम्पॉसिबल जो। तो इसके लिए आप भी से अगर थोड़ा न्यूज पेपर थोड़ा सा पढ़े, बीइंग इंजीनियरिंग करते हुए थोड़ा सा टीवी के डिस्कशंस को देखे, थोड़ा सा ऐसे राइटिंग को बढ़ाए कि कोई नया सब्जेक्ट, जैसे अभी अभी आपका है ना डेंगू के ऊपर क्या, उसके हमें अभी स्लम्स रिहैबिलिटेशन के ऊपर काफी काम हो रहे हैं, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें मेरा अगर मैं वो पोजिशन में हो तो मैं क्या उसमें रोल। इसमें अभी आजकल देखो ना ट्रैफिक सिस्टम, हम मेट्रो आ गया, फिर बुलेट ट्रेन आ रहा है, फिर इंडिया का वो जो अभी वंदे मातरम ट्रेन आप देखो अहमदाबाद टू बॉम्बे 5-6 घंटे में पहुंचाना, तो ये जो चेंजेस हो रहा है उसको समझे और वो ट्रैफिक सिस्टम को समझे और उस पर हम कुछ लिखे चीजें तो हो सकता है कि क्या हो जाएगा ना लोगों का, तो उसमें काफी डेवलपमेंट। इंजीनियरिंग बीइंग ए इंजीनियर आप आईएएस बन सकते हो, सब्जेक्ट आप चुन लो, आप सब्जेक्ट चुन लो। सब्जेक्ट में क्या होता है कि किसको लगता है मैं हिस्ट्री लू, किसको ज्योग्राफी लू, किसको या कोई भी सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट पहले से छूने थोड़ा इंटरेस्ट ले, थोड़ा पढ़े उसमें, तो वो 100% में बोलता हूँ कि वो जैसे जैसे उनके 3-4 साल हो जाएंगी और पहले की तैयारी हो जाएगी, समय पर जब वो एग्जाम देने जाएंगे तो जरूर वो उसमें सक्सेस हो पाएंगे। तो
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और हमारे सुरेश संतोष जी ने याद भेजा है, नीता जी ने भी याद भेजा है, और संतोष कुमार जी लिखते हैं कि आज का जो परिवर्तनशील समय चल रहा है, ऐसे में कौन सा ट्रेड है जिसमें बच्चों का अच्छा भविष्य फ्यूचर को देखा जा सकता है या अच्छा स्कोप हो। अब इसके लिए तो बातें हो रही हैं संतोष जी, काफ़ी चीज़ें बता दिया ऑलरेडी, फिर भी और भी चीज़ें आपको बताएंगे शिवा प्रसाद भाई जी।
0: इसमें मेन है कि ना रमेश भाई आपको इंटरेस्ट किसमें,
1: जी जी जी जी
0: बच्चों को हम एमबीए में देखते ना, नहीं बोलते नहीं मेरे को तो अपने रियल एस्टेट में जाना, उसको क्लियर ही है वो बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग बेचना, जमीनों का कारोबार बढ़ाना, तो मुझे उसपे जाना है। कईयों को लगता है नहीं नहीं मेरे को तो ट्रांसपोर्ट सप्लाई चेन उसके, कईयों को लगता है नहीं मैं तो लॉजिस्टिक और ऑपरेशन में रहूंगा। आपको कई अभी एक नया एक काफी जैसे फ्यूचर के बारे में पूछ रहे तो एक एक नया बहुत अच्छा करियर उसमें थे, उसको कहते बिजनेस एनालिटिक्स और डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स। तो डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस ना क्या है ना आजकल डेटा बहुत है, चाहे आप एयरपोर्ट के है ना जो अभी जो प्लेन में जाने वाले तो उसके एयरलाइन के पैसेंजर्स होते हैं ना उनके बहुत डेटा, उनकी उम्र है, वो कितने कहाँ जाते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या है मेल फीमेल है, इस तरह से और तो उसे पता चल जाता है कि कौन आ रहा है बार बार प्लेन और कौन दिखा के लोग आता जा रहा है, तो उस हिसाब से आप नंबर ऑफ प्लेन्स को बढ़ा सकते हो। तो जैसे हम इंटरनेट के रिचार्ज करते जीवन, तो आपने रिचार्ज किया मैंने किया, फिर वर्क फ्रॉम होम का भी मैं थोड़ा एडिशनल रिचार्ज कर देता हूँ जबकि हमारी कीमती खत्म ना हो जाए, तो ये जो रिचार्जिंग हम करते हैं तो उनको भी वो ढूंढते हैं कि रिचार्ज कौन कर रहा है, कौन से एज वाले कर रहे हैं, कौन से नंबर वाले कर रहे हैं बहुत ज्यादा रिचार्ज, उसको ट्रैक करते उन वालों को डिस्काउंट देते ऑफर देते, बोलते ये नेटफ्लिक्स भी ले लो प्राइम का ऑफर देता हूँ दे दो, 3 महीने का फ्री दे देते, तो 3 महीने वो देखेगा तो एडिक्टेड हो जाएगा तो उसको और कुछ दे। तो माना जैसे ये जैसे टेलीकॉम वाले होते हैं, टेलीकॉम कंपनीज है वो भी उसके ऊपर वो रिसर्च करते हैं कि अपने कस्टमर कौन है कहाँ से, कुछ कुछ एरिया है ना स्टेट है वो तो बस फोन करने के लिए वो रिचार्ज करते हैं क्योंकि उनको मिनिमम चाहिए, थोड़े बहुत व्हाट्सएप पे करते हैं, कुछ कुछ एरिया है ना देखा गया है कि वहां से लोग बहुत ज्यादा अमेजन प्राइम नेटफ्लिक्स

0: तो एडिशनल जो भी है ना पैकेजेस, उसमें हो सकता है कि ये एरिया थोड़ा सा दरबान होगा जो भी है,
1: बिल्कुल.
0: तो लोगों के टेस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से तो थोड़ा उस पे एनालिसिस कर पाए डेटा. तो डेटा एनालिटिक्स आजकल दुनिया में काफी, आप जैसे आप गए होंगे रमेश भाई, आप
1: जी
0: कोई
1: जी
0: भी
1: जी
0: शॉपिंग मॉल में आप जैसे आप सामान लेके बिलिंग के लिए जाते हो ना, तो काउंटर वाला पूछता है कि अच्छा फोन नंबर दे दो, फोन नंबर क्या है. हम बोलते भाई फोन नंबर क्यों देने का, फोन नंबर मैं नहीं दूंगा, फोन नंबर की मैं आपको, तो बोलते नहीं फोन नंबर तो आपको डिस्काउंट, वो बोलते नहीं आपको कूपन मिलेगा, नहीं तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे. तो फिर हम आपको, तो ये जो है फोन नंबर क्यों ना, फोन नंबर से पता चलेगा कि ये कस्टमर कब पहली बार आया था और बाद में उसने क्या क्या सामान लिया है और समय के साथ वो सामान लेने का उसकी क्या हुआ, बढ़ोतरी हुआ है या थोड़ा घट गया है, थोड़ा कम ले रहा है सामान, तो ये सब समझते हो और उस हिसाब से आपके जो भी इंटरेस्ट रेट के हिसाब. तो डेटा एनालिटिक्स जो है फील्ड, अभी काफी इंजीनियरिंग के बच्चे उसमें आते हैं और उसके लिए इंटरेस्ट रखते हैं और पढ़ाई करते हैं. तो ये जो चीज है ना, तो अभी मैंने देखा है तो इस पर थोड़ा काम कर.
1: जी जी संतोष जी, आपको थोड़ी सी नई बातें बता दी हैं, इस पर भी काम कर सकते हैं आप और भी अपना जो है विचार लगा सकते हैं. तो संतोष जी ने, थैंक यू भाई जी, बहुत अच्छी बात आपने जानकारी दी है, धन्यवाद, शुक्रिया आपका. तो आइए, नीता जी ने भी याद भेजा है और अब मैं आपको ले चलता. जी
0: नीता जी का मुझे याद है, एग्री इंजीनियरिंग का कुछ बता रहे थे एक समय में उनके प्रोफेशन. तो इसमें क्या है रमेश भाई, लोग तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं, केमिकल है, मैकेनिकल है, पेट्रोलियम है, वो उसके साथ साथ और बहुत सारा है इंजीनियरिंग का, जैसे आपका आपका डेटा साइंस का भी. लेकिन उसमें एक चीज है कि बच्चे एक चीज कंप्यूटर के ऊपर काफी ध्यान देते हैं,
1: जी
0: लेकिन
1: जी
0: एक चीज वो मिस करते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट. एक
1: हाँ
0: सब्जेक्ट है जो हमारा उसको कहते स्टैटिस्टिक्स, आंकलन निकालना सारी, फिर वो सॉफ्ट कॉपी बना के, फिर बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर में डेटा एनालिसिस. तो अगर स्टैटिस्टिक्स और थोड़ा मैथ्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट ले इंजीनियरिंग के बच्चे तो करियर का है ना. तो कंप्यूटर बोले मैकेनिकल हो, थोड़ा कंप्यूटर साइंस सीखो, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स सीखो, क्योंकि क्या है ना आजकल युग परिवर्तनशील, जैसे बोले संतोष जी, ये थोड़ा ऑटोमेशन में जा रहा है. आजकल कहीं भी देखो ना तो लोग बोलते हैं रोबोटिक्स ऑटोमेशन. तो जैसे ऑटोमेशन या रोबोट से काम चल रहा है ना फैक्ट्रीज वगैरह, तो हमारे पास एक ही चीज रह जाता है कि डेटा हमारे पास बहुत आते हैं, वो डेटा को समझना बहुत जरूरी है. सपोज मैं ना सिविल इंजीनियर हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना था है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड चल रहा है आजकल, ब्रिजेस बनते हैं आजकल, बिल्डिंग्स बनते हैं आजकल, बहुत सारे न्यू डिजाइन कमर्शियल सेंटर बनते हैं.
1: बिल्कुल.
0: तो उन जैसे सेंटर ना उसके पूरे डेटा मेरे पास, मेरे को कैसे रोड के कितने लोग रोड से पार्सल होते हैं, उससे कितना मेरे को टोल लगाए तो कितने पैसे आ सकता है रोड से, और उसमें एक साथ कितने ट्रक्स जा सकते हैं और कितने टन्स के मटेरियल. अभी देखो आप देखो ना वो सी लिंक बनाए ना अपना, अपना कौन सा अपना मुंबई का अभी नया सी लिंक बनाए,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: वहाँ टोल चार्ज बहुत ज्यादा भी है, पर टोल चार्ज ज्यादा भी है पर रीजनेबल भी है, क्योंकि काफी समय बचा देता है वो और काफी सहूलियत हो जाता है कि आप सी के थ्रू में. तो वो बनाने का सोचो जो इंजीनियर होंगे, उनकी जो मेन रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है, और उनके बहुत स्ट्रिंजेंट टाइम कंस्ट्रेंट भी रहते हैं कि इतने टाइम तक आपको डिलीवर करना है, अगर आप टाइम में नहीं बनाए तो फिर बाकी चीजें उनकी लेट हो जाती है. तो उसको वो जो चीजों को आप मैनेज करना, तो उसके लिए बहुत सारे टेक्निक कंप्यूटर्स में निकला है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उसको आप कहते हैं. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो चीजें है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोई भी आप नया प्रोजेक्ट बनाते हो, जैसे अभी फैक्ट्री बनता है, तो फैक्ट्री बनने के बाद तो चल रहा है, लेकिन इतने ये मारुति सुजुकी का फैक्ट्री बनाना कोई बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है. अभी आपको देखेंगे दिल्ली में नोएडा में एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन रहा है.
1: जी जी जी
0: अभी सोचो उसकी एयरपोर्ट 15-20-30 किलोमीटर एक किलोमीटर बनाना, चीजों की आपको अधिक इंजीनियरिंग
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बाकी अभी क्या है ना, अभी DRDO इसरो है ना, कोई लगता है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना,
1: बिल्कुल
0: डिफेंस रिसर्च है तो DRDO हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, तो इसमें भी साइंटिस्ट वगैरह बहुत सारे इंजीनियर ही बनते हैं। तो इंजीनियरिंग के बच्चे वहां पर जाके ना मिसाइल्स बनाना, फिर टैंकर्स बनाना, फिर डिफेंस में, तो उसके गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट की, फिर गेट के एग्जाम के थ्रू से भी लेते हैं, गेट का जो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है इंजीनियर्स के लिए,
1: बिल्कुल
0: उसके थ्रू से भी काफी बच्चों को देते हैं। तो इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ी, एक आपके लिए एक चाबी है जिसके थ्रू से आपको बहुत बड़े आगे की करियर की जो ताला है ना, लॉक है, उसको खोल के आगे जाने की आगे आपको काफी वो हो जाता है। तो इस सब बातें कुछ लोग रुक जाते बीच में, थक जाते कई लोग।
1: बिल्कुल। और एक बात आती है जहाँ पर अभी कविता जी ने भी याद भेजा है, वो भी कार्यक्रम को देख रही हैं, तो इंजीनियरिंग के बाद क्या ये विषय जो है एक हमें इस तरह का प्रश्न कब पूछना है युवाओं को कौन से टाइम पे हमें इस पर
0: देखो
1: सोचना है?
0: इंजीनियरिंग के बाद क्या करना है, या ये तो नॉर्मल ही ना, फर्स्ट ईयर उनको जानने देना चाहिए, 6 महीना 8 महीना, उसके बाद उनके मन में ये आना जरूरी है,
1: जी जी
0: क्योंकि 3 4 साल की, 2 3 साल की तैयारी लगता है चाहे MBA एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए, क्योंकि आजकल स्कोर चाहिए 99 चाहिए, 100% चाहिए क्या नहीं, और उसमें जो भी चीज फील्ड आप उसमें डेडिकेटेड रहना जरूरी है, तो 3 4 साल का मेहनत रहता है तो फिर आप एंट्री इजी हो जाता है।
1: जी जी
0: अभी मैंने हम आप जैसे बात कर रहे थे, कईयों को लगता है ना आजकल इंजीनियरिंग में ना पुणे में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को पढ़ाता है वहां के स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर के, तो वहां क्या करते नॉर्मली रमेश भाई, आजकल
1: जी
0: यूएस जाने का बोल रहे हैं,
1: अच्छा
0: हाँ यूएस जाओ, ऑस्ट्रेलिया, हाँ यूके जाओ, तो वहां जाने के काफी ट्रेंड है। तो बच्चे क्या करते हैं ना फाइनल ईयर के, तो फाइनेंस के मैनेज कुछ सब्जेक्ट है, तो फाइनेंस के स्पेशलाइजेशन के वो सब्जेक्ट सारा तैयारी करते हैं, तो फाइनेंस के भी इंजीनियरिंग होते हैं रमेश
1: बिल्कुल
0: भाई,
1: बिल्कुल
0: फाइनेंस के एनालिटिक्स आप बोलते हो, तो उसमें स्टॉक मार्केट एनालिसिस, फंडिंग एनालिसिस, पैसे की वो सारा इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, तो बच्चे फिर यूएस जाते हैं, यूएस में एमएस करने जाते हैं। एमएस करने के लिए उनको जीमैट और जीआरई के एग्जाम देते हैं, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, यानी तो
1: बिल्कुल
0: जीमैट है, वो टेस्ट देते, वो टेस्ट वगैरह दे के फिर वो फिर यूएस के अच्छे कॉलेजेस में उनके नंबर लग जाते, और इंजीनियरिंग के साथ साथ फाइनेंस का उनको आइडिया रहता है, तो उनका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने में काफी इजी हो जाता है, और वो बच्चे काफी अच्छे अच्छे कॉलेज जाते हैं। मैंने मैंने रिकमेंडेशन लेटर जब मुझसे मांगते हैं ना, कोई
1: बिल्कुल
0: यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले में कोई जाना चाहता है, कोई न्यूयॉर्क, जहाँ जाना एक सपना है, और बच्चे जाते हैं वो, यही इंजीनियरिंग बच्चे, तो ये
1: बिल्कुल
0: बच्चे अगर 2 3 साल पहले से ही अवेयरनेस हो जाए और तैयारी शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग बच्चे कहीं भी, और लेकिन अंत जैसे आप क्या हो कह रहे हैं, इंजीनियरिंग के बाद ये तैयारी शुरू करो, तब तक आपके फ्रेंड जैसे निकल जाते हैं ना बड़े पोजिशन में, तो फिर अच्छे कॉलेजेस में आपकी पेशेंस खत्म हो जाती है, जब पेशेंस खत्म होता है तो आप फिर डिस्परेट होते हो कि कहीं भी कुछ भी मेरे में कर, तो फिर आप जो करियर की कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो इसलिए
1: बिल्कुल
0: थोड़ा सा
1: बिल्कुल
0: पूर्व चाहिए, थोड़ी बहुत तैयारी में थोड़ी सी कोचिंग होगा तो कोचिंग ले लेना चाहिए, या नहीं तो थोड़ी गाइडेंस ले लो, थोड़े बुक्स मंगा लो, लेकिन थोड़े से यूट्यूब से देख लो, बट शुरू करना बहुत जरूरी।
1: एक और बात पूछना चाहूँगा, करियर में जैसे कि कई बार हम लोग का थोड़ा सा मुश्किल होता है कि डिसीजन लेना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है प्रॉपर, तो इसमें क्या काउंसलर का हेल्प लेना चाहिए, वो क्या करते हैं थोड़ा सा वो बताइए। कई बार डिसीजन ही नहीं ले पाते कि हमें इंजीनियरिंग में जाना है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में जाना है, सिविल में जाना है, या फिर और जो एग्रो में जाना है, या जो ऐसे आपने बताया साउंड में जाना है, तो वो कई बार ये स्पेशलाइजेशन करने में थोड़ी मुश्किलें आती हैं, तो उसको कैसे हम लोग प्रिडिक्ट करें या समझें।
0: क्या होता है ना रमेश भाई, लोग ना इंजीनियरिंग कोचिंग में पैसे लगाते हैं, यानी तो इंजीनियरिंग ज्वाइन करने में उसको फी देने में पैसे लगाएंगे 10 लाख, लेकिन
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उसको समझने के लिए जो 20-30 हजार चाहिए ना वो खर्च चाहिए।
1: हाँ
0: हाँ, उसमें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पेरेंट्स के भी है, पेरेंट्स को भी थोड़े से बच्चों को दिखाना है, ऐसे लोगों से मिलवाना है, और उसमें इमोशनल नहीं होना है, दो तीन जगह समझाना है ये क्या होता है, माइनिंग इंजीनियरिंग क्या होता है, कहाँ काम करना होता है, किस इंजीनियरिंग का है, आईटी इंजीनियरिंग है तो वो क्या काम करता है, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल क्या काम करता है, बायोटेक्नोलॉजी तो बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे ऐसे फील्ड के लोगों से मिलवाना, उनसे थोड़ा सा करियर पाथ, मतलब उनसे मिलवाना बहुत जरूरी है। ऐसे एक्टिविटी अभी जैसे फैक्ट्री भी है, फैक्ट्रीज भी है, तो कॉलेजेस हमने ना अपने अपने बच्चों के लिए करियर काउंसलिंग का भी हमने एक सोचा है जिसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं, और हमारा डेडिकेटेड करियर काउंसलिंग सेल है, सीडीसी उसको कहते हैं, करियर
1: अच्छा,
0: डेवलपमेंट सेल,
1: हाँ
0: तो उनको गाइड करते हैं, टाइम टू टाइम उनके एप्टीट्यूड टेस्ट करवाते हैं। तो ये जो है उसमें अगर बच्चों को थोड़ा सा पहले से, तो उसमें हम 1-2 साल जैसे मैंने बोला ना, 2-3 साल पहले से ही अगर उसको डिफरेंट फील्ड का मेथोड घुमा दे, उसके
1: जी बहुत ही अच्छी बातें शिवा प्रसाद जी ने हमें बताया। निश्चित तौर पे उनका इंटरनेट का शायद थोड़ा सा कट ऑफ हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग फिर से उनका इंतज़ार करेंगे। और जिस तरह से उन्होंने नए काउंसलिंग की बात बता रहे थे, और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा हमें जो है पूर्व तैयारी करने की अति आवश्यकता है। जी शिवा भाई,
0: और
1: बिल्कुल
0: थोड़ा सा पेशेंस भी रखना है, कि पेशेंस नहीं रखते और मन में आ गया कि मेरे दोस्त ये कर रहे तो मैं करूंगा, या मुझे टीचर ने बोला है, मुझे कई बार ना लोगों को वो ड्रोन के बारे में बोलते हैं, रोबोटिक्स बोलते हैं ना, बच्चे
1: हाँ
0: बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं,
1: हाँ
0: वो फील्ड जाके करियर नहीं देता है, कई बार
1: जी,
0: आगे जाके वो एक्साइटमेंट देता है, थोड़े बहुत आप कर लिया तो ठीक है, थोड़ा समझ नॉलेज होना जरूरी है, बट वो आपको केरी अभी जैसे ना खाने में आप चटपटी खाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बट चटपटी खा के आप अपनी तबीयत नहीं बना सकते, आपको रोटी दाल चावल खाएंगे जो है ना, उसके साथ अगर थोड़ा ग्लैमर थोड़ा अच्छे फूड आइसक्रीम हो जाए तो मजा आता है। तो रोबोटिक ऑटोमेशन तो ठीक है, वो फील्ड भी अच्छा है, तो लेकिन वो फील्ड आपको केरियर दे, उसमें कितनी प्रॉफिट है वो समझना जरूरी है, नहीं तो मैंने पूरी लाइफ लगा दिया कोडिंग में, रोबोटिक्स में, उसमें, बट एट द एंड में वो एंड टू एंड में निकल नहीं पाया, तो
1: बिल्कुल
0: रोबोटिक्स
1: बिल्कुल
0: भी कमी थोड़ा कर दो, थोड़ा सा चाहिए, बट ऐसा नहीं कि आप अपनी कोर सब्जेक्ट को छोड़ दो, उसकी मेहनत आप कहीं भी देखो ना रमेश भाई,
1: जी जी
0: अगर आप
1: जी
0: बैंक के मैनेजर चाहते हैं या मैनेजमेंट की कॉलेज में एंट्री करना चाहते, आपको दो ही चीज चाहिए, एक तो मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग आपके अच्छे मैथ्स, ऐसे नहीं कि बहुत डिफिकल्ट मैथ्स नहीं चाहिए
1: बिल्कुल
0: आपको,
1: बिल्कुल
0: 10th के 12th मैथमेटिक्स भी अगर ना आप थोड़ा सा उसमें स्पीड करो कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाए समझदारी से तो वो भी काफी है इंटेलिजेंस, नहीं तो आप थोड़ा उसके साथ साथ इंग्लिश, इंग्लिश में आप थोड़ा सा आपकी लैंग्वेज पर कमांड हो, पैराग्राफ जल्दी पढ़ के उस पे आप निष्कर्ष निकाल सकते हो,
1: जी जी चलिए शिवा भाई बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से हम आफ्टर इंजीनियरिंग या फिर अपने करियर को लेकर किस तरह से हमारी मानसिकता है वो आपने बताया, और निश्चित तौर पे ये बातें जो है बहुत इम्पोर्टेंट रही हैं और आपने अपना अनुभव के साथ इन बातों को शेयर किया इसलिए अच्छा लग रहा है, और हमारे संतोष जी ने भी थैंक यू बोला है और नीता जी ने भी थैंक यू बोला है, कविता जी ने भी याद भेजा है, और आप सभी जो भी देख रहे हैं हमें आगे भी देखेंगे तो मैं चाहूँगा कि इस तरह के एपिसोड्स आप एक दो बार ज़रूर सुनिए ताकि आप अपने माइंड को सेट कर सकें, और ख़ास करके आपको जब अपना करियर के बारे में थोड़ा फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है, और आजकल जैसे कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह का भी प्रावधान कॉलेजेस वगैरह में है, जहाँ पर है वहाँ पर आप उसका उपयोग करें ताकि आपको 90% जो है आपके अंदर का जो मन आपके विचार जो है उस करियर के साथ मैच हो, तो फिर आगे आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी और आप उसमें सर्वाइव अच्छा करेंगे, और ज़िंदगी भर, क्योंकि ये एक करियर माना लाइफ टाइम वाली बात आती है, तो आप उसमें अच्छा कर सकते हैं। तो आप देखिए कि आपका एटीट्यूड क्या कहता है, आपका विचार कहाँ है, आपकी भावनाएँ कहाँ जुड़ रही हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है, और आराम से इसके लिए टाइम दें, क्योंकि इसके लिए अभी टाइम देंगे तो बाद में फिर आपको कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या हो जाता है कि हम लोग जैसे शिवा भाई ने बताया करने के बाद फिर वापस हमको लगता है कि अरे यार ये क्या हुआ, इसके बाद हमें ये करना है, तो दो तीन चीज़ें आप फिर करते हो, फिर आप डिसाइड करते हो कि नहीं इस तरफ अच्छा है, तो वो उसमें टाइम ज़्यादा एक्स्ट्रा आपका चला जाएगा बाद में, लेकिन उससे है कि आप डिग्री करते हुए थोड़ा टाइम दे अपने आप को, और इसमें अगर आप टाइम देते हैं तो आप अपने लाइफ को बहुत सुंदर तरीके से और अच्छा बना सकते हैं। हमारी कोशिश यही है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम के माध्यम से जीवन विकास आपका अच्छा हो, आप एक अच्छे नागरिक बने, एक अच्छा करियर आप इस्टेब्लिश करें, एक नाम करें, और फिर आप सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे तो निश्चित तौर पे लोग आपको देखकर आपकी बातें मानेंगे भी और आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार शिवा भाई, एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप छोटा सा?
0: मैसेज तो मैं यही दूंगा कि जैसे आप सेकंड ईयर होता है तो आप दो तीन डिफरेंट ऑप्शंस को आप चूज करो और अपनी एक सबसे निष्कर्ष लेके और अपनी बड़ों से या मन की अपनी स्थिति और अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है इनसाइड के उसको समझ के
1: जी
0: एक
1: जी।
0: बार आप सेकंड ईयर के एंड तक फाइनल कर लो, और आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में डेडिकेटेड थे रात दिन उसे के एरिया में लग जाओ, दो साल काफी है जीवन के, भगवान कहते हैं ना जहाँ चाह है वहाँ रहा है ना, विल पावर है तो आप विन कर लेते हो, तो विल पावर के साथ, और खाली विल पावर नहीं, आपने थोड़ा सा वेल्थ भी लगाओ कि आपने जो फालतू खर्चे है उसको आप थोड़ा किताबों में
1: बिल्कुल
0: लगाए, और तो मेरे ख्याल से असंभव इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाएगा।
1: जी जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शिवा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया शीजा आपने दिया। मित्रों आज के इस एपिसोड में इंजीनियरिंग के बारे में करियर आयाम के बारे में हमने सुना, आशा करूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, नई नई बातें आपको सुनने को मिला है, और जो विद्यार्थी मित्र सुन रहे हैं उन्हें है विचार मिला होगा कि अरे हाँ ये भी चीज़ तो कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले थोड़ा अपने आप से भी बातें कीजिए, कर तो सब कुछ कर सकते हैं आप, लेकिन आपको लिए आपके लिए क्या सुटेबल है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लाइफ टाइम की बात है, तो अपने करियर के लिए थोड़ा टाइम दें, इसके लिए फोकस करें, सोचें, 10 लोगों से बात करें, कंसल्टिंग करें कुछ लोगों से, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्रॉपर आप जो है इस चीज़ को समझें, साइकोलॉजिस्ट से भी बात करें ताकि आपका फोकस बन जाए और आप अपने करियर को बहुत सुचारू रूप से फ्रेम आउट करें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत ओम शांति।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपनी जीवन और अपनी मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: गाण्यांच्या सुरात दडलेली संस्कारांची गोडी, पिढ्यानपिढ्या चालत असलेल्या परंपरेचा गंध आणि मनाला स्पर्श करणारी भावांची संगती, आणि हे सगळं ऐका फक्त आपल्या पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लो.
1: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान चिंतन, जहां हम विचारों के गहराइयों में उतरते हैं, ज्ञान के नए आयाम खोजते हैं और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मनन करते हैं. इस कार्यक्रम में हम दर्शन, संस्कृति, विज्ञान, समाज और आध्यात्मिकता से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा करेंगे. हमारा उद्देश्य है आपके मन में नए विचारों का संचार करना और आपके चिंतन को एक नई दिशा देना. तो आइए ज्ञान की इस रोशनी में आगे बढ़ें और नए दृष्टिकोणों को समझें. ज्ञान चिंतन, एक नई सोच, एक नई दिशा.
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM. हमेशा की तरह मैं आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और आज का विषय है आत्मा की यात्रा, बाहरी सफलता से भीतर की शांति तक. हम सब जीवन में सफलता की ओर दौड़ रहे हैं. सुबह से शाम तक, दिन से रात तक हमारी सोच, हमारी मेहनत, हमारे लक्ष्य सब कुछ बाहरी उपलब्धियों से जुड़ा हुआ है. हम ऊंचा पद चाहते हैं, बड़ा घर, अधिक धन, समाज में प्रतिष्ठा और मान सम्मान. लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, क्या केवल यही सफलता का मापदंड है? क्या बाहरी उपलब्धियां ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है? जीवन की यह दौड़ हमें भले ऊंचाइयों तक पहुंचा दे, पर भीतर कहीं एक खालीपन, एक बेचैनी बनी रहती है. जब रात को सब सो जाते हैं और हम अपने आप से मिलते हैं, तो यह प्रश्न उठता है, क्या मैं सच में शांत हूं? यहीं से आत्मा की यात्रा प्रारंभ होती है, बाहरी सफलता से भीतर की शांति की ओर. आत्मा की यात्रा कोई भौतिक यात्रा नहीं है. यह ना तो किसी मार्ग पर चलकर पूरी होती है, ना ही किसी साधन से. यह यात्रा भीतर की ओर मुड़ने की है. जब हम अपने मन की हलचल को देखना शुरू करते हैं, अपने विचारों, इच्छाओं और भय को समझना शुरू करते हैं, तभी हम आत्मा के मार्ग पर पहला कदम रखते हैं. बाहरी सफलता हमें गर्व देती है, लेकिन भीतर की शांति हमें गरिमा देती है. एक व्यक्ति जिसने बाहरी सफलता पाई है पर मन अशांत है, वह हमेशा असंतुष्ट रहेगा. जबकि जिसने भीतर की शांति पाई है, वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, चाहे सफलता मिले या असफलता. इस यात्रा में सबसे पहला पड़ाव है स्वयं की पहचान. हमें यह समझना होगा कि हम केवल शरीर या नाम नहीं है. हमारे भीतर एक चेतना है जो साक्षी है, जो देखती है, महसूस करती है, परंतु अस्थिर नहीं होती. जब हम अपने सच्चे स्वरूप आत्मा को पहचान लेते हैं, तो जीवन की दिशा बदल जाती है. दूसरा पड़ाव है वैराग्य और संतुलन. इसका अर्थ यह नहीं कि हम संसार से भाग जाएं, बल्कि यह है कि हम संसार में रहकर भी उसके मोह में ना फंसें, कार्य करें, लक्ष्य बनाएं, पर अपने भीतर का संतुलन बनाए रखें. तीसरा पड़ाव है ध्यान और आत्मचिंतन. जब हम प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठते हैं, अपनी सांसों को देखते हैं, विचारों को बिना प्रतिक्रिया के गुजरने देते हैं, तब धीरे धीरे मन शांत होता है और आत्मा का संगीत सुनाई देने लगता है. प्रिय मित्रों, बाहरी सफलता हमें सम्मान दिलाती है, पर भीतर की शांति हमें सच्चा सुख देती है. जब यह दोनों मिलते हैं, तभी जीवन पूर्ण होता है. इसलिए सफलता की दौड़ में भागे अवश्य, लेकिन अपने भीतर की आवाज को न भूलें. अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, जो स्वयं को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता है. जो भीतर शांत है, वही वास्तव में सफल है. धन्यवाद. फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ. बने रहें हमारे साथ पुरीरी आवाज 107.8 FM पर, और सुनते रहें इसी तरह प्यार से. खुश रहें, खुशियां बांटें.
1: प्रिय श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आज का विषय आपके मन मस्तिष्क में एक नए विचारों का संचार करने में सफल रहा होगा. ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. अगले कार्यक्रम में हम एक और रोचक विषय के साथ लौटेंगे. तब तक अपने विचारों को निखारते रहें और ज्ञान की इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।
3: ऐतिहासिक, सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झक्कास रेडिओ स्टेशन पुणेरी आवाज ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: कुड़ेरी आवाज 107.8 FM खुश रहो खुशियां बांटो विद ब्रह्मा कुमारी।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं, वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन।
2: थैंक यू
1: सिस्टर। बीइंग डिवाइन का के एपिसोड में सबसे अच्छी बात ये लगी कि पहले सबसे अपने आप को बॉडी छोड़ के सोल समझना है, जो कि मैं हूँ। और ओरिजिनली मैं हूँ ही प्योर,
2: राइट।
1: और सेम थिंग अगले को समझना है,
2: राइट।
1: ये बात डिस्कशन में और अंडरस्टैंडिंग में तो आ रही है, लेकिन लिविंग में व्यवहार में थोड़ा सा
2: हम हर चीज को क्या कहते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम उसको इमीडिएटली होता हुआ देखना चाहते हैं कि अभी कोई बात आई और हमें इमीडिएटली ये याद हो। नहीं होगा इमीडिएटली, थोड़ा सा टाइम लगेगा।
1: जिन चीजों को लगे जन्म जन्म मैल को जमने में उसको साफ करने में,
2: कोई अगर जमीन पर भी दाग है, कई दिनों का है, कई सालों का है, तो ऐसे थोड़ी होगा अभी दवा डाली और अभी हट जाएगा। लेकिन जैसे ही दवा डाली और थोड़ा सा उसको स्क्रब करना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, थोड़े दिन में वो दाग थोड़ा फीका होगा, फिर और तब ओरिजिनल निकल कर आएगा। सो व्हेन वी वांट इमीडिएट रिजल्ट्स ना, दैट ब्लॉक्स द जर्नी एक्चुअली, क्योंकि हम ये फिर रीअफर्म कर देते हैं, लिविंग में नहीं हो रहा, प्रैक्टिकल में नहीं हो रहा, ये बात पढ़ने में ठीक है, सुनने में ठीक है, सारे दिन में कैसे याद रहेगा। कोई बच्चा पहले फर्स्ट आता था, क्लास में बहुत अच्छे नंबर आते थे उसके, अब वो फेल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास दोनों पॉइंट ऑफ नॉलेज है कि वो फर्स्ट भी आता था ये भी पता है, और वो अभी फेल हुआ वो भी पता है, ठीक है। अब अगर हम पहले सिर्फ उसके फेल होने पर फोकस कर रहे हैं, हम कहते हैं ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, किसी ने धीरे से आकर कहा पहले फर्स्ट आया था, तो हम उसको मुड़कर देखते हैं और कहते हैं हाँ पहले फर्स्ट आया था, लेकिन अभी तो फेल हो गया ना। फिर हम फिर फेल पर फोकस करते हैं, फिर सामने वाला फिर धीरे से सुनाता है, याद करो पहले फर्स्ट आया था,
1: उसमें फर्स्ट आने की
2: कैपेबिलिटी है, थी नहीं
1: है,
2: है उसका वो पोटेंशियल है। धीरे धीरे हम कहेंगे हाँ बात तो राइट है, पहले फर्स्ट आया था, अभी भी आ सकता है। इट विल नॉट हैपन इन द फर्स्ट थॉट ना, वी आर शिफ्टिंग आवर कॉन्शियसनेस। अब ये सेम एक्सरसाइज हमें अपने साथ पहले करनी है, दूसरों के साथ नहीं करनी है।
1: okay.
2: मैं कौन, मेरे ओरिजिनल संस्कार, फोर सेट ऑफ संस्कार तो हमने देख लिए, लेकिन फिफ्थ सेट ऑफ संस्कार विच इज ओरिजिनल एंड मोस्ट पावरफुल बट राइट नाउ मे बी लेसर यूज्ड। ओरिजिनल बहुत पावरफुल, लेकिन शायद अभी कम यूज कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो संस्कार हैं, वो फोल्डर है, वो फाइल्स हैं कंप्यूटर पर। कई बार कोई फाइल्स कंप्यूटर पर हैं और हम भूल गए, तो हमने सोचा मुझे वो सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे वो फाइल चाहिए, चाहिए नहीं वो हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें परमात्मा सिखाते हैं, जो राजयोग जिसका फाउंडेशन है, वो है तुम आत्मा की ओरिजिनल फाइल्स क्या हैं, ओरिजिनल संस्कार क्या हैं, जो हम इस जन्म नहीं अनेक जन्म से भूले हुए थे। तो जो चीज भूली हुई है उसको यूज कैसे करेंगे। परमात्मा आकर क्या कर रहे हैं, आत्मा को याद दिला रहे हैं, फिर बताते हैं तुम कौन हो, तुम ओरिजिनली प्योर ब्यूटिफुल आत्मा हो। परमात्मा आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज बताते हैं, और वो ओरिजिनल क्वालिटीज एक या दो आत्माओं की नहीं, संत महात्माओं की नहीं, हर आत्मा की वो ओरिजिनल क्वालिटी है। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट।
1: बट एक स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रांग बिलीफ है कि मैं संत तो नहीं, मुझसे नहीं होता, अब इस उम्र में क्या करेंगे।
2: संत आत्मा किसको कह रहे हैं? हर आत्मा के पास 5 फोल्डर हैं, ठीक है, 5 फोल्डर हैं, पास्ट बर्थ, फैमिली संस्कार, वातावरण से बने संस्कार, विल पावर से बने संस्कार, ओरिजिनल संस्कार, राइट। संत आत्मा हम किसको कहते हैं? और संत आत्मा हम किसी को भी कह सकते हैं सारा दिन में। किसी के अंदर भी जब हमें वो ओरिजिनल प्योरिटी दिखाई देती है, तो संत आत्मा है। बिल्कुल, संत आत्मा सिर्फ उसको नहीं कहते हम जो उस तरह के रोल में है, हम किसी को भी कह सकते हैं सारा
1: बच्चों
2: दिन।
1: को भी बोलते हैं।
2: तो संत आत्मा हमने किसको कहा जो अपनी उस 5th फोल्डर की फाइल्स को ज्यादा यूज कर रहे हैं?
1: ओके।
2: उस आत्मा को हमने टाइटल दिया संत आत्मा। ये सिंपल है। अब उस 5th फोल्डर में फाइल्स कौन सी पड़ी हुई है, कौन सी पड़ी है? तो परमात्मा ने कहा हर आत्मा के अंदर 7 ओरिजिनल संस्कार हैं। मतलब हर आत्मा के 1 फोल्डर है जिसमें 7 फाइल्स हैं। वो 7 ओरिजिनल संस्कार कौन से? हर आत्मा के पास प्योरिटी का संस्कार है। हर आत्मा ओरिजिनली पवित्र है, प्योर है। इफ वी जस्ट क्रिएट दिस थॉट, वी हैवंट येट यूज्ड द संस्कार, बट वी आर क्रिएटिंग दिस थॉट, मैं आत्मा प्योर आत्मा हूँ।
1: लेकिन इस वक्त तो नहीं है ना अगली प्योर आत्मा। प्योर मैं होली खेल के आया, इस पे सारे रंग लग गए, तो इस वक्त तो मेरी वाइट नहीं है ना, तो मैं कैसे पहचान लूँ उसको?
2: अभी आप होली खेल के आए, इसके ऊपर लाल, पीला, नीला, काला सब रंग है, और मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हूँ, आपके कुर्ते का कलर क्या है?
1: मैं बोलूँगा कलर व्हाइट था, लेकिन अभी
2: आप कहेंगे इस कुर्ते का कलर व्हाइट था?
1: ओरिजिनली तो व्हाइट ही था, बोलूंगा
2: ना। आप कहेंगे इस कुर्ते का कलर व्हाइट है, अभी दाग लगे हुए हैं। आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा है, आपके कुर्ते का कलर क्या है?
1: व्हाइट।
2: व्हाइट बिकॉज यू हैव नॉलेज कि ये व्हाइट है, एंड यू ऑल्सो हैव नॉलेज कि ये जो कलर अभी लगे हैं ये अक्वायर्ड है, एंड तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉलेज है, ये कलर हटेंगे और ये वापस व्हाइट हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये कुर्ता व्हाइट है।
1: तब ऐसे भी मन करता है ना, जब व्हाइट कलर हटेंगे तब देखेंगे, अभी तो मैला है।
2: अगर आप सोचेंगे कि जब कलर हटेंगे तब देखेंगे, तो आप कलर हटाने का कोई पुरुषार्थ नहीं करेंगे, कलर अपने आप तो हटेगा।
1: दूसरे की बात कर रहा
2: हूं। हम पहले अपनी बात कर रहे हैं, हमें अपने कलर हटाने हैं, ओरिजिनल कलर वापस लाना है। जब हम अपने ओरिजिनल कलर वापस लाएंगे,
1: तब मेरे चश्मे का कलर अलग हो जाएगा,
2: तब हमारे चश्मे का कलर अलग हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो संस्कार जिसके थ्रू हम दूसरों को देखेंगे,
1: नजरिया बदल जाता
2: है, नजरिया बदल जाएगा। अब जैसे ही सपोज आपने ये किया कि आपके चश्मे का रंग बदला, इन द सेंस आपका संस्कार चेंज हुआ, सपोज आपके अंदर पहले डाउट करने का संस्कार है, सपोज, तो आप मुझे किस नजरिए से देखेंगे? डाउट करेंगे तो मेरे पास वाइब्रेशन कौन सी आएगी? डाउट की आएगी। जैसे ही मेरे पास डाउट की वाइब्रेशन आएगी, मेरा कोई ना कोई अक्वायर्ड संस्कार ही ट्रिगर होगा। अब आपने अपने रंग को हटाया, अपनी प्योरिटी के संस्कार को इमर्ज किया। प्योरिटी का संस्कार मतलब हर आत्मा के फिर आप कैसे देखेंगे? आपको वो दिखेगी प्योर, क्योंकि प्योरिटी का संस्कार मतलब इम्प्योर थॉट क्रिएट नहीं कर सकता प्योरिटी का संस्कार। प्योरिटी का संस्कार दूसरे के अवगुण नहीं देखेगा, विशेषताएं देखेगा। प्योरिटी का संस्कार किसी के प्रति जजमेंटल, क्रिटिकल हो नहीं सकता। प्योरिटी मतलब जहां कोई मिक्सचेरिटी नहीं, अडल्ट्रेशन नहीं, थोड़ी भी मैल नहीं, वो प्योरिटी का संस्कार।
1: एक 2 महीने का बच्चा कैसे देखता है सबके साथ स्माइल करता है? कुछ नहीं देखता है। नौकर है, मेड है, माँ है, भाई है, बहन है, दोस्त है, वही स्माइल देता है, वैसे ही प्यार से बात करता है,
2: क्योंकि वो आत्मा
1: अगली विद्युत ऐसे पकड़ लेते सबके साथ वही करते हैं,
2: क्योंकि वो आत्मा अभी अपनी ओरिजिनलिटी में है ना, उसके पास भी अक्वायर्ड संस्कार है बच्चे के पास। दिस वी हैव टू रिमेम्बर कि बच्चे के पास पास्ट बर्थ के पेरेंट्स के ये सब अक्वायर्ड संस्कार हैं, लेकिन बच्चा अभी ईगो नहीं क्रिएट की है, क्योंकि अभी उसका अटैचमेंट लेबल्स के साथ, रोल्स के साथ, पोजिशन के साथ, प्रॉपर्टी के साथ अभी नहीं हुआ है। उसको हम धीरे धीरे वो अटैचमेंट करना सिखाते हैं। अगर वो बच्चा किसी स्टाफ से या किसी से बहुत प्यार से हग करके बात करे तो कोई उसको आके बोल देगा ऐसे नहीं, वो तुम्हारा स्टाफ है, ये सिखाया जाता है, उनको नहीं पता होता ये, उसके साथ नहीं ऐसे बात करनी है। उसका तो प्यार दोनों सबके लिए सेम था, कोई उसको कंडीशन करके सिखा देता है।
1: दो साल का भी नहीं हुआ मेरा वो था, हुआ था जब मेरा ग्रैंड चाइल्ड, वो मुझसे पूछ रहा था कि ये भैया, मैं बोले ये भैया है आपका, ये भी भैया है, ये माँ, तो फिर स्टाफ, तो ये हमारे फैमिली नहीं है। ऐसे ये कहाँ से शब्द ढूंढ के लाता है,
2: right.
1: ये भी तो हमारा भाई है ना, ही वाज टेलिंग मी, मतलब उसके पूर्व संस्कार में भाई, मतलब देखो सोल टू सोल वो देख रहा है,
2: क्योंकि वो आत्मा वो संस्कार लेकर आई है।
1: स्टाफ जिसके साथ रुके तो ये भी भाई है,
2: हाँ।
1: नहीं बेटा वो स्टाफ है,
2: हाँ।
1: स्टाफ फैमिली नहीं होता,
2: हाँ।
1: कैसे कैसे सवाल पूछते हैं कि हमको ज्ञान मिल जाता है बच्चों से।
2: पर अगर पूछा स्टाफ फैमिली नहीं होता, अगर अब किसी ने सिखाया नहीं स्टाफ फैमिली नहीं होता, फैमिली ये होता है, मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन, ये फैमिली होता है, ये स्टाफ है, दिस इज द लर्निंग, दिस इज द बिगिनिंग, कि वो आत्मा ओरिजिनली ब्यूटीफुल, उसके ऊपर लेयर डाल दी कि ये है, फिर ये है, फिर धीरे धीरे वो बच्चा अपनी प्योरिटी, अपनी
1: वो इनसे, मुझे अपनी ओरिजिनलिटी बच्चों से सीखने को मिल रही है।
2: डेफिनेटली सोल कॉन्शियस के सामने बैठेंगे तो अपनी सोल कॉन्शियस इमर्ज होनी शुरू होगी। अब पहला फाइल आत्मा का प्योरिटी, दिस मे साउंड वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव राइट नाउ बिकॉज वी आर लिटिल अवे फ्रॉम इट, यू नो, पीस लव हैप्पीनेस हम फिर भी सारा दिन में काफी एक्सपीरियंस करते हैं, प्योरिटी से हम थोड़ा सा अपने आप को दूर देखते हैं अभी, कि किसी के प्रति जजमेंटल नहीं, किसी के प्रति क्रिटिकल नहीं, किसी भी सीन और दृश्य में कोई गलत थॉट ही नहीं आ रही, ये प्योरिटी है, ये प्योरिटी है। लेकिन लेट अस जस्ट विजुअलाइज, आई एम अ प्योर सोल, ये सिर्फ थॉट क्रिएट करनी है, अभी ये इमर्ज नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही थॉट क्रिएट की तो क्या हो जाएगा, यहां पे एक सर्किट बनना शुरू होगा। अगर थॉट ही नहीं क्रिएट की, किया ही नहीं, तो वो संस्कार है लेकिन वो फाइल कभी खुली ही नहीं।
1: थॉट किस चीज की क्रिएट नहीं की बोल रहे थे,
2: ये कब थॉट लास्ट हमने क्रिएट की थी कि आई एम अ प्योर सोल?
1: वो तो मेडिटेशन में बैठ के,
2: वो भी तो अब ना जब सीख रहे हैं, जब वो भी नहीं किया था तो तब लास्ट कब क्रिएट की थी?
1: तब तो मालूम ही नहीं था।
2: जब मालूम ही नहीं था तो क्रिएट ही नहीं की, जब क्रिएट ही नहीं की फाइल खुलने का कोई चांस नहीं। नॉलेज मिली, शुरू किया वो फाइल को टच करना तो शुरू हो गया। सिर्फ एक क्वालिटी भी अगर रोज लें, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ प्योर सोल, कोई सीन आई, आई एम अ प्योर सोल, किसी की बात कोई बुरी लगी, आई एम अ प्योर सोल, ग्रुप बनना शुरू होगा धीरे धीरे, लेकिन बनना तो शुरू हो गया। जैसे आई एम अ प्योर सोल, मंत्र जीवन के ये होते हैं, ये मंत्र है जिसको बार बार बार बार रिपीट करते जाए, आई एम अ प्योर सोल। नाउ विजुअलाइज, आई एम अ प्योर सोल एज अ फादर, नॉट आई एम अ फादर, दोनों लाइंस में फर्क
1: बहुत फर्क है, आई एम अ प्योर सोल एज अ फादर एंड आई एम अ फादर में।
2: आई एम अ फादर तो एक्सपेक्टेशंस, आई एम अ प्योर सोल एज अ फादर।
1: सोल से सोल को एक्सपेक्ट नहीं करता है क्या?
2: सोल से सोल को रियलिटी पता है, सोल से सोल को पता है कि वो ये सब संस्कार लेकर आए हैं, उसके थ्रू बात कर रहे हैं. एंड सोल से सोल मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, मैं आत्मा हूं तो मेरी जो एनर्जी का फ्लो है वो देने की तरफ हो जाता है बजाय के लेने की तरफ.
1: सोल से सोल मेरा रिलेशनशिप और मीटिंग या शादी या बच्चा हुआ ही इसलिए था कि कार्मिक अकाउंट है. ठीक है, तो वो कार्मिक अकाउंट के लिए तो फिर सोल से सोल की एक्सपेक्टेशन तो होती होगी ना.
2: एक सिंपल चीज देखते हैं, सपोज प्योरिटी संस्कार है आत्मा का, एक और संस्कार है आत्मा का पीस, ये ओरिजिनल संस्कार है. इसको देख लेते हैं, इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना कि आत्मा का ओरिजिनल फाइल पीस. मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल. ओम शांति हम इसलिए कहते हैं, ओम शांति मीन्स आई एम अ पीसफुल बींग. लेकिन मुझे याद नहीं था कि आई एम अ पीसफुल बींग, राइट? तो हम शांति ढूंढने लगे क्योंकि शांति चाहिए तो थी आत्मा को. ये नहीं याद था कि आई एम अ पीसफुल बींग. ये याद होना कि आई एम अ पीसफुल बींग और ये भूल जाना, दोनों में जीवन जीने के तरीके में कोई फर्क आएगा?
1: बहुत.
2: क्या फर्क आएगा?
1: ऑपोजिट हो जाएगा पीस का.
2: क्या क्या करेंगे, क्या फर्क हो जाएगा?
1: आप यहाँ रेस्टलेस रहेंगे, वहाँ पीसफुल रहेंगे, यहाँ पर आप एंग्री रहेंगे.
2: दोनों में से पीस कब एक्सपीरियंस होगी?
1: जब आप पीस में रहेंगे,
2: जब आप पीसफुल सोल हैं, ये याद रहेगा.
1: पीसफुल कर्म करेंगे, पीसफुल सोचेंगे, पीसफुल बातें करेंगे,
2: पीसफुल सोचेंगे, तभी पीस एक्सपीरियंस होगी. जब पीस एक्सपीरियंस होगी, शांति अनुभव होगी आत्मा.

0: ने कहा, इधर जाएं तो शांति मिलेगी, पहाड़ों में जाएं तो शांति मिलेगी, कोई धर्म स्थान पर जाएं तो शांति मिलेगी, कुछ लोगों ने कहा युद्ध करेंगे तो शांति मिलेगी, कुछ लोगों ने कहा जंगल में जाके अकेले रहेंगे तो शांति मिलेगी,
1: कुछ ड्रग्स में चले गए ये खाएंगे पिएंगे तो शांति मिलेगी।
0: बाहर से अंदर नहीं आ सकती थी वो चीज, आत्मा को वो अगर चाहिए तो उसको वो संस्कार को कर्म में लाना पड़ेगा। अगर कर्म में लाए तो अनुभव हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा तो मांगना बंद कर देंगे। अब आपने कहा इफ आई एम अ सोल टॉकिंग टू अनदर सोल तो एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी। जब आई एम अ सोल एंड आत्मा की ओरिजिनल संस्कार को कर्म में यूज करेंगे तो वो कर्म में क्या क्या आएगा, प्यार आएगा, रिस्पेक्ट आएगा, खुशी आएगी, शांति आएगी, ये सब कुछ आ गया। आत्मा ने अनुभव कर लिया उसको, जब अनुभव कर लिया तो वो चीज की सामने से एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी। हम एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं औरों से, क्योंकि हमें वो वाली क्वालिटी चाहिए। वो मुझसे ऐसे बात करेंगे तो मुझे अच्छा फील होगा।
1: ये थोड़ा सा कुछ क्लियर नहीं हुआ कि मैं वही चीज मांग रहा हूँ जो मुझ में नहीं है।
0: नहीं, हम वो चीज नहीं मांग
1: हम
0: रहे
1: लोगों जो से आपने कहा कि वो एक्सपेक्ट करेंगे
0: जो हमें चाहिए, हम अनुभव करना चाहते हैं वो, हम रिश्तों में अच्छा फील करना चाहते हैं क्योंकि आत्मा अच्छा फील करना चाहती है, आत्मा प्यार अनुभव करना चाहती है, आत्मा एक्सेप्टेंस अनुभव करना
1: चाहती है। और अगर मैं अनुभव करूं कि मैं हूं पीसफुल और मैं सोल हूं तो दूसरे से मैं उम्मीद नहीं करूंगा इस चीज की।
0: सपोज आप कहते हैं मीठा अच्छा लगता है, चलो मीठा अच्छा लगता है तो मिठास टेस्ट करना चाहते हैं, राइट? एक मिठाई की पीस आपकी प्लेट में भी पड़ी है, एक मिठाई का पीस मेरी प्लेट में भी पड़ा है, आपको मीठा अच्छा लगता है, यू वॉन्ट मीठा, लेकिन यू हैव फॉरगॉटन कि मिठाई आपकी प्लेट में पड़ी है, तो वो वाली एक बात भूल गई, लेकिन अब मीठा तो अच्छा लगता है, मीठा तो चाहिए, तो यू आर गोइंग टू आस्क मी फॉर इट। विजुअलाइज दिस सीन, इट बिकम वेरी इजी टू फिट इट हियर। प्लेट आपके पास भी है, प्लेट मेरे पास भी है, वही मिठाई आपकी प्लेट में भी है, मेरी प्लेट में भी है, आपको मीठा अच्छा लगता है, मीठा खाने का मन कर रहा है, सिर्फ लेकिन भूल गए कि मिठाई आपके प्लेट में है, तो आप क्या करेंगे?
1: मैं बोलूंगा यार थोड़ा टेस्ट करा दे।
0: सो यू विल एक्सपेक्ट इट फ्रॉम मी। अब मेरे पास चॉइस है,
1: शेयर करूं या ना करूं,
0: शेयर करूं या ना करूं, मतलब जो आपको चाहिए वो आपको दूं या
1: ना दूं।
0: आपने तो एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर ली एंड आपने फिर साथ में ये भी लेबल लगाया कि अगर मैंने आपको वो मिठाई दी देन आई एम अ नाइस पर्सन, क्योंकि आपको मिठाई चाहिए। सपोज मैंने वो मिठाई नहीं दी और आपको चाहिए थी, तो उस क्षण यू विल नॉट लाइक मी फॉर हु आई एम। इसे इतना ही तो एक्सपेक्ट किया था, क्या चाहिए क्या था मुझे इस रिश्ते में, इतनी थोड़ी सी मिठाई चाहिए थी वो भी नहीं दी। अब इक्वेशन चेंज, आपको मीठा अच्छा लगता है, आपकी प्लेट में मिठाई पड़ी है, आपको याद है, तो आप मेरे से बात कर रहे हैं, हम इकट्ठे काम कर रहे हैं, लेकिन आप मिठाई अपनी प्लेट से खा रहे हैं, तो आपका मुझसे एक्सपेक्टेशन रखना।
1: खाऊं या ना खाऊं, जब मुझे मालूम है तो मांगने का सवाल ही नहीं पैदा होता।
0: टेस्ट आप वहां से कर रहे हैं मिठाई, आपको जो मिठास चाहिए थी वो मिल रही है, तो फिर मुझसे एक्सपेक्टेशन मिठाई की
1: जीरो।
0: दिस हो गया। अब मैं अगर मिठाई ना दूं
1: तो मुझे क्या फर्क पड़ता है?
0: सीधा लाइन, मुझे क्या फर्क पड़ता है? ये लाइन इतनी इम्पोर्टेंट है कि मेरे पास ऑलरेडी है, तो मुझे सामने वाले से एक्सपेक्टेशन नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर उन्होंने नहीं दिया, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट

0: अगर उन्होंने नहीं दिया तो दे आर नॉट रॉन्ग और बैड।
1: सपोज मीठा नहीं खिलाया तो कड़वा तो आपकी प्लेट में नहीं डाले ना।
0: ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि मीठा नहीं खिलाया तो कड़वा तो ना डाले प्लेट में।
1: उसके बाद जो कड़वा पड़ा उठा के मेरी मिठाई के साथ डाल दे, वो भी तो राइट नहीं है ना।
0: आपके पास इतनी मिठाई है, इतनी मिठाई है, इतनी मिठाई है कि अगर कोई कड़वा भी डाल दे
1: वो भी
0: आप अपनी मिठाई खाते चाहिए। इम्पोर्टेंट इज याद रखना कि मेरे पास वो मिठाई है। दिस चेंजेस थिंग्स एंड फोकस इस पर कर देना कि आप मुझे वो मिठाई खिला ले।
1: हो सकता है मैं कड़वा जिसको बोल रहा हूँ, आपसे बात करते करते मेरा थॉट आया, मैं जिस चीज को कड़वा बोल रहा हूँ उसका मिठाई मुझे ना देना उस चीज को मैं कड़वा बोल रहा हूँ।
0: वेरी ट्रू।
1: तो उसे मिठाई नहीं दी को मैं कड़वा दे दिया बोल दिया।
0: जैसे आपने
1: उसका मतलब
0: उसका नजर चेंज हो जाएगा।
1: पर्सपेक्टिव अपना अपना।
0: आपने मुझसे एक पर्टिकुलर तरीका एक्सपेक्ट किया बात करने का, मेरे से एक पर्टिकुलर तरीका एक्सपेक्ट किया व्यवहार का। अकॉर्डिंग टू यू वो तरीका रिस्पेक्ट है एंड विच इज राइट, वो रिस्पेक्ट है। आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आपने एक्सपेक्ट किया कि मैं उस तरह बिहेव करूं। मैंने उससे हटकर बिहेव किया, उससे हटकर बिहेव किया तो हमने कहा रिस्पेक्ट नहीं किया। और अगर फिर भी उससे हटकर बहुत बहुत बहुत बुरा भी बिहेव किया, बहुत कड़वा भी डाल दिया, तो भी अपनी मिठाई पर फोकस रखें। एंड जितना आप अपनी मिठाई पर फोकस रखेंगे आप मेरे से एक्सपेक्टेशंस कम रखेंगे, आपकी वाइब्रेशन मेरी तरफ वो प्योरिटी की आएगी और साथ साथ आप मुझे मिठाई भी खिला सकते हैं। तो हो सकता है मेरा कड़वापन भी थोड़ा थोड़ा कम होने लगे वो मीठा खाने से। रेडिएट योर प्योरिटी टुवर्ड्स मी।
1: इतना ओवरफ्लोइंग अबंडेंस नेवर एंडिंग मीठा आपके पास है तो शेयर करो तो और बढ़ेगा।
0: शेयर करेंगे तो और एक्सपीरियंस में आएगा, एक्सपीरियंस में आएगा तो और बढ़ता जाएगा। लेकिन अपनी मिठाई तो तब शेयर करेंगे ना
1: जब पता चले कि हमारे पास है रियलाइजेशन।
0: दिस अब पता चले अपने पास है, दूसरे से एक्सपेक्टेशन हुई खत्म, अपनी रेडिएट करनी शुरू कर दी, जीवन कितना सिंपल हो जाएगा। एंड जितना मुझे रेडिएट किया अपना बढ़ता गया। सिंपल। अब आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी को ले। दिस इज द सेम थिंग वी हैव टू अप्लाई ऑन द लेवल ऑफ क्वालिटीज एंड वाइब्रेशन। कि जैसे ही सोल टू सोल बात की आपने, आई एम अ प्योर सोल एज अ फादर, एक्सपेक्टेशन सामने से घटने लगेंगे।
1: स्पीकिंग टू अ प्योर सोल एज अ सन और डॉटर।
0: वेरी ट्रू। एक्सपेक्टेशंस कम होने
1: लगेंगे, वाइफ व्हाटएवर,
0: एक्सपेक्टेशंस कम होने लगेंगी, धीरे धीरे होगा लेकिन कम होने शुरू हो जाएंगी। मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, वो तो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन ये मेरे पास जो सब कुछ है उसके साथ मैंने इन सब के साथ रहना है, कर्म करना है। तो मेरी जो फ्लो ऑफ एनर्जी है इट विल गो टूवर्ड्स गिविंग रादर देन आस्किंग, rather than begging, rather than wanting, energy flow change हो जाएगा, आत्मा का अनुभव बदल जाएगा।
1: कितनी सुंदर बात है। और मैं सोच रहा था कि देखो देखो हर चीज तो ये पेड़ है हमारे सर के ऊपर, सिर्फ गिविंग कर रहा है, कुछ मांगता ही नहीं है। आप कुछ छांव दे रहा है, मुझे छांव दे रहा है, ठंडी हवा दे रहा है, फ्रूट दे रहा है।
0: ह्यूमन नेचर ऑल्सो भी गिविंग है, लेकिन ओरिजिनल नेचर भूल गई है ना, तो गिविंग से आस्किंग में चले गए, गिविंग से वांटिंग में चले गए, गिविंग से एक्सपेक्टेशंस में चले गए। नेचुरल और नॉर्मल की डेफिनेशन बदल गई। आज लोग कहते हैं एक्सपेक्टेशन रखना तो नॉर्मल है ना, ये तो नॉर्मल है, मतलब एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखे, ऐसे कैसे हो सकता है?
1: गिविंग रखना नॉर्मल है तो इसे अपनी लाइफ में कैसे लाएं, अगले एपिसोड में बात करते हैं। थैंक यू सो मच। ओम शांति।
2: संस्कार्स ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस एंड ईगो आर डीप संस्कार्स क्रिएटेड इन मेनी बर्थ्स. वी आर 100% बॉडी कॉन्शियस टुडे. वी हैव फॉरगॉटन दैट वी आर सोल. नाउ वी आर शिफ्टिंग टू 100% सोल कॉन्शियस, विच मीन्स ऑलवेज अवेयर ऑफ बीइंग अ सोल विद divine qualities. This shift is a gradual process of attention and awareness. If we create thoughts, this transformation is difficult. Soul consciousness is not possible in practical life. When everyone else is not doing it, how can I do it? These thoughts create a barrier in our journey of transformation. We always need to remember that originally we were 100% soul conscious. Divinity, peace, love and bliss was our natural self in practical life. That is our potential, and little attention and we can go to being who we originally were. As we shift towards soul consciousness, our attention will not go towards the acquired sanskars of others. When we emerge our purity, we will not look at the impurity in others. This shift in our consciousness will radiate purity to others and empower them to shift to their originality.
0: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Rajyoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार बार चूमूं। दिल मेरा चाहे कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुजरूं। दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आला आला आला
3: अहो काय आला
2: आला आला आवाज रेडियो चा।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
1: क्या सुन रहे हो?
2: रेडिओ पुणेरी आवाज।
1: ओ रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुश।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमारा आज का विषय है महाभारत रूपी मनोयुद्ध में संपूर्ण विजय कैसे प्राप्त करें। आज हम देखते हैं कि इस घोर कलयुग में मानव जीवन महाभारत युद्ध का रूप ले चुका है। प्रतिदिन व्यक्ति अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए मनोयुद्ध रूपी संघर्ष करते हुए विजय का प्रयास करता नजर आता है, किंतु गलत आधार चुनने के कारण उसे विजय से अधिक हार का सामना करना पड़ता है। यादगार महाभारत युद्ध में दुर्योधन ने कृष्ण से उनकी सेना प्राप्त की और अर्जुन ने निहत्थे कृष्ण को अपना सारथी बनाया। परिणाम सभी जानते हैं कि निहत्थे होते हुए भी श्री कृष्ण ने पांडवों को जीत दिलाई और दुर्योधन की हार हुई। दुर्योधन की यही भूल थी कि उसने सेना को महत्व देते हुए भगवान का साथ ठुकरा दिया। आज लगभग हर व्यक्ति उसी दुर्योधन के मनोभाव का अनुसरण कर रहा है। ईश्वरीय नियमों मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए वह सांसारिक संपदाओं के बल पर जीवन रूपी संग्राम में विजयी होना चाहता है, लेकिन परमात्मा को अपना साथी, सारथी व खेवैया बनाकर जो जीवन रूपी रण क्षेत्र में उतरता है उसी की विजय होती है। सांसारिक सुखों का भोग करने की लालसा से हम अनेकानेक पाप करते हुए भौतिक संपदाओं का लंबा चौड़ा साम्राज्य स्थापित करने लग जाते हैं। इतिहास साक्षी है कि रावण, सिकंदर आदि अनेक लोगों ने यह मार्ग अपनाने की भूल की और अंत में पछतावे के सिवाय उनके जीवन में कुछ भी नहीं बचा। तो आज हम देखते हैं कि भौतिक संपदाओं के आकर्षण में अंधे होने के कारण संपूर्ण सृष्टि के संचालक परमात्मा की स्मृति ही बुद्धि से ओझल हो जाती है। अहंकार में डूबे ऐसे लोग जीवन में चाहे कुछ भी करें, किंतु उनकी जो सर्व प्राप्तियां संदिग्ध ही रहती है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है महाभारत रूपी मनोयुद्ध में संपूर्ण विजय कैसे प्राप्त करें। तो हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। आज जैसा कि हम देखते हैं कि वैभव युक्त जीवन की लालसा ही हमसे ईश्वरीय सत्ता की अपेक्षा करवाती है। जो जीवन पर्यंत दुख कष्ट रोग संताप विलाप आदि का अनुभव कराने वाली परिस्थितियों को जन्म देती है, सांसारिक शक्तियों की ओर आकर्षण से समस्याएं तो समाप्त नहीं होती, किंतु जीवन से उमंग उत्साह मनोबल और आत्मबल अवश्य समाप्त होने लगता है। यदि हम देखें तो संपूर्ण श्रद्धा भाव से जीवन नैया को पतवार जो है जीवन की नैया की पतवार परमात्मा के हाथों में सौंप दी जाए तो मन से भय व संशय समाप्त हो जाएगा। प्रभु पालना से प्रतिदिन आप देखना, दिन प्रतिदिन हमारा चरित्र दिव्य गुणों से भरपूर होता जाएगा। इस विश्व नाट्य मंच पर समस्त घटनाएं हमारे ही कर्मों के प्रतिफल के रूप में निर्धारित समय पर घटित होती रहती है, जिनके लिए कोई और व्यक्ति दोषी नहीं है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में परमात्म सत्ता पर अटूट व अटल विश्वास ही हमें उनका सामना करने का संबल प्रदान करता है। विश्व में कर्म की प्रधानता, कर्म करना मानव धर्म है। कर्मों के आधार पर ही जीवन यापन के समस्त साधन जुटाए जाते हैं। हम परमात्मा द्वारा निर्मित जो भी वैश्विक आचार संहिता की परिधि में रहकर जो भी ईश्वर इच्छा के अनुरूप ही प्रत्येक कर्म करें, हमारे मन बुद्धि में यह प्रश्न सदा विचरण करता रहे कि परमात्मा मुझसे क्या करवाना चाहता है, क्या मैं परमात्मा की इच्छा अनुरूप ही कर्म करती हूँ या करता हूँ। परमात्मा इच्छा को प्रधानता देने वाला उसके पावन हृदय से स्थान प्राप्त करने के साथ साथ अपना भौतिक जीवन में दिव्य श्रेष्ठ और महान बना सकता है अपने जीवन को। अपने सर्व कर्म यदि परमात्मा को अर्पित कर दिए जाए तो वह हमें सर्व दुखों से पार कर देगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत।

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है महाभारत रूपी मनोयुद्ध में संपूर्ण विजय कैसे प्राप्त करें। जैसा कि हम देखते हैं, आज की विडंबना यह है कि सब कुछ जानते हुए भी हम दुर्योधन की भांति अहंकार का चैतन्य प्रतिरूप बनकर परमात्मा की आज्ञाएं स्वीकार करने को तैयार नहीं, बल्कि अपने मन रूपी बलहीन कंधों पर दुख, अशांति, चिंताओं, रोगों, असफलताओं के अनेकानेक बोझ उठाए हुए जीवन को घसीटते हुए जी रहे हैं। अपने हृदय देश में जन जन्मांतर से विराजमान अहंकार वासनाएं, राग द्वेष का जड़ से उन्मूलन कर परमात्म इच्छा श्रद्धापूर्वक स्वीकार करनी होगी हमें, तभी जीवन यात्रा सफल हो सकेगी। समस्त स्थल व सूक्ष्म जगत का संचालन करने वाली परमात्म सत्ता के अनुरूप जीवन को श्रद्धापूर्वक ढालना ही सफल जीवन का मूल मंत्र है। अब हमें यहाँ पर देखना यह है कि सजगता पूर्वक अपना जीवन रूपी रथ परमात्मा के हाथों में सौंप कर विजय यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हमारी हर श्वास और धड़कन उसकी याद, उसके प्यार में सराबोर होनी चाहिए, तभी हम 5 विकारों के विरुद्ध महाभारत रूपी मनोयुद्ध में संपूर्ण विजय प्राप्त कर सफल जीवन की परिकल्पना को साकार कर सकेंगे। तो आपने देखा कि ईश्वरीय सत्ता हमारे लिए कितनी जरूरी है, और अगर हम इसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो इससे हमारा जीवन जो है वो ईश्वर के साथ रहेगी और सुख शांति और वैभव को प्राप्त करेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और हम आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

उनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: बात पुरानी बड़ी सुहानी, मनात खोलवर रुजलेल्या चित्रपट, साहित्य, संगीत, गाणी यांच्या आठवणींचा नॉस्टैल्जिक खजिना।
3: बात पुरानी बड़ी सुहानी।

ख्वाब और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
1: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
2: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

जयपुर में स्वामी जी थोड़े दिन ही रहे, पर उस अल्प प्रवास में ही उन्होंने जयपुर निवासियों के मन में जगह बना ली थी। जयपुर में रहते समय उस राज्य के प्रधान सेनापति सरदार सिंह से उनका घनिष्ठ परिचय हो गया था। उन्होंने कुछ दिन सरदार जी के घर धर्मत्व और शास्त्र आदि के विषयों का विवेचन कर अपना समय व्यतीत किया था। एक दिन के विचार का विषय था प्रतिमा पूजा। सरदार जी थे घोर निरंकारवादी वेदांती। वे प्रतिमा आदि में विश्वास नहीं करते थे। इसी से घंटों विचार विवेचना होते रहने पर भी उन्होंने अपने मत का परित्याग नहीं किया। शाम को जब वे लोग घूमने निकलकर फुटपाथ पर चल रहे थे, तब उन लोगों ने देखा कि भक्तों का एक दल श्री कृष्ण की प्रतिमा लेकर कीर्तन भजन गाते हुए शोभा यात्रा में जा रहा है। उसी समय अचानक हरि सिंह ने ज्यों ही प्रतिमा की ओर देखा, त्यों ही स्थिर भाव से खड़े होकर आनंद

0: हरि सिंह कुछ देर बेसुध से वहाँ खड़े रहे। देखा स्वामी जी उनकी तरफ देख मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने स्वामी जी के दोनों हाथ पकड़ लिए और बोले,
1: महाराज यह आपने क्या कर दिया? आपके स्पर्श मात्र से मुझे ऐसे बिजली का झटका लगा और मैं स्तंभित सा मूर्ति को देखने लगा। वो मूर्ति मूर्ति नहीं रही, मुझे उसमें जीते जागते श्री कृष्ण दिखे। वे मुस्कुरा रहे थे, बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखकर उन्होंने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। आपने ये क्या जादू कर दिया स्वामी जी? आज मैंने प्रतिमा में स्वयं भगवान का दर्शन किया है।
2: ऐसी अनगिनत घटनाओं के साक्षी रहे स्वामी जी। उनका मत था, जब जहां हो वैसा व्यवहार करो। गंभीर विषयों पर चर्चा करते वक्त भी उनका परिहास चलता रहता था। एक दिन भक्त मंडली के बीच बैठकर स्वामी जी उन लोगों को कुछ समझा रहे थे। उसी समय जयपुर के एक सम्मानित और नामी सरदार वहां आए। अपने ज्ञान के लिए वे जाने जाते थे। स्वामी जी जिस प्रसंग पर बातचीत कर रहे थे उसी का सूत्र पकड़कर सरदार जी ने कहा,
3: स्वामी मैं वेदांती हूं, मैं अवतार पुरुष के विशेष ईश्वरीय ऐश्वर्य पर विश्वास नहीं करता। हम तो सभी ब्रह्म हैं, अवतार और मुझ में क्या फर्क है?
4: सही बात है, किंतु अवतारों में मत्स्य, कूर्म, एक वराह भी है। और आप कह रहे हैं कि आप भी अवतार हैं, लेकिन इनमें से आप किसके समान अपने को मानते हैं?
2: उपस्थित सभी लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। सरदार जी झेप कर चुप हो गए। ऐसे हाजिर जवाब परिहास प्रेमी थे स्वामी जी।
0: जयपुर में थोड़े दिन ठहर कर स्वामी जी अजमेर पहुँचे। ये स्थान हिंदुओं और मुसलमानों के अनेक कीर्ति कलापों के लिए प्रसिद्ध है। स्वामी जी ने सम्राट अकबर के महल को देखा और प्रसिद्ध प्रतिष्ठा लब्ध मुसलमान फकीर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह के नाम से प्रसिद्ध स्थान को भी। तीर्थ और मंदिर के दर्शन के उपरांत वे आबू पर्वत की ओर चले।
2: 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को स्वामी जी आबू पर्वत पहुँचे। इस पर्वत का स्मरणीय प्राकृतिक सौंदर्य तो है ही, इससे भी बढ़कर है नयन अभिराम अतुलनीय दिलवाड़ा जैन मंदिर, जो 13वीं शताब्दी में लगभग 8 करोड़ रुपयों के व्यय से श्वेत संगमरमर से बना था। दो व्यापारी भाइयों ने इसका व्यय भार वहन किया था और इसके निर्माण में 14 वर्ष लगे थे। इसका शिल्प सौंदर्य देखकर जिस प्रकार चित्त प्रफुल्लित होता है, उसी प्रकार भारत के गौरव का स्मरण कर प्राण उल्लासित होते हैं। मंदिर का दर्शन कर स्वामी जी ने पर्वत के वक्ष पर सुशोभित विशाल झील के तट पर भ्रमण किया।
0: अन्य स्थानों में जैसा हुआ था आबू में भी वैसा ही हुआ। स्वामी जी के गुणों से अनेक भक्त आकृष्ट हुए। वे लोग इनके साथ संध्या भ्रमण के लिए निकलते। एक दिन वे लोग बेलीज वॉक नामक रास्ते से घूमते घूमते उस पर्वत प्रदेश के विशेष मनोरम स्थानों के संबंध में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। पर्वत के नीचे ही आबू झील फैली थी। स्वामी जी ने अपने मित्रों के साथ वॉक का वो रास्ता छोड़ दिया और कुछ ऊपर जाकर शिलाखंडों पर बैठकर

0: गीत घंटों चलता रहा। इधर कुछ यूरोप वासी भी उसी समय टहलने निकले थे। वे सब संगीत की मधुरिमा से आकर्षित हो गायक के दर्शन के लिए रास्ते पर प्रतीक्षा कर रहे थे। अंत में गायक के नीचे आ जाने पर उन लोगों ने उनके सुमधुर स्वर और भाव गांभीर्य की प्रचुर प्रशंसा की।
1: उन दिनों स्वामी जी चंपा नामक एक निर्जन गुफा में रहकर तपस्या आदि में निरत थे। उनके सामानों में मात्र एक कंबल, एक कमंडलू और कुछ पुस्तकें थी। एक दिन एक देशी राज्य के राजा के एक मुस्लिम वकील उस रास्ते से जब गुजर रहे थे, तब स्वामी जी को देखकर वे उनकी ओर आकर्षित हुए। दो चार मिनटों की बातचीत से ही वकील साहब समझ गए कि साधु का पांडित्य अगाध है। इसी आकर्षण के कारण वे अक्सर स्वामी जी के दर्शन करने वहां आया करते थे। एक दिन उन्होंने ये जानना चाहा कि वे स्वामी जी की किसी सेवा के योग्य हैं या नहीं। स्वामी जी ने कहा, देखिए वकील साहब, वर्षा तो आ ही चली है, किंतु इस गुफा में दरवाजा नहीं है। इच्छा हो तो एक जोड़ा किवाड़ बनवा के दे सकते हैं।
2: ये गुफा तो बहुत बदतर हालत में है। आप आज्ञा दे तो एक बात कहूं। मैं यहाँ अकेला एक सुंदर बंगले में रहता हूँ। यदि आप दया कर वहां रहने को राजी हो जाएं, तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। लेकिन मैं मुस्लिम हूँ, निश्चय ही मैं आपके लिए अलग भोजन की व्यवस्था कर दूंगा।
0: उन बातों पर बिना ध्यान दिए स्वामी जी उस बंगले में चले गए। इससे स्पष्टतः सिद्ध होता है कि स्वामी जी का स्वभाव कितना उदार था तथा लोक निंदा आदि के भय से वे कितना ऊपर रहते थे। इस मुस्लिम सज्जन के घर पर रहने के कारण ही स्वामी जी के जीवन में एक और अधिकतर गुरुत्वपूर्ण संबंध का सूत्रपात हुआ। इस सूत्र से ही वे खेतड़ी नरेश से परिचित हुए।
1: वकील साहब एवं उनके बंधु बांधवों को लेकर आबू पहाड़ पर स्वामी जी के अनुगामियों का एक अच्छा खासा वर्ग बन गया। इसी तरह कोटा के वकील श्रीयुत महाराव एवं उसी राज्य के मंत्री ठाकुर फतेह सिंह से उनका परिचय हुआ। कुछ ही दिनों बाद खेतड़ी नरेश के प्राइवेट सेक्रेटरी मुंशी जगमोहन लाल निमंत्रित हो वकील साहब के घर आए। जिस समय वे वकील साहब के घर पहुंचे, उस समय स्वामी जी सो रहे थे, तो उन्होंने स्वामी जी को भी एक साधारण साधु ही समझा और ये सोचा कि जो सामान्य साधु चोर उचक्के की भांति घूमने निकलते हैं, ये भी उन्हीं में से एक होगा। शीघ्र ही स्वामी जी की निंद्रा भंग होने पर जगमोहन ने प्रायः प्रथम बातचीत में ही उनसे पूछा,
3: आप तो हिंदू साधु हैं, फिर इस घर में कैसे ठहरे हैं? आपको भोजन भी तो शुद्ध नहीं मिलता होगा।
4: आप क्या कहते हैं, मैं सन्यासी हूं, मैं आप लोगों के सारे सामाजिक विधि निषेधों से परे हूं। मैं किसी के भी साथ भोजन कर सकता हूं, इससे भगवान के अप्रसन्न होने का भय मुझे नहीं है, क्योंकि ये भगवान द्वारा अनुमोदित है। शास्त्र से भी मुझे भय नहीं है, क्योंकि ये शास्त्र द्वारा भी अनुमोदित है। फिर भी आप लोगों का और आप लोगों के समाज का भय मुझे अवश्य है। आप लोग तो भगवान और शास्त्र की भी परवाह नहीं करते। मैं तो देखता हूं कि विश्व प्रपंच में सर्वत्र ब्रह्म प्रकाशित हैं। मेरी दृष्टि में ऊंच नीच नहीं है। शिव शिव शिव।
0: स्वामी जी की वाणी और भंगिमा से जैसे बिजली फूट रही थी। जगमोहन निरुत्तर हो चुप रहे। उनके मन में एक ही विचार आ रहा था कि खेतड़ी के राजा से इन साधु का परिचय होना आवश्यक है। उन्होंने कहा,
3: महाराज, दया करके महाराजा से मिलने आप राजभवन में चलेंगे क्या?
4: अच्छी बात है, परसों चलूंगा।
1: लौटकर जगमोहन ने जो जो हुआ वे सारी बातें खेतड़ी के राजा अजीत सिंह जी को बताई। सुनकर राजा स्वामी जी से मिलने के लिए इतने व्यग्र हो गए कि कहा,
5: मैं स्वयं उनका दर्शन करने चलूंगा।
1: ये सुनकर स्वामी जी स्वयं राजा अजीत सिंह से मिलने तुरंत उनके महल में जा पहुंचे। महाराजा ने उनका सत्कार अभिनंदन किया।
0: प्राथमिक अभिवादन और कुशल मंगल पूछने के बाद राजा ने पूछा,
5: स्वामी जी, जीवन क्या है?
4: आसपास की प्रतिकूल अवस्थाएं जीव को दबाए रखने की चेष्टा करती हैं और उन अवस्थाओं के प्रभावित हुए बिना जीव की अंतःशक्ति अपने वातावरण को हटाती या अपना क्रम विकास करती रहती है। इसी को जीवन कहते हैं।
1: इन बातों को कहते समय स्वामी जी के अपने जीवन के दुख दर्द और वैराग्य ने इन बातों में अद्भुत शक्ति संचार कर दिया। इससे वे बातें राजा के लिए अत्यधिक आकर्षक हो गई थीं। उन्होंने उत्फुल्ल मन से पुनः प्रश्न किया,
5: स्वामी जी तो फिर शिक्षा किसे कहते हैं?
4: मेरे विचार से विभिन्न विचारों को हमारी शिराएं या स्नायु आत्मसात करके उससे घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लेती हैं। यानी विचारों को जब हम केवल दिमाग से ही नहीं बल्कि संपूर्ण चेतना द्वारा आत्मसात कर लेते हैं, वही है शिक्षा। जब विचारों को आत्मसात करके हम अपनी शिराओं उपशिराओं के द्वारा उसे अभिव्यक्त भी कर पाते हैं, वही हमारे मन की निजी संपत्ति बन जाती है, वही है हमारी असली शिक्षा।
0: इसके बाद श्री रामकृष्ण के जीवन की घटनाएं उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत कर अपने वक्तव्य को उन्होंने इतना मर्मस्पर्शी बना दिया कि अजीत सिंह उनकी हर बात को मंत्र मुग्धवत सुनने लगे। उनका चित्त उस समय मानो किसी ऐसे ऊर्ध्व लोक में विचरण करने लगा जहां मात्र सत्य, शिव और सुंदर ही चिर प्रतिष्ठित हों। प्रतिदिन इसी प्रकार राजा ने इनकी अमृतवाणी सुनी। बाद में एक दिन राजा ने कहा,
5: महाराज आप मेरे साथ मेरे राज्य खेतड़ी चलिए।
4: अच्छा, आपके साथ चलूंगा।
1: स्वामी जी 3 बार खेतड़ी गए थे, 2 बार अमेरिका जाने के पहले और 1 बार लौटने के बाद। उनकी खेतड़ी यात्रा संबंधी विवरण और महाराजा से उनकी भेंट का वर्णन पंडित बेनी शंकर शर्मा की डायरी में मिला। उन्होंने जो कुछ विस्तार से लिखा है उसी का सारांश हम आपको बताते हैं। 4 जून को आबू पहाड़ पर स्वामी जी से खेतड़ी राजभवन में राजा अजीत सिंह की प्रथम भेंट हुई। स्वामी जी के प्रातःकाल वहां पहुंचने पर राजा ने उनसे बहुत देर तक वार्तालाप किया। उस समय जोधपुर के हरदयाल सिंह जी भी वहां मौजूद थे। उस दिन स्वामी जी ने वहीं भोजन ग्रहण किया। 6 जून के पूर्वाह्न 10 बजे स्वामी जी पुनः उस भवन में गए। उस दिन भी अंग्रेजी और संस्कृत में चर्चा हुई। 11 जून को सवेरे स्वामी जी तीसरी बार उस घर में आए और राजा से शास्त्रीय विषयों पर कथा वार्ता हुई। 10:30 बजे दोनों ने भोजन किया। स्वामी जी ने कई गीत गाए एवं शिक्षा और दर्शन के संबंध में अनेक बातें कहकर अपराह्न 2 बजे वहां से वापस हुए।
0: इस तरह उस डायरी में अनेकों तारीख और घटनाओं का उल्लेख है जिससे पता चलता है कि 4 जून से लेकर 24 जुलाई तक दोनों की भेंट होती रही। वहां तरह तरह की चर्चाएं हुआ करती थी जिसमें दूर दराज से आए पंडित भी शामिल होते थे। उनमें अजमेर के आर्य समाज के प्रेसिडेंट श्री हर विलास सारदा भी थे। वे प्रसिद्ध सारदा एक्ट के रचयिता थे जिससे भारत में बाल विवाह निषेध हो गया था। वे गहन पांडित्य के लिए सुविख्यात थे। इस तरह के मेल जोल से महाराजा के मन में विशेष सम्मान और भक्ति भाव जागा और जीवन पर्यंत वे स्वामी जी के अनुयायी बने रहे। स्वामी जी भी महाराजा से निसंकोच होकर सहायता मांग लेते थे। खेतड़ी महाराजा के दान ने स्वामी जी के अनेकों कार्यों को सफल बनाया था। इसीलिए उनकी और महाराजा की मुलाकात एक ऐतिहासिक घटना मानी जाती है।
1: 24 जुलाई को महाराजा अजीत सिंह के साथ स्वामी जी ने खेतड़ी के लिए प्रस्थान किया। वे लोग अजमेर होते हुए 25 जुलाई को जयपुर पहुंचकर वहां के खेतड़ी हाउस में ठहरे। जयपुर से उन लोगों ने 3 अगस्त को फिर यात्रा शुरू कर अपराह्न में ट्रेन से खैरथल पहुंचकर वहीं रात्रि व्यतीत की। दूसरे दिन खैरथल से वे सब कोट पहुंचे और 5 अगस्त को कोट छोड़कर 7 अगस्त को प्रातः 7 बजे खेतड़ी में उपस्थित हुए।
0: खेतड़ी में आगमन के कुछ ही दिनों बाद स्वामी जी से मंत्र दीक्षा लेकर राजा अजीत सिंह उनके शिष्य हो गए। इन गुरु शिष्य का संबंध अत्यंत घनिष्ठ एवं मधुर था। राजा अजीत सिंह स्वामी जी को प्राणों से बढ़कर प्रेम और श्रद्धा करते थे। स्वामी जी का वे कर जोड़कर घुटने टेकते हुए अभिवादन करते तथा हर प्रकार की सेवा के लिए प्रस्तुत रहा करते थे। स्वामी जी भी आशा करते थे इस शिष्य से भारत का अशेष कल्याण होगा। इसी से उन्होंने केवल उनके धर्म जीवन का भार ही ग्रहण नहीं किया बल्कि लौकिक ज्ञान प्राप्ति में भी उनकी विशेष सहायता की थी। स्वामी जी के खेतड़ी में प्रायः 3 महीने यानी 7 अगस्त से 27 अक्टूबर तक रहने को सुयोग पाकर राजा ने उनसे भौतिक विज्ञान, रसायन एवं खगोल विज्ञान का अध्ययन किया।
1: राज प्रासाद के सबसे ऊपर वाले मकान में स्वामी जी ने एक प्रयोगशाला स्थापित की थी। उनमें विज्ञान के अध्ययन में उपयोगी यंत्र एवं रासायनिक द्रव्य संग्रहित थे। उस ऊपरी मकान की छत पर एक दूरबीन भी स्थापित की गई थी और ग्रह नक्षत्रों का अवलोकन कर गुरु शिष्य इस प्रकार उन्मत्त हो जाते कि समय का भान ही नहीं रहता था। इसके अतिरिक्त गीत वाद्य की चर्चा तो होती ही रहती थी। ये चर्चाएं सदैव राजमहल में ही नहीं होती थीं, कई बार निकटवर्ती पुष्कारिणी तालाब के किनारे स्थित गृह में बैठकर भी होती थीं।
0: 4 अक्टूबर को स्वामी जी राजा के साथ घोड़े पर सवार होकर नवरात्रि के उपलक्ष में राजस्थान का प्रसिद्ध जिन माता का मंदिर देखने चले। वो सीकर राज्य के अंतर्गत था। रास्ते में सिगनौर पहुंचकर उन लोगों ने वहां रात्रि यापन किया। 5 अक्टूबर को सिगनौर से बाजौर के रास्ते पर चलकर 6 अक्टूबर को सीकर पहुंचकर वहां के महाराजा माधव सिंह जी के साथ वे सब जिन माता के मंदिर का दर्शन कर आए। तदुपरांत 10 अक्टूबर को पुनः यात्रा कर वे सब 11 अक्टूबर को खेतड़ी लौटे। 12 अक्टूबर को महासमारोह में खेतड़ी में दशहरा उत्सव संपन्न हुआ और इस उपलक्ष में राजकीय भोज की भी व्यवस्था की गई।
1: खेतड़ी में रहने का सुयोग पाकर स्वामी जी अपने ज्ञान भंडार को कुछ समृद्ध करने की ओर प्रयत्नशील हुए थे। उन दिनों राजस्थान के व्याकरणों में अन्यमत अग्रणी पंडित नारायण दास जी से उनका परिचय होने पर उन्होंने अपने अधूरे पाणिनी व्याकरण का अध्ययन शुरू किया। पातंजलि का महाभाष्य का ऐसा एक प्रतिभाशाली छात्र पाकर पंडित जी भी बहुत आनंदित हुए। एक दिन पिछले दिन पढ़ाए हुए एक लंबे विषय के संबंध में पंडित जी द्वारा उक्त छात्र को प्रश्न पूछने पर उन्होंने पूरे पाठ की हूबहू पुनरावृत्ति कर दी और साथ साथ अपने विचार भी जोड़ दिए। कुछ दिनों के उपरांत पंडित जी ने जब समझ लिया कि स्वामी जी स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान करने में समर्थ हो गए हैं, तब उन्होंने कहा, स्वामी जी, अब आपको कुछ सिखाने को नहीं बचा। मैं जो कुछ जानता हूं सब आपको सिखा दिया है और आपने भी उसे आत्मसात कर लिया है। तब स्वामी जी ने सादर पंडित जी को नमस्कार किया तथा कृपा पूर्वक शिक्षा देने के लिए आंतरिक धन्यवाद ज्ञापित किया।
6: स्वामी जी, नियम किसे कहते हैं?
4: नियम बिल्कुल मानसिक वस्तु है, बाहर इसकी कोई सत्ता नहीं है। ये बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा उपलब्ध प्रत्यक्ष ज्ञान से वंचित अनुभूति का परिणाम है। इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष वस्तुओं को श्रेणीबद्ध कर बुद्धि ही इन्हें नियम का रूप प्रदान करती है। प्रत्यक्ष अनुभव किस क्रम में घटित होगा यह पूर्णतः मानसिक व्यापार है। इंद्रियों के द्वारा बाह्य विषयों की जो छाप पड़ती है तथा इनके संबंध में बुद्धि में जो क्रमबद्ध एवं क्रमिक प्रतिक्रिया होती है, इसके अतिरिक्त नियम और कुछ नहीं है। वैज्ञानिकों का मत है कि बाह्य विषय तो मात्र समरूप वस्तु या समरूप स्पंदन है। इसकी अनुभूति एवं वर्गीकरण मानसिक व्यापार या आंतरिक घटना है। अतएव नियम अपने आप में एक बौद्धिक ज्ञान है, अतः बुद्धि से ही इसकी उत्पत्ति होती है।
1: स्वामी जी ने सांख्य दर्शन कथन पढ़ सुनाया और दिखा दिया कि आधुनिक विज्ञान किस प्रकार इन दार्शनिक सिद्धांतों का समर्थन करता है। ज्यो-ज्यो दिन बीतने लगे, अजीत सिंह की गुरु भक्ति भी उतनी ही बढ़ने लगी। ये इस प्रकार बढ़ गई कि गहरी रात में अपना बिस्तर त्याग कर वे अपने गुरु के पांव दबाने लग गए। पहली रात नींद खुल जाने पर राजा को अपना पांव दबाते देख स्वामी जी के आश्चर्य की सीमा ना रही। उन्होंने राजा को पांव दबाने से मना किया, किंतु राजा ने उनकी बात नहीं मानी। राजा अजीत सिंह ने सविनय निवेदन किया, स्वामी जी, मैं आपके चरणों का दास हूं, आप मुझे इस सौभाग्य से वंचित ना करें। दिवाकाल में खुली राज्य सभा में भी राजा ऐसा ही सम्मान दिखाना चाहते थे, परंतु स्वामी जी ने इसे स्वीकार करने से असहमत होकर कहा,
7: इससे प्रजा की दृष्टि में राजा की महिमा कम हो जाती है।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।
1: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
2: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पर डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर वाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए वाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम वाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

चल चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। परिस्थिति किसी और की स्थिति, वो परिस्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुनेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।
2: दोस्तों, हम दिन में कितनी बार भोजन करते हैं, कभी आपने काउंट किया है, कभी गिना है? हम में से कुछ लोग दिन में दो बार भोजन करते ही हैं, कुछ शायद उससे ज्यादा करते हैं। कई तो भोजन के साथ ऐसा रिश्ता निभाते हैं जैसा जन्म जन्म का साथ है, एक पल भी नहीं छूटता भोजन के साथ रिश्ता। और कई ऐसे होते हैं जिनको भोजन मिलता ही नहीं है। लेकिन इन सब में एक बात तो कॉमन होती है, और वो क्या, ये भोजन हम तक पहुंचाता कौन है? जी हाँ, आप में से कईयों ने सही जवाब दिया, ये भोजन हम तक पहुंचाने वाले हैं हमारे किसान भाई। यशस्वी भारत कार्यक्रम में मैं आरजे शांतनु आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के हमारे कार्यक्रम में मैं आपके साथ, आपके बीच में हमारे एक ऐसे किसान भाई को लेकर के आया हूं, जिन्हें वर्ष 2022 में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। आज हमारे बीच में, हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं सेठपाल सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जगह से हैं। दोस्तों, मेरा और आपका, हम सबका रिश्ता भोजन के साथ कैसा गहरा होता है। किसी किसी का दिन में दो बार, किसी किसी का दिन में कई बार, और किसी किसी को शायद दिन में एक बार भी भोजन नसीब नहीं होता। लेकिन इस भोजन के रिश्ते में जो सबसे बड़ा अहम भूमिका, जिसने सबसे बड़ी निभाई हुई होती है, वो कौन है? आपका जवाब सही है, एक किसान। एक किसान ही वो अन्नदाता होता है जिसके परिश्रम से भोजन मुझ तक, आप तक, हम सब तक पहुंचता है। यशस्वी भारत कार्यक्रम में मैं आरजे शांतनु आज आपके बीच में एक ऐसे ही अन्नदाता को लेकर के आया हूं, जिन्हें वर्ष 2022 में महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। आज यशस्वी भारत के हमारे कार्यक्रम में रेडियो मधुबन सुन रहे आप सभी श्रोताओं के लिए हम लेकर के आए हैं श्री सेठपाल सिंह जी को, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के नंदी फिरोजपुर जिले से हैं। सेठपाल जी, आपका हमारे स्टूडियो में हमें समय देने के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत स्वागत भी है।
3: शांतनु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
2: सेठपाल जी, पहले तो आपको मुबारक हो कि आपको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ये मैं समझता हूँ एक आपके अकेले का सम्मान नहीं, पूरे किसान वर्ग का सम्मान है। जहां पर कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी को पूछा जाए आप क्या करते हैं या आपके पिताजी क्या करते हैं, तो कई ऐसे बच्चे हैं जो ये बोलने से कतराते हैं कि मेरे पिता किसान हैं या हमारा कृषि से संबंध है, क्योंकि लोग तो सम्मान शायद उन्हीं व्यवसायों को देते हैं जो कि या तो इंजीनियर है, डॉक्टर है, लॉयर है आदि। किसान को सम्मान शायद आज तक उतना नहीं मिला जितना उसे मिलना चाहिए। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे?
3: ये शांतनु जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, सबसे पहले तो हम धन्यवाद अदा करने थे अपने भारत सरकार को, अपने प्रधानमंत्री जी को। जब से बने हैं, उन्होंने किसानों के बारे में बात करने शुरू की है, और उसमें भी मैं उस समस्त किसान बिरादरी का, एक अकेले सेठपाल का सम्मान नहीं है, ये पूरे गांव का, अक्षेत्र का, और मेरे पूरे किसान समाज का एक सम्मान है, जिसमें पद्मश्री, एक किसान को भी पद्मश्री मिल सकता है। ये तो एक सपना था, और हम लोगों ने कभी इसके लिए सोचा भी नहीं था कि हम लोगों को भी ये सम्मान, कभी हमको समझते भी नहीं थे हम लोग। तो एक वास्तव में ये मेरा नहीं, मेरे पूरे गांव का, क्षेत्र का, समाज का, मेरे पूरे किसान बिरादरी का सम्मान है, और इससे ज्यादा गौरवान्वित किसान नहीं हो सकता। आज किसान का बेटा भी ये कहे कि मैं किसान का बेटा हूं, क्योंकि कृषि सबसे उत्तम व्यवसाय है। कृषि सबको भोजन देती है, पर्यावरण का संरक्षण करती है, जल के बारे में संतुलन और तमाम तरह के करती है, उत्तम भोजन देती है, पौष्टिकता देती है। तो इस कृषि के बिना कुछ भी संभव नहीं है। भोजन सबको चाहिए, अच्छे गुणवत्ता युक्त चाहिए, तो ये वास्तव में एक में पूरे किसान समाज का सम्मान है। और पद्मश्री मिलने के बाद तो हम अपने आप को किसान समुदाय बहुत भाग्यशाली समझते हैं।
2: हम आपकी कहानी में और गहराई से जाना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक कड़ा सवाल पूछना चाहूंगा कि कभी आपके सामने ऐसा कोई मौका आया है या ऐसा आपके साथ कभी हुआ है कि जब आपके परिवार में या आपके बच्चे या कोई और को आपने ऐसा हिचकते हुए देखा है कि वो अपने को किसानी से या कृषि से जोड़ने में थोड़ा हिचक रहे हों, कभी ऐसा आपके साथ भी हुआ है?
3: नहीं, ये निश्चित रूप से हुआ है, एक बार नहीं कई बार हुआ है। जब हम ये एक बहुत संघर्ष की कहानी है, हमको तो लोग बाग ये बोलते थे ये तो बेवकूफ है, पागल है, और जब कहीं जाकर के भी ये कहते हुए हम किसान, तो वास्तव में उस किसान को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान की दृष्टि से लोग बाग नहीं देखते, तो ये बड़ा ये तो कटु सत्य है और इसका कई बार सामना हम लोगों को करना पड़ता था। वास्तव में जैसे बताया, किसान का बेटा अपने आप को ये कहने से शर्माता है कि मैं किसान का, ये तो सच्चाई है।
2: तो जब आपके सामने इस प्रकार की सच्चाई आती है सामने, तो आप उसका सामना कैसे करते हैं? आप अपने को क्या दिलासा देते हैं या क्या वो सेल्फ टॉक करते हैं आप अपने साथ जिससे आपका आत्मसम्मान बना रहे? क्योंकि मैं समझता हूँ ये बाकी किसानों के लिए या उनके बच्चों के लिए जानना भी जरूरी है कि जब आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति आए जो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही है, तो कौन सा वो चीज, कौन सी वो बात हमें याद रखनी चाहिए जिससे हम हमारे आत्मसम्मान को गिरने ना दे?
3: देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, कृषि सबसे उत्तम व्यवसाय है। और एक पहले कहावत है राजस्थान कवि की, उत्तम खेती मध्यम बाद, निषिद्ध चाकरी भीख निदान, और उसके बाद भी आगे जो हल जोते खेती वाकिन और नहीं तो जाके ताके। तो जो किसान हल जोतता है, धरती माता का सीना चीर करके अन्न उत्पन्न करता है और तमाम चीज सबको अच्छा भोजन और उसके बारे में, तो उस किसान से ज्यादा सम्मान, उससे ज्यादा स्वाभिमानी और उससे ज्यादा ईमानदार तो मैं दूसरे व्यवसाय को बिल्कुल भी नहीं समझता। तो ये तो सबसे उत्तम व्यवसाय है। और जब तक हमारा देश का आम जनमानस किसान के प्रति ये सोच नहीं रखेगा कि वास्तव में हमारी जो जरूरत है, हमारा जो तमाम तरह का स्ट्रक्चर है वो केवल किसान से ही संभव है, तो तब तक हम उसमें वो सम्मान पाने के हकदार जो किसान को मिलना चाहिए उससे हम वंचित हैं। और ये हम लोगों को अपने आप को गौरव होता है कि हम भी भारत के किसान हैं।
2: तो दोस्तों, आपने सुना सेठपाल जी ने क्या कहा कि हमेशा ये याद रखना है कि उत्तम कृषि, सो कृषि जैसा उत्तम व्यवसाय कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि कृषि के द्वारा ही हम तक भोजन पहुंचाने का उत्तम श्रेष्ठ कर्तव्य हमारे सभी किसान भाई बहन निभाते हैं। तो आज से आपके सामने अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कृषि से जुड़ा हुआ है, उसका दिल से जरूर सम्मान कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हमारी इस चर्चा में। सेठपाल जी, शुरुआत करते हैं आपके जीवन से कि कहां से आपके दिल में ख्याल है कि आपको कृषि के साथ ही जुड़े रहना है, क्योंकि जब आप बड़े हो रहे थे तो आपने अपने आसपास में कई प्रकार के व्यवसायों को उपजते देखा है, कई लोगों को कृषि छोड़ करके कई अन्य व्यवसाय में जाकर के बहुत लाभ पाते हुए देखा है, तो ऐसे में कभी आपको मन नहीं किया कि मैं ये व्यवसाय छोड़ करके कुछ और करता हूँ?
3: देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है संतनु जी। मेरा जो पृष्ठभूमि है किसान की है, मेरे पिताजी ताऊ जी सब खेती करते हैं और हम लोग छह भाई हैं, उन छह भाइयों में मैं दूसरे नंबर का हूँ। और हमारी जो पढ़ाई है, प्राइमरी पढ़ाई हमारे गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर मलिपुर में हुई है, और उसमें हम धमोला नदी में से निकल करके जाते हैं। और मैं आपको बड़े उससे कहता हूँ कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक हमने कभी जूते नहीं पहने, क्योंकि आते भी और जाते भी उस धमोले में उनको निकल के जाना पड़ता था, पगडंडी का रास्ता था। उसके बाद 8वीं पास करने के बाद हमारे पिताजी ने, हमारे पिताजी ताऊ जी बिल्कुल अनपढ़ थे, हमारे परिवार में कोई भी माताजी कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन हम अपने पिताजी का ताऊ जी का धन्यवाद देना चाहते हैं, उन्होंने हमको सहारनपुर में पढ़ाया। पढ़ाने के बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी का BEMS का 3 साल का कोर्स किया, 1 साल उसमें MD किया। इसको करने के बाद 92 में गांव में मैं वापिस आया पढ़ाई पूरी करने बाद। चूंकि किसान थे तो किसान के स्कूल की जब छुट्टियां चल जाती तो हम अपने गाय चुराने भी जाते थे, अपना खेत में काम तो हम कंटिन्यूस करते ही थे। तो फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। प्रैक्टिस स्टार्ट के बाद 95 का एक पंचायत का चुनाव आया और उसमें ग्रामवासियों ने कही भाई हम आपको ग्राम प्रधान बनाए। महिला सीट थी, हमने अपने भाभी जी, जो हमारी भाभी जी ग्रेजुएट थी उस टाइम, हमारे भाई साहब पंजाब नेशनल बैंक में सर्विस करते थे, तो हमने उनका पर्चा बनवा दिया और वो प्रधान चुनी गई। इस क्रम में जब चूंकि सब लोगों को आना जाना, उससे पहले हम ABCD कुछ भी नहीं जानते थे, तो हमारे बीच में एक इंद्रपाल सिंह तोमर, किसान सहायक एक पोस्ट है हमारे कृषि विभाग में, वो आए और उन्होंने आने के बाद कहा भाई आप जो ये गन्ना गेहूं धान की खेती करते हैं इसे आप कृषि विविधीकरण की तरफ लेकर जाइएगा। तो हम लोगों ने उनकी, वो इतने अच्छे थे, हमारे खेत पे जाना समय समय पे पूरा कुछ बना। सबसे पहले मैंने 2 बीघा फ्रेंच बीन की खेती से स्टार्ट की, हमने गाँव के बराबर में था, जब हम उसमें निराई गुड़ाई काम करते थे तो लोग बाग मजाक बनाते थे, अरे प्रधान जी आप लोग ये क्या काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने उसमें कभी भी कोई हिमाकत इंसल्ट महसूस नहीं किया। उसके बाद फिर उसमें कीट पतंगों की समस्या आई तो वो लोग हमको कृषि विभाग में लेकर के गए, उद्यान विभाग में हम लोग गए, फिर हमारा संपर्क आया कृषि विज्ञान केंद्र से, जो कृषि विज्ञान केंद्र जो एक तकनीकी का केंद्र है, और वहां से जो हमारे KVK की टीम थी, डॉक्टर RN यादव जी, डॉक्टर PK सिंह जी, डॉक्टर AK मिश्रा जी, डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी, तो वो बहुत ही ज्यादा उन लोगों का इतना लगाव था, जब भी हम कोई भी बात करते थे तो हमको तुरंत उसमें सबमिट करते थे, गांव में आते थे। उसी क्रम में हम लोगों ने कृषि विभाग में गोष्ठी के माध्यम से, किसान मेले के माध्यम से, उद्यान विभाग में, फिर गन्ना विभाग में, मत्स्य विभाग में, सब विभागों से हमारा आना जाना हुआ, संपर्क हुआ, वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के अधिकारी हमारे गांव में आने लगे। फिर एक योजना चल रही भारत उत्तर प्रदेश सरकार की, किसान मित्र योजना, तो मुझे उसमें किसान मित्र बनाया गया। और उसी दौरान 1995 से लेकर के 2000 तक सहारनपुर में एक कृषि विविधीकरण की एक परियोजना चली। हालांकि जो हमारा ब्लॉक था बलिया खेड़ी, वो उस योजना में सम्मिलित नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग उनके मेलों में, गोष्ठी में जाते रहे और उस चीज को हम फॉलो करते रहे। फिर हमने अपने खेत को इस तरह से बांटा, गन्ना भी हो, गेहूं भी हो, धान भी हो, बागवानी भी हो और सब्जी की खेती भी हो, पशुपालन भी हो, फिशरीज भी हो, तो हम लोगों ने उसको फिर इस तरीके से बना ताकि किसान की रोज आमदनी होती रहे। हम लोगों ने अपने प्लेन खेत में मात्र 1 फीट पानी में सिंघाड़ा की खेती हम लोग करते हैं, जो लोग बाग एक वास्तव में आश्चर्य से कम नहीं समझते। और जब हम लोग सिंघाड़े की खेती करते हैं तो लोग बाग देखने आते थे, हमारा पूरा मॉडल को लोगों ने किया। इसके अंदर भी हम लोगों ने रासायनिक खाद की का प्रयोग कम हो, फसल अवशेष प्रबंधन हम लोगों ने अपनाया, जो जैव उर्वरक है हमारे उसको अपनाया, फसल चक्र अपनाया, दलहन तिलहन का समावेश किया, और उसमें जितने भी हमारे चाहे ट्राइकोडर्मा हो, चाहे ब्यूवेरिया बेसियाना हो, सुडोमोनास हो, वो तमाम तरह के जो हम जैव उर्वरक है उन सबको हमने अपनाया। हम लोगों ने अपने खेत में फ्रूट फ्लाई ट्रैप का इस्तेमाल किया, ट्राइकोग्रामा कार्ड का इस्तेमाल किया और फेरोमेन ट्रैप का इस्तेमाल किया। और उन तमाम चीजों को अपनाने के बाद जो हमारा उत्पादन गुणवत्ता युक्त हुआ, उसके बाद जो हमारे खेत में जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ी है, आज जब हम जैविक आहार की बात करते हैं, जैविक खेती की बात करते हैं या प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, उसके पीछे का जो मूल आधार है वो जीवांश कार्बन है। यदि हमारे खेत में जीवांश कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी तो हमारे जो हमें रासायनिक खादों के ऊपर उपलब्धता हमारी कम होगी और हमारा जो उत्पादन होगा वो गुणवत्ता युक्त होगा, उसमें कीट पतंगों की समस्या कम आएगी। तो उस तमाम उसको हम लोग सीजनली, जैसे सर्दी में मशरूम की खेती भी कर लेते हैं हम, थोड़ा सा जब हमारा देखते हैं भाई मार्केट वैल्यू कम है तो हम वैल्यू एडिशन भी कर लेते हैं। तो उस तमाम चीजों को अपना करके हमने एक ऐसा सिस्टम इजाद किया है जिससे किसान की रोज आमदनी, चाहे वो मशरूम के माध्यम से, चाहे सब्जी के माध्यम से, चाहे फ्लोरिकल्चर के माध्यम से, चाहे पशुपालन के माध्यम से, तो उस चीज को लग करके, और जैसा आपने कहा उसके बाद लोग मजाक भी बनाते हैं, हम केंचुआ पालन भी करते हैं। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, आपसे बड़ा इंटरेस्ट है। पद्मश्री मिलने के बाद हमारे एक अधिकारी दिल्ली से गांव में मिलने के लिए आए। जब वो गांव में घुस रहे तो उन्होंने कुछ लोगों से पूछा, भाई हमें शेखपाल जी के यहाँ जाना है। तो वो बताते हैं कि पीछे से एक आवाज आई और एक बुजुर्ग ने कहा, किसके यहाँ जाना है? कि शेखपाल के यहाँ। अरे वो तो कहीं गोबर में केंचुए ढूंढ रहा होगा। तो इस तरीके से, चूंकि हम केंचुआ पालन करते हैं तो लोग बाग हमारा उपहास भी करते थे, अभी भी लोग बाग तरह तरह की बात, लेकिन हमने कभी उनका परवाह नहीं किया और हमने अपने मिशन को। और सबसे बड़ी, जब इसी क्रम में मुझे, मैं आपसे बताऊं, 96 में हमने सबसे पहले जीरो टिलेज का हमने धान के खेत में इस्तेमाल किया। और जीरो टिलेज में जब हमने सड़क के किनारे खेत था, जब धान का ठूट एक एक 1.5 फीट का हो और उसमें हमने गेहूं की बिजाई कर दी, तो घर वालों ने भी विरोध किया, भाई तुम क्या कर रहे हो। और जो लोग आने जाने वाले थे सड़क के किनारे, कहते थे भाई ये तो बेवकूफ हो गए, इसके ये इसमें खाएंगे गेहूं। लेकिन उसके बाद जर्मिनेशन हुआ, पहला पलेवा लगाया, यूजा की टॉप ड्रेसिंग की, खरपतवार की दवाई डालने के बाद, जब सेकंड पानी देने के बाद भी, तो उस टाइम हमारा गेहूं का उत्पादन जीरो टिलेज से 4.5 क्विंटल प्रति बीघा आया है, जो उस टाइम का एक रिकॉर्ड उत्पादन है। और उसमें मुझे हमारे जनपद डीएम साहब ने कृषि विभाग की तरफ से क्रॉप कटिंग के बाद मुझे किसान सम्मान का एक प्रशस्ति पत्र दिया था, 6,000 रुपये नगद मुझे इनाम दिए थे। तो उसके बाद हम लोगों ने, हम लोग आगे बढ़ते चले गए, कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और मुझे जनपद स्तरीय, मंडल स्तरीय, प्रदेश स्तरीय, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हो, कृषि विभाग के माध्यम से हो, गन्ना विभाग के माध्यम से हो, या उद्यान विभाग के माध्यम से हो, तमाम पुरस्कार हम लोगों को मिले हैं। और गन्ने के साथ हम लोगों ने सह फसली ट्रेंच मेथड को सबसे पहले हमने अपनाया। मैं आपसे बताऊं, जब हम लोगों ने ट्रेंच से, सिंगल बर्ड से हम लोगों ने गन्ने की बिजाई की, लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट थी और सिंगल बर्ड से आंख की दूरी 1 से 1.5 फीट थी, तो तब भी हमें लोगों ने देखो रहे, अबे क्यों खेत खराब कर रहे हो आप बिना मतलब के। लेकिन जहां लोग 5 से 6 क्विंटल बीज प्रति बीघा इस्तेमाल करते हैं, वहां हम लोगों ने 80 से 85 केजी सीड का इस्तेमाल करके, और जो उत्पादन बढ़ाया है हमने उसके, ट्रेंच की जो पैदावार है वो 100 क्विंटल प्लस लियर। उसके बाद में चाहे हमने, उसके बीच में हम लोगों ने चाहे सरसों की खेती, आलू की खेती, प्याज की खेती, लहसुन की खेती, चाहे सब्जी की खेती, खीरा, ककड़ी, लौकी, टिंडा, और इन तमाम चीजों को हम लोगों ने अपना करके, अपना जहाँ फसल चक्र भी अपनाया गया है, जीवांश कार्बन की मात्रा भी बढ़ी है, दलहन तिलहन का समावेश भी हुआ है, तो उस सब को लेकर के हमने, इसके बाद मुझे 2010 में प्रोग्रेसिव फार्मर का अवार्ड आईसीआर ने दिया, 2012 में हमें इनोवेटिव फार्मर का अवार्ड आईसीआर आईआरआई ने दिल्ली में दिया, उसके बाद 2015 में जगजीवन राम कृषक अभिनव पुरस्कार और 50,000 रुपये की राशि की उस वक्त वो दिया गया। और 2022 में ही पद्मश्री अनाउंस के बाद एनजी रंगा डाइवर्सिफाइड फार्मर अवार्ड वो पहले भर दिया था हम लोगों ने, उससे भी हमें भारत सरकार NICAR ने सम्मानित किया है। तो मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने किसान दादाजी को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हम लोगों ने एक नीरस व्यवसाय जिससे लोग भागते हैं, बच्चा किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाहता, एक सच्चाई और भी है, यदि 50 बीघा किसान का बच्चा खेती करने लग जाए तो हमारे समाज में उसकी शादी करने के लिए तैयार नहीं होते लोग, बात उससे पहले एक चपरासी लग जाए उसकी शादी ज्यादा करने लगते हैं। तो ये एक जो दुविधा है, ये एक गलत सोच है, इसको भी हमें बदलने की जरूरत है। और किसान कृषि इतना बड़ा है जिसमें हजारों स्किल हो सकते हैं, हजारों प्रयोग हो सकते हैं, उसमें असीम संभावनाएं हैं। और जब तक मेरे युवा, पढ़े लिखे युवा हमारे, पोस्ट ग्रेजुएट चाहे हॉर्टिकल्चर से चाहे एक्सटेंशन से, वो पढ़ करके कृषि विभाग में आएंगे, तो तब तक एक नई क्रांति लाने की जरूरत है, क्योंकि कृषि सबसे उत्तम व्यवसाय है। और आज के परिवेश में गुणवत्ता युक्त भोजन हर मनुष्य की चाहत है और जरूरत है। तो मैं इसी उसके साथ में, चूंकि कृषि एक बहुत पुण्य व्यवसाय है, इसमें कुछ भी शॉर्टकट नहीं है, बीज लगेगा।
2: ये जो आपने कहा कि कृषि एक बहुत पुण्य व्यवसाय है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, आजकल जमाना ही फास्ट फूड का है, लोग भोजन भी शॉर्टकट में करना चाहते हैं, तो ऐसे में ये जो शॉर्टकट मानसिकता है, शॉर्टकट में हमको सक्सेस मिल जाए, शॉर्टकट में हमें रिद्धि सिद्धि मिल जाए, शॉर्टकट में हमें सफलता मिल जाए, शॉर्टकट में हम परीक्षा से पास हो जाए, शॉर्टकट में हमें नौकरी मिल जाए, शॉर्टकट हर चीज का हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। लेकिन जैसे आपने बताया कि कृषि का तो कोई शॉर्टकट है नहीं, लेकिन कृषि में आपने ये भी बताया कि बहुत उन्नत व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, बहुत इनोवेशन किया जा सकता है, बहुत नवीनता लाई जा सकती है। आपको क्यों ऐसा लगता है, क्या क्या कारण है कि देश का किसान जो है आपके जैसा नहीं सोच पा रहा? कौन से कारणों की वजह से देश का किसान जो है आज भी वो पुराने तकनीकों से काम कर रहा है या जूझ रहा है सफलता पाने में, लाभ पाने में? क्यों बहुत गिने चुने, मतलब मैं समझता हूँ मैं उंगलियों में, मुट्ठी भर भी नहीं कह सकेंगे, उंगलियों के रेखाओं में गिना जा सकता है, इतने ही कम हैं ऐसे किसान जो कि रिस्क लेना जानते हैं, कुछ नया करना जानते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है?
3: देखिए अंतुल जी, बिना रिस्क के कोई भी व्यवसाय हो चाहे चाहे कृषि का, वो नहीं हो सकता। और जब हम नई टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक आह्वान है, किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को अपना करके हम ज्यादा से ज्यादा गुणवत्ता युक्त उत्पादन कर सकते हैं, तो उसी को हम लोगों ने फॉलो किया है। जब तक उन तमाम तकनीकों को अपना करके, छोटे छोटे प्रयोग करके, उत्तम गुणवत्ता युक्त बीज को ला करके, समय का बहुत ज्यादा, कृषि में समय का बहुत ज्यादा महत्व है, उसको अपना करके, मिट्टी की जांच करा करके, और जब तक, मेरा ये विश्वास है, हमारा किसान जब तक कृषि विविधीकरण को नहीं अपनाएगा तब तक उनका भला होने वाला नहीं है। चूंकि हम गन्ना गेहूं धान ये फसल करते हैं, सरकार से MSP की मांग हम करते हैं, हमारा कहना ये है जिस दिन मेरे देश का किसान कृषि विविधीकरण को अपनाएगा तो वो अपना उत्पाद MSP पर नहीं, हर व्यक्ति अपने माल को MRP पे बेचता है। तो हम अपने माल को MRP पे किस तरह से बेच पाए, इसके बाद में बैठ कर के उसे चिंतन करना होगा।
2: ये आपने एक बहुत अच्छी बात बताई है सेठपाल जी, कि हर किसान जब तक कृषि विविधीकरण नहीं समझ लेता और उसको अपनाता नहीं है तब तक सफलता उससे दूर है। हमारे श्रोता साथियों में कई ऐसे किसान भी हैं, कई ऐसे हैं जो कृषि से थोड़े दूर हैं, उनके सुविधा के लिए अगर आप इसको बहुत सहज भाषा में समझाना चाहें कि कृषि विविधता क्या है या कृषि विविधीकरण क्या है, तो उसका हम बहुत बहुत आभारी होंगे।
3: देखिए बहुत अच्छा सवाल आप लोगों ने किया है। कृषि विविधीकरण अगर मेरे पास 10 बीघा जमीन है तो मुझे उस 10 बीघा जमीन को बैठ करके मुझे उसके ऊपर चर्चा करनी हो, मेरे खेत में गन्ना भी हो, गेहूं भी हो, धान भी हो, दलहन तिलहन भी हो, सब्जी भी हो, एक कोने में हल्दी भी हो, मिर्च भी हो, लहसुन भी हो, प्याज भी हो, आलू भी हो, सब कुछ, हम तो एक बैठ करके हम लोगों ने, मेरा अगर गेहूं कटेगा, गेहूं के साथ में सरसों भी काटूंगा, उसके बाद में ये फसल लगाऊंगा, इसके बीच में मुझे ये फसल लेनी है, तो उसको बैठ करके हम लोगों ने एक अपने पहले से रणनीति तैयार करनी हो। और जब देखिए मार्केट में मांग और आपूर्ति का नियम है, हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय चरण सिंह जी ने कहा था कि देश की सत्ता का रास्ता किसान के खेत और खलियानों से होकर के गुजरता है, हमारा एक और रास्ता है, हमारा किसान को अपनी दूरदृष्टिता अब उस बात पर रखनी चाहिए, बाजार के ऊपर किस चीज की मांग है, किस चीज की आपूर्ति, और मांग और आपूर्ति का नियम है। तो जिस दिन हमारा किसान ये ठान लेगा अपने मन में कि मुझे ये संतुलन बनाना है, उस दिन हम सबसे श्रेष्ठ किसान होंगे, हमारी आमदनी में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपसे बताऊं, जब राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा हमें अवार्ड देने के बाद अशोका हॉल की गैलरी में माननीय प्रधानमंत्री जी जब हमसे मिलने के लिए आए, तो मैंने उनसे कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी, हम लोगों ने आपके विजन को आगे बढ़ाया है, आपकी जो सोच है भाई किसान की आमदनी कैसे बढ़े, तो उन्होंने मुझसे पलट करके कहा था, नहीं सेठपाल जी, आप तो छोटे किसानों की चिंता करने वाले इंसान हैं। सर, जब मुझे समझ में आया है कि वास्तव में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे इस मॉडल को इतना ज्यादा प्रधानमंत्री जी गहराई से लेकर के जाएंगे, तो वास्तव में मैं समझता हूँ हमारा छोटे से छोटा किसान इस मॉडल को अपना करके, तो निश्चित रूप से हम एक बहुत अच्छी आमदनी उसमें कर सकते हैं और देश के और राष्ट्र निर्माण में हम महान योगदान दे सकते।
2: ये जो आपने बात कही कि देश के और राष्ट्र के निर्माण में हम छोटे से छोटा भी हो, लेकिन योगदान हमें जरूर देना चाहिए। चाहे मैं किसान हूँ, चाहे मैं रिक्शा चलाता हूँ, चाहे मैं आरजे हूँ, या चाहे मैं स्टूडेंट हूँ, या मैं घर में गृहिणी हूँ, हम में से हर कोई देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में एक अहम भूमिका निभा सकता है। ऐसे में आपकी मान्यता के हिसाब से आज वो बच्चे जो चाहे हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं या कृषि विज्ञान की तरफ पढ़ रहे हैं, या ऐसे बच्चे जिनके परिवार में कृषि का संस्कार है किसी न किसी रूप में, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो भी किसी न किसी तरीके से कृषि के साथ जुड़ करके देश का और कृषि का मान बढ़ा सकते हैं?
3: देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो मेरे युवा साथी हैं, किसान के बेटे हैं, जो एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर से तमाम चीजों से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है, वही तो किसान की रीढ़ है। जब वो बच्चे सरकारी नौकरी की भागम भाग को छोड़ करके उन तमाम टेक्नोलॉजी को, उस ज्ञान को जब कृषि के क्षेत्र में लेकर के जाएंगे गहनता के साथ में, जो वो आइडियल बनेंगे और वो तमाम तरह के स्किल डेवलपमेंट करेंगे, तमाम तरह की वैल्यू एडिशन करेंगे, तो वो निश्चित रूप से हम रोजगार देने वाले बनेंगे, हम रोजगार लेने वाले नहीं बनेंगे। और कृषि में इतनी अपार संभावनाएं हैं, मैंने पहले भी कहा है, वो कभी कम नहीं हो सकती, बहुत ज्यादा, उसी से हमारे कृषि क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव आए और लोगों
2: ये
3: के
2: जो
3: बच्चों का
2: ये
3: जीवन।
2: आपने जो बताया कि हम रोजगार देने वाले बने ना कि लेने वाले, ये एक बहुत बड़ा मंत्र बन सकता है किसी भी युवा साथी के लिए जो सुन रहा है। लेकिन आपने ही अपने अनुभव में पहले भी कहा कि कृषि जो है ना, वो सरलता से करने वाला कार्य नहीं है, इसमें बहुत मेहनत चाहिए होती है। और आज का जो समाज है उसको अगर आप देखें तो लोगों को आराम करना कुछ ज्यादा ही भाने लगा है। फोन पे ही लगे रहना, सोशल मीडिया पे लगे रहना, तो एक ऐसा आराम पसंद जिंदगी लुभाने लगा है आज की युवा पीढ़ी को कि खेत में उतर के धूप छांव से गुजरते हुए मेहनत करना शायद थोड़ा सा दिक्कत होता है। ऐसे में आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या किया जा सकता है ऐसे में?
3: देखिएगा, यदि हम मेहनत की बात करते हैं, चाहे आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे या गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे, या हम दुकानदार के, वो दुकानदार भी हमारा सुबह 9 बजे से खोल करके रात को 10 बजे तक दुकान खोलता है, पूरा समय अपने उस पर देता है। किसान का जो समय है उसके पास में ना दिन है ना रात। एक टाइम पे वो जून की गर्मी के में 12 बजे भी खेत में होता है, और जब जनवरी और दिसंबर की कड़ाके की ठंड रात को 12 बजे तब भी उसको खेत में, तो उसके पैर में चप्पल भी नहीं है, उसके सर पे कपड़ा भी नहीं है, वो पानी में भी घुस रहा है, वो सब कुछ करता है, लेकिन वो एक जुनून होता है, और जुनून जब आदमी के मन में आता है तो किसी भी कार्य को कर गुजरता है। यही जुनून किसान के अंदर जब आता है तो वो उस सब को भूल करके, उस सब ऐसो आराम को भूल करके, वास्तव में बहुत कड़ी मेहनत है। आज के समय में मजदूर की समस्या है, हमारे खुद के बेटे, किसान का बेटा खेती नहीं करना चाहता, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो उसमें तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी, लगन लगानी पड़ेगी, जुनून बनाना पड़ेगा, तभी हम उसको एक कारगर रूप दे सकते हैं।
2: मतलब चाहे कोई भी कार्य हो, भले किसानी हो या कुछ भी हो, उसमें जुनून तो जरूर चाहिए। जुनून और हौसला अगर नहीं है तो कोई भी कार्य में हम सक्षम या सफल नहीं हो सकते। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये था कि जैसे आपने बताया कि किसान का बेटा या किसान के बच्चे जो हैं, जो पढ़ रहे हैं, वही किसान का रीढ़ है, क्योंकि वो उस नवीनता को कृषि में ला सकते हैं। मैं तो समझता हूँ सिर्फ किसान का बेटा नहीं, बेटी भी ये कार्य कर सकती है। और शायद कहीं ना कहीं ये जो हमारे समाज की सोच है कि केवल जो है एक प्रकार का वर्ग ही हमारे जीवन को आगे लेके जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि जो बेटियां हैं, जो बहुएं हैं, वो घर को भी संभालती हैं। और अगर एक जमीन का टुकड़ा एक बेटी को दिया जाए और एक जमीन का टुकड़ा एक बेटे को दिया जाए, और दोनों में एक हेल्दी कंपटीशन हो कि देखते हैं तुम दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा करता है, तो मैं समझता हूँ एक बहुत हेल्दी कंपटीशन में बहुत अच्छा वातावरण डेवलप होगा। और बेटियों को भी जरूरत होगी इस प्रकार के एक रुझान की, बेटियों को भी आवश्यकता होगी इस प्रकार के एक शिक्षा दीक्षा की, जहां पर उन्हें भी एक मौका मिले कि कृषि में वो क्या कर सकती हैं। क्योंकि देखा जाए धरती भी माँ है, तो कहीं ना कहीं माँ बेटियों बहनों को भी अगर मौका मिले तो मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ा कुछ कमाल कर सकती है। आपका क्या कहना है इस मामले में?
3: देखिए, बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। वो बेटी वास्तव में उस बेटे से ज्यादा संस्कारित है। और मैं आपसे बताता हूँ, जितनी भी हमारे यहाँ खेतों में काम करती हैं वो मैक्सिमम बेटियां और महिला ही है, पुरुष काम कम करता है, बेटियां भवे हमारी जो है महिलाएं वो ज्यादा काम करती हैं। तो इसमें कोई बिल्कुल भी दो राय नहीं है, बेटियां भी आज किसी कि मोहताज नहीं है, वो भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के खेत में अपने को संभालती है, काम करती है। तो वो तो हमारे भारत की एक रीढ़ है, उसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तो बेटियां भी हमारे लिए उतनी है जितना बेटा, और वो भी कृषि क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते, इसमें कोई शंका नहीं।
2: तो मैं समझता हूँ सेठपाल जी, आपने जिस प्रकार से कृषि में विविधीकरण किया और कई किसानों के जीवन को बदलने का आपने एक बहुत सुंदर रास्ता शुरू किया है, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप ही वो एक यशस्वी किसान हो सकते हैं जो कि महिलाओं को उनका हक धरती पे, जमीनी हक जो है, या कृषि से रिलेटेड जो उनको ज्ञान चाहिए या मोटिवेशन चाहिए, वो दिलाने में आप एक अहम भूमिका निभाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है।
3: देखिए, इसके लिए जितना भी प्रयास बहन बेटियों को ज्यादा से ज्यादा, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो और कृषि क्षेत्र में, चूंकि कृषि एक जीवन का आधार है, कृषि एक स्वास्थ्य का आधार है, कृषि जैसे मैंने पहले कहा है हमारे समस्त ब्रह्मांड को जोड़ने वाला, उसको एक ऊंचा नया आयाम देने वाला एक पेशा है। तो उसमें जो महिलाओं को है, यदि कहीं भी हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम बढ़ चढ़ करके उन अपनी बहन बेटियों के लिए काम करेंगे, और उनको एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए प्रेरणा।
2: सेठपाल जी, आपकी इस बात का और आपके इस वचन का मैं समझता हूँ हमारे श्रोता साथियों पे बहुत बहुत ज्यादा असर होगा, क्योंकि हमारे कई श्रोता साथी ऐसे हैं जो कि सुन रहे हैं और जो ये सोच रहे हैं कि काश मैं भी थोड़ा सा किसानी में कुछ जानता, कुछ कर पाता या कर पाती। और मैं समझता हूँ सेठपाल जी का ये वचन कि जो भी महिला बहनें आगे बढ़ना चाहती हैं कृषि के क्षेत्र में, उन्हें वो बहुत सहयोग देंगे। तो मैं समझता हूँ साथियों, आपका ये मौका है, सोचिए अगर आप कृषि के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऐसा अच्छा मेंटर है जो कि आपको मदद कर सकते हैं। सेठपाल जी, उत्तर प्रदेश की भूमि तो बहुत मैं कहूंगा सौभाग्यशाली भूमि है, क्योंकि गंगा यमुना का उसमें बहुत सारा वरदान है और भी कई चीजें हैं जहां पर आप शायद कृषि की विविधीकरण को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसी जगह है जैसे राजस्थान या गुजरात के कई ऐसी जगह है जहाँ विविधीकरण करना थोड़ा इतना सरल नहीं होगा। जैसे हम जहाँ रहते हैं माउंट आबू में, तो

0: नहीं आ कर सकते। लेकिन जैसा आपने राजस्थान के बारे में, माउंट आबू के, गुजरात के, या कई चीजों के, अभी हम लोग दो वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलिट्स ईयर के रूप में मना रहे हैं, और उसमें मोटा अनाज, श्री अन्न का जिसमें हमें संज्ञा दी गई है, और ये जो मोटे अनाज है ये हमारे पानी की कम जरूरत है, उनको उनको सिंचाई की कम जरूरत है, खाद की कम जरूरत है। वो हमारे पौराणिक इतिहास में जो विलुप्त प्रजातियां होने की कगार पे थी, उन सबको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके अंदर पोषकता ज्यादा है, तो हम उन तमाम चीजों को श्री अन्न के रूप में, मोटे अनाजों को क्षेत्र वाइज उगा करके, नई नई प्रजातियों को मतलब इकट्ठा करके, हम उसके चीज में, हम अपने अपने क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में हम विविधीकरण को अपना सकते हैं। क्योंकि अलग क्षेत्र की अलग अलग क्रोप है, किसी को पानी ज्यादा चाहिए, किसी को पानी कम चाहिए। तो जो हमारे मिलेट्स हैं, श्रीअन्न जो मोटे अनाज हैं, उनमें हम एक बहुत अच्छा उत्पादन करके, गुणवत्ता युक्त उत्पादन करके, और जो सरकार की प्राकृतिक खेती की जो धारणा है उसको हम मूर्त रूप से, हम साक्षात रूप में उसको कर सकते हैं।
1: तो साथियों, आपने सुना, सेठपाल जी ने एक बहुत अच्छा हमें रास्ता बताया कि अगर आप सोच रहे हैं कि विविधीकरण कैसे की जाए, तो श्री अन्न या मोटा अन्न उगा करके भी आप विविधीकरण कर सकते हैं, जिसमें मेहनत उतना नहीं लगता, पानी उतना नहीं लगता, उपज बहुत अच्छा आता है, और सबसे बड़ी बात, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आज आप मार्केट में जाएं तो चावल, दाल, गेहूं, इनसे भी ज्यादा दाम श्री अन्न का होता है। क्यों? क्योंकि लोगों को ये चीज अब पता चल चुका है कि मिलेट्स खा करके आप आपके सेहत पर ज्यादा नियंत्रण कर सकते हैं। तो भारत की ये देन है जो भारत के पास ही है और आपके हाथ में ही है। आप मिलेट्स खाना शुरू करेंगे तो हमारे किसान भाई बहन मिलेट्स उगाना शुरू करेंगे, और जब मिलेट्स को उगाना वो शुरू करेंगे तो धरती माँ के ऊपर जो ये केवल गेहूं और धान को उगाने का जो बोझ है वो भी बहुत हल्का होता जाएगा। तो श्री अन्न एक बहुत अच्छा रास्ता है। अगला सवाल सेठपा जी आपके साथ, जो आपने अभी बताया कि पूरे ब्रह्मांड को जोड़ने का एक सूत्र है कृषि, तो आपकी कृषि ने आपको पूरे देश भर में भ्रमण करने का भी अवसर दिया। आप देश के जगह जगह पे गए हैं। कौन सी एक बात आपको ऐसी दिखती है पूरे भारतवर्ष में जो भारत को भारत बनाती है? कोई एक खास बात जो आपने हर जगह एक एक जैसी ही देखी, वो कौन सी एक बात है?
0: देखिए, किसानों का एक दूसरे के प्रति समर्पण, किसान का प्यार और उसका श्रम, एक ऐसा वो है जो आप देश के किसी भी हिस्से में जाइएंगे, जब किसान किसान से जाकर के मिलता है, तो वास्तव में उसके प्रति जो उसका प्रेम है, जो उसका कर्तव्य है, उसका जो बोध होता है, वो भारत को, पूरे भारत से एक जोड़ता है। तो ये एक बहुत, किसान का जो आपसी सामंजस्य है, उसका जो आपस का प्यार है, उसका जो काम करने का तरीका है, एक दूसरे की कल्चर को जानने का मौका है, वो सबको, पूरे भारत को किसान के माध्यम से जोड़ता है।
1: बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि किसान का किसान के प्रति जो भावना है, चाहे वो प्रेम की हो, सम्मान का हो, या उसके दर्द को समझने की जो भावना है, वो किसान को जोड़ता है, और ना केवल किसान को लेकिन पूरे भारत को भी जोड़ता है। सेठपाल जी, एक चीज मुझे जानना था, जब आप रिस्क लेते हैं, और जरूरी नहीं कि हर बीज से फसल आए ही, तो बीज डालना किसान का काम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं परमात्मा का या प्रकृति का या ईश्वर का या जो भी आप नाम दे उस शक्ति का, उसका एक बहुत बड़ा हाथ होता है। आप मानते हैं इस बात को?
0: देखिएगा, ये तो कटु सत्य है। किसान का काम उस भूमि रूपी माता का सीना चीर करके उससे बीज रोपण का है, उसके बाद तो सब कुछ परमात्मा का है। देखिए, फसल भी किसान के साथ में बातें करती है। एक हम कहते हैं शाश्वत योगिक खेती, जिसको जब हम खेत के ऊपर जाते हैं, जरूरी नहीं है जिस बीज को डालेंगे उसमें अंकुरण फूटेंगे, वो हमें पैदावार देंगे, क्योंकि किसान की फसल खुले आसमान में है, गर्मी सर्दी बरसात ओले भी पड़ेंगे, जंगली जानवर भी उसको खाएंगे, लेकिन उन सब के बाद भी चोर भी चोरी करेगा, लेकिन एक कहावत है कि यदि उसमें से गठरी बांध

0: करके ले जाएगा तो केवल किसान ही लेकर के जाएगा। तो ये सब उस परमपिता परमात्मा का ही वो है, वही शक्ति देता है। जब किसान खेत पे जाता है मेड़ पे, तो उसकी फसल लहराती है, वो कहती है कि मेरा मालिक आ गया है। वो बताती है किस तरह से हमें किस चीज की जरूरत है, मैं बीमार हूँ, मुझे पानी की जरूरत है। तो वो सब कुछ उस परमात्मा का एक बहुत बड़ा रोल है, उसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं।
1: ये जो आप अभी अपना अनुभव सुना रहे थे, तो इसमें आपने शाश्वत योगी खेती का भी नाम लिया, जो कि ब्रह्मा कुमारी के ग्राम विकास प्रभाग के द्वारा भी चलाया जा रहा है। एक बहुत अच्छा अभियान है जिसमें किसान जो है यौगिक कृषि के माध्यम से, शाश्वत तरीकों के माध्यम से, योग मतलब परमात्मा के साथ अपने मन के तार को जोड़ करके, शुभ भावना शुभ कामना की शक्ति के द्वारा, योग के प्रयोग से कृषि में उन्नति लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने भी इसका कुछ उपयोग किया है या कुछ प्रयोग किया है इसमें?
0: देखिए, इसका मैं हमेशा प्रयोग करता हूँ, और वो एक शाश्वत योगी खेती जो है परमात्मा के आधार पे, वो एक बहुत बड़ी एक अदृश्य शक्ति है जो हमेशा नुकसान से निपटने की शक्ति देती है। हर तरह से वो एक साहस दिलाती है और एक मन में जुनून भी पैदा करती है। तो उससे बड़ी शक्ति कोई नहीं है, उसके ऊपर सब कुछ है, वो बहुत बहुत ही ज्यादा कारगर है।
1: आप में बहुत उमंग उत्साह है सेठपाल जी। आपसे बात करते हुए ये महसूस होता है कि आप बहुत खुश मिजाज भी रहते हैं। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप किसानी में हैं और बहुत परेशान हैं, लेकिन आपकी फसल में या किसानी की ही किसी एक बात ने आपके उस चिंता को दूर कर दिया हो?
0: देखिए, जब इंसान के साथ में हमेशा कठिनाई भी आती है, उतार चढ़ाव भी आते हैं, नफा नुकसान भी होता है, लेकिन जब किसान खेत पर जाता है, अपने श्रम को करता है, तो वहां जाकर के वो चाहे उसकी फसल खराब हो रही है, क्योंकि किसान सबसे संतोषी व्यक्ति है। पिछली सब कुछ नष्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर उसको भूल करके नहीं, तो उसको शक्ति परमात्मा देता है। तो जब अपने खेत में जाता है, अपनी फसल को देखता है, तो सब कुछ भूल जाता है।
1: सेठपाल जी, आप अगर पूरे भारत को, अगर कुछ उनको एक मैसेज देना चाहते हैं या एक सुझाव देना चाहते हैं या एक प्रेरणा देना चाहते हैं, तो वो क्या होगा?
0: देखिए, मैं तो एक किसान हूं, और किसान के माध्यम से मैं यही प्रेरणा देना चाहता हूँ। किसान का जो पेशा है वो सबसे पुण्य पेशा है, उसमें कोई लोभ लालच नहीं है। उसमें जो अपने मनोभाव से वो पैदा करता है, गुणवत्ता युक्त पैदा करता है, उसको हमारा पूरा मानव जीवन, पशु, सब लोग उसको ग्रहण करते हैं। तो उससे जो संतुष्टि मिलती है, जो अन्न उपजा करके, सब्जी उत्पादन करके, जो किसान पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम करता है, तो इससे बड़ा कोई पुण्य का काम मैं नहीं समझता, कोई दूसरा पुण्य का काम है।
1: तो साथियों, आपने सुना, सेठपाल जी ने एक सुंदर सा छोटा सा मैसेज दिया कि कृषि जैसा पुण्य पेशा दूसरा कोई नहीं, और कृषि के द्वारा जब संतुष्टता के आधार पर, लोभ लालच से परे होकर के किसान जब अन्न उगाता है, उस अन्न को ग्रहण करने वाला व्यक्ति भी तृप्त होता है, धरती माँ भी तृप्त होती है और किसान भी तृप्त होता है। तो लोभ से परे संतुष्टता के साथ, सच्चाई सफाई सादगी और सात्विकता के साथ जब हम अपने कार्य को करते हैं, तो उस कार्य का हमें भरपूर भरपूर सहयोग प्राप्त होता है, न केवल आसपास से परंतु प्रकृति से भी, परमात्मा से भी हमें उस कार्य के लिए बहुत बल मिलता है। चाहे आप किसान हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप गृहिणी हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, उस काम में ये सात्विकता जरूर धारण करें। सेठपाल जी, जाते जाते हम आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहेंगे, जिसमें हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और आपको एक शब्द में उसका जवाब देना होगा। तो आप तैयार हैं?
0: पूछिए, यदि संभव होगा तो जरूर बताएंगे।
1: जी। तो पहला सवाल, शांति क्या है?
0: अपने मन और चित्त को स्थिर करना और तमाम लोभ लालच को त्याग करके जो संतुष्टि मिलती है, वही शांति है, मेरे अपने ख्याल से।
1: बहुत बढ़िया। सेवा क्या है?
0: जब मानवता के प्रति, पशु के पालन के प्रति, पर्यावरण के प्रति, भूमि के प्रति जो समर्पण है, वही सेवा है।
1: प्राणी मात्र के लिए जो समर्पण की भावना है वो सेवा है, बहुत सुंदर। खुशी क्या है?
0: जब दूसरे के मेरी वजह से दूसरे के चेहरे पे प्रसन्नता आती है तो वही खुशी आनंद का रूप वही होता।
1: बहुत बढ़िया। भारत क्या है?
0: भारत विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न मौसम, विभिन्न प्रजातियां सबको मिलकर के जो एक हमारा देश बना है वही एक भारत है।
1: कृषि क्या है?
0: तमाम तरह की विधाओं को अपने खेत में लागू करने के बाद जो अन्न उत्पन्न होता है, जो पोषणता मिलती है, जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े उनको वो मिलता है वही वही कृषि है।
1: तो कृषि हर एक के लिए पोषण का एक माध्यम है, और जैसा आपने पहले भी कहा कि पुण्य पेशा है। आप जितनी भी सब्जियां उगाते हैं या अलग अलग प्रकार के अन्न आदि उगाते हैं, उसमें से आपका फेवरेट कौन सा है?
0: देखिए सबसे अलग अलग सीजन में हम अलग अलग वो उगाते हैं, लेकिन जितने उड़ा उसमें सबसे जो फेवरेट मेरा है वो सिंघाड़ा है।
1: ऐसा
0: सिंघाड़ा
1: क्यों?
0: जब हम उगाते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि जनरली लोग बाग सिंघाड़े को तालाब में पैदा करते हैं और हम उसको प्लेन खेत में पैदा करते हैं। तालाब में बरसात का गांव का गंदा पानी आता है, उसके कलर उसका गंदा होता है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। और जो हम खेत में सिंघाड़ा पैदा करते हैं उसमें रोज ट्वेल से ताजा पानी आता है, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, उसका उत्पादन बहुत अच्छा है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और उसके बाद जो बेल और पत्ते के रूप में जीवांश कार्बन सैकड़ों क्विंटल हमको मिलता है, जो जमीन का भोजन है जिससे उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ती है, तो वो सबसे सबसे प्यारा मेरा फेवरेट।
1: बहुत बढ़िया। 2023-24 के लिए आपने कौन सा नया काम करने का सोचा है?
0: हम कृषि में इतने ज्यादा संभावनाएं हैं, बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, हम कुछ ना कुछ उसमें जोड़ते रहते हैं। और इस बार मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा, आप लोग आइए देखिए हम भी कुछ नया करेंगे। अभी मैं आपको ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि
1: तो
0: हम
1: आप
0: लोगों ने
1: हमको
0: कुछ
1: सरप्राइज देना चाहते हैं? बहुत बढ़िया। तो चलो ठीक है, आपके सरप्राइज को हम अखबारों में पढ़ेंगे, सुर्खियों में देखेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप कुछ भी नया करेंगे वो पूरे देश तक पहुंचेगा जरूर, क्योंकि आप एक यशस्वी भारत के यशस्वी किसान हैं। आखिरी सवाल, सेठपाल जी कौन है?
0: सेठपाल जी तो एक मानव मात्र है, एक साधारण किसान है जो अपने सुबह ही उठते हैं, दिन भर पशु के रूप में खेतों के रूप में शाम तक चर करके फिर घर पे सो, फिर सुबह उसी में। तो मैं तो एक साधारण इंसान हूँ और इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं।
1: सेठपाल जी ने तो कह दिया कि वह एक साधारण किसान है, लेकिन दोस्तों आप भी सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था, और मैं समझता हूँ हर में से हर एक ने ये समझा कि सेठपाल जी जो है वो किसानों के एक मित्र हैं। सेठपाल जी जो है यशस्वी भारत के वो यशस्वी बेटे हैं, जिन्होंने भारत माँ के दिल में कई दिलों को जीने का एक जरिया दिया है, कई किसानों को ऐसा रास्ता बताया है जिससे वो अपने जीवन के सभी दुख तकलीफों से बाहर निकल सकते हैं। और कृषि विविधीकरण के एक बहुआयामी, बहुत ही आवश्यक पद्धति के द्वारा उन्होंने न केवल भारत का लेकिन पर्यावरण का भी बहुत बड़ा उपकार किया है। ऐसे यशस्वी भारत के यशस्वी पुत्र सेठपाल जी को आज मैं और आप सुन रहे थे। सेठपाल जी, आपका रेडियो मधुबन के स्टूडियो में आने के लिए, हम सबसे बातचीत करने के लिए, और आपके इतने प्यार प्यारे अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका तहे दिल से हम शुक्रिया करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत बुरे धन्यवाद।
1: दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड से मैंने समझा कि जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए जुनून होना बहुत जरूरी है, हौसला होना बहुत जरूरी है, अपने पे भी विश्वास तो बहुत जरूरी है ही, लेकिन साथ साथ परमात्मा पर, अपने परिवार पर भी निश्चय होना बहुत जरूरी है। इसी निश्चय के साथ सेठपाल जी ने किसानी में अपना कदम आगे बढ़ाया। और भी किसान थे, लेकिन ये एक ऐसा किसान था जिसने नवीनता को, उन्नतीकरण को कभी भी दूसरा तरीका नहीं समझा, उसे ही पहला तरीका समझा। इनोवेशन, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, कुछ नया करना ही इनके लिए पहला रास्ता था। और इस पहले रास्ते पर चलते हुए सेठपाल जी ने कई बड़े आयाम, कई बड़े नाम अपने नाम पे तो किए ही, लेकिन साथ साथ पूरे किसानों का नाम रोशन किया। यशस्वी भारत कार्यक्रम के आज के इस एपिसोड में हम सुन रहे थे सेठपाल सिंह जी को। अगले एपिसोड में हम दोबारा आपके बीच हाजिर होंगे एक और ऐसे नायाब तोहफे के साथ, जिनके जीवन की कहानी से, जिनके परिश्रम से मैं और आप अपने आप को बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस करा सकते हैं। इस मौके का आप भी इंतजार कीजिएगा, मैं भी इंतजार करूंगा। मिलेंगे एक और एपिसोड में आपके साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सेल्फ मैनेजमेंट के इस पूरी श्रृंखला में खुद को मैनेज करने का जो पूरा प्रोसेस हमने समझा है, उसमें हम बात कर रहे थे रिश्तों की, लोगों के साथ रिश्ता, और फिर अगर पिछली कड़ी को देखें तो अपने साथ रिश्ता हमने कायम किया था। अब इस रिश्ते को कैसे मजबूत करते जाना है, ये हमारे पुरुषार्थ पर, हमारे एफर्ट पर डिपेंड करता है। आज इसी श्रृंखला को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और रिश्तों की इस पूरी सीरीज में बात करते हैं परमात्मा के साथ, गॉड के साथ मेरे रिश्ते की। कैसा होता है वो रिश्ता अगर हम जिंदगी में देखें तो सचमुच हम में से हर कोई भगवान के साथ जुड़ा है किसी न किसी रूप में। कभी ना कहीं कोई मुश्किल आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, हर बार भगवान को याद करते हैं। कुछ काम करवाना है या चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए, याद करते हैं कि प्लीज़ गॉड हेल्प मी। लेकिन सचमुच में ये रिश्ता क्या हो सकता है, क्योंकि हर बार इस पूरी श्रृंखला में जब हमने देखा है, एक नए अंदाज से हम चीज़ों को देख पा रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, जहाँ तक बात लोगों के साथ मेरे रिश्ते की थी, उसको नई नज़र से देखा, खुद के साथ एक रिश्ता, एक पहचान बनी, तो समझ में आया कि ये रिश्ता जो है ये भी बन सकता है, और फिर उसके ऊपर काम करते करते मैनेज करना आया चीज़ों को। परमात्मा के साथ, गॉड के साथ रिश्ते की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग, अगर नास्तिक भी जो सपोजिटली जो नहीं मानते, वो भी कहीं ना कहीं किसी शक्ति को मान रहे होते हैं, कुछ सुप्रीम को मानते हैं, और एक सचमुच में रिश्ता कुछ है लेकिन अनजाना सा, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं सोच पाते हैं। लेकिन अगर हम आपसे जाने,
1: जैसे आपने कहा, रिश्ता तो है लेकिन अनजाना सा, हम उसके बारे में स्ट्रांगली क्यों नहीं सोच पाते? बिकॉज समवेयर हमें ये भी क्लैरिटी नहीं है कि किसके साथ वो रिश्ता है। यू नो, परमात्मा से रिश्ता तो एक सेकंड बात हुई, जैसे कि आपके साथ रिश्ता, रिश्ता तो तब जुड़े जब पहले आपका पहचान तो मिले,
0: कौन है वो, यू नो, सच में।
1: सो फर्स्ट, बिफोर अ रिलेशनशिप गेट्स एस्टैब्लिश्ड बिटवीन एनी टू एंटिटीज, तो सबसे पहले वो एक दूसरे को पहचान तो लें। रिश्ता तो फिर धीरे धीरे एक एस्टैब्लिश होता है और फिर वो ग्रो होता जाता है, लेकिन जब हमें यही नहीं पता कि वो कौन है, उसके बारे में हमारे माइंड में कई प्रकार के कन्फ्यूजन्स हैं, यहाँ तक कि तो डाउट भी आ जाता कि पता नहीं है भी या नहीं है, तो जिसकी एग्जिस्टेंस पर ही फेथ नहीं हो, यू नो, कभी ना कभी डाउट आ जाता है। कई बार काफ़ी हद तक जीवन में हम चल रहे हैं, हम कहते हैं भगवान है, लेकिन सडनली मेरी लाइफ में कुछ, यू नो, सम ट्रेजेडी हिट्स और समथिंग, एंड सडनली ऐसे भगवान कोई है नहीं आज दिन तक, क्योंकि हम इतने बॉडी कॉन्शियस में हैं, हमें अभी तक तो मैं आत्मा हूँ ये भी नहीं पता था, यू नो, जैसे विस्मृति हो गई थी कि मैं कौन हूँ, सो आई थॉट आई वॉज अ बॉडीली फॉर्म, तो फिर भगवान को भी कहीं ना कहीं एक ह्यूमन फॉर्म में ही ढूंढ रहे थे, कहीं डेटी फॉर्म में ढूंढा, कहीं धर्म पिताओं के फॉर्म में ढूंढा, कहीं वर्तमान समय ही जो महान आत्माएं, संत आत्माएं, उनके फॉर्म में ढूंढा, और फिर कहीं ना कहीं अपने आप को एक, यू नो, सॉर्ट ऑफ इल्यूजन में रखा कि उनके थ्रू हम उनको कनेक्ट कर लेंगे, you know? अगर, क्योंकि जहां भी हम जाते महान आत्माओं से ज्ञान की बातें सुनते हैं, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम भगवान हैं, लेकिन हम उनसे जुड़ जाते हैं, और फिर अगर हमें कोई कहे लेकिन परमात्मा से तो भी जुड़ना है, तो कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, इनके थ्रू हम उनसे जुड़ जाएंगे, बट दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इफ आई वॉन्ट टू मीट यू, इट इज़ मीटिंग यू। इफ आई वॉन्ट टू मीट योर पेरेंट, देन इट इज़ मीटिंग योर पेरेंट। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं आपको मिल ली तो आपकी मम्मी को भी मिल ली, एक ही बात है। नो, इट्स नॉट द सेम थिंग। आप हैं, वो हैं। आप एक कंपनी में जाते हैं, आप एक मैनेजर को मिलते हैं या आप एक CMD को मिलते हैं, आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं मैनेजर को मिल ली, एक ही बात है, मैंने CMD से मिल लिया। Not at all. हाँ, आपसे मिलो, आपके साथ रिश्ता establish हो, आपसे जो relationship experience करना, I will have. लेकिन परमात्मा से मिलो, I cannot say आपको मिली, उनको मिली, एक ही बात है, नहीं। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हम वो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं establish कर पा रहे, तो हम ये समझने लगे कि जिन्होंने कर लिया है
0: वो उनके साथ
1: हम उनके साथ कर लेते हैं। How will that work? आपका किसी के साथ एक रिलेशनशिप है, लेट्स से आपका आपकी मम्मी के साथ एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, अगर मेरा आपके साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो गया, डज दैट मीन देयर फोर मेरा आपकी मम्मी के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो गया? नो, नॉट एट ऑल. वी स्टिल मे बी वी स्टिल हैवंट एक्सपीरियंस्ड कि वॉट इज इट टू हैव अ रिलेशनशिप विद गॉड, क्योंकि इट विल हैव टू बी अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. रिलेशनशिप वाया वाया नहीं जा सकता. आपको बिजनेस करना है, आप वाया वाया कर सकते हैं. मैं आपके साथ करूँ, आप किसी और के साथ करें, आपको वो प्रॉफिट हो, मुझे आपसे, दैट इज ऑल ओके. बट वेन वी आर टॉकिंग ऑफ एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, तो मुझे अगर परमात्मा के साथ करना है, आई विल हैव टू डू इट डायरेक्टली. इट कैन नॉट हैपन, आई कैन नॉट. ये बहुत बहुत बड़ा इल्यूजन है जिसमें हम अपने आप को रख रहे हैं. इनके साथ कर लिया तो उनके साथ अपने आप हो जाएगा. हमारा तो बुद्धि योग आज आत्माओं के साथ ही जुड़ गया है ना, एंड दैट्स अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप, दैट्स ओके. लेकिन वो उन आत्माओं के साथ है, चाहे वो धर्म पिताओं के साथ है. अगर मैं जीसस क्राइस्ट को आज याद करूँ, तो पवित्र आत्मा जिन्होंने इतना श्रेष्ठ धर्म एक स्थापन किया, तो आई विल एक्सपीरियंस अ रिलेशनशिप विद दैट सोल. बट दैट डज नॉट मीन दैट आई विल एक्सपीरियंस अ रिलेशनशिप विद गॉड. आई विल एक्सपीरियंस अ रिलेशनशिप जिनको मैं याद करती हूँ, उनके साथ ही वो कहीं ना कहीं, जो भी मेरा तरीका हो याद करने का, उस आधार पर मैं उनके साथ वो रिश्ता अनुभव करूंगी. बट डज दैट मीन देयर फोर आई विल एक्सपीरियंस अ रिलेशनशिप विद द सुप्रीम पावर?
0: तो बट देन फॉर दैट आई हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर, हु इज द सुप्रीम पावर?
1: एब्सोल्युटली
0: द गॉड.
1: तो जितने भी चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे वर्तमान समय जो भी हमें परमात्मा का संदेश देते, और अब तो जो परमात्मा ने स्वयं आकर ही अपना परिचय दे दिया कि जैसे हम आत्मा हैं तो पिता भी कैसा होगा. यू नो द चाइल्ड इज ऑलवेज लाइक द फादर. द आई एम प्योर बीइंग, कॉन्शंट एनर्जी, इटर्नल, जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट टू विजुअलाइज. तो मेरा पिता भी कैसा होगा? हम उसको कहते ही हैं परम आत्मा. तो मतलब अगर मैं आत्मा हूँ तो परम आत्मा कैसा होगा? वो भी एक आत्मा ही है. लेकिन हम कई बार सोचते मैं आत्मा, वो परम आत्मा. परम मतलब साइज में बड़ा,
0: बिग
1: नो. सो परम इन पावर्स, परम इन क्वालिटी. परम मींस सुप्रीम. तो इफ आई एम अ प्योर सोल, तो द सुप्रीम सोल विल बी ओशन ऑफ प्योरिटी. वो आत्मा ही है, मैं भी आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है. सिर्फ फर्क क्या है, जैसे डिग्री होती है ना, तो फर्क क्या है कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, लेकिन वो आत्मा पवित्रता का सागर है. एंड परमात्मा और हम आत्मा में जो सबसे फंडामेंटल डिफरेंस वो आता कि हम आत्माएं सृष्टि रूपे ड्रामा में, वी टेक अ बॉडी लीव अनदर बॉडी, टेक अ बॉडी लीव अनदर बॉडी. तो कहीं ना कहीं बॉडी से अटैच होते होते हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते और हमारे ऊपर वाइसेस का इन्फ्लुएंस होता. लेकिन परम आत्मा, ही डजंट कम इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, एंड दैट्स व्हाई ही ऑलवेज रिमेन्स एवर प्योर. वी लूज आर प्योरिटी बिकॉज ऑफ कमिंग इन दिस साइकिल एंड देन गेटिंग अटैच टू द बॉडी. तो वी लूज आर डिग्रीज, लेकिन वो एवर प्योर है. एंड अब जब मैं उसको पहचान लेती हूँ, किसी के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए क्या चाहिए? वो कौन है, उसका नाम क्या है, वो रहता क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, रोल क्या है, और उसकी क्वालिटीज क्या है. ये फंडामेंटल, जस्ट टू स्टार्ट विद, इफ आई मीट यू द फर्स्ट टाइम, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, देन आई स्टार्ट टॉकिंग. धीरे धीरे धीरे
0: आपकी विशेषताएं क्या है पता चलती हैं,
1: धीरे धीरे रिलेशनशिप डेवलप होता. तो परमात्मा जब इस सृष्टि पर आकर हमें अपना परिचय देते, आज दिन तक हम भगवान को ढूंढते आए थे, अब भगवान हमें आकर ढूंढता है, बिकॉज ही ऑल्सो हैज़ अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप विद अस, वी आर हिज चिल्ड्रन. तो परमात्मा हमें आकर बताते फॉर्म कैसा है, लाइक यू आर अ टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम ऑल्सो अ टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट. आपका घर कहाँ है, आत्माओं का घर कहाँ है, इस सृष्टि रूपे रंगमंच से पार, बियॉन्ड स्पेस, व्हाट वी कॉल एज द यूनिवर्स एज वी नो इट, इज द लैंड ऑफ द सोल्स, द सोल वर्ल्ड, जिसको हम शांति धाम, मुक्ति धाम कहते आए, उसी को परम धाम भी कहते हैं. तो परम धाम क्योंकि वो परम आत्मा का रहने का धाम. सो नाउ आई हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर इन माई माइंड. राइट नाउ आई एम हेयर, वेयर इज ही? So I immediately think of him. There he is in that land of golden red light. Wo wahan hai. And how is he? He's the ocean of purity, the ocean of love. Who is he for me? I will establish my relationship.
0: अभी एकदम से ये concept मेरे सामने आना कि परमात्मा वो एनर्जी है और वो परम धाम के निवासी हैं, जहाँ पे इवन मेरा भी निवास वहीं है, वो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में, हर रोज़ की मेरी ज़िंदगी में जो मेरा एक जीवन चल रहा था, जीवन चक्र था, उसके में कहीं एक डिस्पैरिटी है हल्की,
1: क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम अपने को ह्यूमन फॉर्म में, मैं ह्यूमन ये बॉडी हूँ इसमें देख रहे थे, तो आई फाउंड द नीड कि सामने वाला भी कौन होना चाहिए, वो भी एक ह्यूमन फॉर्म होना चाहिए कनेक्ट करने के लिए। और इसीलिए आज आप देखो, हम सबको याद कर सकते हैं, लेकिन जब भगवान को याद करने बैठते हैं, इवन आपके पास जो भी फॉर्म है, आपने कोई भी फॉर्म क्रिएट किया है, फिर भी आज की सबकी कॉमन कंप्लेंट क्या है कि भगवान को याद करने बैठते हैं तो मन
0: भटकता है।
1: क्यों? औरों को, दिस हैज टू बी अ वेरी क्लियर थिंग, ईच वन हैज टू आंसर इट फॉर देमसेल्व्स। सबको याद करते हो आप, सारा दिन याद करते हो, जो लोग पसंद नहीं है उनको भी याद करते हो, फोटो नहीं निकालते, तैयारी नहीं करते, एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालते, एक्स्ट्रा स्थान नहीं बनाते, फिर भी याद नेचुरल आती है। काम करते हुए भी हम औरों को याद करते हैं, तो भगवान को याद करने में इतना मुश्किल क्यों होता है?
0: अच्छा, और एक और बात है, भगवान को जब हम याद करते हैं, कई बार मैं ये सोचती हूँ, किसी भी भगवान की अगर बात करते हैं, श्री राम की बात करें अगर, तो उनकी जो फोटो है, जो एक पर्टिकुलर फोटो जो हमने देखी हुई है, वो फोटोग्राफी याद आती है, यू नो, दैट मीन्स वो तो फोटो है, वो फोटो किसने बनाई, किसी पेंटर ने बनाई होगी। तो
1: इसीलिए इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द फॉर्म, क्योंकि वैसे भी आज भी जो मेरा रिलेशनशिप है, इट्स नॉट विद दिस बॉडी। रिलेशनशिप किसके साथ है?
0: सोल।
1: इट्स दिस रिलेशनशिप ऑफ द सोल विद द सोल, क्योंकि रिलेशनशिप क्या है? थॉट विद थॉट, फिर वो थॉट वर्ड में आएगा, एक्शन में आएगा, लेकिन अभी तक उस अवेयरनेस में नहीं चल रहे थे, इसलिए हमने सोचा रिलेशनशिप जो हम बोलें उस पर बेस्ड है, लेकिन अब तो ये फंडामेंटल समझ में आया कि रिलेशनशिप उस पर बेस्ड है जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, वाइब्रेशन का कनेक्शन मेरा किसके साथ जुड़ना होगा, नॉट जस्ट विद द पिक्चर, इट विल हैव टू बी विद दैट एनर्जी, राइट? अगर मैं किसी, ओके लेट्स से आई टेक अ पिक्चर ऑफ अ फैमिली मेंबर, ठीक है, सपोज मैं आपकी बेटी की फोटो ले लेती हूँ,
0: ठीक है,
1: आई डोंट नो हर, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं है, एंड आई टेक हर फोटोग्राफ एंड मैं सोचू कि मैं इसको याद करती हूँ, विल आई बी एबल टू डू इट? एंड यू, आपको उसकी फोटो की जरूरत नहीं?
0: नहीं, यस, यू नो, बिकॉज़ आई नो हर,
1: तो रिलेशनशिप फोटो पर बेस्ड नहीं है, रिलेशनशिप उसके ह्यूमन फॉर्म पर बेस्ड नहीं है। टुडे शी कुड बी इन अमेरिका, यू कुड बी हियर, ये हो सकता है आप उसको एक साल से मिले भी नहीं, आपको फोटो निकालने की जरूरत है याद करने के लिए? नहीं, याद कौन कर रहा है, कौन कर रहा है?
0: कॉन्शियसनेस,
1: कॉन्शियसनेस, रिमेम्बरिंग हु, अनदर कॉन्शियसनेस, उनकी क्वालिटीज, वो क्या है, कैसे हैं, क्या करते हैं, वो कॉन्शियसनेस। फोटो की जरूरत नहीं है, लेकिन आज तो फोटो रखने के बाद भी याद नहीं आती है, तब भी कहते हैं कि हम भगवान को याद करने बैठे, लेकिन हमारा मन तो ऑफिस के काम में, घरों के, यू नो, परिवार के लोगों में भटक रहा था। क्यों? क्योंकि जिसको याद करने बैठे थे, क्लैरिटी नहीं,
0: एब्स्ट्रैक्ट है ना,
1: एब्स्ट्रैक्ट है ना, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है, श्योर नहीं है कौन है। तो भगवान को जिसके साथ हम आज गायन करते आए कि मेरे सारे रिश्ते तेरे साथ हैं, तो उसको याद करना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो गायन में है, यू नो, वो महिमा में है, हमारी वाणी में है वो, कि मेरे सारे संबंध तेरे साथ, लेकिन शायद वो एक्सपीरियंस नहीं किया है। नहीं तो अगर लॉजिकली सोचा जाए, एक तो वो परमात्मा है जो हमें सिर्फ सुख, शांति, पवित्रता देता, दूसरा वो है जिसके साथ मेरे सारे संबंध हैं, हाँ, तीसरा वो कभी मुझे गुस्सा नहीं करता, कभी मेरे साथ, अब उसको याद करना मुश्किल क्यों होना चाहिए? सबको, या जो हमारे परिवार के, हमारे नज़दीक है, हमें अच्छे लगते हैं, उन्हें याद करना मुश्किल नहीं है, तो उसको याद करना मुश्किल क्यों होना चाहिए? उसकी तो याद सबसे पहले आनी चाहिए।
0: Wonderful. In fact, yes, that's very true.
1: याद तो सबसे पहले, तो जो, क्योंकि कोई अगर बहुत अच्छा है तो उसको याद करना कितना मुश्किल होना चाहिए?
0: नहीं, बिल्कुल, और जिसके साथ, अच्छा और बुरा की बात भी नहीं, जिसके साथ मेरा इतना गहरा संबंध है, जिसके साथ मैं सब कुछ ढूंढ रही हूँ, सब कुछ कह रही हूँ, उसे याद करना कैसे मुश्किल?
1: मुश्किल क्यों होना चाहिए, लेकिन उसको याद करना मुश्किल क्यों हो रहा है? क्योंकि शब्द हैं, बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, रोज बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, क्योंकि एक्सपीरियंस इज नॉट हियर, एक्सपीरियंस इज नॉट इन व्हाट आई एम सेइंग. एंड आज तो ये भी है कि हम जो बोल रहे हैं वो भी किसी और ने लिखा हुआ, सो इट्स समवन एल्सेस फीलिंग्स, समवन एल्सेस थॉट्स. हम तो उसको रोज के रोज सिर्फ रिपीट कर रहे हैं. इमेजिन अ सीन कि आपकी बेटी रोज आपके साथ सेम बात रिपीट करे, रिलेशनशिप होगा? एंड वो भी वो रिपीट करे
0: जो किसी और ने लिखा,
1: आप कुछ नहीं. हाँ, और हाँ, वो रिपीट करे जो किसी और ने लिखा, एंड ऊपर से आप कुछ कम्युनिकेट नहीं करो, कोई रिलेशनशिप,
0: देन इट्स अ डेड रिलेशनशिप. यस,
1: फिर वो एक्सपीरियंस नहीं आएगा,
0: इट विल बी अ डेड रिलेशनशिप.
1: Because I'm not getting anything from the other side. Relationship is always energy exchange. तो इसको भले ये भी एक concept है अभी कि God is also energy, point of light, लेकिन try करके देखते हैं, experiment करके देखते हैं. क्यों इस concept को हम try करके देख सकते हैं? क्योंकि वर्तमान समय परमात्मा खुद आकर अपना परिचय दे रहे हैं. It's like someone else coming and telling me about you. You know, and कोई आकर कहे कनुप्रिया है, ऐसी है, ऐसी है, अब आप उसको याद करो तो लिटिल डिफिकल्ट.
0: मैं एक सेकंड, आप अपना इमेजिनेशन में कुछ कुछ करोगे
1: तो फिर भी अच्छा ऐसी है या ऐसी है, और फिर मैं आपको याद करने की कोशिश भी करूंगी तो मेरा मन तुरंत उन लोगों की तरफ भटक जाएगा जिनको मैं अच्छी तरह से जानती हूँ. एंड देन फाइनली वन डे आई गेट टू मीट यू, एंड फिर आपसे मिलना हुआ, परिचय हुआ, फिर आपसे बातचीत शुरू हुई, तो थोड़ा थोड़ा रिश्ता जुड़ा. ऐसे नहीं कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो गया, लेकिन फिर बहुत कुछ शेयरिंग होने लगा, फिर शायद रोज ही बात होने लगी, फिर रिलेशनशिप
0: बहुत स्ट्रॉन्ग. यस,
1: अब हम ये नहीं कहेंगे कि मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ कनुप्रिया को, बट यू नो मेरा मन यहाँ वहाँ भटक रहा है. नो, मैं याद करना नहीं पड़ता मुझे अब आपको. आपकी याद तो चलते फिरते सारा दिन में कई बार आ जाती है. कितनी बातें ऐसे ध्यान में आती है और आपकी याद आ जाती है. कई बार आपकी याद आती है, आप फोन कर देते हो वहां से, तो ये क्या हो गया? समवन आई डिडंट नो एट ऑल, समवन जो किसी ने मुझे बताया कि ऐसा कोई है, लेकिन तब तक भी रिश्ता नहीं जुड़ा. लेकिन जब हम एक्चुअली उनको मिलते हैं, रिलेशनशिप उसके बिना एस्टैब्लिश हो ही नहीं सकता है.
0: वेरी ट्रू. इनफैक्ट यस, इससे ज्यादा क्लियर मुझे लगता है परमात्मा के बारे में हम बात नहीं कर सकते.
1: तो आज दिन तक हमें बहुतों ने परमात्मा का परिचय दिया, विच वॉज वेरी नाइस, दे वर ऑल गिविंग इट उनके एक्सपीरियंस के आधार से. लेकिन हमें क्या करना पड़ रहा था कि उनके इंट्रोडक्शन और उनके एक्सपीरियंस के आधार से हमें एक रिलेशनशिप कंसेप्चुअलाइज करना पड़ रहा था
0: कि
1: यू नो इट कुड बी लाइक दिस और इट कुड बी लाइक दिस. बट वॉट वेन ही कम्स हिमसेल्फ डायरेक्टली, देन I don't have to conceptualize it. Then it is a direct relationship. लेकिन उसमें भी अब वो आकर अपना परिचय देता है, हम उसको सुनते हैं. We're not too sure, क्योंकि the only difference in this case is physically दिखाई नहीं देता जैसे बाकी लोग दिखाई देते हैं. तो initially वो experiment करना पड़ता है कि हाँ, परमात्मा ने आकर परिचय दिया है कि वो ऐसा है, उसका फॉर्म ऐसा है, वो परम धाम का रहने वाला है, एंड क्वालिटीज ऐसी हैं. नाउ लेट मी स्टार्ट, लेट मी स्टार्ट. एंड वो खुद हमें सिखाता है कि कैसे याद करना है, कैसे याद करना है. इट्स ओनली विद द पावर ऑफ द माइंड, जैसे हम औरों को याद करते हैं, लेकिन विद क्लैरिटी, किसको याद कर रहे हैं,
0: कौन है वो,
1: किसको याद कर रहे हैं, विद क्लैरिटी. तो जब वो विद क्लैरिटी हम करते, तो फिर याद करना मुश्किल नहीं होगा. अब इफ मैं ऐसे किसी को याद करने की कोशिश करूं जो एक्चुअली है या नहीं है, आई एम नॉट टू श्योर, तो मैं भले बहुत सारी एनर्जी भेज रही हूं, बट आई एम नॉट टू श्योर के रिटर्न में कुछ आने वाला है, तो वो एक्सपीरियंस नहीं होगा एक रिलेशनशिप का. हाँ, मैं एनर्जी एक्सपीरियंस करूंगी वाइल आई एम क्रिएटिंग इट एंड ऑन द वे आउट. आज दिन तक हम अलग अलग फॉर्म में भगवान को बहुत प्यार से याद करते थे, तो इतना प्यार से याद करते थे कि कई लोग रोने लग जाते थे, मतलब इतनी भावना, इतना प्यार, विच इज़ वेरी नाइस. लेकिन वो किसने क्रिएट किया?
0: मैंने
1: क्रिएट किया. तो हमने पहले ही देखा कि जब हम क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट करते हुए वो सबसे पहले हमारे थ्रू गुजरती है. लेकिन नाउ व्हाट अबाउट द एक्सपीरियंस फ्रॉम द अदर साइड?
0: आप कुछ भी कहते जाएं, कुछ भी कहते जाएं, मैं अगर नहीं कुछ बोल रही तो आपको कुछ भी नहीं महसूस होगा.
1: फ्रॉम द अदर वे मुझे आपको ट्रांसमिट करते वक्त महसूस होगा, बट आई विल नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम देयर अगर इफ यू आर नॉट देयर. लेकिन जिस दिन आप एक्चुअली आ गए सामने, एंड अब आई स्टार्ट ट्रांसमिटिंग, तो इन रिटर्न
0: I should experience.
1: I should experience.
0: But how will I experience? How will I know that I've experienced it?
1: How will we experience God? Energy level पर work करें ना. Here we are not talking के हम कुछ बोलेंगे and suddenly कोई आवाज आ जाएगी और कोई answer आ जाएगा. We are not looking for magic. हम कुछ ऐसा नहीं देख रहे हैं. हम ये experiment कर रहे हैं कि I am connecting with the supreme source of power. Clarity बहुत होनी चाहिए कि किसके साथ रिश्ता जुड़ रहा है और उसके साथ what am I expecting in the relationship. हर relationship में एक expectation है. राइट अब हमने ये देखा कि जितने हमारे आज के रिलेशनशिप्स हैं इनमें एक्सपेक्टेशन करना थोड़ा सा वर्तमान समय इट्स नॉट वेरी इंटेलिजेंट क्योंकि वी नॉट बीइंग एबल टू गेट जो हमें चाहिए लेकिन परमात्मा के साथ आई थिंक वी कैन हैव एन एक्सपेक्टेशन बिकॉज ही इज़ नॉट इन दैट बॉडी कॉन्शियस फॉर्म ही इज़ स्टिल दैट एवर प्योर तो उससे हम जो भी एक्सपेक्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ वो जो है अब हम आज परमात्मा से क्या एक्सपेक्ट करते हैं आज भी हम एक्सपेक्टेशन बहुत रखते हैं मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा आप उसको ठीक कर दो
0: मेरी सिचुएशन नौकरी नहीं मिल रही है नौकरी अच्छी नहीं चल रही है मेरे बॉस को हटा दो या बहुत सारी और मेरे हस्बैंड को ठीक कर दो
1: यस मेरी तबीयत ठीक कर दो या दोस काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि जिसके साथ हमारा रिश्ता जुड़ा है उसका रोल क्या है व्हेन आई एम इंटरेक्टिंग विद यू आई नीड टू बी वेरी क्लियर कि आप क्या करते हैं आप क्या नहीं करते हैं अगर मैं आपके साथ कुछ और एक्सपेक्टेशंस करने लगूँ और फिर बोलूँ आप तो अपनी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ही नहीं कर रहे हैं तो हम परमात्मा से मांगते हैं और हमेशा ज़्यादातर आप देखो तो हम परमात्मा को तभी याद करते हैं जब कोई ना कोई प्रॉब्लम है और फिर हम उससे मांगते हैं और मांगते भी क्या है प्रॉब्लम को ठीक कर दो मैं कुछ नहीं तो मैं बोल दूंगी प्लीज़ कनुप्रिया को ठीक कर दो मेरी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करे सो आई एम आस्किंग गॉड टू चेंज द सिचुएशन टू चेंज द अदर पर्सन अब हमें बहुत क्लियर हो गया कि ये सारी जो मेरी सिचुएशंस हैं ये मेरे अपने कार्मिक अकाउंट्स हैं अगर भगवान हर एक के कार्मिक अकाउंट में इंटरफेयर करने लगे देन द होल लॉ ऑफ नेचर विल गो हेवाया परमात्मा गॉड इज द सोर्स ऑफ पावर ही इज द सोर्स ऑफ ट्रूथ द सोर्स ऑफ प्योरिटी तो उनसे हमें मांगना है या जो लेना है वो क्या लेना है वो जो है पावर पीस प्योरिटी हाँ आई कैन डू दिस कि मैं परमात्मा को याद करके वो शक्ति ले सकती हूँ जिससे मैं वो परिस्थिति को मैं हैंडल कर सकती हूँ लेकिन परमात्मा को बोलूँ मेरी परिस्थिति चेंज कर दे तो देन दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन तो देयर अगेन आई विल नॉट एक्सपीरियंस एनीथिंग क्योंकि परिस्थिति कई बार चेंज होती कई बार नहीं चेंज होती चेंज हो जाती तो हम कहते थैंक यू गॉड नहीं चेंज होती तो हम कहते आई डोंट लाइक यू आपने मेरी बात तो ठीक की नहीं यू सी सो वी डोंट रियलाइज के ईदर वेज ही वाज नॉट प्लेइंग अ रोल इन दैट दीज सिचुएशंस आर माय कार्मिक अकाउंट्स कहीं ठीक होने वाला है कहीं नहीं ठीक होने वाला है बट वॉट इज माई रोल आज हम परमात्मा को जब याद करते तो माइंड स्टेबलाइज हो जाता है माइंड साइलेंट हो जाता है आत्मा में ताकत आ जाती है और फिर आत्मा अपनी परिस्थिति हैंडल करती है परमात्मा परिस्थिति नहीं चेंज करते हैं सो नाउ व्हेन आई कनेक्ट टू गॉड इट इज़ नॉट विद चेंज द सिचुएशन इट इज़ विद द इंटेंशन ऑफ एम्पावरिंग माई सेल्फ अपने आप को गिव मी भी नहीं बोलना पड़ता गिव मी भी क्या करना है आप एक सागर के किनारे जाकर बैठ जाओ आप गिव मी थोड़ी बोलते हो
0: वो अपने आप आ जाती लहर
1: आप सागर के किनारे जाकर बैठ जाते हो शीतलता ठंडक अपने आप फ्लो करती है
0: पानी अपने आप आता है लहर अपने आप
1: आता है आप अपनी बेटी को अभी याद करो आप बोलोगे थोड़ी गिव मी लव आप बोलोगे नहीं ना गिव मी लव क्योंकि वो रिश्ता ही क्या है कि जैसे ही याद किया आपको अभी प्यार की अनुभूति हो जाएगी आप अभी कोई ऐसे व्यक्ति को याद करो जिसके साथ आपका रिश्ता थोड़ा ठीक नहीं चल रहा आप बोलोगे थोड़ी गिव मी हेट्रिड अपने आप एक्सपीरियंस हो जाता है क्योंकि दैट इज़ द एनर्जी एक्सचेंज विद दैट सोल इसी तरह परमात्मा इज ओशन ऑफ प्योरिटी अब ओशन ऑफ प्योरिटी को याद करेंगे तो क्या एक्सपीरियंस होगा
0: प्योरिटी
1: हैज़ टू बी ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड आई नो एग्जैक्टली हाउ आई हैव टू डू इट And that is with the power of mind. Ke jaise humne dekha ke I am a pure soul. My next thought will be, I am the child of the ocean of purity. Main us pavitrata ke sagar ka bachcha hoon. Maine yaad kiya किसको याद किया? अपने पिता को याद किया. और हम तो यहाँ प्यार से उनको बाबा कहते हैं, बिकॉज ही इज़ माई फादर. अगर हम भगवान, ईश्वर कहते हैं, तो दैट ऑल्सो काइंड ऑफ टेक्स मी लिटिल अवे. आई एम टॉकिंग अबाउट टाइटल्स देन, बट ही इज़ माई फादर, तो वी कॉल हिम बाबा. लेकिन बाबा जब हम कह रहे हैं, इट्स नॉट अ ह्यूमन फॉर्म, इट्स दैट एनर्जी. तो जैसे ही हम उसको, उसकी क्वालिटीज को याद करेंगे, तो यहाँ बैठे क्या एक्सपीरियंस होगा? ऑटोमेटिकली. एंड फिर वो क्वालिटी, वो पावर मेरे अंदर भरती जाती है, क्योंकि जैसा संग हम रखते वैसा रंग अपने आप लगता जाता. तो परमात्मा को याद करेंगे, मतलब परमात्मा के संग में रहेंगे, तो उसका रंग अपने आप लगता जाएगा. तो सिचुएशन को हैंडल करना
0: की शक्ति आ जाएगी हमारे पास.
1: एंड नॉर्मली क्या होगा कि जो चीज़ें हम औरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लव, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, एंड हमें नहीं कहीं मिल रहे, हम उसके साथ वो रिश्ता जोड़ते हैं. आज हम लव अनकंडीशनली, कैन वी एक्सपेक्ट अनकंडीशनल लव फ्रॉम एनीवन? नो,
0: इट्स नॉट पॉसिबल.
1: लेकिन विद गॉड, यस. कैन वी ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली एंड से चाहे कुछ भी हो जाए मेरे साथ, इनके साथ गलत नहीं होगा? बट विद हिम, यस. जितने हम रिश्ते आज सारा दिन में निभाते हैं, हमें डर लगता है कि कहीं ये मुझसे नाराज ना हो जाए, कहीं ये मेरे से ना खुश ना हो जाए. विद हिम आपको कोई डर नहीं है. तो जहाँ कंप्लीट ट्रस्ट है, कंप्लीट सिक्योरिटी है, प्यार है, कहीं डर नहीं है, रिलेशनशिप कैसा होगा? और ये रिलेशनशिप फिर हमें इतना शक्तिशाली बनाता है, इतना भर देता है अंदर, कि फिर हमारे जो दूसरे रिलेशनशिप्स होंगे
0: वो अपने आप होने लगते हैं.
2: अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि परमात्मा से हम कौन से संबंध जोड़ सकते हैं और उनसे हमें क्या प्राप्ति होगी.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया।

0: इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड, मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर, ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, किसने रखे थे, वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। दोस्तों,
1: ये वतन का
0: किसी विशेष जीवन के पूरे विस्तार पर अगर हम नजर डालें तो उनमें से कुछ सालों को हम इतिहास की रचना करते हुए पाते हैं। इस रचना प्रक्रिया के कई साक्षी होते हैं। वक्त के उस हिस्से को साथ साथ जीते हुए वो अपने विचार, अपनी प्रतिभागिता से उस बनते हुए इतिहास को संवारते भी हैं। लेकिन उसी वक्त के हाथ से वो कहीं बहुत पीछे छूट जाते हैं, अनाम। आज इस कार्यक्रम में हम एक ऐसी ही कहानी कहने जा रहे हैं। ये कहानी है दो काठियावाड़ी दोस्तों की। एक तो है मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें सारी दुनिया जानती है। आधुनिक युग के किसी भी व्यक्ति पर संभवतः उतना नहीं लिखा गया जितना महात्मा गांधी पर लिखा गया। और दूसरे हैं डॉक्टर प्राणजीवन मेहता, जिनका नाम भी बहुत कम लोगों ने सुना है और उन पर एक दो पन्ने का लेख भी बहुत मुश्किल से मिलेगा। लेकिन स्वयं गांधी जी ने समय समय पर उन्हें अनेक सारगर्भित संज्ञाएं दी हैं, जैसे मेरे सबसे पुराने और परम प्रिय मित्र, मेरे आजीवन निष्ठावान साथी, मेरे अत्यंत विश्वसनीय सलाहकार एवं सहायक, महान बुद्धिजीवी या बड़े कुशल और योग्य व्यक्ति। तो सवाल यही उठता है कि गांधी जी के इतने नजदीकी और विलक्षण महापुरुष डॉक्टर प्राणजीवन मेहता थे कौन? दरअसल गांधी जी के जीवन दर्शन के परिपक्व होने में काफी वक्त लगा था और हिंद स्वराज गांधी जी का जीवन दर्शन है। उन्होंने ये पांडुलिपि इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका लौटते हुए 19 और 22 नवंबर 1909 के बीच जहाज किल्डोनन कासल पर जहाज के पत्र लिखने वाले कागज पर लिखी थी। लेकिन सच ये है कि हिंद स्वराज मूलतः गांधी मेहता संवाद है, जो लंदन के वेस्टमिंस्टर होटल में जुलाई अगस्त 1909 में लगभग एक महीने दोनों के बीच चलता रहा। 21 फरवरी 1940 को बंगाल के मलिकंदा नामक कस्बे में गांधी सेवा संघ की बैठक में गांधी जी ने कहा था, शायद आपको पता नहीं होगा कि मैंने हिंद स्वराज किसके लिए लिखा था। अब वे इस दुनिया में नहीं है, इसलिए नाम बताने में हर्ज नहीं है। मैंने सारा हिंद स्वराज अपने प्रिय मित्र डॉक्टर प्राणजीवन मेहता के लिए लिखा। मैं एक महीना डॉक्टर मेहता के साथ रहा, उनसे जो चर्चा हुई वही उसमें आई।
1: जब

जीवन मेहता का जन्म 27 फरवरी सन 1864 को काठियावाड़ के मोखी नामक स्थान में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मोखी और राजकोट में हुई। 1883 में उन्होंने मुंबई के ग्रांट मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाया। 1886 में उन्होंने LMS और लाइसेंसिएट इन मेडिकल एंड सर्जरी की उपाधि स्वर्ण पदक के साथ पाई। 1887 में वे यूरोप पहुंचे, गांधी जी के आगमन के 1.5 साल पहले। वे अत्यंत मेधावी छात्र थे। सन 1889 में उन्होंने बेल्जियम की फ्री यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रसेल्स से MD की उपाधि पाई। इसके साथ ही लंदन के मिंटल टेम्पल से बैरिस्टर ऑफ लॉ की उपाधि भी उन्होंने ले ली। 29 सितंबर 1888 को गांधी जी जब बैरिस्टरी की पढ़ाई के लिए लंदन पहुंचे, तब विक्टोरिया होटल में उनसे सबसे पहले मिलने वाले व्यक्ति थे प्राण जीवन मेहता। गांधी जी के इंग्लैंड प्रवास के दौरान प्राण जीवन मेहता ने गांधी जी के मार्गदर्शक और अभिभावक की भूमिका निभाई और वे 1889 में भारत लौटकर कुछ दिन मुंबई में रहे। असली घनिष्ठता दोनों में तब हुई जब गांधी जी 1891 में भारत लौटने पर मुंबई में उनके निवास स्थान पर कई दिन रुके। सन 1899 में डॉक्टर मेहता बर्मा चले गए। वहां डॉक्टर और बैरिस्टर होने के साथ साथ हीरे जवाहरात का काम करते हुए रंगून के सबसे प्रतिष्ठित और समृद्ध भारतीय नागरिक हो गए। प्राण जीवन मेहता बर्मा के सार्वजनिक जीवन में सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने वहां हिंदू सोशल क्लब की स्थापना की। वे बर्मा सोशल सर्विस लीग के सचिव और रामकृष्ण सोसाइटी के प्रधान भी थे। सन 1906 में उन्होंने यूनाइटेड बर्मा नाम से एक साप्ताहिक पत्र निकाला और सन 1908 में बर्मा प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ जिसमें वो अध्यक्ष हुए। ब्रिटिश गुप्तचर विभाग उन्हें उग्रवादी मानकर उन पर सदैव निगाह रखता था, लेकिन वो राष्ट्र चिंतन और देश सेवा में लगातार रत रहे।

देश की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति खराब और चिंताजनक थी। नवयुवक हिंसा का रास्ता अपना रहे थे। राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस विभाजन के साथ ही कमजोर पड़ गया था। देश में निराशा के अंधकार में डूबे लोगों की निगाहें सुदूर दक्षिण अफ्रीका की ओर लगी थीं, जहां गांधी जी कुछ कर दिखा रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के प्रश्न ने भारत में नई चेतना पैदा कर दी थी। सन 1909 गांधी जी और डॉक्टर मेहता के संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक वर्ष है। ये दोनों मित्र 7 साल से अधिक समय के बाद लंदन में मिले थे। इस दौरान गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने अनोखे आंदोलन के कारण विश्व भर में ख्याति प्राप्त कर ली थी। अपने निजी और सार्वजनिक जीवन में उन्होंने नए नए प्रयोग कर डाले थे। लंदन में गांधी जी से विदा लेते हुए डॉक्टर मेहता ने ये वचन ले लिया था कि गांधी जी बहुत जल्द भारत लौटेंगे। डॉक्टर मेहता ने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के विरोध में चल रहे आंदोलन की बागडोर वो किसी निकट संबंधी को सौंप दें, उसका पूरा खर्च वो स्वयं वहन करेंगे। जनवरी सन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड होते हुए जब गांधी जी भारत लौटे, तब उनके पास धन की बहुत कमी थी। गांधी जी को हिंद सेवक संघ का सदस्य भी नहीं बनाया गया। गांधी जी इन हालात में खुद को बिल्कुल असहाय और अनाथ महसूस कर रहे थे। उस समय डॉक्टर प्राण जीवन मेहता ने सच्ची मैत्री का सबूत देते हुए गांधी जी की सहायता की, और फिर आगे जो हुआ वो इतिहास रहा। मोहनदास से महात्मा के इस सफर में डॉक्टर प्राण जीवन मेहता प्राण वायु की तरह गांधी जी के अभियान को जीवंत करते रहे। डॉक्टर मेहता एक उच्च कोटि के विचारक, वक्ता और लेखक थे। गांधी जी की पुस्तिका हिंद स्वराज और उसके अंग्रेजी संस्करण इंडियन होम रूल पर अंग्रेजी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। तब डॉक्टर मेहता ने अपने ढंग से गांधी जी के विचारों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। डॉक्टर प्राण जीवन मेहता ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने 1910-1911 में गांधी जी की जीवनी अंग्रेजी में लिखी, एम के गांधी एंड द साउथ अफ्रीकन इंडियन प्रॉब्लम। इस तरह हिंद स्वराज पर प्रतिबंध के बावजूद वो गांधी जी की आवाज बने। सन 1915 के उत्तरार्ध में डॉक्टर मेहता भारत आए और उन्होंने अपना काफी समय गांधी जी के साथ बिताया। वो चाहते थे कि जो धन उन्होंने बर्मा में कमाया है उसका अधिकांश भाग भारत के लिए खर्च हो। उन्होंने साबरमती आश्रम के पास एक घर भी बनवा लिया था। बर्मा के सार्वजनिक जीवन में भी वो अत्यंत सक्रिय रहे, लेकिन अत्यधिक व्यस्तता और घोर परिश्रम के कारण सन 1920 में वे पक्षाघात के शिकार हुए और उनका सार्वजनिक जीवन लगभग समाप्त हो गया। लेकिन बीमारी की इस हालत में भी इलाज के दौरान वो गांधी जी को सलाह देते रहते। सन 1929 में गांधी जी के बर्मा प्रवास के दौरान वो अपंग होते हुए भी हर जगह उनके साथ रहे। नमक सत्याग्रह के लिए जब गांधी जी दांडी गए तो डॉक्टर मेहता बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि गांधी जी से इसका आग्रह वे काफी दिनों से कर रहे थे। वो इस सत्याग्रह में स्वयं भी शामिल होना चाहते थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते ये संभव न हो सका। 3 अगस्त सन 1932 को एक लंबी बीमारी के बाद डॉक्टर प्राण जीवन मेहता का रंगून में देहावसान हो गया। गांधी जी उस समय यरवदा जेल में थे। प्राण जीवन मेहता की मृत्यु का समाचार मिलने पर गांधी जी ने 4 अगस्त 1932 को डॉक्टर मेहता के बड़े पुत्र छगन लाल को पत्र लिखकर कहा, मेरे जीवन भर का साथी चला गया और मैं अपंग की तरह असहाय हूं। ये बात मुझे कचोटती है। यदि मैं जेल में न होता तो कदाचित डॉक्टर का सर मेरी गोद में होता जब उसका अंतिम श्वास छूटा, लेकिन ईश्वर हमारा मनचाहा कभी पूरा नहीं होने देते।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री राजेश प्रसाद मिश्र ने, समन्वय किया संजय यादव ने, इसे प्रस्तुत किया सुनीता सिंह ने।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, a new way of responding, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। This is the powerful being.
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आप सबका स्वागत। लाइफ स्किल्स, कितनी तरह के स्किल्स हम सीख चुके थे, लाइफ को ही नहीं जान पा रहे थे। अब वो स्किल्स भी सीख रहे हैं, ज्ञान के आधार पर देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिन्हें हम सीखते जाएंगे। जिंदगी बहुत सुंदर होती जा रही है और अनुभव से बड़ा जो कहते हैं कि सच कोई और नहीं होता, तो जब हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, अनुभव होता है, तब हमारे लिए वो सच बन जाता है। आज भी बात को कुछ और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं दिन भर में हम ऐसा क्या कर रहे होते हैं कि दिन जो है वो कम पड़ने लगता है। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत है। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, बहुत सी बातें हमने सीखी। आप, ये लगता है कि दिन छोटा है, इतनी सारी चीज़ें हैं, काम है, बहुत कुछ और मैनेज करना है, लाइफ को मैनेज करना है। अब हम स्टूडेंट बन के स्किल्स भी सीख रहे हैं ये इस पूरे श्रृंखला के अंदर अंदर कि कैसे हमने अभी तक गलतियां की थी उन्हें ठीक करें, लेकिन टाइम जो है वो मतलब दौड़ जाता है, भागता है। टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप्स भी की हैं, सेमिनार्स अटेंड किए, नहीं होता। कहाँ गलत हो रहे हैं हम समय को समझने में, उसे मैनेज करने में?
2: सबसे जो फाउंडेशन इनफैक्ट यही है कि भी सवेरे जल्दी उठो तो आपके पास वह 2-3 घंटे और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और तब तो जल्दी उठो सवेरे, और वह जिसको कहते हैं अधिकतर 90% का वही पीक टाइम होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। आपने स्नान आदि किया, तैयार हो गए, उस समय जो सबसे डिफिकल्ट काम है वह करो।
0: लेकिन उस वक्त तो जब हम अपने आप को उठाते हैं हम इतने हैवी हुए हुए होते हैं।
2: विशेष सर्कल आपने खुद क्रिएट किया कि भाई टेंशन में सारा दिन बिताया, लेट सोए, शराब पी के सोए, या तो और रीति से भी और टेंशन में ही सोए तो सवेरे उठे तब भी फिर ये दिक्कत होती है। अगर फुल साइकिल को आप ठीक करो, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो आपने निश्चित टाइम किया है तब उठ जाओ, और उठते ही फिर ये नहीं कि अभी और 5 मिनट के बाद अभी नींद आ रही है और अभी 10 मिनट के बाद, ऐसे नहीं। आपने टाइम डिसाइड किया तब बस, भल नींद आ रही है तो भी उठ जाओ, एक बार उठ के कुछ पैदल करने लगो, चलने लगो, ब्रश करने लगो। मैं तो सीधा स्नान करता हूँ, चाय भी नहीं पीता, उठे सीधे 1.5-2 ग्लास पानी पिया, बस सीधा ब्रश करने गए, तैयार होने लगे, शेविंग की, और देखो उतनी देर में फिर ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है। उस समय क्यों हमें थकावट रहती है, क्योंकि नींद में ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम होता है, और जब तक वो नॉर्मल ना हो आप में एनर्जी नहीं आती है। परंतु अगर इस प्रिंसिपल को अपनाओ कि तुरंत बस आप तैयार होने लगो।
0: लेकिन सुबह उठते तो अखबार चाहिए ही, मतलब कई बार तो लोग कहते हैं कि वो सोए हुए अखबार आती है, चाय आती है, उससे उठते हैं।
2: पूरी मतलब इट्स अ वर्स्ट थिंग, दोनों नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ बैड टी इज बैड,
0: बैड टी इज बैड,
2: इसीलिए तो बैड टी कहा ना उसको। तो चाय पीनी भी है तो नाश्ते के बाद पियो, उठते ही चाय नहीं पियो, क्योंकि चाय की जो हार्मफुल इफेक्ट है वही है कि इमीडिएटली वो इरिटेशन क्रिएट करती है, स्टमक में एसिडिटी क्रिएट करती है। तो इसलिए खाने के बाद थोड़ी सी चाय पिएंगे तो नुकसान नहीं होगा। और अखबार के नेगेटिव न्यूज है, बस एक आदत की बात है, 2 दिन आप करिए, बस उठते ही 1.5-2 ग्लास पानी पियो, पॉसिबल तो बस उसमें थोड़ा नींबू भी निचोड़ दो ताकि विटामिन सी आदि हम आपको मिलेंगे, और फिर तैयार होने जाओ। वो 1.5-2 घंटे में ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, स्नान आदि करके आप फ्रेश भी होंगे। फिर चाहिए तो भले आप एक्सरसाइज करो, थोड़ी सी चाय पीनी है तो पी लो, इस प्रकार से वह जो टाइम आपको मिल जाएगा और तब एनर्जी लेवल भी अच्छा होगा।
0: आपने कहा स्नान के बाद एक्सरसाइज करो,
2: नहीं अगर आपको करनी है तो थोड़ी सी सिंपल तो करो, भले अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते हो तो भले पहले ही कर लो, तब पसीना

0: ज़्यादातर देखें सिस्टर शिवानी, ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है कि सुबह उठे और टाइम हमारे पास कम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ स्केड्यूल हमने रखा हुआ है जो हमें करना है, और उसके बाद ट्रैफिक जाम मिलेगा या कुछ मिलेगा, उसका मार्जिन रख के भी हमें घर से निकलना है। तो टाइम तो प्लानिंग का, हमें जीने का ही टाइम कम मिल रहा है, ये इसको कैसे हैंडल करें?
1: गलती तो वही है ना कि आप ये सोचते हो कि 45 मिनट्स में तैयार हो जाएंगे, आपको 7:30 को घर को निकलना है तो आप 7 बजे उठते हो, फिर तो हड़बड़ी होगी होगी। ये जो ब्रह्मा कुमारी की लाइफस्टाइल है कि आप थोड़ा जल्दी उठ जाओ तो आपके पास बहुत बड़ा टाइम मिलेगा। मेरा अपना अनुभव है कि हम जल्दी उठते हैं, जो मैंने बताया, तुरंत स्नान कर लेते, तैयार होते हैं तो बहुत बड़ा टाइम होता है, 2.5-3 घंटे होते हैं।
0: लेकिन
1: तो
0: मैंने
1: जब
0: कहा ना कि वो
1: अच्छे
0: जो
1: से
0: हैवीनेस हो जाती है, क्योंकि एक आदत है कि आप 7 बजे उठते हैं, तो तब आप फिर भी, क्योंकि आप रात इतना लेट सोए होते हैं और जो भी है, तो इस कारण वो सुबह उठने के बाद
1: बात
0: भी
1: दे रही है,
0: काफी हैवीनेस रहती है।
1: तो यहाँ पर बायोलॉजिकल क्लॉक का प्रॉब्लम है। आपने जो अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को ऐसे सेट किया है कि रात को 1:30 बजे सोना, सवेरे 7 बजे उठना, उसको बदलना होगा। वो एक दिन में नहीं होगा क्योंकि ब्रेन को भी वह सेटिंग हो गई है। क्या करिए, अगर अभी आप 1:30 बजे सोते हैं तो 5 दिन 1 बजे सोना शुरू करिए तो नींद आने लगेगी, क्योंकि थोड़ा सा ही फर्क है, ब्रेन उसको एडजस्ट हो जाएगा। और 5 दिन के बाद 12:30 बजे सोइए, और सप्ताह के बाद 12 बजे सोइए। ऐसे करते करते आप 10:30-11 पर भी आ सकते हैं, फिर सवेरे जल्दी उठना मुश्किल नहीं होगा।
0: नहीं तो पहले हम सोना जल्दी करें या उठना करें?
1: सोना जल्दी करो, थोड़ा आधा घंटा ही, हाफ एन आवर ही आप जल्दी सो, भले उसी टाइम पर उठो, फिर और कम हुआ तो उठना जल्दी भी हो जाएगा, क्योंकि जो पीरियड है स्लीप का वो तो पूरा हो गया। और
0: हम
1: एक जो
0: पहुंचे
1: मैंने
0: ही,
1: अनुभव
0: वापस
1: किया
0: घर
1: है,
0: पहुंचते ही 10 बजे हैं, फिर क्या करें?
2: तो भी अपने अब ये भी सोचना होगा, हम 10 बजे क्यों घर पहुंच रहे हैं, हमें हर काम करने में आज ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों पर हम अटेंशन नहीं रख रहे। आई विल हैव टू स्टॉप, रीशेड्यूल एवरीथिंग, स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। हम सब जब मेडिटेशन सीखना शुरू करते हैं, एंड कई बार हमने ये बात की है, राजयोगा मेडिटेशन इज़ नॉट 10 मिनट्स और हाफ एन आवर, राजयोगा मेडिटेशन इज़ अ लाइफ स्टाइल ऑफ 24 आवर्स। तो जो परिवर्तन हमें एक तो अटेंशन रख के लाना है, कुछ धारणाओं को हर रोज़ फॉलो करना है, जैसे ही हर चीज़ पर फॉलो करते हैं, कितने बजे उठना, कितने बजे सोना, क्या भोजन खाना, सारा दिन में कैसे सोचना और मेडिटेशन करना, धीरे धीरे द होल साइकिल विल फॉल इन टू प्लेस। देखो, जब डिसहार्मनी होती है तो पूरे एस्पेक्ट पर डिसहार्मनी होती है, जैसे ही आप उसको हार्मोनाइज करना शुरू कर देते हैं, पूरा दिन हार्मोनाइज हो जाएगा। एक चीज़ भी अगर हम शुरू करें कि मॉर्निंग उठकर मेडिटेशन करेंगे थोड़ी देर,
0: कभी भी उठो,
2: जल्दी
0: थोड़ा
2: थोड़ा, क्योंकि
0: जल्दी
2: अगर
0: उठो।
2: लेट उठे तो फिर बैठने के लिए टाइम नहीं है। अभी तक हम क्या कहते हैं, टाइम होगा तो मेडिटेशन करेंगे। सी अगेन, हमने मेडिटेशन को अपने प्लानर में कहाँ डाल दिया कि अगर टाइम होगा तो मेडिटेशन करेंगे, तो टाइम तो कभी होता ही नहीं है। हमें अगर उसकी इक्वेशन को चेंज करें, मेडिटेशन करेंगे तो टाइम मैनेज होगा। सी, इट्स जस्ट द वे आई ट्यून माई सेल्फ, इट मेक्स ऑल द डिफरेंस। इफ आई से टाइम होगा तो मेडिटेशन करेंगे, तो वो तो हो ही नहीं रहा, तो वो हफ्ते में कभी एक दिन टाइम मिलेगा तो करेंगे, और क्योंकि रोज नहीं करेंगे, तो जब वो एक आधा दिन करेंगे, योग लगेगा नहीं, फिर कहेंगे लगता नहीं, क्या आधा घंटा निकाल के बैठे, लगा भी नहीं, सो देन इट गोज आउट ऑफ द प्रायोरिटी लिस्ट। मैं रोज मेडिटेशन करूंगा, इससे मेरा थॉट और टाइम मैनेज होगा। नाउ लेट मी एक्सपेरिमेंट करके कि मुझे रोज सुबह जल्दी उठना है, जो भी टाइम हम उठते हैं, क्योंकि इमिजिएटली शायद नहीं कर पाए, प्रेफरेबली जैसे हमने पहले भी शेयर किया कि 4:30 जो अमृत वेले का समय है, जब माइंड की एक्टिविटी, जब हम वो मेडिटेशन बहुत पावरफुली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, थोड़े दिन उसको अभ्यास करके देखें। जब सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो रात को अपने आप जल्दी नींद आती है, अपने आप आने ही
0: हाँ,
2: है,
0: ये तो होता है कि
2: वो
0: जिस
2: होना
0: दिन
2: ही
0: हम
2: है।
0: सुबह
2: तो
0: होते,
2: अगर स्टार्ट करना है मुश्किल हो रहा है, तो जस्ट स्टार्ट, कि कल से मुझे ये स्टार्ट करना है और वो मेडिटेशन मुझे प्रैक्टिस करना है। नहीं भी हो रहा, अभी हम नए हैं, फिर भी मुझे रोज करना है। कोई भी एक्सरसाइज जब हम शुरू करते हैं तो बहुत दर्द होता है पहली बार। अब जो हमारे अंदर अगर विल पावर नहीं है, तो हम कहते हैं छोड़ो, एक्सरसाइज करने से दर्द होता है। एक्सरसाइज करने से तो दर्द नहीं होता ना कभी, लेकिन वो कुछ एक दिन हमें क्रॉस करना पड़ता है। सेम विद मेडिटेशन, थोड़े दिन हम कहेंगे उठते हैं नींद आती है, उठते हैं

0: योग नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा? अभी हम स्लीपी हैं, फिर भी हम बैठेंगे, जो सारी तैयारी करके, जैसे गिरीश भाई ने बताया, हम बैठेंगे, लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि योग करेंगे और थॉट्स बहुत स्लो डाउन हो जाएंगी, सिंप्लीफाई हो जाएंगी, प्योरीफाई हो जाएंगी, मेरे सारा दिन की थॉट्स कैसे चलेंगे? सी, वो मेडिटेशन मतलब सिर्फ उतनी देर नहीं ना, आई एम ट्यूनिंग माई सेल्फ टू अनदर फ्रीक्वेंसी। सारा दिन थॉट्स कैसे हो जाएंगे? स्लो डाउन होंगे। रात को घर भी पहुंचेंगे, सोने का टाइम होगा, थॉट्स कैसे होंगे? स्लो होंगे। सोएंगे, अच्छी नींद आएगी, सुबह उठना इजी हो जाएगा। इट विल हैव टू स्टार्ट विद द मेडिटेटिव थिंग इन द मॉर्निंग, कि मेडिटेशन और ज्ञान, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। हम लोग जब सभी पहली बार आते हैं, हम में से किसी को सुबह पहले 4 बजे उठने की नहीं आदत होती है। इट इज़ एन अनअर्थली टाइम। वी यूज टू थिंक 4 बजे कोई उठता है, ये कोई उठने का टाइम है, अभी तो रात लगती है बाहर। एवरी वन कम्स विद देयर ओल्ड लाइफ स्टाइल, कोई 6 बजे, 7 बजे, कोई तो 8-9 बजे उठने वाले लोग थे, लेकिन किया, परिवर्तन हुआ, प्राप्ति हुई। थोड़े दिन मुश्किल लगा, थोड़े दिन के बाद रह नहीं पाए उसके बिना, क्योंकि उसका वो आधा घंटा जो हम निकालते हैं, वो आधा घंटा नहीं है। इट इज़ हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन माई एंटायर 24 आवर्स। अगर मैंने एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाला, तो पूरे दिन शरीर ठीक रहेगा ना, और पूरा दिन क्या, फिर हर रोज़ शरीर ठीक रहेगा। लेकिन कहें कि वो आधा घंटा नहीं है एक्सरसाइज के लिए, तो भी सारा दिन काम करेंगे, लेकिन ड्रैग करते हुए, इस तरह से एनर्जेटिक। सो लेट्स बिगिन विद दैट मेडिटेशन। दिस हैज़ टू बी पुट ऑन टू माई प्रायोरिटी लिस्ट, कि ठीक है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ विद दिस। हम सेंटर पर जाते हैं, मुरली स्टडी करते हैं, हु एवर थॉट दैट वी हैड टाइम फॉर दैट बिफोर। आज ब्रह्मा कुमारीज में जितने भी भाई बहने आते हैं, 9 लाख से ऊपर परिवार, परिवार है ना, उनका भी शॉप है, बिजनेस है, जॉब है, बच्चे हैं। यू विल बी सरप्राइज, हमारे पास इतने इतने बच्चे हैं। अगर उनका स्कूल जाने का टाइम 8 बजे का है, पहले वो 8 बजे तक तैयार होते थे ना, आज वो 7 बजे तक तैयार होकर सेंटर पर आते हैं मुरली क्लास के लिए। क्या प्राप्ति है उस छोटे से बच्चे को, 1 घंटा एक बच्चे के लिए जल्दी उठना। इट हैज़ टू बी एक्सपेरिमेंटेड, देन यू गेट द रिजल्ट, देन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। फिर वो आपकी हार्मनी में लाइफ स्टाइल चलने शुरू हो जाएगी।
1: उसमें ना 3 बातें एक्चुअली, एक तो जो कहा कि प्रायोरिटी उसको दीजिए, कि मुझे जल्दी पहुंचने की प्रायोरिटी है। अभी घर में आप पहुंचते हैं वो 10:30 बजे, तो मुझे 9 बजे तक घर पहुंचना ही है। उसके लिए दूसरा ये करना पड़ेगा कि किसी व्यक्ति को ना भी कहना पड़ेगा, लर्न टू से नो, कि भी मुझे पहुंचना है 9:30 तक, तब मेरी दिनचर्या ठीक होगी। और तीसरी बात, कहीं छोटा सा सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, बोल बिजनेस थोड़ा सा कम चले कोई बात नहीं, और कोई एक आध काम आपका रात्रि का हुआ कोई बात नहीं, थोड़े दिन में करूंगा, फिर सवेरे तो और आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, उल्टा और आप एफिशिएंटली करेंगे। जैसे कहते हैं सक्सेस के लिए भी कहा है, डूइंग राइट थिंग एट अ राइट टाइम
0: इन द राइट वे,
1: राइट वे।
0: यू मे बी डूइंग थिंग्स बट नॉट इन द राइट वे एट द राइट टाइम,
2: एंड आई थिंक वी डोंट इवन नो, हमें यहाँ पता ही नहीं है कि राइट क्या है। राइट और रॉन्ग को भी हमने इतना रिलेटिव कर लिया है,
0: इसीलिए तो मेहनत ज्यादा और रिजल्ट कम, और फिर बाकी जो सारे साइड इफेक्ट साथ में आ रहे, इट्स ओनली बिकॉज ईटिंग नॉट एट द राइट टाइम, स्लीपिंग नॉट एट द राइट टाइम, थिंकिंग नॉट इन द राइट वे। इस पूरी सीरीज में हमने देखा है कितनी सारी हम गलतियां करते आ रहे हैं। छोटी छोटी गलतियों को ठीक कर लें, टाइम वुड नॉट बी एन इश्यू, बिकॉज थॉट्स स्ट्रीमलाइन होते जा रहे हैं। हमारे सेंटर पर हैदराबाद में मिस्टर KVK राजू आते थे, ही इज लेफ्ट द बॉडी, बट ही वॉज चेयरमैन ऑफ नागार्जुना फर्टिलाइजर्स। चेयरमैन है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल सेटअप का। पहले तो कहते थे टाइम ही नहीं होता था, मेरे को तो 1:30-2 बजे तो सोने का टाइम मिलता है, और बहुत कम देर सोते थे। लेकिन जब मेडिटेशन का प्राप्ति समझ में आई, तो उन्होंने 3:30-4 बजे उठना शुरू किया। जैसे गिरीश भाई ने कहा, सैक्रिफाइस, उन्होंने पार्टीज बंद कर दी, लेट नाइट सोशलाइजिंग बंद। चेयरमैन है ना, ये थोड़ी सोचा कि मेरी कंपनी में कोई लॉस हो जाएगा, नहीं, समझ में आया व्हाट इज़ गुड फॉर मी। उनके एक प्लांट में बहुत कुछ बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी काफ़ी समय से, बिटवीन द लेबर एंड द टॉप मैनेजमेंट, मीटिंग्स, डिस्कशंस, नो सल्यूशन। एक दिन वो मॉर्निंग में उठे 3:30, ही वॉज सिटिंग इन मेडिटेशन, देयर इज द आंसर। वट द आइडिया वट ही गॉट इन द अर्ली मॉर्निंग, ही पुट इट फॉरवर्ड टू हिज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस दिन मीटिंग में। एवरी वन वेंट यूनानिमस, यस, ये इसी तरह होना चाहिए। जो उन्होंने उस दिन प्लान किया और इम्प्लीमेंट किया, उनको गवर्नमेंट के लेवल से उस चीज़ के लिए अवार्ड मिला था. एंड ही सेड कितने दिन मीटिंग्स डिस्कशंस एंड मॉर्निंग मेडिटेशन एंड मुझे आइडिया आया. द टाइम वेस्ट हो रहा था ना, लेकिन हमें लग रहा था ना हम बहुत बिजी हैं, डिस्कशन कर रहे हैं. कोई भी प्रॉब्लम है, डिस्कशन इज समटाइम्स वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी. हम सुपरफिशियल लेवल पर सोच रहे हैं, हम एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में सोच रहे हैं, कभी एक्यूरेट सोल्यूशन नहीं आएगा. लीव इट, इसके बारे में कल सोचेंगे. जब साइलेंस में होते हैं, जब हमारी एकदम ये एंग्जाइटी स्ट्रेस वाली थॉट्स बिल्कुल क्लियर एंड प्योरिटी की स्टेट में है, ऐसे सोल्यूशन आकर सामने खड़ा हो जाएगा. तो कितना टाइम बचा?
2: आपने कहा कि टाइम नहीं है इसलिए मेडिटेशन नहीं करते हैं. मेडिटेशन करेंगे तो आपका टाइम जो है आपके पास बहुत ज्यादा हो जाएगा, या टाइम आपका मैनेज हो जाएगा.
0: We find that के बहुत टाइम है, और बताओ और क्या काम करना है, जबकि वी डूइंग मच मोर देन जो पहले किया करते थे सारा दिन के अंदर. इट्स जस्ट दैट थॉट स्ट्रीमलाइन होती है ना, हर काम को कम टाइम लग रहा है.
2: हाउ इज दैट पॉसिबल? अगर
0: अगर मैं काम कर रही हूँ प्रोजेक्ट पे और कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई फियर नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं है, ये होगा नहीं होगा, होगा नहीं हुआ, नहीं हुआ तो अगर उसका पहले All this is not there. तो आपकी पूरी concentration किस पर है? काम पर है. Definitely वो काम जल्दी होगा और गलतियों के बिना होगा. आपको decision लेना है. आपके mind में doubt नहीं है, confusion नहीं है. Decision लेने में कितना time लगेगा? आप यहाँ वहाँ बैठकर इधर उधर की इसकी उसकी बातें नहीं कर रहे हैं, अंदर भी नहीं चल रहा, बाहर भी नहीं कर रहे, कितना time बचेगा? You could save lot of time and energy. And सारा काम जल्दी जल्दी जल्दी होता जाएगा. यू विल से मोर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिर्फ काम नहीं होगा, इंजॉय करते हुए, हल्के रहते हुए वो काम करेंगे. एंड जब शाम को घर आएंगे, यू विल बी मोर और लेस जैसे आप सुबह गए थे. एटलीस्ट मेंटली, फिजिकली थक सकते हैं, लेकिन मेंटली यू आर स्टिल वेरी चार्ज्ड, क्योंकि माइंड वॉज स्टिल स्लो इवन इफ द बॉडी वॉज फास्ट. मुझे बहुत फास्ट फिजिकली काम करना हो सकता है, बट माई माइंड इफ इट इज स्लो, हम नहीं थकते हैं. आज हम फिजिकली स्टैटिक बैठे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हैं तो बैठ ही गए घंटों, लेकिन माइंड कितना फास्ट है. तो आई हैव टू आस्क माई सेल्फ, कौन थका? एट द एंड ऑफ द डे थका कौन? शरीर ने तो बहुत ज़्यादा कुछ किया ही नहीं, मन बहुत ज़्यादा थका. और फिर रात को उसको स्लो डाउन नहीं किया, तो ये थके हुए मन को रात को सोने भी नहीं दिया, ये अभी भी रात को चल रहा था. तब जो आपने कहा कि सुबह उठेंगे तो सर दर्द हो रहा है, थके हुए मन के साथ उठे हैं, इट्स स्टिल लाइक वेरी हैवी ओवर हियर, फिर भी टाइम नहीं है, रेस्ट थोड़ी कर सकते. फिर इस थके हुए मन को लिया, फिर उस जर्नी पर चले. इमेजिन डेज एंड डेज, ईयर्स एंड ईयर्स हैव पास्ड लाइक दिस, व्हाट विल बी द रिजल्ट? दैट्स द ओनली रीजन व्हाई वी आर सफरिंग सो मच. जैसे इसको स्लो डाउन करेंगे, हर चीज स्ट्रीमलाइन हो जाएगी.
1: मॉर्निंग में बहुत कुछ आपको मेरा अनुभव सुनाता हूँ. मुझे कई बार लिखना होता है, बुक्स लिख रहे हैं, देखा है कि अगर इवनिंग में लिखते हैं तो अगर एक पेज लिखने में आपको आधा घंटा लगा तो मॉर्निंग में वही 10 मिनट में लिख पाते हैं. इट मींस इट इज ऑलमोस्ट ट्रिपल. तो इसलिए भले थोड़ा ये जो तीनों पॉइंट्स मैंने बताई वो फॉलो करके सवेरे एटलीस्ट एक घंटे का टाइम आप निकालो कि फ्रेश हो गए सब कुछ वो अपने लिए है. चाहे उसमें मेडिटेशन भी कर सकते हो, और ये सारे दिन का फॉरवर्ड प्लानिंग करना है वो फॉरवर्ड प्लानिंग करो, तो सारी समस्या समाप्त हो जाएगी.
2: एक मैं बात ये जानना चाहती हूँ, ये आपने कही बात कि फिजिकली, एक्चुअली सडनली आई रियलाइज कि हमने फिजिकली तो कुछ करते ही नहीं है. ज़्यादातर लोग जो हैं वो फिजिकल बहुत एक्टिविटी नहीं करते हैं. बाय द एंड ऑफ द डे हमें इतनी ज़्यादा थकान है कि हम कुछ भी शाम की वाइंडिंग अप भी नहीं कर पाते हैं. तो ये मेडिटेशन के बाद जो हम दिन की शुरुआत करते हैं, उसमें और आज जो मैं जिंदगी जी रही हूँ उसमें क्या फ़र्क हो जाएगा?
0: क्योंकि थॉट प्रोसेस स्लो डाउन एंड एक्यूरेट होता जाएगा. सिर्फ पूरा हम समझते आ रहे हैं, थॉट हर चीज़ कर रही है, थॉट का बॉडी पे इफेक्ट. आपने कहा बॉडी ज़्यादा कुछ नहीं करती, फिर भी हम थका हुआ क्यों महसूस करते हैं? सारा दिन में हमने कितनी टॉक्सिक थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स कितनी क्रिएट की. गिरीश भाई ने बताया हर थॉट का बॉडी के हर सेल पे असर, हर थॉट का ब्रेन के हर केमिकल पर असर. तो इतनी टॉक्सिक नेगेटिव थॉट्स क्रिएट की होंगी तो ब्रेन पर और बॉडी पर कितना असर पड़ा होगा. किया कुछ भी नहीं था, गाड़ी में बैठे थे, गए थे, सारा दिन एसी ऑफिस में बैठे, वापस यहाँ क्या क्रिएट किया। वी एक्सपीरियंस के जब हम माइंड का ध्यान रखते हैं, हम फिजिकल बहुत एक्टिविटी भी अगर कर रहे हो तो भी माइंड लाइट है एंड राइट है तो फिजिकली भी एग्जॉशन है। आप अपने आप को एक हॉलीडे पे देखो, लुक एट योर सेल्फ ऑन अ पिकनिक, ठीक है। आप वॉक करते हैं, स्विम करते हैं, ड्राइव करके 2-3 घंटा दूर जाते हैं, वहाँ पे ट्रैक करते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आप अपने नॉर्मल डे पे कभी नहीं करते, राइट। फिजिकली आप बहुत एक्टिव हैं उस दिन, इनफैक्ट बहुत एग्जॉस्टेड हैं उस दिन, लेकिन आप मेंटली कैसे थे पिकनिक वाले दिन पर?
2: बहुत खुश थे।
0: तो घर आके भी कैसे लगेगा? और कुछ मूवी चलना है रात को, आई स्टिल हैव द एनर्जी। भाई फिजिकली सब चीज़ टूट रही है, दर्द हो रहा है। माइंड, आई डिड नॉट क्रिएट एनी स्ट्रेस टुडे, मैंने आज किसी पर गुस्सा नहीं किया सारा दिन पे, देर वॉज नो फियर। माइंड ओवर मैटर, मन का नहीं ध्यान रखेंगे तो टाइम का भी ध्यान नहीं रख सकते, क्योंकि सब चीज़ क्रम्पल होने लग जाती है। तो मेडिटेशन हम मॉर्निंग में भी करते, और फिर जैसे हमने कई बार डिस्कस किया, हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए वो ट्रैफिक कंट्रोल, वो चार्जिंग, ताकि अगर कहीं भी गलती से फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी दूसरी तरफ जा रही थी, हमें फिर वो अटेंशन मिल जाता, हम रुक कर फिर राइट थॉट्स क्रिएट करना शुरू करते। हमने कितना डिटेल में डिस्कस किया राइट थिंकिंग, तो वो राइट थिंकिंग कई बार बीच बीच में चेक कर लेते हैं। पूरा दिन अच्छा अगर बीतेगा, बहुत अच्छी नींद रात को आएगी, अगले दिन सुबह अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा, अपने आप आपकी नींद खुल जाएगी।
1: और एक बहुत बड़ी मदद मिलती है, और सब चीज़ों की तुमने चर्चा की है, परंतु सवेरे सवेरे आपने मेडिटेशन कर लिया तो परमात्मा की भी मदद मिलती है, जैसे वो हमें गाइडेंस दे रहे हैं, तो दैट इज अ ग्रेटेस्ट थिंग।
2: लेकिन मतलब अभी भी ज़्यादातर लोगों के साथ ये बात है कि मेडिटेशन और मेरे डेली लाइफ में क्या परिवर्तन है, क्या कनेक्शन है? सी, मेरे डेली ऑफिस के जो मीटिंग्स हैं, ऑफिस की जो हैंडलिंग है, ऑफिस के जो डिसीजंस हैं, उसमें और मेडिटेशन, तो मेरा जो हम मेडिटेशन यहाँ कर रहे हैं, एक परमात्मा के साथ कनेक्शन है या अपने साथ कनेक्शन है, उसमें मेरा ये जो ऑफिस के डिसीजंस हैं या लाइफ के डिसीजंस हैं, उसका कनेक्शन क्या है?
1: तो एक बार तो आप बिल्कुल रिलैक्स्ड होंगे तो लोगों से डील करना बहुत ईजी होगा। कई बार हम एंग्जाइटी में लोगों से डील करते हैं तो उल्टा गलतियाँ कर बैठते हैं, रिलैक्स्ड वे में करेंगे तो सही करेंगे। थोड़े डिटैच्ड भी होंगे तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है वह सही होगा। अब देखिए, डिटैच होके कोई देखता हो तो वह चीज़ को सही दिखेगा, वैसे आप डिटैच्ड होंगे तो आपका पर्सपेक्टिव सही हो जाएगा, अन्यथा आप अटैच होकर के कर रहे हैं तो आपका पर्सपेक्टिव भी गलत हो रहा है। इंट्यूशंस भी आपको मिलेंगे, जो इंट्यूशंस भी मदद करेंगे कार्य को सही करने में।
0: मेडिटेशन में जो सबसे पहली बेसिक जो हम एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं, माई थॉट्स आर इन माई कंट्रोल। जैसे ये फंडामेंटल चीज़ पर मास्टरी आ जाती है, आपके इमोशंस पर मास्टरी आने लगी, आपने सारा दिन किसी पर गुस्सा नहीं किया, चिल्लाया नहीं, आपने लोगों को वो जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना शुरू किया, तो आपने उनको कौन सी एनर्जी भेजी?
2: एक्सेप्टेंस के।
0: जैसे आपने उनको वो वाली एनर्जी भेजी, आपको उनसे कौन सी एनर्जी मिली? सी, एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि हम क्यों भारी हो रहे हैं, हमें अपने आसपास के लोगों से कौन सी एनर्जी मिल रही है। आई मे बी द लीडर ऑफ माई कंपनी, लेकिन अगर मैं स्ट्रेस्ड हूँ और उस वजह से कई लोगों के ऊपर मैं गुस्सा कर रहा हूँ, या गुस्सा नहीं भी कर रहा, बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, बहुत फियर क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे उनसे फियर की एनर्जी मिलेगी, ये एनर्जी मुझे भारी करेगी, उनको तो करेगी करेगी। आई ऑलवेज फील कि एक लीडर के लिए एक जूनियर से ज़्यादा रिस्की है। हमें लगता है कि जो जूनियर्स हैं इनको डांट खानी पड़ती है, तो इनके लिए बहुत टफ है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, चेकअप वर्कर का नहीं होता, एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप होता है। डांट किसको खानी पड़ती है? ज़्यादातर वर्कर को खानी पड़ती है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये एग्जीक्यूटिव को क्यों हो रहा है? क्योंकि एक एग्जीक्यूटिव कम से कम 10, 20, 100, 1000 वर्कर्स के लिए जिम्मेवार है। मैं एक को अगर डांटती हूँ, उसको तो एक ही बार डांट मिलती है, मैं 10 को डांटती हूँ, मुझे कितनी बार नेगेटिव एनर्जी मिलती है? 20 times, 10 times when I gave it and 10 times when they give it back to me। तो मेरी तबीयत पर तो असर पड़ना ही है, अगर मैंने बचा लिया अपने आप को इन चीज़ों से। और उल्टा अगर मैंने 10 times प्यार और एक्सेप्टेंस की एनर्जी भेजी, तो मुझे 20 times कौन सी एनर्जी मिलेगी? हाउ विल आई फील बाय द एंड ऑफ द डे? मेरे को लगेगा जितना पहले था उससे भी ज्यादा लेकर मैं शाम को घर पर पहुंचूं।
2: इन फैक्ट इट्स अ बिग टेस्ट। आप जैसा फील कर रहे हैं शाम तक जाते जाते, ये आपको बताएगा कि आपके दिन भर की स्थिति, आपने क्या क्या दिया है।
0: बिल्कुल, इट इज एब्सोल्युटली अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट, और कुछ भी नहीं है, इट्स अ रिफ्लेक्शन। मैंने आज सारा दिन कौन सी एनर्जी क्रिएट की, कौन सी एनर्जी गिव की, और फिर औरों से मुझे एनर्जी मिली, शाम को एक्सरे आपको पता चलेगा, यू नो एग्जैक्टली वेयर यू हैव मेड अ मिस्टेक। एटलीस्ट नाउ डोंट वेस्ट टाइम इन ब्लेमिंग अदर पीपल, लेट मी जस्ट चेंज व्हाट आई गिव फ्रॉम टुमारो। हर स्टेप पर चेंज आएगा, बहुत अच्छा सारा दिन बीतेगा, एंड यू विल एंजॉय योर वर्क, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट।
2: यस, वेरी ट्रू। इनफैक्ट आई विल एंजॉय द डे, यू नो, जो पूरा दिन, इतना सुंदर दिन मेरे लिए दिया है, उसको मैं एंजॉय तो कर पाऊंगी। सिस्टर शिवानी, डॉक्टर पटेल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शांति।
2: सचमुच देखने की बात है, बार बार हम कितनी बार फिल्म में या किसी किताब में, कविता में सुनते थे, पढ़ते थे कि जिंदगी एक बहुत खूबसूरत एहसास है। एहसास क्या हो रहे हैं हमें, आज हम जिंदगी जीना ही नहीं चाहते क्योंकि इतना थका हुआ महसूस करते हैं। आज जो इतना बड़ा टेस्ट हमारे सामने आया है, हम शाम को कैसा महसूस कर रहे हैं, अगर थके हुए हैं, अगर दुखी हैं, अगर परेशान हैं, गुस्से में हैं, इसका मतलब दिन भर में यही चीज़ें ना सिर्फ मैंने दी हैं बल्कि रिसीव की हैं। जब मैंने जितनी बार मैंने दी उससे डबल टाइम मैंने मुझे मिली है, क्योंकि उतनी बार मैंने दी थी और फिर उन्हीं लोगों से मुझे वापस मिली। अब देखना ये ज़रूरी है कि मैं क्या चाहती हूँ, कैसा महसूस करना चाहती हूँ। और मैं हमेशा अपने आप को कहती हूँ कि मैंने तो दिन भर अच्छा रही थी, लेकिन अगर शाम को मैं थकी हुई हूँ, इतनी भारी हूँ, तो इसका मतलब ये मेरे द्वारा क्रिएट की गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, टाइम को मैनेज करने के लिए जो अभी तक हमने इतने तरीके किए थे, एक जो आज मैं सूत्र पकड़ कर जा सकते हैं हम लोग, कि सुबह अपनी अपने हाथ में कर लें, जैसे अभी तक सोच को अपने हाथ में किया था, सुबह उठने को अपने हाथ में कर लें। एक बार मन को ये तैयार कर दें, समझा दें, बाकी सारी चीज़ें उठते ही मेडिटेशन को अपना, अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लें, बाकी सारी चीज़ें विल फॉल इन प्लेस। ये अनुभव बता रहा है, और देखते हैं, हम प्रयास करते हैं, पता चलेगा कि हमारा अनुभव क्या कहता है। आज अवेकनिंग विद रामा कुमार इसमें इतना ही, फिर मिलेंगे। ओम।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या। यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, क्यों? स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई? क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहां वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

दबाव और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप ऐकत आहेत रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ, अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट, एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आला आला आला
3: अहो काय आला
2: आला आला आवाज रेडियो चा

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: खुशियों की फुहार लाए की हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं, वेलकम सिस्टर।
3: ओम शांति।
2: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन।
3: थैंक यू।
2: आपने एक बहुत सुंदर बात की थी लास्ट टाइम कि गिविंग मोर देन टेकिंग, और टेकिंग में मैंने सोचा कि जब जिसके पास एक राजा है, प्रजा को बांटता फिरता है एंड रॉयल है, वैसे हमारे पास अबंडेंस में है, इतना प्यार, इतनी प्योरिटी, इतनी लव, इतना पीस। अगर मैं जैसे आप कह रही थी, अगर नहीं बोलूंगा, देखिए पुरानी आदत, अगर मैं सोल हूँ तो बोलने वाला था मैं।
3: अगर मैं
2: आई एम सोल एंड आई एम प्योर,
3: राइट,
2: आई एम प्योरिटी, आई एम लव, आई एम पीस, आई एम दैट,
3: राइट।
2: लैक ही नहीं है तो फिर हम क्यों गिविंग में फिक्र कर रहे हैं?
3: वो तो तब होगा जब ये पता होगा ना कि हमारे पास है। ये भूल गया कि मैं आत्मा हूं ही प्योरिटी, ये भूल गया कि मेरे पास अनलिमिटेड है देने के लिए, ये भूल गया कि ये मैं जितना दूंगा ये उतना बढ़ता जाएगा, तो फिर तो हमने सोचा कि मुझे चाहिए औरों से, तो लैक की तो ऑटोमेटिकली फीलिंग आ जाएगी। इफ इट्स लाइक इफ यू हैव लॉट ऑफ मनी, इतना धन है, इतना धन है, तो फिर लैक की फीलिंग क्यों आनी चाहिए? देना चाहिए ना, किसी को जरूरत पड़े तो देना चाहिए, घर में कोई काम आया तो देना चाहिए, कुछ किसी ने मांग लिया तो देना चाहिए। कमी की तो फीलिंग ही नहीं है, लैक नहीं है। लेकिन ये सब तो तब होगा जब याद होगा ना कि कितना है। अगर ये पता ही नहीं होगा कि है, अगर ये मालूम ही नहीं होगा कि कितना है, फिर कितना थोड़ा भी कोई खर्चा आएगा घर में तो हम कहेंगे पैसे नहीं है, ये नहीं करना, पैसे नहीं है, ये नहीं करना, है नहीं, उल्टो और उनको कहेंगे तुम मेरे को दे दो और। सो लैक की एटीट्यूड हैज कम ओनली बिकॉज वी डिडंट नो दैट दिस इज हु आई एम। अब जैसे ही हमें नॉलेज मिलेगी दिस इज हु आई एम, इमीडिएटली वो लैक की फीलिंग नहीं डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि जो मैं हूं उसको अब मुझे अनुभव करना है। अभी तो नॉलेज है, अभी नॉलेज है, अभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो ग्रूव है लेकिन उसको यूज नहीं किया है। जब तक यूज नहीं करेंगे तो देंगे नहीं, देंगे नहीं तो अनुभव नहीं होगा। तो इसलिए थोड़े समय के लिए उसको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ता है।
2: क्या एक्सपेरिमेंट करें?
3: एक्सपेरिमेंट करेंगे कि एक थी जीवन जब हम सामने वाले से एक्सपेक्ट करते थे वो करे ना, वो दें, वो पहले प्यार से बात करें, गलती उन्होंने की,
2: पहले वो नमस्ते करें,
3: पहले वो नमस्ते, वो तो बहुत छोटी बातें है ना, सारा दिन में भी
2: हाँ।
3: वो थोड़ा एडजस्ट करें, वो देंगे, उनसे मुझे मिलेगा, दिस इज टेकिंग, नॉट इवन टेकिंग, आस्किंग। हम मांग रहे थे, हम वेट कर रहे थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम पहले करें, उनसे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हम ही कर लें, हम प्यार दें, सामने वाला नहीं ठीक से बात कर रहा, हम करें, दिस हैज टू बी डन। इनिशियली थोड़ा सा ईगो क्या करेगा, उसको ब्लॉक करेगा, लेकिन ईगो को कम करना यही तो जर्नी है। अगर हम इस साइड पर भी फोकस कर लेना कि मुझे ईगो को कम करना है, मतलब सोल कॉन्शियसनेस बढ़ रही है ऑटोमेटिकली, अहंकार को घटा रहे हैं। जब भी अहंकार ने कहा मैं क्यों, उसको दबाया, बोलो इसको कम करना है, उन्होंने पिछली बार ऐसे बात की फिर भी मैं प्यार से बात करूं, जी दबाया, कट किया, कम किया, सोल कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, आत्मा की शक्ति बढ़ रही है।
2: पहले पहले जब ट्राई किया था तो लोग मुझे बाद में बोलने लगे, ओ ये बड़ा कमजोर सा सुरेश ओबेरॉय जैसा कावर्ड है। एक फिल्म प्रोड्यूसर ने मुझे बोला कि फलाना एक्टर भी तेरे जैसा कावर्ड है, डरपोक है, उसने इतना किया तो भी चुप रह गया या उसको हाथ मिला लिया जाके। और उसके ऐसे एक्सपीरियंसेस से क्या हुआ कि फिर समझ में नहीं आया कि ये करना सही है कि नहीं है, तो वहां बड़ा हर्ट होता था। लोग कहते थे यार बात गई छोड़ो, भूल जाओ। मैं भी ऐसे करने वाला था, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे धीरे सोसाइटी में इसमें आते वापस वो आ गया, वाई मी। अब मैं करूंगा तो ये लोग बोलेंगे देखा सुरेश ओबेरॉय के साथ ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, देखा लाइन पे आ गया ना।
3: इसका रिजल्ट देख लेते हैं क्या हुआ। सिर्फ
2: नुकसान उधर भी मेरा हो, अभी भी मेरा हो रहा है।
3: पहले क्या था, झुक जाना, एडजस्ट करना, गिव इन कर देना, खुद प्यार से बात कर लेना, और जैसे आपने कहा रात कई बात की, मतलब बातों को इजीली लेट गो करना, भूल जाना, ये संस्कार था।
2: लेकिन ऐसा भूलना नहीं था मेरा, वो बोलना ऐसा था ऊपर से, लेकिन अंदर याद रहता था।
3: ठीक है, लेकिन ऊपर से तो एफर्ट किया।
2: हाँ, वो किया था मैं,
3: है ना, बात तो की ना,
2: लेकिन हमेशा उसके लिए मुझे वो मिली फायरिंग, थ्रैशिंग, बदनामी
3: मिली आसपास के लोगों से।
2: हाँ, सब लोगों से।
3: तो आसपास के लोगों से वो मिलने से राय हमने क्या सोचा, दिस काइंड ऑफ संस्कार इज नॉट गुड फॉर मी, क्योंकि आसपास के लोगों ने कहा कि ये संस्कार सही नहीं है, आसपास के लोगों ने कहा कि ये संस्कार कमजोरी है, आसपास के लोगों ने कहा ये संस्कार मतलब डरपोक, ये आसपास के लोगों ने कहा। हमने पिछली बार भी देखा जो आसपास के लोग कहेंगे वो अपने संस्कार के फिल्टर के थ्रू कहने वाले हैं, राइट। तो जिसने भी कहा था कि ही इज ऑल्सो अ कावर्ड लाइक यू, दैट्स बिकॉज दैट वॉज नॉट हिज संस्कार, राइट। उस आत्मा के लिए ह्यूमिलिटी कमजोरी थी। तो उसने कहा, उसने जब आपके अंदर ह्यूमिलिटी देखी, उसने कहा वो भी आपकी तरह कमजोर है, क्योंकि उस आत्मा के लिए ह्यूमिलिटी कमजोरी थी, उस आत्मा के लिए अहंकार स्ट्रेंथ थी, वो उनका ओपिनियन, दैट्स ओके। हमने उनकी बात को सुना, उनके ओपिनियन को एक्सेप्ट कर लिया, अपने संस्कारों को चेंज कर दिया, ह्यूमिलिटी के संस्कार को
2: दबा दिया,
3: यूज करना बंद कर दिया। हमने कहा ठीक है, अब मैं दिखाता हूं इस दुनिया को, ठीक है। तो अब सामने वाला एक लाइन बोलता तो हम चार बोलते, सामने वाला अभी कुछ करता ही नहीं तो हम जोर से डांट देते। तो हमने क्या किया, अपनी एक इमेज में शिफ्ट लाई है। दिस इज ऑल्सो इमेज बिल्डिंग नो, एक्चुअली हमने इमेज में शिफ्ट लाई है कि मैं वो सॉफ्ट व्यक्ति नहीं हूं जो तुम देख रहे थे मुझे, मैं वो सॉफ्ट नहीं हूं जिसको तुम कमजोर कह रहे थे।
2: और ये करते करते करते मेरा ऐसा संस्कार बन गया कि नॉर्मली भी मैं फोन पे भी ऐसी बात करता था, उस पे होटल्स में जाके लॉन्ड्री किसी को भेजो, लाइक दैट।
3: नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड,
2: लैंग्वेज खराब हो गई थी।
3: लैंग्वेज नहीं सिर्फ खराब हो गई,
2: टोन तो बिल्कुल,
3: एटीट्यूड खराब हो गया है, क्योंकि एटीट्यूड में अंदर क्या फिट कर लिया, जोर से डांट के बोलो तो भी काम होता है, क्योंकि जब मैं सॉफ्ट था तो लोगों ने कहा वो कमजोरी है, तो मतलब
2: क्या, क्या बोलते थे, चुप रहता तो लड़की है, कमजोरी है।
3: सी, तो वी गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट पब्लिक ओपिनियन, राइट, वी गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पब्लिक ओपिनियन, वी चेंज्ड एंड वी अडॉप्टेड अ न्यू संस्कार। नाउ आई नीड टू आस्क माई सेल्फ, इस यात्रा में मैं जोर से बोला लोग चुप हो गए, लोग मेरे सामने डरने भी लगे, ये सब कुछ हुआ। रियली नीड टू रिफ्लेक्ट टूडे कि क्या ये न्यू अडॉप्टेड संस्कार या एटीट्यूड मेरे लिए लॉन्ग टर्म में हेल्दी रहा।
2: मेरी मदर इतनी वाइज थी, उन्होंने समझाया भी था मुझे, बोले पुत्र तू ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक पंजाबी में लाइन बोली थी, लज मरिंदा अंदर वड़िया मूर्ख जाने मैं तो डरिया, मतलब लाज के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एक इज्जतदार आदमी, कोई आदमी सामने घर से खिड़की दरवाजे से आपको चिल्ला रहा है तो आपने अपना दरवाजा बंद करके आप अंदर वाड़िया,
3: राइट,
2: शरीफ आदमी अंदर चला गया, मूर्ख जाने मैं तो डरे, मूर्ख समझेगा कि मेरे से डर गया, देखा डर गया।
3: लेकिन आपने चेंज कर दिया ना संस्कार उस प्रोसेस में, दुनिया की बात सुनकर,
2: क्योंकि लॉन्ग टर्म से चल रहा था।
3: लॉन्ग टर्म से चलने के कारण टुडे वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ, हम सही रास्ते चल रहे थे जिसमें अंदर हमारी ह्यूमिलिटी थी, सॉफ्टनेस थी, आत्मा की वो पावर थी, हमारा अपने कर्म इंद्रियों पर संयम था उस टाइम, हम जब चाहते विड्रॉ कर सकते थे, सामने वाला कुछ कहता हमारे अंदर चुप रहने की ताकत थी, हमें फॉरगिव करने की भी ताकत थी, ये सब हमारे पास ताकत थी। दूसरों ने कहा ये ताकत कमजोरी है।
2: मेरे साथ करता तो मैं दिखाता, आप तो बस इतने बड़े और इतने स्ट्रांग हो के आप क्या।
3: तो दूसरों ने हमारी ताकत को कमजोरी कहा, हमने फिर क्या कहा, व्हील चेंज।
2: हाँ।
3: तो हमने जोर से बोलना शुरू किया, गुस्सा करना शुरू किया।
2: और काम किया वो मेरा?
3: काम तो करेगा ही, वो बिल्कुल काम करेगा। बाहर लोग डर जाएंगे, लोग फटाफट से काम करना शुरू कर देंगे, लोग आपके कहने से पहले ही काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि कौन डांट खाएगा, पहले ही काम कर
2: दो, मुसीबत को पहले दे दो यार। चाहे
3: देखो लाइन आपने बोली है।
2: हाँ, यहाँ तक कि एक बार साउंड रिकॉर्डिस्ट ने, मैं बार बार पीछे उसका बेट, मुझे मालूम नहीं था उसका बच्चा पीछे बैठा, मैं डबिंग करता जाऊँ वो कुरकुर कुरकुर कुछ करता जाए, तो मैं थोड़ा सा चिढ़ गया, तो उसने बोला जरा खतरे से दूर हो जाओ, आ जाओ। ही इंसल्टेड मी दैट वे।
3: ही डिडंट इंसल्ट यू।
2: आई मीन दिस एटीट्यूड मेड मी हियर सच लाइंस।
3: दिस एटीट्यूड मेड देम
2: से
3: थिंक लाइक दैट अबाउट यू। ऑब्वियसली अगर कोई जोर से बार बार बोलता है, बहुत ज्यादा रिएक्ट करे, अग्रेसिव हो, अनप्रिडिक्टेबल हो, पता नहीं अचानक कभी भी कुछ भी कह देंगे, तो लोग कहेंगे ना खतरे से दूर रहो। जितने साल ये समय चला होगा, हर बार जब आपने वो मेथड यूज किया, आत्मा की शक्ति तो घटी, टर्बुलेंट एनर्जी यूज की ना,
2: उस टाइम एटीट्यूड क्या था, काम तो हुआ ना।
3: काम तो हुआ, वो तो 100% है कि काम तो हुआ, बाहर का काम हुआ, सोल पावर कम हुई, करते करते ये हमारी एडिक्शन बन गई।
2: और कितनी बद्दुआएं भी ली ना।
3: ये एडिक्शन बन गई, तो जहां जरूरत नहीं थी वहां भी ऐसे ही बोला।
2: हाँ।
3: है ना। अब जैसे आपने कहा होटल में फोन किया, लॉन्ड्री वाले को बोला ऐसे, अभी तो उसने कोई गलती नहीं की है, अभी तो उसने कुछ नहीं किया, उसके साथ की फर्स्ट कॉन्वर्सेशन है। हाउ डू यू नो कि वो फर्स्ट पार्टी में काम करेगा या नहीं करेगा। एटलीस्ट अगर वो बिलीफ सिस्टम भी था कि गुस्से से काम जल्दी होता है, वो तब करना चाहिए ना जब चार बार बोल के काम नहीं हुआ था। हमने फर्स्ट टाइम में ही वो मेथड यूज करना शुरू कर दिया। अब आप एक क्षण सिर्फ विजुअलाइज करें कि आप उस लॉन्ड्री वाले भाई की जगह पर है, ठीक है, एक होटल में कोई फोन करता है फर्स्ट टाइम, कौन है नहीं मालूम, और उसे एक छोटा सा काम बोलता है, लेकिन जोर के डांट के बोल देता है, सामने वाला कैसी थॉट क्रिएट करेगा।
2: एक कोई अजीब सा कस्टमर आया हुआ है फोन पे,
3: दुआएं तो नहीं है, अब ये है
2: ऑपोजिट ही है उसका।
3: अब आप उस सिर्फ टाइम पीरियड पे अगर रिफ्लेक्ट करें कि ऐसे करते करते दिन में कितनी बार इस तरह से बात होती होगी लोगों से।
2: नॉर्मल हो गया था, हमेशा ही ऐसा करता था। मैंने बोला अब तो दुनिया को तो ये रूप अच्छा लगता है, करते करते फिर मेरा ऐसा नेचर हो गया।
3: दुनिया को ये रूप अच्छा लगता है, लाइन को चेक करना होगा, दुनिया से ये काम करवा लेता है, ये रूप दुनिया को डरा लेता है। दुनिया को ये रूप अच्छा लगता है,
2: डिजर्व करती है दुनिया, ऐसे समझा था।
3: फिर करते करते आपने कहा ये मेरा नॉर्मल हो गया, मतलब मैं ऑलमोस्ट दिन में सबसे ऐसे बात करने लगा।
2: हाँ, हमेशा ही। और कई फ्रेंड्स बाद में जो रियल फ्रेंड्स थे बोलने लगे, डू यू नो आपने उस पेपर वाले से कैसे बात की। तो मैंने बोला मैंने क्या किया, मैंने तो उसको नॉर्मल बोला। बोले नहीं आपने नहीं बोला, किसी ने मुझे बोला कि यू नो समथिंग तुम्हारे वॉइस पे एक एरोगेंस सा है, कोई एक्सप्लेन। तो मैं सोचने में और डूब जाता था कि मैं तो अच्छी बात कर रहा हूँ, नॉर्मल बात कर रहा हूँ, लोग ये लोग क्यों ऐसी बात करें मुझे।
3: मैं अच्छी बात कर रहा हूँ मतलब, क्योंकि मैं वो नॉर्मल बात कर रहा हूँ।
2: तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मेरा ऐसा बन गया था कि टोटली मैं समझ रहा था कि दिस इज मी। और वो बन ही गया था, जैसे सिनेमा में कैमरे के सामने मैं एक रोल करता हूँ ना, और बिल्कुल वही बन जाता हूँ। तो वैसा बन गया था, मुझे मालूम ही नहीं था कोई और रूप भी होता है।
3: विच मीन्स जो रोल हमें लोगों ने सिखाया कि ऐसे बोल के काम करो, हम उस रोल में इतना घुस गए
2: कि मुझे
3: कि हम 24/7 वो रोल जीने लग गए।
2: तो आई वॉज ऑलवेज फीलिंग दैट आई एम राइट, आई एम ओके। मैं तो बड़े प्यार से बात की, यार तुम क्या बोल रहे हो। तो मैं सोच में पड़ जाता था व्हेन ही सेड कि न्यूज़पेपर का, मुझे आज तक याद है, न्यूज़पेपर वाला हमारा सीनियर था उम्र में, तो साथ में फ्रेंड बैठा था, तो आया तो मैंने उससे क्या बात की याद नहीं पड़ती। आई स्टिल रिमेम्बर हिज लाइंस, डू यू नो हाउ ही स्पोक विद हिम। फिर मेरे छोटे भाई ने एक बोला, आप क्या सभी प्रोड्यूसर्स से ऐसी बात करते हो? आपको मालूम है आपने इससे कैसे दो चार लोग टोके, बच्चे रोने लगे जब मैं बात करूं नॉर्मली, वरना बच्चे भाग के आते थे मेरे पास। तो ये मुझे धीरे धीरे रियलाइजेशन हुआ, लेकिन टाइम नहीं मिला अपने ऊपर काम करने का।
3: अब ये जो पीरियड बीतता है ऐसे, इसमें हर बार हमने वो मेथड यूज किया एंड फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक क्रॉनिक केस है ये कि वो ही नॉर्मल मेथड बन गया।
2: हाँ।
3: है ना, वो नॉर्मल मेथड बन गया तो आत्मा की बहुत शक्ति इसमें घटती है। और फिर इट्स नॉट ओनली अबाउट अस, इट्स अबाउट हरेक के साथ वैसे बिहेव किया। देखो जो आसपास के लोग होते हैं ना, फैमिली फ्रेंड्स, वो फिर भी हमारे नेचर को तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जान जाते हैं।
2: हाँ,
3: है ना।
2: हाँ।
3: उनको पता होता है कि नहीं ये वैसे अच्छे हैं, लेकिन इनका आदत पड़ गई है इस तरह से बात करने की, तो उनके यहाँ कुछ नहीं क्रिएट होगा। लेकिन रैंडम सारा दिन में जिन लोगों को हम मिल रहे हैं, जैसे आपने कहा न्यूज़पेपर वाला, ऐसे जो लोग हमें जानते नहीं है, लेकिन वन टाइम मिले, कहीं मिले, कहीं काम हुआ और उनसे इस तरह से बात कर ली, तो वो तो हमें नहीं जानते, तो उनको तो सिर्फ कौन सी एनर्जी मिलेगी, तो वो हमें कौन सी एनर्जी भेजना शुरू कर देंगे। तो करते समय डिप्लीशन, वहां से आया तो डिप्लीशन, आत्मा की शक्ति घटती गई।
2: मेरा बेसिक प्रॉब्लम क्या था कि मैं जो लोग मुझे समझने लगे थे ना, बहुत स्वीट है लड़कियां, मुझे आके सीनियर बड़ी बहन की चीज वगैरह, कितना प्यारा है तू, मुझे लगता था कि मुझे वो कह रहे हैं कि मैं लड़की जैसा लगता हूँ, कितना स्वीट है, कितना लड़का है, कितना भोला है, कितना है। मुझे ऐसे लगा कि यार मुझे लोग ऐसे क्यों हाथ लगाते बात करते हैं।
3: दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि आज बहुत सारे भाई बहन ये कहते हैं कि ये मेरा संस्कार था, झुकना मेरा संस्कार था, एडजस्ट करना मेरा संस्कार था, जो दूसरा मांग रहा है वो दे देना, फॉरगिव करना, ये मेरा संस्कार था। लेकिन सबने कहा आज के समय पे दिस संस्कार विल नॉट वर्क, या जैसे आपने कहा, सबने कहा कि ये तो कमजोरी है। तो हमने क्या कर दिया, उस प्योर संस्कार को मर्ज कर दिया, और एक वातावरण के संग के कारण हमने एक रफ संस्कार अक्वायर किया। अब ये रफ संस्कार ने हमारा नुकसान किया है, वी नो इट, बट द ब्यूटिफुल पार्ट इज कि ओरिजिनल संस्कार तो प्योरिटी है, इस जन्म में भी उसको एक्सपीरियंस किया है, तो वो ज्यादा पुराना नहीं है। कितने साल नहीं यूज किया होगा, ज्यादा 10 साल 20 साल 30 साल, उतना ही नहीं किया होगा, लेकिन बहुत पुराना नहीं है। तो अब जैसे ही वापस उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल जर्नी, क्योंकि वो इसी जन्म का संस्कार है। हम में से बहुत है जिसके लिए वो इसी जन्म का संस्कार है, छोड़ दिया था क्योंकि एक बार धोखा खाया, दूसरी बार किसी ने कुछ किया, तीसरी बार किसी ने कहा, हमने कहा दिस डजंट वर्क।
2: तीसरी बार ये एवरी डे का प्रॉब्लम था ना, आई डिड नॉट चेंज इन वन डे। हम स्कूल बंक नहीं करते थे, पिक्चर में हम क्लास मिस करके नहीं जाते थे, हमारे साथ के लोग कॉफी सिगरेट विगरेट पीते थे, हम नहीं पीते थे, तो करते करते मुझे लेवल हो गया था कि ये तो लड़की है।
3: yeah.
2: ये तो डरपोक।
3: कलयुग में लेबल्स को ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि लेबल्स जो लगा रहे हैं वो भी आपको कौन से फिल्टर से देख रहे हैं, अपने संस्कार के, एंड मेजोरिटी कलयुग का जो बिलीफ सिस्टम है उसके थ्रू। मैं आत्मा सही हूं या नहीं, इसकी चेकिंग अपने आप करनी होगी कि व्हाट आई एम डूइंग एंड हाउ आई एम बीइंग, डज दिस मेक मी फील नाइस एंड अदर्स फील नाइस, पैरामीटर है हमने शुरू में सेट किया इस सीरीज में।
2: लाइनें मुझे अच्छी लगती थी।
3: अच्छी लगती है ना,
2: अभी भी अच्छी लगती है। कभी कभी ऐसी लाइन्स चाइनीज रेस्टोरेंट में खाना खा के कुछ वो जो कुकी तोड़ के उसके अंदर से भी निकलता है, तो
3: हाँ।
2: वहां भी अच्छी अच्छी लाइनें मिलती थी, ये सब अच्छा लगता था।
3: yes.
2: लेकिन कर नहीं पाता था क्योंकि मैं एक वो वाले संस्कार के पिंजरे में फंस गया था।
3: कोई बात नहीं, अक्वायर्ड संस्कार है ना। नाउ वी हैव टू ओनली रिमेम्बर द क्राइटेरिया, मेक मी फील नाइस, मेक अदर्स फील नाइस, जो मेरे लिए एट ईज कंफर्टेबल है औरों के लिए है। दुनिया पूरी कहे ना कि ये गलत है, कुछ लोग नहीं, पूरी दुनिया कहे ना ये संस्कार गलत है तो भी नहीं छोड़ना है, तो भी नहीं छोड़ना है, बिकॉज इट मेक्स मी फील नाइस, इट मेक्स अदर्स फील नाइस, दैट्स हाउ वी नीड टू होल्ड ऑन टू इट, क्योंकि वो आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है। जब हम आत्मा के ओरिजिनल संस्कार को कर्म में लाते हैं, सबसे पहले आत्मा को खुद बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि द सोल एक्सपीरियंसेस इट्स ओरिजिनलिटी, अपना निजी गुण जो उसको सुख देता है, जब आत्मा वो अनुभव करती है उसको बहुत अच्छा लगता है। हम कितना भी शोर मचा लें, गलत कर लें, अंदर सुखी नहीं होंगे, एट ईज नहीं होंगे, शरीर पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। सो लेट्स सी वो 7 क्वालिटीज जो हमारी अपनी है, उसको अगर सारे भी कहें कि नहीं यूज करना, वी आर नॉट गोइंग टू लिसन टू एनीबडी। अगर सारे भी कहें कि इट डजंट वर्क इन टुडेज वर्ल्ड, वी आर नॉट गोइंग टू लिसन टू देम, क्योंकि वो मुझ आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी है। कैसे पता चलेगा कि वो मुझ आत्मा की ओरिजिनलिटी है? वो चीज आज हम ढूंढ रहे हैं, मांग रहे हैं, शांति हम ढूंढ रहे हैं, मांग रहे हैं,
2: घर घर जाके देख लो आप,
3: शांति ढूंढ रहे हैं, मांग रहे हैं, संतों के पास जा रहे हैं शांति दे दो, मंदिरों में जा रहे हैं शांति दे दो,
2: घर में पूजाएं करवा रहे हैं,
3: कर रहे हैं शांति दे दो,
2: अपनी कुंडलियां दिखवा रहे हैं कि शांति कब मिलेगी यार मुझे बताओ,
3: क्योंकि हम वो मांग रहे हैं, वो मुझ आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी है जो मैं आत्मा एक्सपीरियंस नहीं कर पा रही अंदर, क्योंकि मैं उसको कर्म में नहीं ला रही, और कोई तरीका नहीं है एक्सपीरियंस करने का, कुछ भी नहीं है। कर्म में लाया अनुभव हो जाएगा। आपके सामने किसी ने कुछ गलत किया और आपने फॉरगिव किया और आप कंफर्टेबल होके बैठ गए, उस क्षण आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे? शांति एक्सपीरियंस करेंगे। वही तो मोमेंट्स हैं, दोज आर द मोमेंट्स इन विच वी एक्सपीरियंस पीस, बिकॉज वी हैव एक्सप्रेस्ड द कर्मा इन पीस। जो एक्सप्रेस किया वो एक्सपीरियंस, जो एक्सप्रेस किया वो एक्सपीरियंस, मांगा उससे नहीं होने वाला। तो शांति हर आत्मा मांग रही है, वी नो दैट, प्यार हर आत्मा मांग रही है। सो जो हम मांग रहे हैं वो हमारी ओरिजिनलिटी है। लव, लव मीन्स एक्सेप्टेंस, लव मीन्स केयरिंग, लव मीन्स कंपैशन। नाउ वी वांट दैट फ्रॉम अदर पीपल। When we shift our consciousness, ke love means acceptance, which means I will accept every soul. Main har atma ko accept karu, wo jaise hain, jo unke sanskar hain, main unko pyar ki energy radiate karu, because I am a loveful being. Main prem swarup atma ho. Jaise radiate karenge, achha feel hoga. Wahan se vibration achhi aayengi, aur achha feel hoga. नहीं तो जीवन भर औरों से मांग रहे हैं प्यार दो, प्यार दो, प्यार क्या है वो भी भूल गया है, उसका एक्सपीरियंस ही नहीं मालूम है, उसको कितनी और चीजों के साथ मिक्स कर दिया है, वी हैव नॉट इवन फॉरगॉटन व्हाट इज रियली लव। अब जो आपने कहा ये मेरे पहला संस्कार था, झुक जाना, फॉरगिव करना, इज इट पॉसिबल टू कम बैक टू दैट अगेन?
2: आई बीन कमिंग, कब से कर रहा हूं?
3: कर रहे ना,
2: मैंने जब से आपसे मिला और जब से ये एपिसोड्स कर रहा हूँ तो तब से तो मैं ये कोशिश कर ही रहा हूँ।
3: तो हो रहा है ना?
2: हो क्या रहा है? कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी बेइज्जती करवा के भी हुआ, जो भी हुआ, मन ने बोला कि तूने अपनी बेइज्जती करवा के इतना क्यों मरना है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
3: अब जो वो क्षण है जब आप ऐसा कर लेते हैं, विच इज वेरी ऑफन नाउ, उस क्षण क्या अनुभव होगा?
2: अब अच्छा लगता है, पहले पहले लगता था कि मैंने अब सरेंडर करके बेइज्जती करवा ली, झुक गया,
3: अब अच्छा लग रहा है ना?
2: अब जब आपकी बातें समझ में आई तब तो और अच्छा लगता है, कि लगता है कि आई एम अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। अर्लियर मुझे लगता था कि क्या कमजोर हो गया हूँ मैं, कैसा हूँ मैं, और लोग भी आके बोलते थे ये वीकनेस।
3: लेकिन फील कैसा होता है उसको करने के बाद?
2: मुझे एक वन स्टेप अहेड एंड फर्दर, और एक माइल और आगे बढ़ गए अपने पाथ पे। मेरा जो गोल है,
3: राइट,
2: कि सबको सोल देखना है,
3: हाँ,
2: और सब खुद भी खुश रहना है, दूसरे को भी खुश रखना है, मेक अदर्स फील हैप्पी,
3: राइट,
2: एंड उसकी अच्छी क्वालिटीज देखनी।
3: कैन यू कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन द टू फीलिंग्स? जो पुराना वाला मेथड था, रिएक्ट कर देना, डरा देना,
2: वो
3: लो थी,
2: और उसके बाद पहले लड़ने के बाद झगड़े करने के बाद घंटों आवर्स नाइट्स डेज नींद खराब और गुस्सा अब तो बहुत मजा आता है
3: हो गया ना सिंपल
2: अब एलिवेटेड फील करता हूँ
3: सिंपल एंड विच मीन्स जिन्होंने वो राय दी थी वो सही नहीं थी ना राय ये वाला बेटर फीलिंग है ना
2: जिन्होंने राय दी थी वो जो मैं करता था तो उसका जो रिपरकशन होता था वो राय देने वाले को रिपरकशन नहीं मिलता था फेस तो वो ट्यून मुझे करनी पड़ती थी हर कल पुलिस स्टेशन कोई चला गया कोई झगड़ा बढ़ गया कोई कोर्ट चला गया तो सारा तो मैं ही ना
3: उन्होंने जो आपको राय दी ना
2: हाँ।
3: वो राय किस लिए दी कि आप जोर से बोलेंगे ना तो आपके काम हो जाएंगे वो राय ठीक थी लेकिन हमने उस राय को चेक नहीं किया कि उसके बाकी सब रिपरकशंस कितने आने वाले हैं अब जैसे ही एक्सपेरिमेंट किया रिजल्ट मिला आपने अभी कहा अच्छा लग रहा है लाइटर फील हो रहा है नींद अच्छी आ रही है विक्ट्री वन स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स माय गोल ये सब कुछ चीजें हर रोज अपने आप को याद दिलानी है परमात्मा सिखाते हैं कि ज्ञान और मेडिटेशन से जो आपको प्राप्ति हो रही है अपने आप को रोज याद दिलाओ अपने आप को रोज याद दिलाना है मुझे ये प्राप्ति हुई है मुझे ये परिवर्तन आया है इस परिवर्तन से मेरा ये फायदा हुआ है ये अपने आप को रोज याद दिलाना है ताकि फिर आत्मा और ज्यादा मोटिवेट होगी वही वाले तरीके को यूज करने के लिए नाउ वेन एवर एनी सिचुएशन विल कम बात आएगी परिस्थिति आएगी पास्ट एक्सपीरियंस अब कौन सा पास्ट एक्सपीरियंस है अब इस पास्ट एक्सपीरियंस को लेना है उस दिन झुके थे बहुत अच्छा लगा ज्ञान क्या है नॉलेज क्या है कि आई एम अ सोल प्योर सोल सामने वाला भी आत्मा बिलीफ सिस्टम क्या है लव वर्क्स पीस मेक्स माई लाइफ ब्यूटिफुल बिलीफ सिस्टम जब तीनों फैक्टर्स चेंज हो गए थॉट्स चेंज डेस्टिनी चेंज
2: बहुत अच्छी बात है सर लेकिन अगले एपिसोड में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे मेरा पहले संस्कार चेंज किया था अच्छे से गुस्से वाला कड़क बात करना और ये करना मैं नॉर्मल हो गया था तो मुझे लगता था कि जो भी बोल रहा है कि यू स्पोक टू मी रूडली तो मैं तो कमाल है यार आप ऐसे ही बोल रहे हो वैसा जितना नॉर्मल और नेचुरल वो सेल्फ बना था इसमें कैसे हूं
3: श्योर
2: थैंक यू सो मच
3: ओम शांति
2: ओम शांति थैंक यू
4: व्हेन वी आर सोल कॉन्शियस वी ब्रिंग द ओरिजिनल संस्कार्स ऑफ द सोल प्योरिटी peace, love, power and happiness into our karma. We experience these qualities when we bring them into action. For example, if we cross a problem peacefully, we will experience peace. When we experience our qualities, we do not expect them from others. When we are body conscious, we expect peace, love, power and happiness in our roles, achievements and from people. When we are soul conscious, we accept others as they are. We use our qualities in every thought and action and radiate them to others. We shift from asking to giving. If we pay attention to working on our ego, we start putting aside our ego and bringing our qualities into action. Qualities of forgiveness, humility, letting go and acceptance will increase soul power. We will start shifting from body consciousness to soul consciousness. Social conditioning teaches us to use our acquired sanskars because it appears to get our work done and demands respect from others. Acquired sanskars will always deplete soul power and will radiate negative energy to others and receive the same in return, which further depletes our power.
3: If you wish to discuss your problem, or have a question to ask, or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 09999559660।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।

0: मैं हूं पंकज उदास और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो।
1: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष एपिसोड में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हम लोग विशेष बातें

0: है ना, कभी कभी हम लोग बैटरी और वायर जोड़ के लाइट जलाते हैं तो कितनी खुशी हो जाती है बचपन की बातें। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं आगे चल के इलेक्ट्रॉनिक के साथ जोड़ने के लिए या इलेक्ट्रिक चीज़ों में आपको रुचि बताता है और आप अपना करियर इसमें कर सकते हैं। तो आइए आज के इस शो में हम लोग गगनदीप सिंह से बात करेंगे कि उनके जीवन का जो यात्रा है वो कैसे शुरू हुआ और उन्होंने करियर कैसे अपना फ्रेम आउट किया, उसके बारे में जानते हैं। तो आप सभी की तरफ से गगनदीप सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया जी।
0: जी जी जी, और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और अपनी बचपन की कुछ यादें ताज़ा करिए। आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ पर हुआ?
1: मेरा जो बर्थ है वो है फिरोजपुर में, पंजाब में।
0: जी जी जी,
1: जो कि बहुत वैसे फेमस है, हुसैनी वाला बॉर्डर है ना, हमारे दो बॉर्डर पड़ते हैं।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: एक तो अमृतसर में है वाघा बॉर्डर है, तो एक फिरोजपुर में है हुसैनी वाला बॉर्डर। तो 10 किलोमीटर दूर हमारा वो शहर है, तो वहाँ पे मेरी स्कूलिंग हुई। तो मैंने 4th तक वहाँ पे स्टडी की। तो मेरे पिताजी रेलवे में है ना, तो उसके बाद उनकी ट्रांसफ़र हो गया अंबाला में, सानेवाल में, लुधियाना में, ऐसे करके।
0: अच्छा,
1: तो उनकी ट्रैवलिंग की वजह से फिर मेरे को
0: स्कूल भी आपका चेंज ही होता रहा।
1: स्कूल चेंज होता रहा बीच बीच में तो पर जिस भी जगह से स्कूल छोड़ा तो वहाँ पे जो हेड मिस्ट्रेस या प्रिंसिपल होते थे वो कहते जाना इनको नहीं, इसको नहीं लेके जाना, तो दूसरे दोनों भाइयों को ले जाओ। तो शुरू से स्टडी में इंटरेस्ट था, तो चलो बाद में फिर ऐसे करते करते फिर 4th तक वहाँ पे स्टडी किया फिरोजपुर में।
0: अच्छा अच्छा,
1: हाँ जी। वो हमारी फैमिली सारी वहाँ पे थी, तो सारे मेरे पिताजी और बड़े ताया जी, मेरे ग्रैंडफादर, वो सारे रेलवे में थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हाँ जी,
0: बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहूँगा स्कूलिंग के बारे में, मना जहाँ पर आपकी एक ऐसे होता है ना, कई बार हम लोग को भी अच्छा लगता है कि इस जगह पे,
1: हाँ
0: तो आपको ऐसा नहीं लगा कि ये क्या घड़ी घड़ी चेंज करना है?
1: इसमें ऐसा है अभी, चलो जिस भी जगह पे गए पहले थोड़ा सा अटैचमेंट थी, हाँ, ग्रैंड मदर के साथ।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो जब जाते थे तो थोड़ा सा रहता था, अभी इमोशनली टच होता है फिर पूरा ना। तो जब फिर वापस आना फिरोजपुर में तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाना। तो पर वहाँ जैसे वहाँ पे सानेवाल में गए पहले, तो 1997 के अराउंड वहाँ पे गए, तो थोड़ा सा मन नहीं लगा पढ़ाई में या क्लास में भी रोते रहना। फिर वहाँ पे एक और दिक्कत आ गई भी, वो कहते भी जो आपका स्कूल है वो एफिलेटेड नहीं है। तो मैं 6th में था, तो वो कहते आपको साथ में 5th भी करनी पड़ेगी।
0: अच्छा।
1: तो उस टाइम पे भगवान ने बहुत साथ दिया भी, चलो 5th में भी मैंने साथ में एग्जाम दी और 6th के भी साथ में चले, और मेरे 5th में भी 75% आ गए साथ में करते करते।
0: अच्छा, क्या?
1: तो 6th में भी फिर मैंने, वैसे तो मैं सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ, पर मैंने हिंदी मीडियम चूज किया।
0: अच्छा।
1: तो मेरे में सारे लगभग जो संस्कार हैं वो हिंदू धर्म वाले हैं, या कह लो सनातन धर्म वाले हैं। तो शिवरात्रि का जैसे होता था वो मेरे को शुरू से रहता था, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का, दीपावली का, तो ये सारे मेरे में। तो मैं एक पंजाबी लड़का एक ही था भी जो हिंदी मीडियम जिसने चूज किया।
0: अच्छा।
1: तो और उसमें भी मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे थे, वो हिंदी मीडियम वालों से भी ज्यादा थे। तो वो फिर सानेवाल में न्यू मॉडल स्कूल था।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो वो बहुत अच्छा उस टाइम पे अच्छा स्कूल था। आजकल तो काफी ब्रांडेड स्कूल आ गए ना। अच्छा, तो उस टाइम पे वो कह लो भी क्रीमी स्कूल था उस टाइम पे। हाँ जी, तो वहाँ पे मैंने स्कूलिंग की। तो 10th में मेरे काफी अच्छे मार्क्स आए, और मेरिट में आने से मेरे थोड़े से मार्क्स रह गए थे, पर मेरे 100 of 100 मैथ्स में आए, जो कि सभी का कह लो भी डिफिकल्ट लगता है, 100 out of 100। और अच्छा। दो जनों के आए थे, एक मेरे और एक जो लड़की आई थी मेरिट में, उसके आए थे। हाँ जी, बहुत अच्छा वहाँ का जो सफ़र है उस स्कूल का, तो यादें उससे काफ़ी जुड़ी हुई हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। और मैं चाहूँगा कि बचपन की हम लोग का जैसे कुछ इवेंट्स होते हैं, 15 अगस्त या 26 जनवरी होते हैं, उस समय भी हम लोग का जो है कहीं ना कहीं हम लोग फंक्शन में जुड़ जाते हैं। अच्छा। तो क्या ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ आपने या स्पोर्ट्स में कुछ एक्टिविटीज़ बचपन में रही हो?
1: हाँ, बचपन में मतलब बचपन से लेके अभी तक का जो मेरा ना वो जो सफ़र है भी, उसमें मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, अंतर्मुखी, जो कि इस टाइम पे जो मेरे को लगता भी वो जरूरी भी था, अभी मेरे को पता चला भी उसकी वैल्यू कितनी थी। तो मैं शुरू से ज़्यादा इंट्रोवर्ट ही रहता था, ज़्यादा मतलब मेरे को उसमें थोड़ी सी वो रहती थी, झिझक रहती थी। तो मैंने पार्टिसिपेशन कम ही किया जब स्कूल में थे, तो फिरोजपुर में, तो उस टाइम पे मैंने जैसे हमारे को ना पिकनिक पे लेके जाते थे, एक वहाँ पे सारागढ़ी गुरुद्वारा था, तो उस टाइम पे वहाँ पे मैंने थोड़ी से पार्टिसिपेट किया था, जैसे आर्मी का उन्होंने बनाया था भी, उन्होंने उस टाइम पे बोला भी आपको आर्मी की, एक होता है ना पिकनिक पे वो पार्टिसिपेशन करवाते हैं, चाहे आर्मी की करवाते हैं, चाहे वो भांगड़ा में करवाते हैं, तो उस टाइम पे मैंने

0: पार्टिसिपेट किया था, बाकी बीच बीच में तो होती रही है, जैसे क्वाली की एक बार पार्टिसिपेशन हुई वो भी मैंने की थी।
1: अच्छा।
0: फिर हमारे वहाँ पे फंक्शन होते थे स्कूल में, उसमें भी पार्टिसिपेट किया। तो गेम्स में भी मैंने डिप्लोमा में किया।
1: अच्छा, अच्छा।
0: उसके बाद टेंथ के बाद फिर मैं डिप्लोमा किया, तो वो मैं फिर दोबारा वहाँ पे अपने होम टाउन में चला गया, फिरोजपुर में। वहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फिरोजपुर है, तो वहाँ पे मैंने 3 ईयर डिप्लोमा किया, 2002 से 2005 तक। तो वहाँ पे मैंने हॉकी में, हॉकी 2 साल खेली वहाँ पे।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे स्कूल लाइफ में हमारी जो है टीचर्स होते हैं या हमारे प्रोफेसर्स होते हैं, उनके साथ भी हमारी बड़ी अटैचमेंट हो जाती है कभी कभी। कोई टीचर पढ़ाते तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, उनके साथ जो है हमारी एक बनी रहती है। ऐसा कुछ हुआ आपके साथ में जो टीचर आपको याद रहे या प्रोफेसर?
0: हर एक जगह पे एक्सपीरियंस रहे हैं, हर एक स्कूल में।
1: जी जी।
0: तो जैसे न्यू मॉडल स्कूल सानेवाल में जब हम गए, फिरोजपुर से शिफ्ट हो गए पापा की जॉब की वजह से, तो वहाँ पे चलो स्कूल में तो पढ़ते, तो वैसे ही मैंने थोड़ा सा न्यू था ना स्कूल में, तो थोड़ा सा लगा भी इंग्लिश थोड़ी सी उस टाइम पे वीक थी, लग रहा था ऐसे। तो फिर बाद में जो सब्जेक्ट में मैं वीक था उसी में मैं टॉपर बनता गया धीरे धीरे।
1: अच्छा, अच्छा।
0: जैसे 8th में भी मैं फर्स्ट आ गया। फिर जैसे लड़कियां होशियार होती ना पढ़ने में, वो भी मतलब फिर बैक एंड पे चली गई धीरे धीरे।
1: अच्छा, अच्छा।
0: मतलब मैंने सभी को पिछाड़ दिया कह लो। फिर उस टाइम पे एक टीचर थे हमारे, वो इंग्लिश भी पढ़ाते थे, और एक शशि मैडम, जैसे हमारे शशि मैडम थे, तो वो पढ़ाते थे उस टाइम पे। तो वो उस टाइम पे कहते थे, कहते तुम बहुत आगे जाओगे, उन्होंने मुझे उस टाइम पे बोला था,
1: मोटिवेट किया।
0: हाँ जी। तो वो टीचर एक कह लो भी इस टाइम पे भी अभी अभी मिल नहीं पाया उनसे काफ़ी टाइम, क्योंकि अभी जॉब की वजह से जाना नहीं हुआ। तो पर मैं बीच बीच में ना, जैसे इससे पहले मेरी जॉब थी एक, तो मैं टीचिंग करता था, 5 साल मैंने टीचिंग किया डिप्लोमा कॉलेज में। तो उससे रिलेटेड मेरे को जाना पड़ता था काउंसलिंग के लिए, उस टाइम पे बच्चों की काउंसलिंग करते थे, भी आप यहाँ पे हमारे कॉलेज में एडमिशन करवाओ। तो मैं उसी स्कूल में जाता था, तो फिर वहाँ पे मैथ्स वाले सर भी होते थे, तो वो भी बताते थे इसके 100 out of 100। वो फिर मेरे से वो थोड़ा सा बुलवाते भी थे कि
1: अच्छा,
0: आप
1: अच्छा।
0: बच्चों को प्रेरणा दो थोड़ी सी। तो इसके लिए हम बिहार पटना तक भी गए अभी काउंसलिंग के लिए, वहाँ से बच्चे लेने के लिए। हाँ जी। तो वो एक टीचर थे भी जो हिंदी हिंदी पढ़ाते थे हमारे को, शशि मैडम।
1: अच्छा अच्छा।
0: और डिप्लोमा में भी थे और बीटेक में भी थे। बीटेक में मेरे एक टीचर थे, जब मैंने बीटेक किया सिटी इंस्टीट्यूट जलंधर से किया
1: जी जी,
0: तो वहाँ पे भी हमारे जो एचओडी थे उनसे मतलब मैंने काफ़ी कुछ सीखा। मतलब मेरे में उस टाइम पे थोड़े से होते ना, जब हम पढ़ते हैं वो थोड़े से हम कह लो मेच्योर नहीं होते पूरे, तो मेरा हेयर स्टाइल थोड़ा सा और था, मैंने बाल खड़े किए थे उस टाइम पे। तो उन्होंने फिर मेरे को समझाया भी थोड़ा सा, मेरे को उनकी बातें टच हुई फिर। तो फिर अभी वो भी सेम डिपार्टमेंट में है मेरे। तो हमारे उस कॉलेज में जितने भी इलेक्ट्रिकल के टीचर होते थे वो सारे बिजली बोर्ड में सिलेक्ट हो जाते थे।
1: अच्छा, अच्छा।
0: उस कह लो भी उस कॉलेज को एक ऐसा वरदान मिला हुआ था।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: भी मैंने नहीं देखा भी जो उस कॉलेज में गया भी वो टीच इस डिपार्टमेंट में ना आया हो। और एक वो एचओडी हमारे, उनका नाम शुमिंदर सिंह सिद्धू है, वो मोहाली में जॉब करते हैं।
1: अच्छा, अच्छा, अच्छा।
0: तो वो भी कह लो भी उनकी रिस्पेक्ट दिल से है।
1: चलिए, गगनदीप सिंह जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया, और आशा करूंगा बचपन की यादें आपने ताज़ा करी, आपने पढ़ाई के दौरान जो चीज़ें हुई उसके बारे में आपने बताया। निश्चित तौर पे हमारे विद्यार्थी मित्र जो हमें सुन रहे हैं उन सभी को भी अच्छा लग रहा होगा, और अपनी बचपन की यादें, स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ की कुछ ताज़ी बातें जो हैं अच्छी तरह से उनके जीवन में आ रहा होगा। यादें आपकी जो हैं खूबसूरत बन रहे होंगे। बचपन की यादें किसे अच्छा नहीं लगता है ना, एक बार हम लोग खो जाते हैं तो बड़ा एक सुकून मिल जाता है। तो निश्चित तौर पे आपको अगर कभी कोई बात ऐसी मुश्किल वाली लगती है तो बचपन की बातें ज़रूर याद कीजिए, इससे आपको जो है बेहद सुकून मिलेगा और अच्छा लगेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ एक बहुत ही प्यारा सा गीत की तरफ ले चलता हूँ। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: मैं हूं पंकज उदास और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो।
1: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ जो है विशेष गगनदीप सिंह जी हैं, जिनसे हम लोग बातें कर रहे हैं। तो चलिए, मैं चाहूँगा कि एक बहुत ही अच्छी बात हो रही है, जिस तरह से हम लोग पढ़ाई के दौरान बहुत सारी चीज़ें सीखते जाते हैं लेकिन अपने करियर को लेकर कहीं ना कहीं हम लोग उतना अवेयर नहीं होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप करियर को लेकर गगनदीप जी, किस तरह से बचपन में आपको क्या बनना पसंद था, किस तरह के विचार आपके मन में आते थे, इन फ्यूचर क्या बनना चाहते हैं, ऐसे कुछ सोचते थे तो किन चीज़ों पे फोकस करते थे?
2: जैसे बचपन में होता ना, भी हमें टीचर हमारे पूछते हैं भी आप क्या बनना चाहते हो, ठीक है ना। वो नॉर्मली हम आंसर दे देते हैं भी, कोई कहता है मैं पायलट बनूंगा, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई डॉक्टर कह देता, कोई साइंटिस्ट कह देता। ऐसे मेरे मन में भी कुछ ऐसा विशेष नहीं था, क्योंकि हमें पता ही नहीं अभी हमारा एक्चुअल में गोल क्या होता है। गोल तब बनेगा ना भी जब हमारे पास पता भी हम कर क्या रहे हैं, हमें एक्चुअल में हम किस ट्रैक पर चल रहे हैं, या फिर हमें सोर्स कौन से मिल रहे हैं, क्योंकि वो गाइडेंस नहीं है, वो ना पेरेंट्स देते हैं। टीचर सिर्फ हमें ये सिखा देगा भी आप ये बन जाओ, पर उसके लिए हमारे पास ये नहीं रहता भी एक्चुअल में मेरे अंदर क्या चल रहा है। हमें अपनी क्वालिटीज नहीं, अगर हम शॉर्ट में मैं बोलूँ तो हमें अपनी क्वालिटीज नहीं पता होती है, और उसको लगता भी मेरे को उसको जानने के लिए हमें शायद थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में या फिर भगवान की तरफ जाना पड़ता है, तभी हमें वो क्वालिटीज आती हैं। तो इसके मेरे कुछ अनुभव बचपन से ही, जैसे भगवान ने किस किस टाइम पर हेल्प की है, बहुत अच्छे इसमें अनुभव हैं। तो जब आप अगर चाहेंगे तो मैं उसको बताऊँगा भी, एक बहुत अच्छा अनुभव था उस टाइम पे भी।
1: जी जी जरूर सुनाइए, स्वागत है।
2: हाँ जी, तो उस टाइम पे ना जैसे हम सानेवाल में थे, तो जैसे मेरे फादर के पास एक फ़ोन था, जैसे वो ख़राब हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उन्होंने वो फिर कह लो उसको मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए दे दिया किसी के पास। तो उनको बदले में नया और कोई फ़ोन मिल गया। तो थोड़े दिन में ना, जैसे हमारे पड़ोस में एक रहते थे, अंकल रहते थे, तो उनके बेटे के साथ ही उन्होंने, चलो उन्होंने गाइडेंस दी थी उस टाइम पे, ये भी देखो मतलब ये भी एक भगवान की कृपा कहेंगे, उन्होंने बोला भी मेरे लड़के ने भी डिप्लोमा करना है, आप भी इनको डिप्लोमा करवा दो। हमें अच्छा। नहीं पता था, मुझे नहीं पता था मैंने क्या करना है टेंथ के बाद।
1: अच्छा,
2: कोई वही ना भी हमें पता ही नहीं होता हमारे में विशेषताएं क्या है, पर ये पता था भी मेरे को ये क्वालिटीज पता थी भी शुरू से भी, मैं ऑनेस्ट हूँ और मेरे दिल में किसी के लिए कुछ नहीं है, या सच्चाई सफाई वाली, वो मेरे को पता था, मेरे में ये और नहीं कुछ पता था भी और क्या। तो वही अंकल ने फिर अपने लड़के को भी डिप्लोमा करवाया, तो उसके साथ चलो पिताजी ने मेरे को भी साथ में डिप्लोमा कॉलेज में एडमिशन दिलवा दी। तो उन्हीं दिनों में क्या हुआ भी, मैं जैसे ना वो फ़ोन की बात आई, तो फ़ोन थोड़े दिन बाद वो अंकल बोले भी ये जो फ़ोन है ना वो आईजी पता होगा ना आपको, जो पुलिस में पोस्ट होती है, बहुत बड़ी पोस्ट होती है, वो चंडीगढ़ के कहते हैं आईजी है, ये उनका फ़ोन है। कहते ये फ़ोन में मतलब आपको कैसे मिला ये फ़ोन, ये कहते ये तो फ़ोन चोरी का है। तो बड़ी घर में वो, फिर हमारे तो सारी फैमिली वैसे ही वो ऑनेस्ट, या फिर कह लो भी गवर्नमेंट जॉब, या फिर वही लेना और वही कमाना और वही खाना। तो पिताजी को टेंशन हो गई उस टाइम पे, उन्होंने तीनों भाइयों से पूछा भी आपने कहीं से ये कोई फ़ोन तो नहीं उठाया, सॉरी ये नहीं पता था भी ये फ़ोन है, वो कहते कोई फ़ोन चोरी हुआ है। तो बाद में मेरे को एकदम से टच हुआ अभी आपने वो व्यक्ति से फ़ोन लिया जिससे आप, जिसको आपने फ़ोन ठीक करना दिया, एकदम से जैसे टच हुई वो बात भी, आपने आप ही फोन लेके आए थे और आप हमको कह रहे हो भी फोन तो नहीं उठाया, उन्होंने मतलब शक नहीं किया, पूछा हमसे। तो मेरे को फिर वो आया भी दिमाग में, आप तो फोन लेके आए हो, क्या पता वो ही फोन हो। वो कहते आईजी का रीडर है, तो वो फिर कहते बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, तो वो तो फिर पुलिस डिपार्टमेंट तो पूछती नहीं ना, वो तो फिर थोड़ा सा अपनी कार्रवाई अपने हिसाब से करते हैं। तो वो मतलब भगवान की उस टाइम पे मदद मिली भी, वो टच हुआ, वो फिर पता किया, वो कहते ये किसी ने फोन बेचा था उस व्यक्ति को। तो उस तरह से वो फोन चलो उनको वापस कर दिया हमने। तो मतलब भगवान की मदद समय समय पर मिलती रही, मतलब टचिंग मिलती रही, कह लो भी ये हमारी बुद्धि नहीं इतनी होती है, वो भगवान ही हमें टच करता है।
1: बहुत अच्छी बात आपने बताया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया आपने, ईश्वर की मदद कैसे मिलती है हमको ये आपने बताया। तो मैं चाहूँगा कि जैसे पढ़ाई करते थे तो हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, या फिर कह लो कि कोई लीडर्स की कहानी सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये लीडर्स के बारे में और जानने की आपकी कोशिश रहती है। तो ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं, बहुत सारे लीडर्स हुए हैं, तो उनमें से कौन अच्छा लगता था और क्यों अच्छा लगता था?
2: उसमें ये अभी जैसे जैसे मैं मच्योर होता गया ना, तो मेरे को ये पता चला भी सिस्टम में काफ़ी गड़बड़ियाँ हैं।
1: बिल्कुल,
2: मतलब मैं तो चलो चल रहा हूँ भी ऑनेस्टी के रास्ते पे। पर वो कहते भी जो आजकल के टाइम में ऑनेस्ट व्यक्ति होता है तो वो क्या है भी एक जैसे एक मशीन चल रही है तो उसमें एक स्क्रू की तरह होता है, अगर वो अपने रास्ते पे चल रहा है तो उसको निकाल देंगे, उस स्क्रू को निकाल देंगे, उससे मशीनरी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो धीरे धीरे करते करते क्या हुआ भी मेरे में थोड़े से वो क्रांतिकारी वाले विचार आने शुरू हो गए भी ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये गड़बड़ी क्यों हो रही है, लोग ट्रैफिक लाइट को क्रॉस क्यों कर रहे हैं, या फिर ये रिश्वत क्यों चल रही है, ये सारा कुछ मतलब जो सच्चाई होनी चाहिए थी वो गुण थे पहले से ही। मतलब कभी अब मेरे को जैसे सॉरी थोड़ा सा बीच में ये बता दूं भी, अब मेरे को 9 साल हो गए इस डिपार्टमेंट में और मैंने आज तक कोई पैसा ना ही लिया, और हमारे में लेते भी और देते भी हैं, अपने डिपार्टमेंट वालों से भी पैसे लेते भी, आपने ये काम करवाना तो पैसे तो, पर मैंने आज तक दिया नहीं। तो जो हमारे डिपार्टमेंट में एक सीनियर ऑफिसर भी हैं, मेरा उनसे शुरू में कॉन्टैक्ट हो गया था, वो आज भी कॉन्टैक्ट में है। तो वो मेरे को कहते रहते थे भी एक बार दोगे तो बार बार देना पड़ेगा, और एक बार लोगे तो वो लेना पड़ेगा, और एक रुपये का भी चोर होता है और लाख रुपये का भी चोर। वो तो चलो उन्होंने मोटिवेट किया पर मैंने तो लेने नहीं थे ना कभी। तो इसी तरह से मेरे को भगत सिंह बहुत पसंद था। तो जैसे फिर उसकी जैसे 23 मार्च को था ना भी उनको फांसी पे लटकाया गया, तो उस दिन मैं उनके गांव भी कई बार जाता था। अच्छा। तो उस टाइम पे मेरे को आता था भी लोग ऐसा काम क्यों करते हैं, इनको फॉलो क्यों नहीं करते हैं। तो फिर मैं बीच बीच में जाता था, उनकी एक बहुत बड़ी मैंने फोटो निकाली फ्रेम करा के अपने घर में भी रखी हुई थी, तो मैं उनको फॉलो करता था एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने मतलब सच्चाई के रास्ते पे चले, उन्होंने बेसिकली देश के लिए काम किया ना, तो देश से प्यार भी शुरू से ही था भी हमारा देश, हमें उससे गद्दारी नहीं करनी चाहिए या फिर हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे देश को नुकसान पहुंचे।
1: बिल्कुल।
2: तो पॉलिटिक्स में तो मेरा कभी रुझान हुआ ही नहीं, तो मैंने आज तक न्यूज़पेपर भी बहुत कम पढ़ी है, टीवी में भी कभी ना ही मेरा इंटरेस्ट है, आज तक मैंने कभी वोटिंग भी नहीं की इसी वजह से। आज मेरी 38 साल एज होगी तो मैंने कभी आज तक वोट अपनी डाली नहीं है। तो ये मेरा मतलब क्रांतिकारी स्वभाव था, वो चलो भगवान के रास्ते पे चलने से थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ गया तो ब्रह्मा कुमारी से, उसके बाद मेरा धीरे धीरे वो स्वभाव थोड़ा सा नरम होता गया।
1: बिल्कुल।
2: मतलब सच्चाई वो वैसे की वैसे रही और क्रांतिकारी से जैसे कह लो भी मतलब सहनशीलता का गुण वो धीरे धीरे अपने में लाता गया मैं।
1: गगन दीप सिंह जी, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे हमारे जीवन में कई बार हम लोग ऐसे ना किसी चीज़ को पढ़ते हैं या किसी को सुनते हैं तो हमें एकदम से ऐसा एक आइडिया क्लिक होता है कि मुझे भी ऐसा बनना है, तो क्या ऐसे बचपन में या कॉलेज में जब पढ़ते वक्त ऐसा कुछ हुआ था?
2: हाँ, इसमें मेरा साइंस स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा मेरा संबंध है।
1: हाँ,
2: मेरे को लगता भी मेरा शायद पिछले जन्म का भी इनसे कोई कनेक्शन है। तो मतलब मेरा जो ब्रेन है, मेरे को लगता भी जैसे एक किसी साइंटिस्ट का ब्रेन है इस टाइम पे, मेरे को लगता है जैसे मैं इस ईश्वरीय मार्ग पे आता गया तो वो और ज्यादा इसमें कह लो भी डेवलप होना शुरू हो गया कह लो।
1: बिल्कुल।
2: जैसे
1: बिल्कुल।
2: मैं न्यूटन को बहुत फॉलो करता था, आइंस्टाइन को बहुत फॉलो करता था, निकोला टेस्ला जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था वो उसने टेस्ला कॉइल बनाई थी वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए, वो तो चलो कुछ वजह से वो डेवलप नहीं कर पाया उस सिस्टम को, नहीं तो आज इलेक्ट्रिसिटी कहते पूरे वर्ल्ड में फ्री होती। तो होता है ना कुछ रीजन से उसको दबा दिया जाता है या कुछ होता है अच्छी चीज को, जो फ्री वाली चीज है उसमें देश को कोई फायदा नहीं होता ना।
1: नहीं, देश वाले भी इंटरेस्ट नहीं लेते।
2: इंटरेस्ट भी नहीं लेते, फिर वो एक मोनोपोली होती है ना भी, पैसा कैसे कमाया जाएगा। तो फिर मैं
1: वही, मैंने भी जैसे कि आपको सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो नैनो टेक्नोलॉजी का मैंने बचपन में सुना था कि भाई स्पेस में जाने के लिए 60 रुपये खर्चा आएगा।
2: हाँ जी,
1: तो मैं वो तब से सुनते आ रहा था कि भाई इसको अभी तक डेवलप क्यों नहीं किया। तो वो कहीं ना कहीं जो है चीज़ें जैसे कि
2: मतलब जैसे इसमें मेरा ये अनुभव है अभी, जैसे पेन ड्राइव उस टाइम पे आई नहीं थी, मतलब कुछ ऐसी इन्वेंशंस है वो मेरे को पहले लगता था ये होनी चाहिए।
1: बिल्कुल।
2: जैसे
1: बिल्कुल।
2: फोन में गाने बजते हैं, अभी फोन में ऐसी कोई चीज लगनी चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा डाटा हो, तो वो बाद में पेन ड्राइव डेवलप होगी या इन्वेंट होगी।
1: सही बात।
2: जैसे वो ही बोल रहा हूँ भी, अब जैसे ना आकाश से मेरा बहुत ज्यादा संबंध है, स्पेस से मेरा बहुत ज्यादा संबंध है, जैसे मैं उस चीज की ओर देखता हूँ आकाश की ओर, तो हमारा जैसे घर गांव में है, गांव भी नहीं कह सकते है, लुधियाना में मतलब 5-6 किलोमीटर दूर है, पर वो बहुत ही पीसफुल एरिया है।
1: अच्छा अच्छा।
2: तो जैसे मैं रात को या फिर किसी भी टाइम पे आकाश की ओर देखता हूँ तो मेरे को जैसे एक सिग्नल मिलता है।
1: अच्छा।
2: या फिर मेरे को पीस भी मिलती है और मेरे को लगता है कुछ मेरे को ऐसी टचिंग होती है जिससे मतलब कुछ भी मैंने करना तो वो मैटर सॉल्व हो जाता है या मेरे को इंडिकेशन मिल जाती है ऐसे।
1: सही बात है। बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं, आशा करूंगा हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर। और हम जब विद्यार्थी रहते हैं तो बहुत सारे आइडियाज़ हमें क्लिक होते हैं और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें ऐसा बनना चाहिए, बाद में क्या होता है कि समय के साथ साथ वो चीज़ें जो हैं, अगर आप उन आइडियाज़ को लिख के नहीं रखते, पकड़ के नहीं रखते हैं, तो फिर आप जब डिग्री लेके बाहर आते हो तो फिर आपके जीवन में कुछ प्रैक्टिकल लाइफ को देखकर जो है चीज़ें अलग हो जाती हैं और हम उनसे दूर हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पे हमें जो है उन चीज़ों पर थोड़ा सा पकड़ के रखने के लिए, अपने आइडियाज़ को कैच करके रखने के लिए हमें जो है हमेशा उनको लिख के रखना चाहिए। इसलिए एक अगर हम लोग छोटा सा हैबिट बना के रख ले कि हमें जो चीज़ें पसंद आ रही हैं, हमें जो चीज़ें करने के लिए मन हमारा, बुद्धि हमारा आकर्षित हो रहा है, उन सभी को अगर आप लिख के रखते हो तो आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी बुद्धि कौन सी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं और उनमें कॉमन क्या है, और उस कॉमन चीज़ को अगर आप पकड़ के अपने करियर को फ्रेम करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप उन चीज़ों को करेंगे तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, एक सुकून मिलता है क्योंकि आपको अपने पसंदीदा काम करते हैं और फिर उसमें हावर्स ज़्यादा कम होने से भी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप एन्जॉय कर रहे हो तो आपकी थकान नहीं होती है और आप जो है उन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से एंटरटेनमेंट की तरह करते हैं तो आप उसमें एक्सेल कर पाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, करियर इन इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के बारे में अब हम गगन दीप सिंह से सुनेंगे कि कैसे उन्होंने अपना करियर को फ्रेम आउट किया और कैसे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में उनका जो सर्विस है वो जुड़ गया। तो अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: गाओ ना गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें।
1: मुझे नहीं आता।
2: नहीं विनोद भैया, आजकल तो गीता दीदी खूब गाती है।
3: हाँ हाँ गाइए ना।

0: सर, इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: That's the spirit, sir.

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। और आशा करूंगा आपको ये गीत सुनकर मोटिवेशन तो मिलता ही है, संगीत के साथ जब हम जुड़ते हैं तो एक ट्रैंक्विलाइजर मन को मिलता है और मन जो है रिफ्रेश होकर फिर से कुछ नई बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। तो आइए फिर से मैं गगनदीप सिंह जी से आपको जोड़ना चाहूँगा और करियर इन इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की बात हम लोग करें। तो आपने इसको कैसे किया, जैसे ही आप डिप्लोमा शुरू किया उसके बाद डायरेक्टली नौकरी पे लगे या और कुछ आपने किया या फिर कैसे हुआ, थोड़ा सा बताइए।
1: हाँ जी, जैसे मैंने फिर 10th में पास आउट हो गया तो उसके बाद फिर
0: डिप्लोमा,
1: हाँ जी डिप्लोमा की ऑप्शंस शायद हम पहले बात कर चुके हैं अभी
0: जी,
1: भी वो अंकल ने थोड़ा सा पापा को बताया भी चलो। तो फिर उस पर मैं फिर वही होम टाउन में वहाँ पर एडमिशन मिल गई गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक में। तो उसमें भी उससे पहले की थोड़ी सी जर्नी अभी, तो पहले 10th में एडमिशन एकदम से नहीं मिल गई,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो जैसे JET का जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं वो पहले देना पड़ता था उस टाइम पे,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो उसके बाद अभी वो टेस्ट नहीं है, अभी सीधा काउंसलिंग होता है,
0: बिल्कुल।
1: तो उस टाइम पे फिर टेस्ट दिया तो वो कहते भी उन्होंने फिर एक चक्कर डाल दिया, जैसे मेरी 5th में एडमिशन हुई थी वो कहते थे आपका स्कूल एफिलेटेड नहीं है, तो उसी तरह से उन्होंने भी डाल दिया, वो कहते भी आपका भी ये पंजाब बोर्ड ये एफिलेटेड नहीं है। तो चलो मैंने मतलब मेरी लाइफ में ऐसे कुछ कह लो भी आए हैं स्टेप कह लो या फिर स्पैन आया भी उस टाइम पे मेरे को मैंने छोड़ दिया भी, मैंने ये नहीं, कई लोगों ने केस भी किया, उन्होंने केस किया था उस टाइम पे, जैसे जॉब में भी आया से 3-4 बार हुआ।
0: अच्छा।
1: कि वही ना भी शांति का एक तरीके से वो अंदर शांति थी भी नहीं कुछ नहीं करना मिल जाएगा अपने आप ही। तो फिर मैंने +2 में नॉन मेडिकल में एडमिशन ले ली, तो फिर मैं जाने लग पड़ा वहाँ पे। तो बाद में थोड़े 2 महीने बाद ही पता चला, 2-3 महीने बाद भी उन्होंने कुछ केस किया था तो वो केस जीत गए, अभी आपको एडमिशन मिल सकती है।
0: अच्छा।
1: फिर वो डिप्लोमा में वो लिखा हुआ था ना, फिर वो कहते भी डेस्टिनी में जो लिखा होता वो तो खुद
0: तो
1: चल के आ जाता है।
0: हाँ।
1: क्योंकि वो भगवान ने दिलवाना था, वो सेवा करवानी थी तो वो अपनी सेवा भी करवाता है ना इस तरीके से। तो फिर चलो एडमिशन मिल गई, तो फिर मैं उस टाइम पे मेरे को याद है जब हम बस में जा रहे थे मैं अपने फादर के साथ, तो पूरा जाते वक्त और पूरा आते वक्त लगभग 2 घंटे का रास्ता है, चंडीगढ़ में काउंसलिंग होती थी, तो मैं पूरा भगवान को याद करता रहा, जो भी अपने सिख धर्म के अनुसार मतलब एक एक सेकंड का भी जिसको कहते हैं ना निरंतर या निरंतर, तो मैं करता रहा भी मेरे को एडमिशन मिल जाए अब, क्योंकि अब मेरी भी इच्छा थी ना। अच्छा, हम चाहते थे भी पिताजी चाहते थे सिविल इंजीनियर में मिल जाए, उस टाइम पे बहुत ट्रेंड था उसका, तो चलो मिला नहीं, वो कहते भी अभी इलेक्ट्रिकल में ही है। तो फिर मेरे को चलो ये भी एक दिमाग में आया भी चलो सारे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हैं, पिताजी भी हैं और जो मेरे ताया जी वो रेलवे का AC डिपार्टमेंट है वो देखते थे, और जो मेरे ग्रैंडफादर थे तो वो यूनियन के जो एक तरीके से वो हेड थे, तो वो सारा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट भी, तो मेरे को लगा चलो यही कर लेते हैं। तो फिर उससे जर्नी स्टार्ट हो गई एक तरीके से डिप्लोमा में, तो उसमें भी भगवान की इतनी मदद मिली भी, उस टाइम पे पहले 2 सेमेस्टर होते थे मल्टीपल चॉइस होते थे ABCD, उसमें से एक टिक करना होता था, तो वो चलो मैं अक्टूबर में एडमिशन हुई, दिसंबर में एग्जाम थे, और डिप्लोमा कॉलेज में गवर्नमेंट जो होते हैं तो उसमें एक प्रोविजन होती है भी अगर आप 1st 2nd पे आओगे तो आपको 6,000 रुपया माफ हो जाएगा, और अगर आप 3rd 4th पे आओगे तो आपको शायद 3,000 माफ हो जाएगा, ऐसा कुछ था। मतलब उस टाइम पे जब मेरी एडमिशन हुई तो मेरा सारा डिप्लोमा लगभग 25,000 में कंप्लीट हो गया।
0: अच्छा।
1: तो मेरे को काफी कंसेशन मिल गया फी में, और उसके जो 2003 बैच वाले थे तो उनको कह लो भी उनके बार से फीस बढ़ गई उनकी।
0: अच्छा।
1: सीधी 14,000 होगी, 14,000 एक बार और 13,000 एक बार, और मेरी थी टोटल फीस 9,000 साल की। मतलब
0: अच्छा।
1: भगवान ने स्टेप बाय स्टेप बहुत मदद की है,
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और मैं कह लो भी लेट जाने के बावजूद भी मैं 3rd आ गया फिर पहले सेमेस्टर में।
0: अच्छा।
1: दूसरे सेमेस्टर में फिर 3rd आ गया, उसके बाद एक बार फिर गेम्स में पार्टिसिपेट किया, मतलब करते कराते मेरा लगभग आधी फीस रह गई।
0: अच्छा, अच्छा।
1: जो कि लगभग मेरे को कह लो भी 30-35,000 देना पड़ता, वो मैंने 20,000-21,000 शायद इतना पे किया डिप्लोमा में, तो चलो उसमें अच्छे मार्क्स आ गए। तो चलो फिर उसके बाद थोड़ी सी तलाश शुरू होगी भी नौकरी करें, क्योंकि उस टाइम पे इतना फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी
0: जी, जी, जी।
1: तो सोचा तो यही था भी डिप्लोमा करेंगे 15-20,000 की जॉब मिल जाएगी, पर वो होता ना जब हम फील्ड में उतरते हैं तब पता चलता भी कंपटीशन क्या है और धक्के खाना क्या होता है। तो मैंने बहुत जॉब की कह लो भी सर्च की।
0: अच्छा, अच्छा।
1: मेरे को नहीं मिली जॉब, फिर मैंने रिलायंस पंप पे 3 दिन काम किया, वहां पे तेल डाला 3 दिन।
0: अच्छा, अच्छा।
1: जो गाड़ियां आती थी उसमें पेट्रोल तो उसके बाद फिर चलो वो भगवान रास्ता दिखाता जाता है ना, तो फिर पता चला भी एक जगह पे इलेक्ट्रिकल के पैनल बनते हैं, तो वो चलो मैंने 2-3 दिन देख पिताजी साथ में गए उन्होंने सिखा दिया, और जैसे मार्केट के पैनल होते हैं वैसी सफाई हमारे हाथ में आ गई, वो भी मैंने उस पर थोड़ा सा जॉब किया वहाँ पे। पर फिर मेरे को लगा भी मेरा पढ़ने का मन है, पर पैसे उस टाइम पे इतने नहीं थे। फिर हमने सानेवाल में क्या किया, वो पिताजी ने वो मकान बेच दिया और छोटे भाई को भी स्टडी करवा दी और हमारे को भी करवा दी।
0: अरे
1: तो फिर हमने एडमिशन ले ली और उसमें भी एक चमत्कार हुआ, भी वो कॉलेज नया खुला था सिटी में जहाँ पे मैंने पढ़ाया। तो उस टाइम पे वैसे तो फीस कह लो पहले साल उन्होंने कम रखी थी, 1 लाख थी शायद, वो अगली बार उन्होंने 1,20,000 रख दी। तो फिर मेरा एक फ्रेंड था, वो कहता आप उससे मिलो, टीचर से, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मिलो। और फिर मैंने 10,000 और मेरी कम हो गई।
0: अच्छा अच्छा
1: 1,10,000 रह गई टोटल। मैंने फिर लिखवा भी लिया कॉलेज से, भी ये ना होना भी कल को ये मुकर जाए हमारे पे तो भारी पड़ जाएगा। तो 1,10,000 में मेरा डिप्लोमा फिर हो गया। तो उससे अगले साल फिर जैसे डिप्लोमा में हुआ था 9,000 से फीस 23,000 होगी, और यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, उन्होंने सीधी फीस 1,10,000 से बढ़ा के 2.5 लाख कर दी।
0: ओके।
1: तो उसमें भी चलो अच्छे करते कराते फिर, मतलब उसमें मेरे एक और अनुभव रहा भी, सबकॉन्शियस माइंड सभी ने पढ़ा होगा।
0: बिल्कुल।
1: मेरा एक किसी वजह से पेपर एक रह गया, उसमें मेरी रीपियर आ गई। तो मैंने सोचा भी अगर मेरे 38 मार्क्स आ जाएंगे तो मेरी 75% बन जाएगी, तो उतने ही मार्क्स आए। फिर उसके बाद मेरे ना जैसे ये वो हमने बात की आकाश तत्व या फिर
0: जी,
1: ब्रेन
0: जी।
1: में कुछ ऐसी टचिंग आनी शुरू हो गई भी, जो मैं नंबर सोचता था या तो कहीं वो बोल रहा हो, जैसे मैं अभी 65 बोलूंगा, मैंने न्यूज सुनी उसमें आ जाएगा 65, ऐसे वो सारे मतलब कलेक्टिव कह लो भी माइंड में आनी शुरू हो गई ऐसी टचिंग। तो उसके बाद फिर चलो मैंने डिप्लोमा किया, फिर डिग्री कर ली, बीटेक भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिर मेरे वहाँ पे मेरे को चंडीगढ़ के पास है वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे को टीचिंग की जॉब मिल गई।
0: अच्छा। हाँ, कितना समय तक किया टीचिंग का आपने?
1: मैंने 3 महीने वहाँ पे किया और उसके बाद जो हमारे जैसे मैंने बात की थी भी, वो मेरे कह लो भी बोल रहे थे ना, आपने पूछा था भी, हाँ, कौन आपके एक तरीके से आइडल है,
0: आइडल, हाँ।
1: तो जो हमारे डिपार्टमेंट है वो मोहाली वाले जो सर है
0: जी,
1: तो उन्होंने बोला भी यहाँ पे एक पोस्ट है डिप्लोमा में खाली हुई है तो आप यहाँ पे आ जाओ। तो उन्होंने बोला था भी आप सैलरी वगैरह अच्छी मांग लेना, ये देंगे आपको भी। तो फिर उन्होंने 3 महीने मैंने वहाँ पे की और उसके बाद 5 साल मैंने उसी कॉलेज में की जहाँ से मैंने स्टडी की थी, बीटेक की थी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे चलो भगवान ने फिर यहाँ पे जॉब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में।
0: अभी कहाँ पर हैं आप?
1: अभी मैं PSPCL पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
0: वहाँ पर।
1: हाँ जी
0: जी। चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया, धन्यवाद, शुक्रिया अपनी यात्रा सुनाने के लिए। और अभी आप वर्तमान में जो है गवर्नमेंट जॉब ही है?
1: हाँ जी, गवर्नमेंट जॉब
0: जी जी। तो इसमें क्या वर्क रहता है आपका?
1: हाँ जी, अभी यहाँ पे जो मेरी पोस्ट है ना वो है जूनियर इंजीनियर है। तो इसका भी मेरा एक अनुभव है, जैसे इसमें भी जैसे हमने एग्जाम दिया तो मेरे लगभग मेरे ख्याल से 55 मार्क्स आए थे, तो कट ऑफ थी 56 point something थी। तो उस टाइम पे वो रह गया, चलो फिर छोड़ दिया, टीचिंग तो कर ही रहे थे। तो उसमें फिर एक दिन ऐसे हुआ भी, मैंने वैसे ही उनकी वेबसाइट देखी तो उन्होंने भी लड़कों ने केस कर दिया भी, उसमें ना कुछ 3-4 क्वेश्चन गलत थे।
0: अच्छा, अच्छा,
1: और वो
0: अच्छा।
1: कहते हैं जो क्वेश्चन गलत होते हैं चाहे आप कोई भी एग्जाम होगा तो उसके आपको वो ग्रेस मार्क्स उनको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि उनकी वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी तरफ से एरर होता है। तो चलो मैंने देखा भी इसमें मेरा नाम है, मेरे को फिर एकदम से अचंबा सा हुआ। तो मैंने कहा मेरे नाम का और भी कोई हो सकता है? उसके बाद पिताजी का नाम देखा, मैंने कहा वो भी सेम हो सकता है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देखी, फिर मेरे को कंफर्म
0: हो गया कि आपका ही है।
1: हाँ जी। तो ये भी मैंने मतलब अगर मैंने चीज देखी अभी लाइफ में, अगर आप शांति से रहते हो तो आपको सब कुछ मिल जाता है और अगर आप वो उपद्रव कर लो या फिर आप कह लो जैसे होते ना भी इकट्ठे होके हमने ये हमें ये चाहिए हमारी मांगे पूरी करो, तो उसमें कई बार आपको नुकसान ही हो जाता है। शांति में रहने से तो आपको सब कुछ मिल जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ जी
0: गगनदीप सिंह जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया, बहुत ही अच्छा शेयरिंग आपने किया और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की जो यात्रा है आपने अपना शेयर किया। आशा करूँगा हमारे विद्यार्थी मित्रों को जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त रेडियो पर, और उन सभी को भी अच्छा लग रहा होगा कि कैसे इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का जो एक जर्नी है वो आपने सुना। और आप भी अपने करियर में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इस तरह के पड़ाव जो है आते रहते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्शियस जो है, जैसे अभी गगनजीत सिंह जी शेयर कर रहे थे, अपने कॉन्शियस को थोड़ा पकड़ के रखिए और जो चीज़ें आप अच्छी तरह से करना चाहते हैं उसके लिए आप जो है तैयार भी रहें। और जब आप तैयार हो जाते हैं तो आपको सारी फैमिली जो है सपोर्ट करती है, लोग भी सपोर्ट करते हैं, और ऐसा भी होता है कि कुछ ईश्वर के चमत्कार भी आपके बीच में आ जाते हैं, जैसे गगनजीत सिंह के साथ हुआ। तो ये चमत्कार भी आपको हेल्प करता है, क्योंकि आपकी पूरी मनोस्थिति जो है उस खुला आकाश की तरह है और आप जो करना चाहते हैं उसके लिए आप अपने आप को समर्पित रूप से उन चीज़ों को करते हैं। आप डेडिकेटेड हैं अपने जॉब के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, अपने कार्य के लिए। ईमानदारी से कोई भी चीज़ आप करते हैं और शांति से करते हैं तो आपको सारी कायनात जो है हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। तो आशा करूंगा आज के इस जर्नी को सुनकर गगनदीप जी की आपको भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिला होगा। तो ज़रूर, और कहीं भी आपको लग रहा है कि अपने करियर बनाने में आपको कोई मुश्किल आ रही है या किसी बात को आप नहीं समझ पा रहे, तो 9414151415 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और हमारे लाइव प्रोग्राम्स भी होते हैं, उसमें भी आप इस बात को जो है ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर अभी आपका कॉल नहीं लग रहा है किसी कारण से या बात नहीं हो पा रहा है, तो आप जो है मंडे टू फ्राइडे सवेरे 8 से 10 के बीच में या 4 से 5 के बीच में भी कॉल करके आप पूछ सकते हैं अपने करियर के बारे में, तो हमें अच्छा लगेगा और आपको हेल्प करने से हमें बेहद खुशी होगी। तो चलिए, इन्हीं शुभ आशाओं के साथ, आप बहुत अच्छा अपना करियर करें ऐसी शुभ आशा के साथ, फिर से एक बार गगनदीप जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़कर अपनी यात्रा सुनाने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जी। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

मेरे कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: गुड मॉर्निंग भोना।
1: गुड मॉर्निंग भैया।
0: ये मेरे गालों पे रंग किसने लगाया सुबह सुबह?
1: मैंने भैया।
0: तुमने? क्यों?
1: होली पे एग्जाम्स थे ना, इसलिए मैंने आपके साथ होली नहीं खेली, इसलिए आप खेल रही हूँ।
0: ओ, तो आज तुमने होली की कमी पूरी कर दी।
1: हाँ।
2: अरे बच्चों, क्या हो रहा है ये?
0: भोना मेरे साथ होली खेल रही है दीदी।
2: लगता है तुम लोग को होली का जो त्योहार है वो बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्यों?
1: हाँ दीदी।
2: अच्छा, होली फेवरेट फेस्टिवल किसका है यहाँ पे?
3: मेरा दीदी।
2: सैंडी का? अच्छा, तुम्हें होली बहुत पसंद है?
3: बहुत।
2: होली क्यों बहुत पसंद है?
3: कि मजा आता होली, सबके साथ खेलते हैं ना, रंग लगाना, फिर अलग अलग कलर्स, सात रंग, अच्छा लगता है बहुत।
2: होली खेलना बहुत अच्छा लगता है।
3: हाँ।
2: अच्छा मुझे ये बताओ, अब तक की जितनी भी होली तुमने खेली है, तुम्हारी सबसे फेवरेट होली कौन सी थी?
3: सबसे फेवरेट होली 2 साल पहले।
2: 2 साल पहले? और उसमें ऐसा क्या स्पेशल हुआ?
3: मम्मी पापा मैं भैया सब साथ में खेले थे, और ज्यादातर मैंने होली पापा के साथ खेली थी।
2: मतलब पापा के खूब रंग लगाया था?
3: पापा ने मुझे उठा के ना टब में डाल दिया था।
2: अच्छा,
0: पानी के टब में या रंग वाले टब में?
3: पहले पानी वाले टब में डाला, फिर रंग डाल दिया ऊपर से।
2: मतलब सैंडी का पूरा कलर चेंज हो गया। होली की स्पेशलिटी ये होती है। क्या होती है होली की स्पेशलिटी?
3: अलग अलग रंग।
2: बिल्कुल, रंग का ही तो त्योहार है होली। तो जब तक रंग बिरंगे ना हो, तब तक मजा कैसे आएगा?
0: इस दिन तो दुश्मन भी इतने प्यार से होली खेलते, इतने प्यार से रंग लगाते कि ऐसा लगता है कि वो भी अपने ही
2: हैं। हाँ, बात तो सही है। कहते हैं कि इस दिन दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं।
3: हाँ दीदी।
2: तो क्या कोई ऐसा इंसिडेंट याद है आपको होली का, जो आपके दोस्तों के साथ अपने होली खेली हो, या कुछ ऐसा हुआ हो जो आप हमें बताना चाहे?
3: फिर हम लोग थोड़ा केफ्री केफ्री में आ गए, फिर हम लोगों ने फोटो खींची, फिर उसको अभी पे अपलोड करा।
0: दीदी आपको पता मुझे होली बिल्कुल पसंद नहीं है।
2: होली बिल्कुल पसंद नहीं है तुम्हें पंकज?
0: हाँ दीदी।
2: ऐसा क्यों?
0: क्योंकि लोग होली को होली के तरीके से नहीं खेलते।
3: हाँ।
2: अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है किस तरीके से होली खेलनी चाहिए?
0: होली खेलनी चाहिए मतलब होली रंगों का त्योहार है, और इसमें जितना रंग लगावे उतना अच्छा है, लेकिन इस त्योहार का लोग अलग ही तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कोई कीचड़ में किसी को पटक देता है, तो कोई कपड़े फाड़ देता है, और एक दूसरे को नाराज कर लेते हैं ऐसे त्योहार पे।
2: बात तो सही है, होली हमेशा हमें लोगों को खुश करने के लिए खेलनी चाहिए, और अगर किसी को परेशानी हो तो हमें वो चीज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, है ना? और किसी को जबरदस्ती रंग लगाना, कीचड़ में डालना, परेशान करना, ये सब तो हमें ना करना चाहिए और ना होने देना चाहिए।
0: इसलिए मुझे सिर्फ होली देखना ही अच्छा लगता है, लेकिन खेलने के लिए बिल्कुल इच्छा नहीं होती।

0: आकाश, आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है?
1: दीदी, मेरा फेवरेट फेस्टिवल है रक्षाबंधन।
0: अच्छा, और रक्षाबंधन क्यों?
1: क्योंकि दीदी, रक्षाबंधन में ये होता है कि जब कोई सिस्टर मुझे राखी बांधती है ना, तो राखी बांधने के साथ साथ वो इतने सारे स्वीट्स मेरे मुंह में ठूस देती है कि खाते खाते मेरे को बहुत मजा आता है। और वो इतने टेस्टी होते हैं ना, मन करता है पूरा प्लेट ही में चखे।

0: रक्षाबंधन पे तो बहन की याद आती होगी। और भुवना, आपको रक्षाबंधन अच्छा लगता है?
1: हाँ।
0: क्यों?
1: मैं भी मेरे भाई लोगों को राखी बेचती हूँ।
0: आप भी राखी बेचते हो अपने भाई लोगों को? तो आपको रक्षाबंधन में और सबसे अच्छी चीज क्या लगती है, बताओ?
1: मुझे सबसे अच्छी चीज कुछ नहीं लगती है, लेकिन बुरा लगता है एक भाई नहीं है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ लेकिन स्कूल हो जाता है।
2: हम है ना भुवना, हमें कैसे भूल गई तुम?
0: हाँ, मतलब
3: हमारा हाथ सदैव आगे है।
0: मतलब अब कुछ और राखियाँ बढ़ने वाली हैं जो भुवना को भेजनी होंगी, है ना? बच्चों, भाई बहन का रिश्ता हमारे इमोशन से होता है, तो अगर मेरी सगी बहन या सगा भाई नहीं है ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए।
4: ओके दीदी।
0: कोई भी हमारे आसपास है जिसे हम बहन या भाई मानते हैं, कजिन हो या ना हो, तो भी हम रक्षाबंधन मना सकते हैं।
4: हाँ दीदी,
0: है ना?
4: हाँ
3: दीदी।
0: क्या आप लोग मुझे ये बताओ, कभी अपने भाई बहन या उसको लेटर्स लिखते हो कि नहीं?
1: हाँ दीदी, मैं लिखती।
0: लिखते हो? और पंकज और सैंडी?
4: मैंने एक बार लिखा था।
2: और दीदी, मैंने कभी नहीं लिखा।
0: और आकाश? आजकल ईमेल और एसएमएस का जो जमाना है, लेकिन लेटर्स लिखने का भी अपना अलग मजा है।
4: मैंने ग्रीटिंग कार्ड लिखा था।
0: ग्रीटिंग कार्ड?
4: हाँ।
0: जब रक्षाबंधन होता है तो अपने भाई बहन को हम लेटर्स या फिर ग्रीटिंग कार्ड्स लिख के भी भेज सकते हैं, उन्हें हमारी प्रेजेंस फील हो जाएगी, है ना?
4: हाँ दीदी।
0: तो अगली बार से कौन कौन लेटर्स भेजेगा?
4: मैं।
0: बस सैंडी?
1: मैं भी।
0: और आकाश?
3: मेरे लिए तो पहले से दीदियाँ राखी में चिट्ठी भर के भेज देती हैं।
0: चिट्ठी भर के भेज देती
3: हैं।
0: अच्छा, यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। आप सबसे फिर से मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। तब तक रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जिंदगी एक सफर है सुहाना, है ना, क्योंकि रोज हमारा एक त्योहार की तरह बीत सकता है अगर हम वापस उस सेलिब्रेशन के मूड में रहें और सबसे प्यार से बात करें तो रोज ही एक फेस्टिवल हो सकता है।
1: हाँ दीदी,
0: है कि नहीं। तो अभी हमने होली की बात की और रक्षाबंधन की बात की, पंकज तुम बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा फेस्टिवल कौन सा अच्छा लगता है?
2: मुझे भी भुवना की तरह दिवाली पसंद है।
0: दिवाली पसंद है, और दिवाली तुम्हें क्यों अच्छी लगती है?
2: दिवाली मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता और ना ही किसी से बहस होती है। हम अपने घर पे उसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुशी खुशी सेलिब्रेट करते हैं।
0: अच्छा, कोई लड़ाई झगड़ा और नहीं होता इसलिए आपको दिवाली पसंद है।
2: हाँ दीदी।
0: और दिवाली में सबसे स्पेशल चीज क्या करते हो तुम?
2: स्पेशल चीज तो हम दिवाली को हम सबसे स्पेशल ये करते हैं कि हम अपने सारे फ्रेंड्स को मिलते हैं और उनके घर पे जाते हैं और उनके घर पे जो लक्ष्मी पूजा होती है उसकी मिठाइयाँ खाते हैं।
0: अच्छा, लक्ष्मी पूजा के बाद जो मिठाइयाँ मिलती हैं इसीलिए पसंद है।
2: हाँ दीदी।
0: और पटाखे नहीं जलाते?
2: पटाखे तो बहुत जलाते
0: हैं।
2: हाँ।

0: उड़ते हैं।
1: अच्छा, और फेवरेट पटाखा कौन सा है?
0: सुतली बॉम्ब।
1: अच्छा, ये तो सैंडी का फेवरेट हुआ, पंकज का फेवरेट कौन सा है?
2: लक्ष्मी बॉम्ब।
1: और भूपना, दिवाली तो तुम्हें भी बहुत पसंद है ना?
3: हाँ।
1: और तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है?
2: टिकड़ी।
3: चक्री।
1: चक्री देखना अच्छा लगता है, और सबसे मिलना भी अच्छा लगता है। दिवाली के दिन तो हम सबसे मिलते हैं।
0: हाँ दीदी।
1: और लाइट्स और दिए जलाना किसे अच्छा लगता है यहाँ?
4: मुझे मुझे मुझे
1: आकाश को।
4: हाँ,
0: क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी रंगोली बनानी आती है।
1: अरे वाह, रंगोली बनानी आती है?
0: थोड़ी थोड़ी।
1: अच्छा, क्या बनाते हो रंगोली में?
0: जैसे दिए टाइप, मतलब दीदी है ना हमारे पास में रहती है, उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है, तो वो थोड़ा उनकी हेल्प कर देता हूँ मैं, रंग ला के देना और सब करना। अरे तो थोड़ा तो आता है ना।
1: और आकाश को रंगोली बनानी आती है, दिए जलाते हैं?
4: हाँ, रंगोली बनानी आती है।
1: रंगोली बनानी आती है? कभी रंगोली बनाई है आपने? क्या बनाते हो?
4: रंगोली में एक चक्री जैसा गोल सा बनाता हूँ। हर दिवाली में अलग अलग तरह की बनाता हूँ।
1: तो लास्ट दिवाली में आपने क्या बनाया था?
4: लास्ट दिवाली में मैंने बनाया था, एक बड़ा सा सर्कल बनाया था, उसके अंदर फ्लावर था, फिर फ्लावर में व्हाइट कलर से मैंने लिखा था हैप्पी दिवाली।
1: अरे वाह,
0: वाव, नाइस।
1: ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया था।
0: अच्छा, तो मेरी तरह नहीं बनाते हो।
1: और आकाश, क्या क्या करते हो दिवाली पे?
4: दिवाली में घर में सबसे पहले जो दिए खरीद के लाता हूँ, दिए भी मैं ही चूज करता हूँ, दिए को धोता हूँ, दिए में डालने के लिए बत्ती बनाता हूँ, सबसे रात में घर पे मैं ही दिए सब जगह में लगाता हूँ, और जब सब जगह दिए लग जाते हैं तो सारे घर की लाइट ऑफ कर दो, ताकि मतलब बाहर से जाने से इतना अच्छा चमकता है ना घर, बहुत सुंदर लगता है।
1: बात तो सही है, दीवों की रोशनी से जब घर जगमगाता है तो वो दूर से बहुत ही सुंदर नजर आता है ना? और आजकल तो इलेक्ट्रिक दिए और इलेक्ट्रिकल कैंडल्स भी आ गई हैं।
0: हाँ दीदी, बहुत
1: है ना,
2: लेकिन तो हमें इसे यूज नहीं करना चाहिए।
1: हाँ, हमें ओरिजिनल दिए और ओरिजिनल कैंडल्स यूज करने चाहिए।
0: हाँ,
4: आखिर भारत की परंपरा
0: है,
1: और हम बच्चे ही तो उसे आगे लेके जाएंगे। हाँ, और फिर ओरिजिनल में जो मजा है
0: वो लेटेस्ट में नहीं है।
1: हाँ सही बात है,
4: ओरिजिनल में मजा आता है ना, जैसे कोई बड़ा सा बम फोड़ दिया हमने, जैसे सुतली बम फोड़ दिया, भाड़ करके आवाज आई तो दिए बुझ जाते,
0: फिर वापस जलाना उसे।
4: हाँ,
1: उसमें भी मजा आता है।
0: और ज्यादातर दिए हम ही बुझाते हैं, बम फोड़ते दिए लेके जाते हैं।
2: हाँ, मैंने भी दियो के नीचे बम रख के बहुत फोड़े।
4: हाँ,
0: मैंने भी बहुत।
4: एक दिन मैंने क्या किया था, छोटी दिवाली थी तो बीच में सुतली बम रख दिया था, चारों तरफ से रेत ढक दी थी, फिर उसको जला दिया था, फट करके फूटा, सारा रेत आजू बाजू फैल गया।
1: लेकिन हमें पटाखे जलाते वक्त बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।
2: हाँ दीदी, एक बार मेरा हाथ जल गया था।
1: कहाँ जल गया था?
0: मेरा
1: कैसे?
0: भी मेरा तो जो अनार होता है ना, तो वो फूटता तो है नहीं है, तो मुझे लगा ये फूटता नहीं है, मैंने अनार धरा लिया जला के, फिर हाथ में लेके ऐसे कर रहा था, फिर वो फूट गया, तो थोड़ा हाथ में चोट लग गया था।
1: हाथ में चोट लग गई थी? हाँ। ये कितनी पुरानी बात है सैंडी?
0: ये पुरानी बात 3 साल पुरानी बात है।
1: तो अभी आपका हाथ फिर ठीक हो गया?
0: हाँ, ज्यादा चोट नहीं लगा था, तब से मैंने अनार को भी जला के दूर भाग जाता हूँ।
1: हाँ, हम एक लंबे से अखबार का या किसी लंबी सी चीज का प्रयोग कर सकते हैं ताकि हम उस पटाखे से दूर रहें, और कभी भी जब तक वो पूरी तरीके से बुझ ना जाए, उसको देर ना हो जाए, तब तक उसे हाथ में ना लें और ना ही उसके पास जाएं।
2: हाँ दीदी, मैंने नोटिस किया कि बहुत बार ऐसा होता है कि अनार में, पता नहीं आजकल ऐसा क्यों होता है कि अनार फूट जाते हैं।
0: हाँ दीदी, आजकल ऐसे अनार अच्छे नहीं आ रहे।
4: करीब जब मैं 5 साल का था तो मेरे पापा ने करीब 2000 के पटाखे लेकर आए थे, उसके अंदर करीब 30 अनार थे, तो हमने पहला बॉक्स खोला, तो बॉक्स में से जब अनार जलाना चालू किया ना, तो अनार करीब मेरे से 2 कदम सामने था, मैं और पापा अनार को जला के देख रहे थे, जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ा इतनी जोर से फूटा, आँख में उसका जो चूरा होता है ना वो घुस गया था, चारों तरफ से धुंधला धुंधला कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, धुआं धुआं दिखाई दे रहा, काफी चेहरे पे छींटा मारा, तब जाके आँख की रोशनी साफ हुई, तब ठीक तरह से देख पाया।
1: आजकल पटाखे भी ऐसे आ जाते हैं, और साथ ही साथ हम जब दिवाली के बाद अखबार पढ़ते हैं तो कई ऐसी दुर्घटनाएं हमें सुनने को और पढ़ने को मिलती हैं, जो कि फेस्टिवल का सारा मजा तो खत्म कर ही देती हैं, बल्कि उनसे हमें सबक भी लेना चाहिए।
0: हाँ, आजकल के पटाखे काफी खराब आ रहे हैं।
1: पटाखों को कम जलाने में हमारे पर्यावरण की भी भलाई है और हमारी भी।
0: हाँ, वायु प्रदूषण बहुत होते हैं।
1: और भुवना, आप क्या क्या करते हो दिवाली में?
3: मैं भी बहुत सारी पटाखे जलाती हूँ।
2: लेकिन तुम्हारा फेवरेट फेस्टिवल है तो कुछ स्पेशल करती होगी तुम।
3: हाँ मैं बहुत ज्यादा स्नेक्स को जलाती।
1: स्नेक्स?
0: हाँ मस्त आते, जलाओ सांप निकलते हैं।
4: छोटे छोटे
0: छोटे छोटे आते पीछे से आते हैं।
1: अच्छा वो छोटी छोटी जो ब्राउन कलर की गोलियां आती हैं,
0: ब्लैक
1: कलर की गोलियां आती हैं, वो आपको बहुत पसंद है भुवना?
4: हाँ जी।
1: और क्या क्या अच्छा लगता है आपको दिवाली के बारे में?
3: हर दिवाली में सारी फैमिली हमारी घर आ जाती है तो इतना फुल घर इतना अच्छा लगता है। मुझे फैमिली बहुत पसंद है।
1: फैमिली बहुत पसंद है क्योंकि सब लोग मिलते हैं और साथ में इकट्ठा होते हैं, इसलिए आपको दिवाली बहुत अच्छा लगता है?
3: हाँ दीदी।
1: ओके।
3: और इस फेस्टिवल पे इतना पसंद क्योंकि मेरे पापा भी खेलते हैं।
1: आपके पापा भी आपके साथ सेलिब्रेट करते हैं इसलिए आपको दिवाली अच्छी लगती है?
3: हाँ दीदी। कोई भी फेस्टिवल मेरे पापा नीचे नहीं आते, लेकिन जब दिवाली होती है सारी फैमिली नीचे आती है और इंजॉय करते हैं और लास्ट पे आइसक्रीम खाते हैं।
1: मतलब अगली दिवाली पे सब लोग अपनी आइसक्रीम खा सकते हैं कि नहीं भूखना?
3: हाँ।

0: अच्छा, और कौन से ऐसे फेस्टिवल्स हैं? ये तो हमारे इंडिया के बहुत ही प्रोमिनेंट और बड़े फेस्टिवल्स हैं जिनकी हमने बात की।
1: हाँ दीदी,
0: क्या कोई ऐसे छोटे छोटे फेस्टिवल्स भी हैं जो आपके घर पे या फिर आपके आसपास बहुत अच्छे तरीके से मनाए जाते हैं, या आपको कुछ खास पसंद है?
1: हाँ दीदी, मुझे मकर संक्रांति भी बहुत है।
2: मुझे भी बहुत
0: मकर संक्रांति।
3: हाँ दीदी, उसके अंदर अलग अलग तरीके के मंजे लेकर आते हैं और ना पतंगों को काटने में बड़ा मजा आता है।
4: मुझे भी संक्रांति बहुत पसंद है दीदी, लेकिन मुझे पतंग उड़ाना नहीं।
0: तो फिर क्या अच्छा लगता है भूमनाथ में?
4: पतंग देखना उड़ते हुए।
0: पतंग उड़ते देखने में भी बहुत अच्छी लगती है, बात तो बिल्कुल सही है। और पंकज को क्या अच्छा लगता है मकर संक्रांति में?
1: मुझे मकर संक्रांति पे उस बंदे की पतंग काटना अच्छा लगता है जो अपने आसपास के सारे पतंगों को काट कर अकेले मजे में उड़ रहा हो।
0: अच्छा, मतलब जो सबकी पतंग काट रहा हो आप उसकी पतंग को काटना चाहते हैं?
1: हाँ दीदी, और मैं काट भी देता हूँ।
2: सिखा आखिर मैंने, है ना?
0: अच्छा, मतलब सैंडी आपकी पतंग टीचर है?
2: हाँ।
1: सिर्फ यहाँ बोल रहा है, नहीं।
2: हाँ, सिखाया मैंने।
0: और आकाश को क्या अच्छा लगता है?
3: मुझे पतंग जब उड़ाते हैं ना, तो एक बार मैं और मेरे पापा ने क्या किया था, एक पिंक कलर की पतंग थी जो हमारे इलाके में करीब जितनी भी पतंगें उड़ रही थी ना, खच खच खच खच उसको काट रही थी। तो पापा ने पतंग नीचे उतारी, दो घिरियां लेकर आए, दोनों को एक पतंग में बांध दी, दो मंजे से उड़ाना चालू कर दिया। दो मंजे से उड़ा रहे थे, वो हमसे आया टक्कर लेने, ऐसे आया अड़ती चली गई। ओ वहां से चिल्ला रहा, भैया क्या किया? हमने बोला दो तो मंजे से उड़ा रहे हैं।
2: ये तो आइडिया पहली बार सुना हम लोगों ने,
1: लेकिन ये चीटिंग है।
3: तो क्या हुआ, जीत तो जाते हैं ना।
0: नहीं, कोई भी फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए मनाया जाता है कि नहीं? जीते या हारे मजा आना चाहिए बस, है ना? और पतंग उड़ाना तो हम सबको अच्छा लगता है, बस
4: आना चाहिए दीदी।
0: तो कौन उड़ाता है भुवना तुम्हारे घर में पतंग?
4: कोई नहीं दीदी।
0: आप बस छत पे जाके देखते हो?
4: हाँ।
0: और एंजॉय करते हो ना? बस वही तो इम्पोर्टेंट है।
1: लेकिन पतंग देखने में भी अच्छा लगता है।
4: हाँ
0: हाँ, पतंग आसमान में जब उड़ती है रंग बिरंगी तो बहुत सुंदर लगती
2: और
0: है।
2: और पतंग उड़ाने के बाद जो भूख लगती है ना, उसके बाद खाने में और मजा आता है।
0: हाँ, और फेस्टिवल्स की सबसे खास बात कि खाने को कुछ ना कुछ अच्छा जरूर मिलता है।

0: कोई ऐसा इंसिडेंट आप लोगों को याद है जो किसी त्योहार के दिन हुआ हो और अभी तक आपको याद है?
1: हाँ दीदी, मेरे साथ एक बार हुआ है। हमारे घर में जब भी नवरात्रि की पूजा हो रही थी ना, तो 3 साल तक क्या हुआ था कि जब भी नवरात्रि का जिस दिन 9वां दिन होता था ना, जिस दिन हमारे घर में हवन होता था, कुछ ऐसा बात हो जाता था ना कि पापा को मेरे पे गुस्सा आ जाता था और मेरे आंसू टप टप आंसू। 3 सालों से ऐसा हो रहा था और पिछले साल मैंने नोटिस किया मेरे आंख से एक बूंद भी आंसू नहीं गिरा।
0: और ये चेंज कैसे आया?
1: ये चेंज आया कि पापा के सामने मैं बहुत कम आ रहा था।
0: मतलब पापा अगर डांटते हैं तो आप उनके सामने कम जाते हैं?
1: हाँ।
0: अच्छा, नहीं ठीक है बच्चों, अगर कोई चेंज लाना है तो कोई भी तरीका अपना के आप उस चेंज को ला सकते हैं।
2: दीदी, मुझे नवरात्रि भी अच्छी लगती है क्योंकि गरबे खेलते हैं ना 9 दिन।
0: हाँ।
2: और मुझे खेलना भी आता है
3: और मुझे थोड़ा थोड़ा आता है और लोग मुझे देख के हंसते हैं, इसलिए मुझे और मजा आता है।
2: और गरबे मैंने थोड़ा थोड़ा मैंने सिखाया, ये तो बात तो झूठ बोलना ही मत।
0: अरे वाह, मतलब सैंडी गरबा खेलते हैं, तो फिर सैंडी को तो हम सबको गरबा सिखाना पड़ेगा।
2: ठीक है।
3: सैंडी को बस अपनी वाह वाह ही चाहिए।
2: गरबा खेलना मुझे बहुत अच्छे से आता है और मुझे ये हमारे पास में एक फ्रेंड है, वो गुजरात से बिलोंग करता है, उससे आता है, उसने मुझे सिखाया।
0: हाँ, गुजरात में तो गरबा बहुत खेला जाता है,
2: फेमस है वहाँ।
0: आखिर वो वहाँ की तो डांस है।
2: हाँ दीदी,
0: है ना। और उसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है? सब लोग मिलके ऐसे कर सकते हैं,
2: मिलके खेलते हैं, वो मजा आता है,
0: है ना। और डांस करना और गरबा करना किसको अच्छा लगता है?
2: मुझे भी।
4: अच्छा,
1: मुझे भी।
0: सबको अच्छा लगता है।
4: हाँ दीदी।
0: भुवना, आपको गरबा आता है कि नहीं?
4: हाँ आता है।
1: लेकिन मुझे नहीं आता। मेरे को सिर्फ गरबा में एक स्टेप आता है, एम बनाना, वो भी ढंग से नहीं कर पाता। जहाँ गोल गोल घूमते वहाँ जाके बस हाथ हिला के आ जाता हूँ, बोले मैंने गरबा खेल लिया।
2: इसमें भी मजा है।
1: हाँ,
2: जब अपने को नहीं आता, नहीं कोई देखता है ना, फिर हंसता है तो मजा आता है।
1: किसी के हंसी का हम कारण बने, उसको खुशी मिलती है तो हमको भी अच्छा लगेगा ना।
0: ये बात तो आपने,
2: और गरबा तो मेरे घर के आगे होता है।
0: खुशी मिलनी चाहिए, डांस अच्छा हो नहीं हो, कोई देखे ना देखे क्या फर्क पड़ता है कि नहीं?
2: हमने एंजॉय किया।
0: हाँ।

0: अच्छा यहाँ पे गणेश चतुर्थी किस किस को अच्छी लगती
1: मेरी
0: है?
1: मेरी फेवरेट है,
2: मुझे भी पसंद है।
1: क्योंकि हम विसर्जन में जाते हैं ना, जो विसर्जन में डांस करते हैं, सबसे मजा आता है।
0: और गणेश जी के घर में स्थापना होती है,
2: विसर्जन में डांस करने का मजा इसलिए आता है क्योंकि उसमें डांस करने का कोई तरीका नहीं होता,
1: जैसा आए वैसा करो।
0: बिल्कुल, जैसा मन करे वैसा करो।
2: हाँ दीदी।
0: और शुरुआत कैसे होती है गणेश चतुर्थी की?
1: गणेश चतुर्थी की शुरुआत तो हमारे कॉलोनी में मेरे घर के आगे रखते हैं, तो थोड़ा बहुत मुझे पता है कि हमारे कॉलोनी में तो पहले कि गणेश जी की मतलब आज स्थापना करनी है तो दो दिन एक दिन पहले जाएंगे गणेश जी की मूर्ति अच्छी सेलेक्ट करेंगे, फिर वहाँ से हम क्या ढोल नगाड़े की मूर्ति ले जाते हैं, ढोल नगाड़े से लेके आते हैं, फिर पंडित जी को बुलाते हैं, फिर मुहूर्त देते कि हाँ किस मुहूर्त में स्थापना करनी है, फिर उस मुहूर्त में स्थापना करते, फिर हमारे कॉलोनी में से कोई भैया मतलब बैठते पूजा के लिए, फिर स्थापना करके उसके बाद से फिर शाम को प्रोग्राम रखते हैं, मतलब आरती का, गणेश जी की आरती सुबह शाम करनी पड़ती है, तो शाम को हमारे यहाँ मतलब आरती की बोली भी लगती है।
0: आरती की बोली?
1: हाँ, तो मतलब इसमें कि जो मतलब अच्छी बोली लगाता है वो मतलब शाम की आरती करता है।
2: अच्छा, मतलब गणेश जी की पहली आरती उसे मिलती
1: है? हाँ, पहली आरती उसे मिलती है, फिर ऐसे मतलब जितना दिन रखना हो मतलब उतना गणेश जी को रखते हैं। हमारे यहाँ पे मतलब सब मूर्तियाँ साथ में निकलती है, तो कम से कम 250 मूर्ति साथ में निकलती है, फिर ट्रैक्टर पे मतलब जो ट्रक होता है उस गणेश जी की मूर्ति को विसर्जन के लिए जाते हैं, फिर साथ में डीजे वजे होता है, फिर जाते साथ में, फिर मस्त कपड़े पहन के मतलब गणेश जी का मतलब ड्रेस लाते हैं सबका एक जैसा,
3: ब्लैक ब्लैक जीन्स और ऑरेंज कलर का।
1: हाँ, मतलब जैसा अच्छा लगे, मतलब कि थोड़ा अच्छा होना चाहिए, सबका एक जैसा लाते हैं, फिर डीजे लगाते हैं, फिर साथ में यहाँ से डांस करते हुए ले जाते हैं,
0: डांस करते हुए।
1: हाँ, गुलाल फेंकते हुए और डांस करते हुए ले जाते हैं, बहुत मजा आता है,
0: खूब मजा आता होगा। हाँ। फ्रेंड्स और फैमिली हर कोई होता है ना।
1: हाँ।
0: और आप लोग ये बताओ कि कोई फेस्टिवल्स की ऐसी चीज भी है जो आपको अच्छी नहीं लगती?
1: नहीं, हमें सारी फेस्टिवल अच्छे लगते।
0: तो आज हमने फेस्टिवल्स के बारे में खूब रंग बिरंगी मीठी खट्टी बहुत ढेर सारी बातें की और हमें बहुत मजा भी आया और हमें ये भी पता चला कि कैसे हम मनाते हैं और क्या क्या सावधानियां हमें इन फेस्टिवल्स के दौरान बरतनी चाहिए।
4: हाँ दीदी।
0: अगली बार हम सब फिर मिलेंगे और फिर से करेंगे कुछ ऐसे ही बातें, लेकिन उससे पहले क्योंकि फेस्टिवल्स की बात कर रहे थे तो फेस्टिवल्स पे तो खूब गाना बजाना और डांस होता है, तो हो जाए एक गाना।

0: तो अभी हमने सुना बच्चों की दुनिया ये कार्यक्रम। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग, द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं, द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

ये है लल्लू, ये है ज्ञान, ये है कल्लू, ये है प्राण। तू क्यों रोता चंदर भान, माने पीटा मेरी जान। ना हो रो रो के हलकान, तू है भारत की संतान। ले ले तू ये तीर कमान, मेरे प्यारे पहलवान, बचा ले अपने घर की।

मारा रे मारा रे वो मारा झूम राग मचलू तो आग ये बात जान तारा तारा ये बात जान तारा वो मारा आंखें कटार देखा मेरा वार तेरा दिल किया है परा परा तेरा दिल किया है परा परा वो मारा

डर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

रचना। सजना ओ सजना।

0: करते हैं।
1: अरे वाह मजनू,
0: लैला लैला करेगा लैला ओ लैला, लैला लैला करेगा ठंडी आहें भरेगा। चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना।

0: हमको
1: डूब मरो
0: डूबेगा नहीं तरेगा डूबेगा नहीं तरेगा प्यार से हम नहीं डरेगा चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना आज हम तो मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना आज हम तो मोहब्बत

की जिंदगी की महफिल, महफिल में हम अकेले, दामन को कोई चूमे, जुल्फ

के तो ना टोटका, सब तूने हिम्मत हारी। बस में तेरे आज तक आई ना चंचल नारी। दे दे साड़ी एक छपा के बात बने अलबेले।